100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज ज्येष्ठ मास की तीसरी तिथि शक संवत 1948 तदनुसार 24 मई 2026 दिन रविवार प्रातः के 5:55 हुए हैं और अब हमारी सभा आरंभ होती है।

मन की चंचलता में संसार है और मन की स्थिरता में परमात्मा। परमात्मा की आराधना, भक्ति संगीत की साधना, कार्यक्रम पुष्पांजलि।

नमस्कार, सुप्रभात। भोर की पहली किरण जब मंदिर की घंटियों से टकराती है तो मन खुद ब खुद उस असीम शक्ति की ओर खिंचा चला जाता है। नमस्कार, मैं हूँ स्वेच्छा और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पुष्पांजलि, जहां सुरों की खुशबू है और श्रद्धा के फूल। तो आइए अगले कुछ पलों के लिए खो जाते हैं भक्ति के इस पावन सागर में।

किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उनके नाम के बिना अधूरी है। जो विघ्नहर्ता है और बुद्धि के सागर भी। तो आइए इस वचन के माध्यम से सुमरण करें, नमन करें रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी को।

शिव जी की महिमा शब्दों में समा जाए ये आसान नहीं, लेकिन भक्ति जब दिल से निकले तो हर पंक्ति उनकी मौजूदगी का एहसास करा देती है।

एक तरफ अनंत वैराग्य और दूसरी तरफ अटूट शक्ति। शिव और शक्ति का मिलन ही इस सृष्टि का आधार है। जहां महादेव का मौन है, वहीं महापार्वती की ममता और दृढ़ता। चलिए चलते हैं उस पावन पर्वत की ओर जहां गूंजता है ओम नमः शिवाय का स्वर।

जब हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता सीता का नाम लेते हैं तो याद आता है त्याग, धैर्य और अटूट विश्वास। एक ऐसा रिश्ता जिसने युगों युगों को जीवन जीने की कला सिखाई।

और राम जी की बात हो और हम हनुमान जी की बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना पावन महीना हनुमान जी को समर्पित ज्येष्ठ मास चल रहा है, तो ऐसे में एक और बड़ी ही सुंदर कथा हनुमान जी से संबंधित। हनुमान जी हमें विश्वास जीतना सिखाते हैं। कैसे, हम बताते हैं। हनुमान जी को अपनी शक्तियों के बारे में बस अभी अभी पता ही चला था जब वो समुद्र लांग कर लंका गए थे। काफी उत्पात मचाया और लंका भी जलाई। फिर अशोक वाटिका जाकर उन्होंने माता सीता से कहा कि आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको लिए चलता हूँ प्रभु श्री राम जी के पास, इससे आप दोनों की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। मैं इतना शक्तिशाली हूं कि रावण समेत पूरी लंका को ले जा सकता हूं। माता सीता ने पहले तो कुछ बहाने बनाए कि अगर मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ तो हो सकता है मैं पानी में गिर जाऊं, या तुम राक्षसों का वध करोगे या मेरा संरक्षण करोगे। फिर जब हनुमान जी नहीं माने तो माता सीता ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, इससे प्रभु श्री राम जी का शौर्य अधूरा रह जाएगा और फिर मैं किसी पर पुरुष को छू भी तो नहीं सकती। अक्सर ऐसे समय पर जो साधारण हम जैसे मनुष्य होते हैं उनका अहम जो है वो बीच में आ जाता है, उनको अपनी शक्तियों पर घमंड हो जाता है और लगता है कि सामने वाला हमें समझ नहीं रहा। पर जब हनुमान जी ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा, आप सही कह रही हैं, आपको ले जाते हुए अगर कोई क्षति पहुंच गई तो प्रभु श्री राम जी का कार्य अधूरा रह जाएगा। और हनुमान जी ये भी समझ गए कि वो पर्वत तो उठा सकते हैं पर किसी के चरित्र का भार नहीं उठा सकते, किसी धर्म का भार नहीं उठा सकते। और ये भी कहा कि मैंने आपको ले जाने का सुझाव सिर्फ प्रेम और वात्सल्य के कारण किया था, इसके पीछे और कोई मंशा नहीं है। और ऐसे हनुमान जी ने सच कहकर अपने भोलेपन से माता सीता का विश्वास जीत लिया। साथ ही उन्होंने माता सीता की जो सीमाएं हैं उनका आदर करते हुए अपनी बात जब कही तो माता सीता को उन पर विश्वास हो गया और उन्होंने इस प्रसंग के बाद हनुमान जी को अपनी

चूड़ा मणि उतार कर दी और साथ ही में कौवे वाली कहानी भी कह बताई, जिससे श्री राम जी को ये विश्वास हो जाए कि हनुमान जी उन्हीं से मिले थे। और इसी के साथ कहते हैं ना कि विश्वास कभी मांगा नहीं जाता, उसे जीता जाता है। और इससे जीतने का सबसे आसान तरीका होता है सच बोलकर और सामने वाले की सीमाओं की रिस्पेक्ट कर, आदर करके, सम्मान करके। क्योंकि आपकी ताकत आपको नायक बना सकती है, पर महावीर आप तब बनते हैं जब आप सामने वाले की सीमा की आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं।

बिना कृष्ण के राधा रानी अधूरी है और बिना राधा जी के कान्हा का नाम पूरा नहीं होता। ये प्रेम नहीं बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन है, जहां बांसुरी की धुन और निस्वार्थ समर्पण की पराकाष्ठा है।

नारी का रूप ममता की मूरत और दुष्टों के लिए साक्षात्कार, यही तो है मां शक्ति। जब संसार में अंधकार बढ़ता है तब भक्ति की ज्योति और मां की शक्ति ही हमें मार्ग दिखाती है। आइए नमन करते हैं उस जगत जननी को जिसकी जिनकी कृपा से ये सृष्टि गतिमान है। 6:56 का वक्त और पुष्पांजलि, कार्यक्रम पुष्पांजलि को यहीं पर समाप्त करने का वक्त भी हो गया है। इसी प्यारे से भजन के साथ आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

नमस्कार, सुबह के 7 बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। ये रोजगार मेला राजधानी लखनऊ, वाराणसी, आगरा सहित पूरे देश में 47 अलग-अलग जगहों पर आयोजित किया गया था। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि राजस्व मामलों के त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि भूमि और राजस्व से जुड़े मामलों में अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्धारित समय सीमा के बाद भी लंबित रहने वाले मामलों में संबंधित अधिकारियों और कार्मिकों की जवाबदेही तय करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कल लखनऊ में राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक आधारित व्यवस्था, जवाबदेही और समयबद्ध कार्यप्रणाली के माध्यम से राजस्व न्यायालयों की कार्यक्षमता को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में श्रम एवं सेवायोजन विभाग की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और प्रस्तावित योजनाओं की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक केवल उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति हैं। सरकार की प्राथमिकता है कि श्रमिकों, युवाओं और कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित कार्य वातावरण और बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध हों। बाल श्रमिक विद्या योजना वर्तमान में 20 जनपदों में संचालित है। मुख्यमंत्री ने इसे नए प्रावधानों के साथ प्रदेश के सभी 75 जनपदों में लागू करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश ट्रांसको के प्रबंध निदेशक मयूर महेश्वरी ने कार्यों में प्रथम दृष्टया लापरवाही का दोषी पाए जाने पर गाजियाबाद में अधिशासी अभियंता राहुल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ये कार्रवाई 220 केवी मुरादनगर बापूधाम लाइन पर कंडक्टर टूटने और बिजली आपूर्ति बाधित होने के मामले में की गई। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में खेले गए मुकाबले में कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स के 197 रन के लक्ष्य को पंजाब किंग्स ने 18 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 200 रन बनाकर हासिल कर लिया। कप्तान श्रेयस अय्यर ने नाबाद 101 रन की पारी खेली। वहीं प्रभसिमरन सिंह ने 69 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से मोहम्मद शमी ने 2 विकेट लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 9 बजे अखबारों की सुर्खियों के साथ प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।

हवाओं में एक अलग सी ताजगी है और सूरज की किरणें खिड़की से झांक कर पूछ रही हैं। कोई पुराना गाना नहीं बजेगा क्या? नमस्कार, सुप्रभात, मैं हूँ स्वेच्छा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं, और कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है सदाबहार गीत की। कहते हैं कि वक्त पंख लगाकर उड़ जाता है, लेकिन कुछ धुनें ऐसी होती हैं जो वक्त को वहीं रोक देती हैं। आज के इस सुहाने सफर में हम यादों की धूल झाड़ेंगे और नगमों को गुनगुनाएंगे जिन्होंने कल भी दिल जीता था और आज भी धड़कन बने हुए हैं। तो चलिए सुबह की चाय और रफी साहब की आवाज के साथ शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम सदाबहार गीत की।

प्यार कितना छोटा सा लफ्ज है ना, लेकिन जब ये किसी से होता है तो पूरी कायनात का रंग बदल जाता है। धूप मध्यम लगने लगती है और हवाओं में एक सांस बजने लगता है। और पुराने गानों की यही तो खासियत है, इनमें इश्क की वो सादगी है जो आजकल के शोर में कहीं ना कहीं खो गई है।

और इस गाने की तरह जब रेडियो की सुइयां पुराने गानों से टकराती हैं ना, तो मानो एक टाइम मशीन चल पड़ती है। हम उस दौर में पहुंच जाते हैं, लौट जाते हैं, जहां खत लिखे जाते थे, जहां नजरों से बातें होती थी। तो चलिए फिर से गुजरते हैं उस जमाने की सादगी की तरफ और सैर पर चलते हैं इस सदाबहार गीत के साथ उसी दौर पर।

0: अपनी छत को सजाना चाहते हैं रंग बिरंगे फूलों से,
1: या उगाना चाहते हैं फल और सब्जियाँ, पर हर बार एक सवाल अटक जाता है, कैसे?
0: तो अपने हर सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़िए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ में
1: हर रविवार सुबह 9 बजे हमारे बागवानी स्पेशल सेगमेंट में,
0: जहां आपके हर सवालों का जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट।
1: तो अपने हर सवाल हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर
0: fmrainbowhelpline@gmail.com।
1: याद रखिए, हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

और इसी दिल की सुरक्षा आपको कैसे रखनी है, आपको ख्याल कैसे रखना है, इसी से संबंधित आज संडे स्पेशल प्रोग्राम आप सभी के लिए प्रसारित होगा 12 बजे से 1 बजे के बीच, हेल्थ एंड फिटनेस। जी, आज कार्यक्रम हेल्थ एंड फिटनेस का विषय है गर्मियों में हार्ट का कैसे रखें ख्याल। क्या गर्मी दिल पर असर डालती है? हार्ट मरीज कितना पानी पिए? गर्मी में कौन सा खाना बेहतर है? और क्या धूप हार्ट के लिए नुकसानदायक है? इन सभी विषयों से संबंधित आज स्टूडियोज पर मौजूद रहेंगे आप सभी के सवालों का जवाब देने के लिए डॉक्टर मनीष झा, हृदय रोग विशेषज्ञ। और आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी संशय है, कोई भी शंका है, तो आप 12 बजे से 1 बजे के बीच सीधे कॉल करके डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 0522 2238 845 और 0522 2238 852। साथ ही आप हमें मेल करके भी प्रश्न पूछ सकते हैं fmakashwanilakhnow@gmail.com पर। संडे स्पेशल है, बहुत सारी खास चीज़ें, खास सेगमेंट्स हैं आप सभी के लिए। फिलहाल 7:28 का वक्त, एक प्यारा सा गाना आप सभी के लिए।

रेट्रो गानों की एक जादुई ताकत होती है, ये हमें उस दौर में ले जाते हैं जहां बचपन की गलियां थी और अपने अपनों का बेपनाह प्यार। और रेडियो पर बजते ये गाने शायद आपको किसी पुराने दोस्त या किसी भूले बिसरे याद से मिला दें।

हम सब अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, कोई करियर को लेकर परेशान है तो कोई रिश्तों को संभालने में लगा हुआ है। लेकिन इन सबके बीच मुस्कुराना मत भूलिएगा। ये सदाबहार गीत हमें सिखाते हैं कि वक्त चाहे कैसा भी हो गुजर ही जाता है। 7:38 का वक्त और आप सभी के लिए

शहरों के छोटे घर हो या गांव का आंगन, दरवाजे उस वक्त हर किसी के लिए खुले रहते थे। वो दौर जब किसी का फोन किसी एक घर पर आता था, क्योंकि घर पर एक ही टेलीफोन होता था, और मोहल्ले का मोहल्ला पूरा एक परिवार जैसा था। किसी के घर में अचार डल रहा हो तो महक पूरी गली में पहुंच जाती थी, और मोहल्ले की आंटी पूरी दोपहर ही साथ बिताती थी। पहले लोगों के पास साधन कम थे पर जुड़ाव ज्यादा था। आज हमारे पास दुनिया भर की सुविधाएं हैं, लेकिन हम अक्सर उन पुराने दौर के सुकून को ढूंढते हैं। इसीलिए तो जब रेडियो पर कोई पुराना गाना बजता है तो वो सिर्फ संगीत नहीं होता, वो हमें उस मासूम दुनिया की सैर करा देता है जहां खुशियां मांगी नहीं जाती थी और महंगी भी नहीं होती थी, बस सच्ची हुआ करती थी।

5:54 का वक्त हो चुका है और सदाबहार गीत कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करने का समय भी आ गया है। आज के यादों और तरानों का ये जो कारवां है यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद है सदाबहार गीत के नगमों ने आपके दिल के किसी कोने को जरूर छुआ होगा। आप सुनते रहिए 107.7 एफएम रेनबो। ठीक 8 बजे आप सुनेंगे समाचार हिंदी में, जो कि रिले किए जाएंगे हमारी दिल्ली केंद्र से। और ठीक 8:15 होगी हमारी आपकी मुलाकात एक बार फिर से कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ के साथ। सुनते रहिए सदाबहार गीत का ये आखिरी गाना, एंजॉय करिए।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक TCS दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, हॉर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
3: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश

0: मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों और चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
0: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
1: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत

0: में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल चार आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
3: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और होर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
0: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेर कर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच दोपहर 3:30 से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल और सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद लवली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोकसत्ता में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा

0: युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान कहता है मोदी से मिले रूबियो, अमेरिका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स के अनुसार रूबियो से मिलकर पीएम बोले बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर लोकसत्य ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर सीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
1: धन्यवाद फरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी, स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक TCS दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की बेहतरीन शुरुआत। सकारात्मक विचार इन मॉर्निंग मंत्रा, जो आपको बनाए ऊर्जावान।
1: इतिहास के पन्नों से दिन विशेष की पूरी जानकारी,
0: जो बढ़ाए आपका ज्ञान। जन्मदिन, जयंती या मुद्दे पर आपकी बात,
1: म्यूजिकल एंटरटेनमेंट और आपके ईमेल्स का साथ,
0: मौसम की बात हो या हो ट्रैफिक का हाल, सांस्कृतिक गतिविधियाँ और सेहत का ख्याल, अखबारों की सुर्खियाँ और देश दुनिया के समाचार,
1: रोजमर्रा की समस्याएं और उनके समाधान। द कम्प्लीट ब्रेकफास्ट शो,
0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग लखनऊ एक बार फिर से हाजिर है आप सभी के लिए, और इस संडे मॉर्निंग को और बेहतरीन बनाने के लिए आपके दो दोस्त आ गए हैं। मैं हूं आपका अपना दोस्त विनय
3: जी, और मैं हूं आपके साथ स्वेच्छा। भाई, आपके संडे को बहुत सारा स्पेशल बनाने के लिए हम हाजिर हो चुके हैं। बहुत सारी खास बातें हैं, सेगमेंट्स हैं कई सारे, तो इस संडे अगले दो घंटे हमारे साथ स्पेशल बनाने के लिए हम हैं स्वेच्छा और विनय। तो एक प्यारा सा ट्रैक एंजॉय करिए, लौटेंगे बहुत सारी बातों के साथ।

0: Good morning. Good morning. Good morning.
1: आज का मॉर्निंग मंत्र, मॉर्निंग मंत्र, मॉर्निंग मंत्र।
2: जी हाँ, अब बारी है आज के दिन की एक सकारात्मक शुरुआत करने के लिए, पॉजिटिव नोट के साथ सुबह की शुरुआत करने के लिए। और आज का मॉर्निंग मंत्र हमसे कहता है,
3: दोस्तों मजरूहुल सुल्तानपुरी ने लिखा है और बहुत ही बेहतरीन शेर लिखा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया।

0: अपनी छत को सजाना चाहते हैं रंग बिरंगे फूलों से,
1: या उगाना चाहते हैं फल और सब्जियाँ, पर हर बार एक सवाल अटक जाता है, कैसे?
0: तो अपने हर सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़िए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ में
1: हर रविवार सुबह 9 बजे हमारे बागवानी स्पेशल सेगमेंट में,
0: जहां आपके हर सवालों का जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट।
1: तो अपने हर सवाल हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर
0: fmrainbowhelpline@gmail.com।
1: याद रखिए, हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

0: FM Rainbow.
1: जय दोस्तों, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो. और अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया कि आज है संडे, और संडे को हम एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम लेकर आते हैं. जिसको भी बागवानी का शौक है, घर में गमलों में फल फूल और सब्जियां उगाना पसंद करते हैं, और कोई भी समस्या आ रही है, कुछ भी जानना चाह रहे हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं fmrainbowhelpline@gmail.com, और 9 बजे के आसपास हमारे विशेषज्ञ हमसे जुड़ते हैं और आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचते हैं.
2: बिल्कुल, संडे स्पेशल है तो हर घंटे आपके लिए कुछ ना कुछ खास चीजें, खास प्रोग्राम रहेंगे. हमारे साथ सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए. फिलहाल आज के दिन से जुड़ी बात करते हैं. तो आज है 24 मई, और ये दिन बहुत सारी खास चीजें के तौर पर याद किया जाता है. और आज है इंटरनेशनल डे ऑफ द मारखोर.
1: दोस्तों, जैसा स्वेच्छा ने कहा कि आज 24 मई को ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है, और इस दिन का जो मेन मोटिव है वो मारखोर नाम के एक दुर्लभ जंगली पशु के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना है.
2: जी, मारखोर एक पहाड़ी जंगली बकरा है जो मुख्य रूप से मध्य और दक्षिण एशिया के पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है, और इसकी खूबसूरत घुमावदार सींग इसकी विशेष पहचान है.
1: एक बार आप सर्च करें मारखोर, और आप देखेंगे जो उसकी सींग है वो एकदम अलग है, अलग अलग, बहुत बड़ी बड़ी होती है, घुमावदार होती है. यूनाइटेड नेशंस महासभा ने 2024 में पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ द मारखोर मनाने की घोषणा की थी.
2: जी, और इसका मोटिव, इसका उद्देश्य ये था कि इस दुर्लभ वन जीव के संरक्षण, जैव विविधता की रक्षा और पर्यावरण संतुलन के महत्व के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना.
1: दोस्तों, बढ़ते हुए शिकार, जंगलों की कटाई और प्राकृतिक आवास के नुकसान के कारण मारखोर की संख्या में बहुत कमी आई है, लेकिन संरक्षण प्रयासों में इसकी स्थिति में सुधार अब देखने को मिल रहा है.
2: और ये दिन हमें वन्यजीवों और प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की प्रेरणा भी देता है.
1: तो ये एक विशेष दिवस, और अब इसके बाद हम लेकर आएंगे आपके लिए मुद्दा आज का.

0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, आज का मुद्दा।
1: ये दोस्तों गुड मॉर्निंग लखनऊ सुन रहे हैं आप, और अभी हम कुछ देर पहले मारखोर की बात कर रहे थे कि सोचा
2: जी, ऐसा दुर्लभ जीव जिसका अब संरक्षण करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो विलुप्त तो होने की कगार की ओर बढ़ चुका है। और इसी से जोड़कर आज हम आप सभी के लिए मुद्दा लाए हैं कि आपने अपनी लाइफ में क्या कभी किसी दुर्लभ जीव को देखा है या उसके बारे में पढ़ा है?
1: देखिए, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो अब धीरे धीरे हमें नहीं दिखाई देते हैं। कई शहरों में स्वच्छा कौवे तक नहीं दिखते हैं।
2: जी जी, अभी बीच में जब गौरैया संरक्षण का अभियान इतना चला था, गौरैया हमारे गलियों से, हमारे मोहल्ले से दूर हो गई थी, और अब जाकर कहीं इक्का दुक्का दिखने लग गई है वापस।
1: तो इसीलिए ये जो हमने टॉपिक लिया है वो इसीलिए लिया है कि आपने ऐसे किसी दुर्लभ पशु पक्षी को देखा है या उसके बारे में पढ़ा है, जाना है, तो आप हमें बताइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर।

0: दोस्तों, और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें पता चल जाता है कि आपको कोई परेशानी है और गर्मियां चल रही हैं, गर्मी के मौसम में आपका हेल्थ एकदम अब बेनिफिट हेल्थ एकदम फिट रहे, और उसके लिए हम लेकर आते हैं संडे को हेल्थ एंड फिटनेस।
1: आज गर्मी से जुड़ा हुआ हमारा विषय भी है, गर्मियों में हार्ट का कैसे रखें आप अपने ख्याल। इससे विषय से संबंधित आप सभी के समस्याओं का समाधान लेकर सभी के प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियोज पर मौजूद रहेंगे डॉक्टर मनीष झा, हृदय रोग विशेषज्ञ।
0: दोस्तों, हेल्थ एंड फिटनेस दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच सुनना ना भूले। विषय भी बड़ा ही समसामायिक है और आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 0522-2238-852 और दूसरा नंबर है 0522-2238-845। तो इन नंबरों पर आप कॉल करिए, और साथ ही साथ संडे है तो 12 बजे से पहले 10 बजे भी एक बहुत ही खास प्रोग्राम लेकर हम आते हैं
1: जी, कार्यक्रम पदचिन्ह आकाशवाणी के, जिसमें आज सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्घोषिका सुश्री महजबी जैदी जी से खास बातचीत करेंगी सुमोना पांडे जी।
0: तो ये प्रोग्राम भी आप 10 बजे सुनना ना भूलें। और सेहत की बात कुछ देर पहले हो रही थी दोस्तों, आज भी हम एक ऐसा दिवस मना रहे हैं जो पूरी दुनिया में बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत जरूरी भी है जानना
1: जी। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे यानी विश्व तपेदिक दिवस हर वर्ष 24 मई जी, हर वर्ष आज ही के दिन ये दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस का उद्देश्य लोगों को तपेदिक यानी टीबी जैसी गंभीर संक्रामक बीमारी के प्रति जागरूक करना और इसके बचाव, जांच और उपचार के बारे में जानकारी देना भी है।

और ऐसे कई दिन हैं जो हम लोग मनाते हैं हर रोज, और ये जो कुछ दिवस होते हैं ये हमारे इतिहास से जुड़े होते हैं, हमारे आज के दिन से जुड़े होते हैं, और इसी दिन से जुड़ी हुई बातों को लेकर हम हर रोज आप सभी के बीच यहाँ पर हाजिर होते हैं। तो फिलहाल वक्त हो गया है 8:42, एक प्यारा सा ट्रैक आ रहा है आप सभी के बीच में, और भी बहुत सारी खास बातें करनी है आप सभी के साथ।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: सात हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
3: ये दोस्तों, आप हमारे साथ बहुत सारे रंग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज है संडे और संडे को हम बहुत सारी बातें और बहुत सारे स्पेशल डिशेस के साथ आते हैं, क्योंकि कहते हैं ना ब्रेकफास्ट शो है।

0: जी जी जी बिल्कुल। और संडे को हमारे घर में खास कर ये होता है कि हर दिन तो जल्दी जल्दी होता है टिफिन बनाने के, लेकिन संडे को जरूर स्पेशल खाना बनता है, स्पेशल ब्रेकफास्ट भी होता है।
1: तो संडे को गुड मॉर्निंग भी स्पेशल रहता है और विनय और स्वेच्छा आपके साथ तो है
0: बिल्कुल। और हमारे पास आपका साथ है, आपका मेल्स की बारी आ गई है, चलिए पढ़ लेते हैं। लखीमपुर खीरी से विजय पाल यादव जी ने सवेरे हमें मेल किया है और लिखते हैं, मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होती। और सुबह के मस्त ठंडे मौसम में खेत में काम करने के साथ साथ ये हमें सदाबहार गीतों के कार्यक्रम के साथ ये सुन रहे थे, आनंद ले रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था, इन्होंने लिखा हुआ है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें मेल करने के लिए।
1: और साथ ही साथ जावेद अख्तर जी ने हमें मेल किया है, गुड मॉर्निंग कह रहे हैं और इन्होंने लिखा है कि बेहद खूबसूरत और दिल से उतर जाने वाले नगमे पेश किए जा रहे हैं और ये स्वेच्छा आपके सदाबहार गीत के बारे में लिख रहे हैं और अंदाजे पेशकश भी बहुत ही पसंद आ रहा है। ये हमें मेल कर रहे हैं रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़।

0: मेल करने के लिए।
1: और साथ ही साथ जावेद अख्तर जिन्हें हमें मेल किया है, गुड मॉर्निंग कह रहे हैं और इन्होंने लिखा है कि बेहद खूबसूरत और दिल से उतर जाने वाले नगमे पेश किए जा रहे हैं और ये स्वेच्छा आपके सदाबहार गीत के बारे में लिख रहे हैं और अंदाजे पेशकश भी बहुत ही पसंद आ रहा है। ये हमें मेल कर रहे हैं रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से।
0: जी, और मोनू सेठ जी ने हमें मेल कर दिया है, लिखते हैं, जो लोग बुजुर्गों का सम्मान और सेवा करते हैं उनकी आयु, ज्ञान, प्रसिद्धि और शक्ति में वृद्धि होती है।
1: ओके, और बहुत सारे और भी मेल्स हैं लेकिन हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे क्योंकि एक बेहतरीन ट्रैक कर रहा है आपका इंतजार।

0: 8:51 का वक्त हो चुका है दोस्तों, और ये वक्त इतनी तेजी से आगे भागता है कि गुड मॉर्निंग लखनऊ प्रोग्राम का जो फर्स्ट हाफ है कितनी जल्दी वाइंड अप की ओर आ गया।
1: लेकिन उससे पहले दोस्तों हम आपको ये बताते चलें कि हमारे लखनऊ और उसके आसपास की क्या अपडेट है। और आज भी कई सारे इलाकों में बिजली गुल रहने वाली है, तो थोड़ा अलर्ट हो जाइए। बिजली आपूर्ति में सुधार कार्य के कारण संडे को कई सारे इलाकों में संकट रहेगा। ट्रांसमिशन उपकेंद्र से सुबह 6:30 से 8:30 बजे तक 63 MVA ट्रांसफार्मर पर काम के कारण सप्लाई बंद रहेगी, और इस कारण वृंदावन के सेक्टर 5D, 9, 12, 17, 18 और अवध विहार के उपभोक्ताओं की सप्लाई प्रभावित रहने वाली है।
0: जी, तो भाई आपका जो भी बिजली से संबंधित कार्य है उसको जल्दी जल्दी पूरा कर लीजिए। अगली खबर आपको बता देते हैं कि 26 तारीख से चलेगी डालीगंज नकहा जंगल पैसेंजर, और डालीगंज से गोरखपुर के नकहा जंगल के बीच 6 साल के बाद ये पैसेंजर ट्रेन 26 मई से फिर से चलाई जा रही है, और इससे बाराबंकी बहराइच लखनऊ के यात्रियों को काफी राहत मिलने वाली है। और इस ट्रेन को क्योंकि कोरोना काल में बंद किया गया था तो दोबारा से इसकी जो चालू किया जा रहा है, तो भाई इस रूट वाले लोगों को अब सुविधा हो जाएगी।
1: और दोस्तों साथ ही साथ गर्भ संस्कार का पाठ्यक्रम जीवन प्रबंधन के गुर सीखने के लिए अब लखनऊ विश्वविद्यालय सिखाने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय तैयार है। लखनऊ विश्वविद्यालय में सत्र 26-27 की प्रवेश परीक्षा के तहत गर्भ संस्कार कोर्स के लिए

0: ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे विश्वविद्यालय में महिला अध्ययन संस्थान की ओर से संचालित पीजी डिप्लोमा इन गर्भ संस्कार पाठ्यक्रम के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी से जुड़ी एक और बात
1: जी कि पीएचडी प्रवेश परीक्षा का जो परिणाम है वो जारी हो गया है। 2025 और 26 सत्र के जो पीएचडी प्रवेश परीक्षा है उसकी घोषणा हो चुकी है और इसके उपलब्ध सीटों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों का सीट अलॉटमेंट जारी कर दिया गया है किया जा रहा है और लॉगिन आईडी का इस्तेमाल करके फीस जो है वो आप कल तक यानी 25 मई तक इससे में जमा कर सकते हैं।
0: और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी
1: जी। तो भाई 8:54 का वक्त, ये वक्त है कि अपने गुड मॉर्निंग लखनऊ प्रोग्राम के फर्स्ट हाफ को वाइंड अप करने का। चलते चलते मुद्दा दोहरा देते हैं एक बार फिर से हम।
0: दोस्तों मुद्दा ये था कि आपने किसी दुर्लभ पशु पक्षी को देखा है या उसके बारे में पढ़ा है तो आप हमें बताइए fmakashwani@gmail.com पर, क्योंकि बड़े सारे ऐसे पशु पक्षी हैं जो अब शहरों में दिखाई नहीं देते हैं, तो उनके बारे में आपका कोई भी एक्सपीरियंस है हमसे शेयर जरूर करिए।
1: fmakashwani@gmail.com पर।

नमस्कार, आप सुनिए अखबारों की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुई मुलाकात को अखबारों ने सुर्खियां बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, भारत के साथ रिश्तों में जमी बर्फ पिघलाने पहुंचे रूबियो। हिंदुस्तान ने लिखा है कि मोदी से मिले रूबियो, ट्रंप के बुलावे का न्योता दिया। अमर उजाला ने लिखा, अमेरिकी विदेश मंत्री के कथन के आधार पर यह है कि अमेरिका की हिंद प्रशांत रणनीति का भारत प्रमुख आधार। नवभारत टाइम्स ने शीर्षक दिया है, रूबियो से मिलकर पीएम बोले, बात से निकले संघर्ष का हल। अमृत विचार ने लिखा है, मोदी से मिले रूबियो, पश्चिम एशिया संकट की पर की चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रोजगार मेले में युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाने की खबर भी अखबारों की सुर्खियों में है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री के कथन के आधार पर लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय करार युवा पीढ़ी के लिए अहम। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री के कथन पर लिखा है, युवाओं को ध्यान में रखकर किए अंतर्राष्ट्रीय समझौते। वॉइस ऑफ लखनऊ ने प्रधानमंत्री के कथन के आधार पर लिखा है, भारत को विकसित बनाएंगे युवा। पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी की खबरें भी अखबारों की सुर्खियों में हैं। हिंदुस्तान ने लिखा है, पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के करीब। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, पेट्रोल और डीजल के दाम फिर बढ़े। बिजली मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आज बुलाई गई बैठक को भी अखबारों ने सुर्खियां बनाया है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, बिजली संकट गंभीर, सीएम ने आज बुलाई आपात बैठक। हिंदुस्तान ने लिखा है, लखनऊ में बिजली संकट पर योगी सख्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों की समीक्षा बैठक को भी अखबारों ने सुर्खियां बनाया है। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री के कथन के आधार पर लिखा है, लंबित राजस्व वादों की में देरी पर तय होगी जवाबदेही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा श्रम विभाग की समीक्षा बैठक को भी अखबारों ने सुर्खियां बनाया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री के कथन के आधार पर लिखा है, यूपी के सभी जिलों में लागू होगी श्रमिक विद्या योजना। अमर उजाला ने लिखा है, अब सभी 75 जिलों में लागू होगी श्रमिक विद्या योजना। अमृत विचार ने लिखा है, श्रमिकों को सुरक्षा देना सरकार की प्राथमिकता। लखनऊ के काना स्टेडियम में खेले गए मैच में पंजाब किंग्स की जीत की खबर भी अखबारों की सुर्खियों में है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, श्रेयस की सेंचुरी से पंजाब किंग्स की उम्मीद बरकरार। इसी के साथ अखबारों की सुर्खियां समाप्त होती है। अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाए अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: मुस्कुराइए, क्या आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
5: जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर गुड मॉर्निंग लखनऊ।
6: जी, और अब बारी है बागवानी स्पेशल सेगमेंट की, और आप सभी के बीच आज आप सभी के सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर सुशील कुमार शुक्ल, प्रधान वैज्ञानिक फसल उत्पादन ICAR केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ से। आइए इनसे बात करते हैं और आप सभी से के जो सवाल है उनका जवाब जानते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
7: नमस्कार आप सभी को, सभी श्रोताओं को मेरा सुप्रभात।
6: जी सर, हमारे पास पहला सवाल आ गया है रमेश दत्त त्रिवेदी जी का। पूछते हैं कि रस भरी फ्रूट को घर में उगाने के लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है और इसकी प्लांटिंग कैसे कर सकते हैं।
7: रस भरी मतलब केप गूजबेरी एक ऐसा फल है जो एनुअल होता है, जैसे और फसलें होती हैं वैसे आप उगाइए, जुलाई अगस्त में बो दीजिए और 7-8 महीने तक वो रहता है। एक चीज, दूसरी चीज, को गमले में भी आप बहुत अच्छे से उगा सकते हैं। मतलब गमले में थोड़ा सा बड़ा गमला ले लेंगे, ग्रो बैग वाला तो बहुत अच्छा है। जैसे आप टमाटर उगाते हैं उसी परिवार का है, तो बीज से उगता है, तो बड़े आराम से आप जुलाई अगस्त में इसको लगा सकते हैं। जैसे खाद का मिक्सचर बनाते हैं, खाद है, मिट्टी है, बाकी नीम की खली है, बाकी जो भी वर्मी कम्पोस्ट है सब मिला के आप डालिए, और जैसे आप टमाटर कोई बैंगन का पौधा उगाते हैं उसी तरह आप इसको भी उगा सकते हैं। उसी परिवार का पौधा है और बड़े अच्छे से उत्पादन हो जाता है। हम लोगों ने इसको वर्टिकल गार्डनिंग में पाइप में मेंटेन करके भी उगाया अपने संस्थान में, अच्छे से उग जाता है।
5: जी जी जी। और सर हमें वारिस जी ने लखनऊ से मेल किया है और ये कह रहे हैं कि क्या इस मौसम में छत पर गमले में अनार लगाया जा सकता है, और यदि हाँ तो कृपया विधि बताइए।
7: देखिए, अनार लगाने के लिए ये समय उचित नहीं है, आप पौधा कहीं से मिल जाए रख लीजिए, लेकिन जुलाई अगस्त में लगा दीजिए। दूसरी बात यह है कि अनार बिल्कुल लगाया जा सकता है। अनार में हम लोग जो है भगवा या अच्छी जो वैरायटी आती है, गणेश है, भगवा है, उनके पौधे लगाते हैं। कमर्शियल कल्टीवेशन यहाँ उतनी ज्यादा नहीं होती है, कारण है कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट लग जाता कई बार बरसात में, लेकिन आप टेरेन गार्डनिंग में बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, थोड़ा साफ सफाई के साथ बरसात में थोड़ा स्प्रे करते रहेंगे दवा का तो उसमें नहीं आएगा, और बाकी बहुत अच्छे से अनार हो जाता है, बल्कि 2 बार फूल आता है, तो जाड़े वाली जो फसल होती है वो सबसे अच्छी होती है, तो अनार को लगा सकते हैं। हमारे यहाँ संस्थान में पौधे भी मिलते हैं और भगवा वैरायटी मिल जाए तो सबसे अच्छा है।
6: जी, मोनू सेठ जी पूछना चाहते हैं कि कद्दू में फूल आते हैं लेकिन फूल सूख जा रहे हैं जिससे फल नहीं लग पा रहा है, क्या करें।
7: सबसे बड़ी बात है कद्दू मेरे यहाँ भी लगा है, मैं भी कद्दू कहीं तोड़ चुका हूँ और आजकल अंगूर भी मैं अपने किचन गार्डन में तोड़ रहा हूँ, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जब बहुत ज्यादा धूप पड़ती है कई बार हमारे कीड़े परागण नहीं कर पाते हैं, मादा फूल साफ नजर आता है, नीचे से फूला होता है और नर फूल निकलते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, शाम की तरफ कभी जाइए अपने उसमें थोड़े से नर फूल को तोड़ के जो फूला नहीं होता है उसके चारों तरफ से पीला भाग निकाल दीजिए, और मादा फूल में जो नीचे से फूला होता है उसमें थोड़ा सा 4-5 में टच कर दीजिए, बहुत बढ़िया परागण होता है, इसके बाद वो आपका फल आपका बन जाता है। किसी कारण से अगर कीड़े या किसी वजह से कीड़ा नहीं पहुंच पाया तो वो फूल सूख जाता है। परागण एक ऐसी चीज है कि जो हमारी कद्दू वर्गीय फसलें हैं उनमें बड़ा महत्व है, चाहे लौकी हो या कद्दू।
5: जी जी। और सर हमें लखीमपुर खीरी से मेल आया है, ये अंजना है और इन्होंने कहा है कि इनका सवाल है कि इनके घर पर नींबू का प्लांट है 2-3 फुट का है पर वो बढ़ नहीं रहा है, अब क्या करें।
7: देखिए, नींबू का पौधा है तो अगर उसको आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा पहली बात तो बीजू हो सकता है या कलमी हो सकता है, मतलब कि गुटी वाला पौधा हो सकता है, गुटी

0: पतला पौधा थोड़ा सा कम बढ़ता है, सू बढ़ता है, धीरे धीरे टाइम लगता है। लेकिन दूसरी बात यह है, खाद पानी का आप ध्यान रखिए, जो भी उसमें देना है, मतलब जो वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, कीड़े मकोड़े ना लगे हो। बाकी सीजन के हिसाब से नई ग्रोथ, जैसे जुलाई अगस्त आएगा फिर नई ग्रोथ आएगी, मार्च आता है फिर नई ग्रोथ आती है, लेकिन उसमें ये ध्यान रखिए कि बहुत सारा झाड़ी नुमा बन जाता है, तो थोड़ा सा अनावश्यक शाखाओं को निकाल दें, तो धीरे से अच्छी शाखाएं लेके शुरू में आपको उसको शेपिंग करनी होती है जिससे अच्छा उसका ढांचा बन जाए। और धूप वहां होनी चाहिए, ये ध्यान रखने की बात है कि धूप जहां पर पौधा रखा है वहां धूप उसको सुबह की मिलती है तो बड़ा अच्छा फर्क पड़ता है, धूप नहीं होती तो भी दिक्कत आती है।
1: सर एक और सवाल है हमें लखनऊ से आया है, ये हमें सरिता रावत जी ने भेजा है और वो ये जानना चाह रही हैं कि क्या हर मौसम में गमले की मिट्टी बदलना जरूरी है या इसे रिचार्ज करना चाहिए?
0: हर मौसम में मिट्टी बदलने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, आप साल भर जो हमारे परमानेंट पौधे हैं उनको साल भर में एक बार बदलें। लेकिन जब आप सब्जी उगाते हैं तो सब्जी उगाने लगाने के पहले ही बढ़िया मिक्सचर उसको बना लें, ये दो चीज ध्यान रखने की जरूरत है।
2: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।
2: तो दोस्तों हर बार की तरह इस संडे भी आज बागवानी स्पेशल सेगमेंट में आपके जो भी सवाल थे वो हमने अपने एक्सपर्ट से पूछे।
1: जी, और हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर सुशील कुमार शुक्ल जी, प्रधान वैज्ञानिक फसल उत्पादन ICAR केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ से। और अगर आपके सवाल रह गए हैं, आप भेजना भूल गए हैं, तो आप हमें हमारी मेल आईडी FM Rainbow Helpline पर मेल करिए, अगले सप्ताह हम आपके सवाल जरूर लेंगे।

0: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपका कंप्लीट नाश्ता शो।
1: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
2: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।

0: आ गई ना बड़ी सी स्माइल आपके चेहरे पर भाई बर्थडे का दिन है, इतना खास दिन है तो खुश होना तो बनता है, क्योंकि हर तरफ से आपको स्पेशल फील कराया जाता है आज के दिन।
1: तो जो भी लिसनर आज अपना हैप्पी हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं उनको बहुत बहुत बहुत बधाई, और साथ ही साथ जिनके एनिवर्सरी है उनको भी बहुत शुभकामनाएं
0: जी। अगर आज आपका कोई भी रूप में खास दिन है तो आपको आपके खास दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम यही प्रार्थना करते हैं कि आज का आपका दिन बहुत सारी खुशियों भरा हो।
1: और दोस्तों बहुत ही महान हस्तियां हैं जिनके साथ आज अपना बर्थडे शेयर कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं करतार सिंह सराभा जी की। करतार सिंह सराभा भारत के महान क्रांतिकारियों में से एक थे और वे गदर आंदोलन के प्रमुख सदस्य रहे हैं, और बहुत कम उम्र में ही उन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष शुरू कर दिया था। वे युवाओं के लिए साहस और देशभक्ति की मिसाल माने जाते हैं। शहीद भगत सिंह भी उन्हें अपना आदर्श मानते थे, तो इनको हम सलाम करते हैं और आज इनकी जयंती पर हम इन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।
0: साल 1954 की बात है, आज के दिन जन्म हुआ था बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का। उन्होंने 23 मई 1984 को यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर भारत का नाम विश्व भर में रोशन किया, और उनके साहस और आत्मविश्वास ने देश की महिलाओं को नए सपने देखने की प्रेरणा दी। उन्हें पद्मश्री सहित कई राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए।
1: और दोस्तों बात करते हैं 1955 की, एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जिनके गाने, जिनके कंपोज किए गाने आप गुड मॉर्निंग लखनऊ में सुबह से सुन रहे हैं, और वो है राजेश रोशन
0: जी। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार, उन्होंने बॉलीवुड को कई सुपरहिट और मधुर गाने दिए।
1: कई सारी फिल्में हैं, कहो ना प्यार है, करण अर्जुन, कोई मिल गया, बहुत सारी फिल्में हैं जिनके गाने लगातार आप सुन रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक है और ये महान संगीतकार रोशन के पुत्र हैं, तो इन सभी को हैप्पी बर्थडे।

0: जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग लखनऊ, सुन रहे हैं आप, विनय और स्विच आपके साथ हैं।
1: जी, और आज के दिन से जुड़ी कई सारी बातें कर रहे हैं हम, खास खास बातें आपको सभी को बता रहे हैं। तो आज के इतिहास में भी बहुत सी चीजें हैं जो जानने वाली हैं। साल 1977 में आज के दिन मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री बने और केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का आज के दिन गठन हुआ।
0: और साथ ही साथ सन 2008 की बात करें तो भूटान में पहला आम चुनाव संपन्न हुआ था और इसके साथ ही भूटान ने आधिकारिक रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रवेश कर लिया था।
1: और 2008 की ही बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6% वृद्धि करने का निर्णय लिया था।
0: और दोस्तों, ये थी इतिहास की बातें। और आज का मुद्दा भी हमने ऐसा ही पूछा है कि कई सारे ऐसे पशु पक्षी हैं जो इतिहास बन सकते हैं और उन्हें हम बचा सकते हैं, इतिहास बनने से संरक्षित कर सकते हैं। और ऐसे किसी पशु पक्षी को आपने देखा है जो कम दिखाई देता है, उसके बारे में पढ़ा है, तो आप हमें ज़रूर बताइए FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़ दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जी आप सुन रहे हैं धड़कन लखनऊ की, और अब बारी है आप सभी के मेल्स को शामिल कर लिया जाए। इतने सारे मेल्स आ चुके हैं हमारे पास। महेंद्र दीपन जी, हमें मेल के साथ बढ़िया ही तस्वीर बनाकर इन्होंने भेजी है, बहुत अच्छी सी, और लिखते हैं कि गुड मॉर्निंग पूरी टीम को नमस्कार। गुड मॉर्निंग लखनऊ, पूरी टीम को नमस्कार के साथ इन्होंने जो तस्वीर भेजी है, हम लोगों ने पूछा कि कोई ऐसा जीव है जो बहुत आपने बहुत रेयर देखा हो, उसकी तस्वीर उन्होंने भेजी है। लिखते हैं कि दुर्लभ जीव का नाम लिखा है राम जी की डोकरी, या इसे रानी कीड़ा भी कहते हैं। वैज्ञानिक नाम है इसका रेड वेलवेट माइट। और लिखते हैं बचपन की वो मखमली यादें, कुछ साल पहले तक बारिश की पहली फुहार के साथ ही रेतीले धोरों और खेतों में हजारों की तादाद में ये मखमली लाल जीव दिखाई देते थे। इन्हें देखना खुशहाली और अच्छी बारिश का संकेत माना जाता था। और बदलते दौर के साथ इन्होंने कड़वी सच्चाई लिखी है, अब साल बीतते जा रहे हैं, बारिशें भी होती हैं, लेकिन ये राम जी की डोकरी अब धोरों में कहीं छिप सी गई है, अब ये सुंदर जीव ढूंढने से भी दिखाई नहीं देता। साथ ही लिखते हैं शहरीकरण, कीटनाशकों का बढ़ता प्रयोग और प्रकृति से हमारा खिलवाड़ शायद इस मासूम मखमली जीव को हमसे दूर ले गया। गौरैया और कौवों की तरह ये रानी कीड़ा भी अब हम सिर्फ हमारी यादों का हिस्सा बनता जा रहा है। इन्होंने बहुत अच्छा मेल हमें लिखकर भेजा है और तस्वीर के साथ भेजा है, बहुत सुंदर फोटो इन्होंने भेजी है राजस्थान से, महेंद्र देपन जी ने।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने ये जो कीट की फोटो भेजी है, मैं सही बताऊं स्वेच्छा मैंने भी नहीं देखा है इसे, और बहुत ही आपने अच्छे से लिखा है राम जी की डोकरी या रानी कीड़ा, तो आज मैं इसके बारे में जरूर पढ़ने वाला हूँ। और आप जानते हैं कि स्वेच्छा इस वक्त मौसम बड़ा अजीब बना हुआ है, और मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी हमसे जुड़ चुके, आइए उनसे हम बात करते हैं। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक दानिश जी, गुड मॉर्निंग लखनऊ में, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी गुड मॉर्निंग।
0: जी सर, मौसम के क्या हाल रहने वाले हैं बता दीजिए हमारे सभी श्रोताओं को।
2: देखिए मौसम की बात करें तो पिछले एक हफ्ते

0: से काफी गर्मी का सबब बना हुआ है और ये सिलसिला अभी अगले 3 दिन और बना रहेगा।
1: जी
0: बाकी उसके बाद थोड़ा सा तापमान में कमी आएगी और लेकिन उमस बढ़ेगी, तो
1: जी
0: कुल
1: जी
0: मिलाकर ये कमी का मेन सिलसिला है। पूर्वी हवाओं का आगमन आएगा तो जिससे कि थोड़ा सा तापमान में गिरावट होगी लेकिन उमस बढ़ेगी, तो कुल मिला के कहें तो थोड़ी सी राहत मिलेगी लेकिन जो गर्मी का सिलसिला है वो बना रहेगा एक तरीके से
1: जी
0: कहेंगे, क्योंकि
1: जी जी
0: उमस
1: जी
0: वाली फिर गर्मी स्टार्ट हो जाएगी। तो कुल
1: जी
0: मिला के कहें तो अभी 3-4 दिन हमको बचाव रखने की आवश्यकता है।
1: जी
2: जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे श्रोताओं से बात की।
0: ओके, धन्यवाद
1: जी। तो दोस्तों भाई देखिए, गर्मी तो अपना प्रकोप दिखाएगी ही, अभी फिलहाल कोई राहत नहीं है। तापमान में गिरावट आएगी ऐसा दानिश जी ने बताया, लेकिन उमस गर्मी जो है ना, अभी गर्मी अभी तो शुरू हुई है।
2: लेकिन आप कुछ बचाव करने बहुत जरूरी हैं, वो आप जरूर ध्यान रखिए। कल भी आपको बताया जा रहा है, आज भी हम बताएंगे कि जब भी निकलिए तो पानी की बोतल लेकर निकलिए, सूती कपड़ा अपने पास रखिए, और ऐसे बड़े सारे प्रोडक्ट मार्केट में हैं, ऐसे बहुत सारे फल हैं, सब्जियां हैं जिनमें पानी प्रचुर मात्रा में होती है, उसे जरूर उसका सेवन करते रहिए।
1: और ठंडी हवाओं का जो उम्मीद है ना, वो हम सिर्फ गानों के माध्यम से दे सकते हैं।

0: दोस्तों गुड मॉर्निंग लखनऊ सुन रहे हैं आप, विनय और स्विच आपके साथ है और हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। रोजगार मेले का लखनऊ में आयोजन हो रहा है 26 मई को, तो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं प्रज्ञा त्रिपाठी जी जो कि डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हैं। मैम गुड मॉर्निंग, लखनऊ में आपका बहुत बहुत स्वागत
1: जी,
0: है।
1: नमस्कार।
0: तो हमारे लिसनर्स को बताएं कि ये जो रोजगार मेला हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, क्या कौन लोग जा सकते हैं?

0: हैं और किस तरह से आवेदन कर सकते हैं?
1: जी, ये रोजगार मेला टाटा मोटर्स की तरफ से किया जा रहा है और टाटा मोटर्स के जो इंडस्ट्रियल एरिया देवा रोड है उसमें गेट नंबर 2 से बच्चे यहाँ पे एंट्री करेंगे। और इसके लिए जो योग्यता है वो ये है कि बच्चों ने 12th पास किया फर्स्ट डिवीजन में और उनकी एज लिमिट 18 से 21 वर्ष के बीच हो।
2: जी,
1: सुबह वो 9 बजे तक वहां पर जाकर के अपना फॉर्म भर के इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके लिए बच्चों को हमारी जो सरकारी वित्तीय सेवा कार्यालय की वेबसाइट है rozgarsangam.up.gov.in, इस पर जब वो रजिस्ट्रेशन करेंगे और ये मेला फ्लैश हो रहा है इस मेले में अप्लाई करेंगे तो वो अभी ही रजिस्टर हो सकते हैं और वहाँ डायरेक्ट जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। तो मैं अधिक से अधिक प्रतिभागियों से ये कहूंगी कि जिन्होंने 12th मैथ्स में किया हो, मैथ्स एंड साइंस में, और उनके 60% से ऊपर नंबर हो, ये बच्चे ध्यान रखें, कई बार होता है वो पहुंच जाते हैं और मैथ्स पीसीएम नहीं होते हैं, तो जिनका 12th मैथ्स एंड साइंस में हो और 60% से ऊपर नंबर हो और सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में हो वो वहां पर जाके इंटरव्यू दे सकते हैं और इंटरव्यू के बाद चेक हो सकते हैं और उन्हें स्टाइपेंड के रूप में अच्छी सैलरी मिलेगी, प्लस उनको 2 साल के डिप्लोमा मिलेगा जो आगे भी उनके जॉब में काफी सहायक होगा।
2: जी
0: मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे लिसनर्स को देने के लिए।
1: जी, धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, हमारे साथ जुड़ी हुई थी प्रज्ञा त्रिपाठी जी, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, जो हमें ये बता रही थी कि टाटा मोटर्स में एक रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है और कुछ कुछ बातें जो बहुत ज़रूरी थी, आप पीसीएम ग्रुप के होने चाहिए, 60% मार्क्स हों और कैटेगरी के लोगों के लिए अलग अलग छूट दी गई है। आप एक बार जो सेवा संगम या जो सेवा आयोजन कार्यालय की वेबसाइट उस पर जाकर ज़रूर देखें और आप टाटा मोटर्स जो देवा रोड पर मौजूद है गेट 2 पर जाकर आप इंटरव्यू दे सकते हैं। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। तो जो हमारे यंगस्टर सुन रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज है ये, तो वो आज ही रजिस्ट्रेशन करें और 26 को इस मेले में प्रतिभाग करें।

0: भाई लग गई यार, घुटना गया लगता है।
1: भाई अब मैच का क्या होगा?
0: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
2: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं।
3: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
2: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
3: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 666-4444।
4: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज़ एक अंडा।
5: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
6: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
7: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
6: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
8: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
9: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत।
10: जी दोस्तों, 9:46 का वक्त, गुड मॉर्निंग लखनऊ में। अब बात आज के दिन कुछ ऐसे महान हस्ती थीं जो इस दुनिया से अलविदा कह गईं, उनके बारे में भी जान लें, उन्होंने क्या क्या योगदान दिया उसके बारे में भी जान लेते हैं।
11: दोस्तों 1999 में गुरु हनुमान जी जिनका निधन आज ही के दिन 1999 को हुआ था, ये एक महान कुश्ती प्रशिक्षक और बहुत प्रसिद्ध पहलवान थे। इनका जो असली नाम था वो है विजयपाल यादव, लेकिन कुश्ती जगत में वे गुरु हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हें साल 1983 में पद्मश्री और 1987 में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इन्होंने पारंपरिक भारतीय पहलवानी और आधुनिक फ्री स्टाइल कुश्ती का अनूठा मिश्रण तैयार किया। सतपाल सिंह, करतार सिंह, दारा सिंह और सुभाष वर्मा जैसे कई प्रसिद्ध पहलवान इनके स्टूडेंट्स रहे। दिल्ली का गुरु हनुमान अखाड़ा आज भी भारतीय कुश्ती की पहचान माना जाता है।
10: जी और साल 2000 की बात है, जब आज के दिन मजरूह सुल्तानपुरी जी ने हम इस दुनिया से विदा ले ली थी। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के।
11: जी यही एक शेर, इस पे ये गाना बना हुआ है, ये शेर इन्होंने ही लिखा है।
10: जी और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार, शायर और साहित्यकार थे ये। इन्होंने लगभग 6 दशकों तक बॉलीवुड को यादगार की दिए अंदाज। कयामत से कयामत तक जो जीता वही सिकंदर, यादों की बारात और हम किसी से कम नहीं जैसे फिल्मों में गीत जो हैं वो आज भी बेहद लोकप्रिय हैं। और दादा साहब फाल्के अवार्ड पाने वाले वे पहले गीतकार थे और उनका एक मशहूर शेर भी है
11: जो आपने सुबह सुना है। आपने जो

दूसरा हमें सुना है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। ये बहुत ही मशहूर शेर है जो मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है। आज भी लोग इससे प्रेरित होते हैं और इनके लिखे गीत चुरा लिया है तुमने, क्या हुआ तेरा वादा, चाहूंगा मैं तुझे, सांझ सवेरे सदा बहार गीत है। तो आइए इन्हीं की कलम से लिखा एक गीत सुनते हैं।

0: जी दोस्तों, 9:51 वक्त इतनी तेजी से आगे भाग रहा है कि अब बारी आ चुकी है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ के अपने वाइंड अप की ओर बढ़ गया है और अब आप सभी के मेल्स को जल्दी जल्दी शामिल कर लेते हैं।
1: और देखिए ये निशहन लखीमपुर खीरी से इन्होंने हमें मेल किया है और कहते हैं, सर मैंने स्पैरो बर्ड को विलेज में अक्सर 4 से 5 साल पहले देखा है लेकिन अब ये बर्ड दिखाई नहीं देती।
0: विमल राजपूत जी ने ये मेल किया हुआ है। घनश्याम सिंह जी लिखते हैं, दुर्लभ पशु पक्षी को देखा है। कहाँ से मेल कर रहे हैं ये? फैजाबाद रोड लखनऊ से ही। और सुबह 6 बजे मेरे घर में बड़े बड़े आम जामुन और अमरूद शरीफा सहजन के पेड़ हैं, उन पर 2 मोर 1 मोरनी सब आकर पेड़ पर बैठे हुए हैं और इनको देखकर मुझे बहुत आनंद आता है।
1: और साथ ही साथ हमें मेल आया है, ये गुड मॉर्निंग कह रहे हैं संजय गुप्ता, लिखते हैं आई एम संजय, इनकी वाइफ सपना है और डॉटर प्रिशा है और ये सभी एफएम के फैन हैं और ये लिखते हैं कि टुडे माय ब्रदर इन लॉ मैरिज एनिवर्सरी, तो उनको बहुत बहुत बधाई हम पहले ही दे चुके हैं। उनका नाम है दिव्या और विशाल, तो पूरी टीम की ओर से इन्हें बहुत बहुत बधाई,
0: बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। रोशनी रावत जी हमें सुन रही हैं चंडीगढ़ से, मुद्दे पर लिखती हैं, टिड्डा ये कुचलने वाला कीड़ा है जो लंबे पैरों और ऊंची छलांग लगाने की क्षमता के लिए जाना जाता है और इस प्राणी को अपने धान के खेतों में देखा करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं इनको हाथों में पकड़ लिया करती थी।
1: और साथ ही साथ वारिस अली जी ने भी हमें मेल किया है और इन्होंने शेर के साथ शुरुआत की है, साथ ही साथ 6 बजे से ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, पुष्पांजलि सदाबहार गीत बहुत अच्छे लगे और साथ ही साथ इन्हें जीएमएल में

0: सॉन्ग सिलेक्शन अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया वारिस जी।
1: और मोनू सेठ जी लिखते हैं कि ये जो आजकल की टेक्नोलॉजी इतना इनोवेट हो गई है, मोबाइल टावरों से रेडिएशन जो निकलते हैं प्रदूषण के कारण, कई सारे ऐसे पक्षी जीव हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं।
0: साथ ही साथ वकील अहमद ने गुड मॉर्निंग कहा है, और सबसे पहले हमारे यहाँ पक्षी गिद्ध हुआ करते थे, अब नहीं दिखते, धूप बहुत तेज हो रही है। वकील अहमद मंसूरी कटरा हथूरी जिला सीतापुर से, साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, अहमद नवाब।
1: मुनीश कुमार आज ने हमें सिर्फ आज गुड मॉर्निंग लिखकर भेजा है एक तस्वीर के साथ, लखीमपुर खीरी से मेल करते हैं।
0: और साथ ही साथ गुलफसा सिद्दीकी ने हमें मेल किया है, गुड मॉर्निंग कह रही हैं, और ये संडीला से हमें मेल करती हैं, इन्हें प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है
1: जी। और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ प्रोग्राम में बने रहने के लिए, और इतने सारे मेल्स करने के लिए।
0: बिल्कुल, तो हम तो बस यही कहेंगे कि आपके आसपास जो भी पशु पक्षी हैं उन्हें उनका ध्यान रखिए और उनको सहेज के रखिए, जिससे कि वो विलुप्त ना हो, यही रहेगा। एक कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद स्विच आपसे लेंगे, अलविदा।
2: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
3: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में, एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: जी, और इसी बात के साथ, इस लास्ट ट्रैक के साथ मैं स्विच आपसे विदा लेती हूँ। किसी और दिन किसी और वक्त हमारी आपकी एक बार फिर से होगी मुलाकात। विनय है आपके साथ।
3: बिल्कुल, हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में मौसम संबंधी पूर्व चेतावनी प्रणाली को और अधिक सटीक, त्वरित और जन केंद्रित बनाने के निर्देश दिए हैं। कल लखनऊ में राहत एवं आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान समय पर दी गई सही सूचना अनेक लोगों का जीवन बचा सकती है, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी तंत्र को केवल तकनीकी व्यवस्था तक सीमित न रखते हुए अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने गांवों और संवेदनशील क्षेत्रों में लास्ट माइल कनेक्टिव मजबूत करने, IVRS, पंचायत स्तर के लाउडस्पीकर, स्थानीय FM रेडियो, मोबाइल अलर्ट तथा सोशल मीडिया का व्यापक उपयोग करने के निर्देश दिए। प्रदेश सरकार ने स्कूली शिक्षा को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने की दिशा में एक पहल की है। माध्यमिक शिक्षा विभाग, समग्र शिक्षा और नेल्को लिमिटेड ने 600 राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अत्याधुनिक ड्रीम लैब्स की स्थापना हेतु कल एक समझौता ज्ञापित पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने कहा कि यह समझौता केवल एक परियोजना नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य में निवेश है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने अपने संबोधन में कहा है कि ये व्यवसायिक शिक्षा को नई शिक्षा देने वाली एक पहल है। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के निर्देश पर विद्युत विभाग में कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई है। इस क्रम में मेरठ में पदस्थ अधिशासी अभियंता योगेश कुमार को विभागीय कार्यों में लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं गाजियाबाद में पदस्थ अधिशासी अभियंता राहुल को भी अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। दो पैन कार्ड मामले में रामपुर में MP MLA सेशन कोर्ट ने कल सपा नेता आजम खां और अब्दुल्ला आजम की सजा बढ़ाने की अपील पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने आजम खां की 7 साल की सजा को बढ़ाकर अब 10 साल कर दिया है। वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की 7 साल की सजा बरकरार रखी गई है, लेकिन उनके जुर्माने में रकम को बढ़ाया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow।
5: धड़कन लखनऊ की।
6: और श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम पदचिन्ह आकाशवाणी के सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्घोषिका सुश्री महजबी जैदी से सुमोना पांडे जी की बातचीत।

0: बच्चन आकाशवाणी के का ये मासिक कार्यक्रम इस उद्देश्य से हमने शुरू किया है ताकि हम आपकी मुलाकात इस केंद्र पर कार्यरत रहे उन विभूतियों से करवाएं जिन्होंने अपने बहुमूल्य योगदान से प्रसारण के क्षेत्र में इस केंद्र को गरिमा के साथ स्थापित किया और लोगों में लोकप्रिय बनाया। तो इस केंद्र पर जिन्होंने अपने प्रसारण के कार्य को बहुत निष्ठा से किया और आज लगभग 9 दशक से ये श्रोताओं के लिए एक विश्वसनीय और सशक्त संचार का माध्यम बना हुआ है। हमारा आकाशवाणी लखनऊ इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है संचार माध्यम में और आज हम जिनके साथ आपको रूबरू करवाएंगे उन्होंने भी आवाज की दुनिया में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। हमारे साथ हैं हमारी बहुत ही वरिष्ठ उद्घोषिका महजबी जैदी जी। जैदी जी आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद। नमस्ते आपको भी और हमारे श्रोताओं को भी।
0: जैदी जी आप एक लंबे अरसे के बाद आकाशवाणी के स्टूडियो में आई हैं, कैसा लग रहा है आपको?
1: मुझे जाहिर है कि अच्छा लग रहा है
0: जी।
1: और इसके पहले हम दूसरों का इंटरव्यू करते थे
0: जी जी जी
1: और आज आपने इस लायक हमको समझ लिया है।
0: जैदी जी हमने आपके साथ भी काम किया है और हम जानते हैं आपने कितनी शिद्दत से और कितनी मेहनत से यहाँ के कार्य को किया है। आप एक उद्घोषिका रही हैं लेकिन हम आपके सफर के बारे में जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी से आपका संबंध कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ?
1: देखिए हमारा तो इत्तेफाक ही था
0: जी,
1: इत्तेफाक ही था कि हमारी एक दोस्त ने ऑडिशन का फॉर्म लिया और अपना और हमारा दोनों का भर दिया
0: जी।
1: भरने के बाद ये हुआ कि हमें तो खबर भी नहीं थी। अब एक लेटर हमारे पास आया ऑडिशन के लिए। ऑडिशन में हम लोग हजरतगंज आए हुए थे तो हमने उससे कहा कि चलो देखते हैं कि होता क्या है यहाँ। तो हम वहां पर जब आए तो वो खत हमारे पास नहीं थे तो हम लोगों ने बता दिया हम भूल गए लेटर लाना।

0: तो खैर उन्हीं ने हमसे कहा कि आप आइए और दे दीजिए, किस लैंग्वेज में देना है। अब हमको ये भी नहीं मालूम कि उसने क्या भरा है, उर्दू या हिंदी। तो मैंने कहा उर्दू, उसने कहा नहीं इसमें तो हिंदी है, हमने कहा दोनों
1: जी।
0: तो उनका अच्छा दे दीजिए आप। ये तो पता था कि नाटक का है,
1: अच्छा।
0: लेकिन लैंग्वेज कौन सी थी उसमें, उर्दू या हिंदी थी?
1: तो ये आपकी दोस्त की वजह से आपने आकाशवाणी में पदार्पण किया। ये भी एक अच्छा किस्सा रहा। और ये किस सन की बात है?
0: ये मेरे ख्याल से बात होगी सन 66 की।
1: जी, 1966
0: की बात हो।
1: और आपको क्या रेडियो के बारे में कोई जानकारी थी कि कैसे?
0: नहीं, जानकारी तो हम लोग खाली बचपन में बड़े सुनते थे, जो रेडियो सिलोन जो अब श्रीलंका है वो सुनते थे। और एक आवाज जो रेडियो से हम करीब आए वो थी अमीन सयानी साहब की।
1: जी,
0: बुध को आता था रात को 8 बजे। और सुना ये कि उनका जो प्रोग्राम था वो सुनने के लिए
1: रेडियो के करीब आ जाते,
0: करीब क्या, एक ही तो जुनून था कि पूरा सुने। हमें उस वक्त तक ये तो नहीं अंदाजा था, लेकिन उनका बोलने का अंदाज हमें बहुत अच्छा लगता था।
1: जी, तो आपको गाने पसंद थे और आपको लाइक रेडियो की तरफ आने का जैसे आकर्षण होता है, तो वो क्या था और कैसे?
0: रेडियो में आने का हमने कभी नहीं सोचा था।
1: जी जी।
0: और जहाँ जाने का सोचा था वहाँ तो हम कामयाब नहीं हो पाए।
1: अच्छा। लेकिन आपने इत्तेफाक से ये फॉर्म भरा, तो उसके बाद आपने किस केंद्र पर कार्य शुरू किया?
0: हमने जब यहाँ से एक लेटर आया कैजुअल अनाउंसर का ऑडिशन देने का, तब हमने यहाँ दिया और उसमें हम सेलेक्ट भी हो गए।
1: जी।
0: और होने के बाद ये हुआ कि हम यहाँ ड्यूटीज करने लगे। उसी जमाने में आकाशवाणी गोरखपुर केंद्र खुला था, तो वहाँ के कई पोस्ट निकली थी, हम ड्यूटी पर ही थे यहाँ।
1: जी, आप कैजुअल अनाउंसर के तौर पर?
0: कैजुअल अनाउंसर के, और हम पढ़ भी रहे थे यूनिवर्सिटी में, तो हम ज्यादातर या तो सवेरे की ड्यूटी करते थे और या फिर रात की करते थे।
1: अच्छा, कभी आपको उस वक्त ये परेशानी नहीं हुई क्योंकि यहाँ सुबह 5 बजे आना होता है या रात पे 11 बजे के बाद घर जाना होता, तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि मैं कैसे करूंगी?
0: नहीं, ऐसा था
1: माहौल में भी आपने?
0: ताज्जुब की बात ये थी कि उस वक्त पर हमारे पास अलार्म की घड़ी भी नहीं थी।
1: अच्छा।
0: और हमने वो खरीदी भी नहीं, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि हमें रेडियो में ही काम करना है। तो हम अपने आप 4 बजे जाग जाते थे।
1: अच्छा।
0: और पहुंच भी जाते थे। और अब हमारी यूनिवर्सिटी के हिसाब से मॉर्निंग या नाइट लगती थी, तो हम लोग, खैर मजा आया काम करने में, नौकरी भी ढूंढ रहे थे हम। और उसके बाद ये हुआ कि जब गोरखपुर में नया स्टेशन खुला तो कहा गया कि भाई अप्लाई कर दो, तुम भी कर दो। जो हमारे यहाँ पर सीनियर्स थे उन्हीं ने, हमने भी एक सादे कागज पर अप्लाई कर दिया और भर दिया।
1: किस तरह से होता था उस वक्त?
0: अरे बहुत आसान था, बहुत आसान। यहीं पर पोस्ट पता लगी और हमने एक सादे कागज पर अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद वो ऑफिस में दे दिया और फिर उसके बाद पता चला कि हमारा कुछ महीनों बाद इंटरव्यू हो रहा है यहीं पर
1: लखनऊ।
0: और इत्तेफाक देखिए कि जब इंटरव्यू हो रहा था जब भी हम ड्यूटी पर थे।
1: अच्छा।
0: मतलब खासकर जाने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। तो खैर उसके बाद ये हुआ कि हम आए यहाँ पर, तो जो उस वक्त गोरखपुर के स्टेशन डायरेक्टर थे गुरटू साहब
1: जी,
0: वो आए थे ऑडिशन लेने के लिए। वो पहले लखनऊ में ASD भी रह चुके थे
1: जी।
0: तो यहाँ आने के बाद उन्हीं ने जब बुलाया तो वो थे और एक महिला उनके साथ थी
1: जी। मैं इसी मजेदार किस्से के बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ। इंटरव्यू के दौरान
0: उसके
1: बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को।
0: वो तो अब हम जब आए तो उन्हीं ने हमसे पूछा कि हॉबीज क्या हैं, और जैसे कि सवाल पूछे जाते हैं उन्हीं ने पूछे। उसके बाद हमने बता दिया कि गाने सुनना, पुराने गाने और रीडिंग। तो उन्हीं ने कहा कि आपने शिवानी को पढ़ा है? तो हमने कहा कि जी हाँ पढ़ा है। तो उन्हीं ने पूछा आपको कैसी लगती है? तो मैंने कहा कि देखिए, एक तो उनकी भाषा बहुत श्रृंगारिक है और दूसरी बात यह है कि उनकी अगर आप 3-4 नॉवेलें पढ़ें तो आपको लगेगा कि रिपीट कर रही हैं। वो खामोश हो गए। उसके बाद उन्होंने कोई सवाल ही नहीं पूछा
1: जी।
0: हमको इशारा किया, हम चले गए बाहर। पता लगा कि वो जो महिला बैठी थी वो खुद शिवानी जी थी।
1: और उन्होंने आपसे खास तौर पर यही बात पूछी और आपने बेबाक होके बताया।
0: हमने बताया और मुझे लगता है कि गुरटू साहब ने इसीलिए हमसे दूसरा सवाल नहीं किया कि शायद उनके सामने हम कुछ और ना बोल लें।
1: जी जी।
0: लेकिन ताज्जुब की बात ये हुई, आप खैर बड़े पहले लोगों के दिल बड़े होते थे
1: जी।
0: और वो जो होता है कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात वाली बात थी।

0: पता चला कि भाई हमारा हो गया सिलेक्शन, जबकि हम तो काफी ना उम्मीद हो गए थे
1: जी। तो वाकई में ये बड़े लोगों का बड़प्पन होता
0: हाँ,
1: है
0: बड़प्पन।
1: और
0: हाँ।
1: उस वक्त उन्होंने इस बात को दरकिनार कर दिया कि हमारी किताब के बारे में बात हो रही है, ये उन्होंने जरूर जाना कि आप पढ़ने में इंटरेस्टेड रहती है और
0: हाँ,
1: आप में
0: हाँ।
1: ये गुण है, तो ये बहुत अच्छी बात है।
0: हाँ, मतलब उन्हीं ने हमको एज क्रिटिक लिया
1: जी,
0: उनको ये लगा कि जो भी है किताब पढ़ी है उसके बारे में सोचा भी है।
1: जी बिल्कुल सही बात है, और आपने अपने सही उद्गार उन तक पहुंचाए। और हमें लगता है कि कभी कभी ये भी जरूरी होता है कि हम वो पक्ष भी जाने जो लोगों को ना भी पसंद आ रहे हो।
0: हाँ।
1: और जारी जी, हम लोग बात करेंगे आगे भी, हमारा कार्यक्रम चल रहा है पश्चिम आकाशवाणी के, लेकिन एक गीत हम अपने श्रोताओं को आपकी पसंद का सुनवाना चाहते हैं, तो कौन सा गीत आप सुनाना चाहती हैं?
0: अब अगर सुनवाना चाहती हैं आप, हम तो पुराने ही गीत बताएंगे।
1: बिल्कुल
0: आपको
1: बिल्कुल बताइए,
0: क्योंकि हम तो बचपन में भी वो गाने सुनते थे जो पुराने होते थे। पुराने से मतलब ये है कि हमारी पिछली पीढ़ी के।
1: जी, तो आपके पसंदीदा कलाकार?
0: तलत महमूद
1: का गाना आप सुनना चाहती, तो आज हम आपको उनका एक गाना सुना।
0: हाँ, तलत महमूद का एक गाना है बेवफा का।
1: तो आइए सुनते हैं ये गीत आपकी पसंद का, और हम आगे आपसे बात करते हैं।

बच्चन आकाशवाणी के कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ उद्घोषिका जैदी जी। जैदी जी, आपको हमने देखा है कार्य करते हुए और आप जो कार्यक्रम करती थी बहुत ही निष्ठा के साथ करती थी, तो आपको किस तरह से ये प्रेरणा मिली या कौन आपकी प्रेरणा रही है या रहे हैं

0: आपने ये कार्य यहाँ के सीखे और आपने अपने कार्यक्रम को किया?
1: देखिए, कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनू के आसार और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं।
0: क्या बात।
1: हुआ ये कि हमको पुराने गानों में दिलचस्पी थी
0: जी,
1: और दिलचस्पी भी इस हद तक थी कि 7:30 बजे बचपन में पुराने गाने आया करते थे रेडियो सिलोन से
0: जी,
1: तो वो हम कान लगा के सुनते थे।
0: और
1: उसमें आखिरी गाना आता था स्वर्गीय कुंदन लाल सहगल का, हमेशा ट्रिब्यूट के तौर पे आता था वो
0: जी,
1: तो वो हम जरूर सुनते थे। मतलब जब से सुनना शुरू किए तो पुराने ही, हालांकि वो 10-12 ही साल पुराने होंगे उस वक्त।
0: तो आपको पुराने गाने पसंद है लेकिन आपको पढ़ने का भी शौक है, और आपके ये उद्घोषिका होने के सफर में आपने बताया कि बहुत सारे आपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए, तो उन कार्यक्रमों के बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: हमने पहला काम तो रेडियो में आने के बाद ये किया कि हर गाना हर रेडियो स्टेशन की लाइब्रेरी में नहीं होता है, तो हमने जितने भी रिकॉर्ड थे लाइब्रेरी में 78 RPM LP EP
0: पहले तो वो रिकॉर्ड्स होते थे जो बस
1: रिकॉर्ड्स 78 के होते थे, फिर LP आ गए, फिर EP आ गए, तो हमने अपना रजिस्टर्स बनाए।
0: अच्छा।
1: और उसमें जितने रिकॉर्ड थे सब की कॉपी की, उसमें प्रोडक्शन, सिंगर और उसके साथ साथ उनके सामने लिख दिया, मतलब होली, दिवाली, ईद,
0: यानी वो रजिस्टर आपने तब से मेंटेन कर रखा
1: है? आज भी है हमारे पास,
0: आज भी है हमारे पास। क्या बात है। और आपके पास वाकई एक संग्रह है।
1: उससे एक फायदा तो ये होता था कि जो रिकॉर्ड हम शेड्यूल करते थे वो नहीं मिलते थे, ऐसा नहीं था, मिल जाया करते थे। और दूसरी बात ये थी कि हमें पता लग जाता था एक ही जगह से, तो अब कौन सा है, मैं लोक संगीत देश है तो उसके आगे ये सब लिखा होता था, कव्वाली है, गजल है, भजन है, रामनवमी पे है, जन्माष्टमी पे है, मतलब
0: ढूंढने में आसानी,
1: ढूंढने में नहीं है उससे, अरे जन्माष्टमी में तो हमने
0: शेड्यूल करने में भी
1: शेड्यूल इस तरह किया, जैसे जन्म हुआ कृष्ण जी का, मोरा नन्हा कन्हैया घर आया री, है ना, अब ये शुरू हुआ, उसके बाद हमने धीरे धीरे उनको पढ़ा किया, एक दूसरा गाना बजाया, अंगना में उजियारा, मेरी गोदी में नंदलाला।
0: क्या बात।
1: अब बड़े और हो गए तो मटके पे मटका, खाली नहीं जाता निशाना नटखट का।
0: क्या बात है। अजहर जी, वाकई में आपको एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, और आज भी आप इतने विस्तार से इतने अच्छे से बता रही हैं कि आपको ये सारी चीजें अभी भी इतने अच्छे से याद है।
1: और इसी तरह हमने फिर आखिर में जाके जो गाना बजाया है वो फिर राधा और कृष्ण का था।
0: क्या बात है।
1: तो बड़ा कर दिया, मतलब जन्म हुआ और जन्म के बाद उनका राधा के साथ आखिरी गाना था
0: जी। तो यानी कि अगर कोई भी कार्यक्रम आप लोग प्रस्तुत करते थे उन जमाने में, और आज भी करना भी चाहिए, आप लोग पूरी उसका ग्राउंड वर्क करते थे, पूरी तैयारी करते थे, और गाने किस तरह से आने चाहिए, कैसे आना चाहिए, वो सारी चीजें आप लोग बहुत सोच विचार कर कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे। इसके अलावा आपने बहुत सारे नरेशंस भी किए, कोई ऐसी घटना आपको याद है जो आपको लगता है कि हाँ इसको हम हमारे श्रोताओं के साथ हम शेयर कर सकते हैं?
1: नरेशंस वगैरह तो किए, लेकिन हमें एक जो हमारे कैजुअल अनाउंसर जब हम थे तब एक हमने लाइव बेगम अख्तर को ब्रॉडकास्ट किया था, तो हम स्टूडियो में थे, वो लाइव गा रही थी।
0: अच्छा, तो कैसा लगा आपको उस वक्त?
1: अरे भाई, ऐसा लग रहा था कि वो गा क्या रही हैं, मतलब कोई एफर्ट नहीं, कोई कोशिश नहीं, मुस्कुरा भी रही हैं,
0: बेगम अख्तर जी गा रही हैं और आप सामने देख रहे हैं।
1: अरे भाई, बता रहे हैं आपके वो एक हाथ से, और देख के मुस्कुरा भी रही हैं, रिस्पॉन्स हमें भी दे रही हैं, और मुंह में पान है
0: जी,
1: और एक हाथ से हारमोनियम बजा रही हैं।
0: क्या बात।
1: और हमें आज तक ये नहीं भूलेगा कि हमने ऐसा लगता था कि जैसे मतलब गाना कितना आसान है,
0: ये नायाब जो नायाब समय था वो उस वक्त का,
1: अरे क्या
0: वो आप लोगों ने देखा है, हम लोगों ने तो नहीं देखा, लेकिन लाइव प्रसारण के दौरान कई चुनौतियां भी आती
1: होंगी। चुनौतियां नहीं, हमें तो इतना एक्साइटमेंट था कि हम कर पाएंगे इनका या नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो आई इतने मुस्कुराते हुए, कंधे पर हाथ रख के अंदर गई स्टूडियो में, हम बूथ में थे, तो लगा ही नहीं बिल्कुल कि ये बेगम अख्तर कोई इतनी बड़ी कलाकार है। उसके बाद बिस्मिल्ला खान साहब की जहाँ पर रिकॉर्डिंग देखी हमने, काफी लोगों की रिकॉर्डिंग देखी, और ये था कि सबसे मजेदार बात एक ही हुई कि जब ऑडिशन उसमें लाइव होता था तो एक बार पता नहीं क्या गलत फहमी हो गई कि जो नाम कलाकार का था
0: जी,
1: वो तो बदल गया लेकिन वो क्यू शीट में नहीं बदला था।
0: अच्छा, क्यू शीट यानी कि जिससे
1: अनाउंसर जो है वो अनाउंसमेंट करता है उसमें नहीं बदला था।

0: अब सोचिए आप उस आदमी का क्या हाल होगा कि जिसने सबसे कहा आज हम 12 बजे हमारा गाना सुनना, और नाम किसी और का जा रहा है, गा वो रहा है,
1: और लाइव
0: लाइव है तो वो कह भी नहीं सकता,
1: कह भी नहीं सकते जी।
0: तो वो मुझको उस बेचारे को देख के इतना बुरा लग रहा था, ये तो मुझे बाद में पता लगा कि नाम बदल गया है और उस बेचारे को क्या तकलीफ में गाना पड़ा
1: जी।
0: ये भी, ये
1: तो कभी कभी ऐसे
0: होता है
1: जी, ऐसे वारदातें भी होती
0: है। ह्यूमन एरर
1: जी जी। तो आपका पसंदीदा कार्यक्रम कौन सा था जिसको करने में आपको बहुत आनंद आता?
0: देखिए हमें पसंदीदा हमारा जो प्रोग्राम था, एक था बारादरी।
1: बारादरी इसमें क्या होता था?
0: एक हमारे एसडी आए थे स्वर्गीय के नैयर
1: जी,
0: उन्हीं ने शुरू किए थे कई नए प्रोग्राम जिसमें एक बारादरी था, और वो हम लोगों को अपने रोजाना के जो तजुर्बे थे उनके साथ उनके हिसाब से देना होता था। मैं मिसाल के तौर पे बता रही हूँ कि एक बार मैंने जो प्रोग्राम दिया था वो पूरा, उसमें बीच में गाने भी बजाना थे। उसमें ये था कि जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं और बाहर लोग पीटते हैं दरवाजा, तब क्या होते हैं फीलिंग्स क्या होती हैं, और जब ट्रेन में बैठ जाते हैं और दूसरे दरवाजा पीटते हैं तब फीलिंग्स क्या होती हैं, एकदम बदल जाती हैं। क्योंकि जब हम बहुत पीट रहे होते हैं तो हमें लगता है इनमें इंसानियत नहीं है, खोल नहीं रहे, ट्रेन चल देगी, लेकिन जब हम अंदर चले जाते हैं तो हमें लगता है और भीड़ बढ़ जाएगी, क्यों आ गए। मतलब इंसान की सोच जो है वो कितने सेकंड्स में बदलती है। मैंने इस तरह के थे इंसिडेंट्स के जिसमें आप दावा नहीं कर सकते कि आप हर सिचुएशन में यही सोचेंगे
1: जी,
0: तो उस तरह के प्रोग्राम उसमें दिए थे हम लोगों ने।
1: तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी।
0: देखिए और... मेहनत क्या, एहसास तो होना चाहिए आदमी को ना, अपनी कमी का भी होना चाहिए कि जब हम इस सिचुएशन में होते हैं तो हम भी वही करते हैं जो दूसरा करता है,
1: यानी कि रोजमर्रा की
0: रोजमर्रा
1: जिंदगी में जो अनुभव होते रहते हैं उनको लोगों के सामने लाना, ताकि वो समझ सके कि हाँ क्या डिफरेंस हो सकता
0: है
1: जब आप इस पार रहते हैं या उस पार,
0: इस पार या उस पार
1: जी। तो ये तो बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम रहा होगा और लोग ये पसंद।
0: हम अकेले नहीं, एक एक संडे बटा हुआ था
1: तो सभी लोग
0: करते थे इसको। सभी लोग करते।
1: तो जादे जी, हम आपके सफर के बारे में बात कर रहे थे तो आपने कहा कि आपने गोरखपुर से शुरू किया एक परमानेंट जॉब जो
0: परमानेंट,
1: तो उसके बारे में कुछ बताइए। और लखनऊ में कब कैसे आना हुआ?
0: लखनऊ में ये हुआ कि गोरखपुर में हमने जब ज्वाइन किया था उसके बाद
1: अब रहती लखनऊ में,
0: लखनऊ में ही, हाँ लखनऊ में, वहाँ पर हमने ज्वाइन किया गोरखपुर में। तो वहाँ पर 15 दिन के बाद हम जब ऑफिस गए तो जो स्टेशन डायरेक्टर थे उन्हीं ने बताया हमको कि आपके लिए एक बुरी खबर है। तो हम बहुत डर गए क्योंकि उस वक्त घर से पहली बार बाहर गए थे तो लगा था पता नहीं क्या हो गया हादसा। पता चला कि कोई ऑब्जेक्शन लग गया, वो इंटरव्यू नल एंड वॉइड हो गया।
1: अच्छा।
0: और हम इतने खुश हुए
1: जी
0: कि 10 बजे ये बात हुई और 12:30 बजे की ट्रेन लेके हम लखनऊ आ गए।
1: अच्छा, मतलब जो आपने अनाउंसमेंट का एग्जाम दिया था वो कैंसिल हो गया।
0: वो 15 दिन की नौकरी करने के बाद वो इंटरव्यू नल एंड वॉइड हो गया।
1: अच्छा।
0: और जो हमारे साथ लौटे थे लोग वो बहुत नाराज हो रहे थे। मैंने कहा जब मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ ऐसा ही कुछ होता है। तो वो कहने लगे आपको हमारी ही साथ देना था।
1: तो आप लखनऊ वापस आ गए?
0: हम वापस आ गए अपने ऑफिस आ गए। यहाँ तो कैजुअल अनाउंसर, हमारे पॉकेट मनी निकल रहा था आराम से।
1: तो आप इस बात से खुश थे कि चलो हमें वापस
0: लखनऊ आ गए।
1: फिर लखनऊ में किस तरह से आपने शुरुआत?
0: उसमें फिर लखनऊ में हम आ गए, ऑफिस आए, यहाँ बताया, इन लोगों को पहले से मालूम था तो लिहाजा हम यहाँ पर करने लगे। उस जमाने में 14 दिन का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था।
1: अच्छा।
0: तो 14 दिन एक हम थे और नूर बख्श जो दूरदर्शन में थे वो थे, और एक नीना श्रीवास्तव थी और मधु श्रीवास्तव थी। फिर ये हुआ बाद में कि वो लोग तो यही हो गई परमानेंट, और हमें फिर दोबारा इंटरव्यू हुआ और गोरखपुर में ज्वाइन कर लिया। वहाँ 3.25 साल हम रहे।
1: अच्छा। उसके बाद फिर आप लखनऊ?
0: उसके बाद फिर लखनऊ, यहाँ पर एक साहब थे वो जो हमसे म्यूचुअल करना चाहते थे, तो वो अनाउंसर थे तो उन्होंने फिर हमसे म्यूचुअल कर लिया तो हम लखनऊ पहुंच गए
1: जी। तो जैदी जी, हम आपसे बातों का सिलसिला आगे जारी रखेंगे और श्रोताओं को एक और आपकी पसंद का गीत सुनवाना चाहेंगे, क्योंकि आपकी पसंद हम लोगों को बहुत पसंद आती है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता भी उसका आनंद ले।
0: एक गाना जो है वो मन्ना डे और लता मंगेशकर का सुनना चाहेंगे
1: जी। जी, कौन सा?
0: और वो है नैन मिले चैन का।
1: क्या बात है,
0: बसंत बहार का।

0: देखिए आपको अभी तक पिक्चर याद है, जिन्होंने गाया ये याद है, तो हम लोग उस वक्त आपके साथ जब हम काम करते थे तो हमें ये पता होता था कि अगर हमें कोई चीज पूछनी है तो हम आपसे पूछ लें क्योंकि आप सारी जानकारी आज तक भी आपने याद रखी है।
1: नहीं, अभी क्योंकि दिलचस्पी थी
0: जी,
1: हम क्योंकि अब जब अपना पूरा कैटलॉग हमने तैयार कर लिया जो कि आज भी हमारे पास है।
0: बिल्कुल, यही डेडिकेशन होता है और इसी के साथ अगर आप कार्यक्रम करते हैं तो कार्यक्रम भी बहुत अच्छा होता है। और देखिए जादी जी, हम आपके बारे में बात कर रहे हैं, हम जानना चाहते हैं उस वक्त श्रोता पत्रों के माध्यम से आपको बताते थे कि हमें ये कार्यक्रम पसंद है या ये कार्यक्रम पसंद है, आजकल मेल का जमाना आ गया है, लेकिन जब श्रोता के पत्र आते थे तो कैसा आप लोगों का रिएक्शन होता था, कैसे आप लोग उसको अपने कार्यक्रम में शामिल करते थे और श्रोताओं से किस तरह से आपका संपर्क रहता
1: था? संपर्क ये होता था कि हम लेटर्स जो थे वो अल्फाबेटिकली अलग कर लेते थे। वजह क्या थी, एक गाना अगर एक बार बज रहा है, पता लगे कि उस गाने पर 10 लोगों ने 10 बार खत भेजा है, तो हम वो 10 खत उसी में एक में निपटाते थे कि ये ना हो फिर वही। और उसके लिए हम खाली वक्त में बैठ के और सॉर्टिंग करते थे खतों की,
0: पत्रों,
1: हाँ, ए से निकाला पहले, बी से फिर निकाल लिया किसी पर्टिकुलर फिल्म या गाने का। अब उसके बाद ये होता था कि जितने थे खत वो उस एक दफा में सिमट जाते थे
0: और इतने तादाद में पत्र आते थे कि उनको कार्यक्रम में शामिल करना भी एक बड़ा काम होता था। कई बार श्रोता मिलने भी चले आते थे क्योंकि उनको अच्छा लगता था कि उस वक्त की जो पर्सनालिटी होती थी, जो भी अनाउंसर बोल रहा है वही मतलब चेहरा होता था आकाशवाणी का। कभी आपके साथ ऐसा?
1: नहीं, फोन कभी कभार आए
0: जी।
1: और एक फोन मुझे बहुत आज भी मुझे याद है कि जब हम गोरखपुर में थे तो गोंडा में एक लड़की थी जो सुनती थी, उसके बाद हम वहां से ट्रांसफर होके जब आए तो उस लड़की का फोन आया ड्यूटी रूम में और उसका नाम था सबा। उसने कहा कि हम बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे, गोरखपुर से आप नहीं बोल रही थी, आज लखनऊ से आपकी आवाज सुनाई दी, तो हमने आपको फोन किया। मुझे बहुत अच्छा लगा
0: जी।
1: मुझे लगा कि ठीक है, इसका मतलब कामयाब है।
0: बिल्कुल, और वाकई श्रोता बहुत प्यार करते हैं और हमेशा जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो क्या आपको कभी किसी कॉन्सर्ट का कोई अनुभव है, जैसे कॉन्सर्ट बहुत पहले होते थे?
1: अरे नहीं, हम कॉन्सर्ट बहुत नर्वस हो जाते थे करने में, हमने किए हैं ऐसा नहीं है,

0: कंफर्टेबल नहीं थे उसमें, तो हम अमूमन मना कर देते थे और लोग भाई इस बात का लिहाज करते थे कि हम नहीं करना चाह रहे हैं तो
1: जी।
0: हाँ, बाकी तो पीर फकीर भिश्ती जितने काम थे, पता चला हमें कर दिया गया कमर्शियल स्पॉट की डबिंग में लगा दिया गया। अच्छा भाई, अब ये हुआ कि हफ्ते में दो दिन वो भी कर रहे हैं, उसके बाद पता चला न्यूज शुरू हुई उर्दू की, उसमें लगा दिया गया।
1: तो आपने उर्दू न्यूज भी पढ़ी है?
0: हाँ हाँ
1: जी,
0: वो पढ़ी है। और फिर उर्दू सेक्शन में कोई नहीं रहा, वहां लगा दिया गया। तो अब वहां पर भी मतलब मजबूत न्यू कर लीजिए तो दिक्कत नहीं होती है ज्यादा काम में।
1: और कार्यक्रम आपने बहुत सारे यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं एज अनाउंसर भी और एज प्रोड्यूसर भी, तो जैसे उर्दू कार्यक्रम के बारे में बात आपने कही, तो कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हुई होगी जिन्होंने हाँ, आप पे बहुत प्रभाव डाला, कुछ उनके बारे में बताएं या कोई ऐसी घटना?
0: सभी यहाँ पर जो लोग आते थे सब एक से एक काबिल, वो आए आपके जो खुमार वारा बंकवी साहब थे
1: जी।
0: वो आए, उसके अलावा मुजफ्फर अली को इंटरव्यू किया, बहुत लोग आए
1: जी।
0: और ये था लेखक भी थे शायर भी थे और विशेषर प्रदीप जो राइटर थे उनको किया। और एक प्रोग्राम हमने जो हमारे साथ थे अब्बासी साहब, हम दोनों ने मिल करके ये चलाया था कि उनको ये शिकायत है।
1: अच्छा, ये सीरीज चलाई थी आपने?
0: हाँ हाँ, ये चलाई थी और इसका मकसद था कि वो लोग जो कि बहुत मशहूर हैं, अब मशहूर हैं लेकिन घर में वो बिल्कुल वैसे ही लड़ते हैं या बहस करते हैं जैसे कोई आम हस्बैंड वाइफ, वो चाहे जितने इंटेलेक्चुअल हों, चाहे जितनी बड़ी पोस्ट पे हों, चाहे जितने रिफाइंड हों। तो वो हमारा प्रोग्राम लोगों को काफी पसंद आया था। और उसमें तो ये हुआ था कि विशेषर प्रदीप साहब एक थे, उसके उर्दू के बहुत अच्छे राइटर, तो कहानीकार थे वो, उन्हीं ने तो जब आए तो मुझसे कहा कि आपने मुझको मेरी बीवी को नहीं बुलाया इसमें अभी तक। मैंने कहा आइंदा आप भी आइए। तो उसमें लोग जो थे वो हमेशा जवाब नहीं नहीं हमारी बस सब ठीक है ठीक है। उसके बाद मैंने
1: जब बात होती थी तो निकल के आता था।
0: विनोद चटर्जी साहब, उनकी वाइफ सहाना चटर्जी थी, विलायत जाफरी साहब, उनकी वाइफ, शुरू में सब अरे नहीं हम लोगों में कभी कोई बहस नहीं होती। फिर उसके बाद जब बात
1: निकलती
0: थी तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा उकसाया गया, तो आखिर में ये होता था कि एक ने कहा इनके साथ फिल्म जाने में हमेशा अंधेरे में टटोलते हुए जाना पड़ता है।
1: यानी कि बड़ा ही रोचक
0: हस्बैंड, हाँ हस्बैंड ये कहेंगे, वाइफ कहती नहीं आपको तो कुछ करना नहीं रहता है, हमें पूरा घर बंद करना रहता है। तो वो बहुत अच्छा वो था, मजा आता था बात करने में उसमें।
1: अब एक और गीत जैदी जी हम अपने श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे, तो ये गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं आपकी पसंद।
0: हाँ

दर्शन भिक्षा दे दो मोह दर्शन भिक्षा दे दो

0: जैदी जी, अनाउंसर की ड्यूटी बहुत टफ होती है, क्योंकि चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, आपको समय से पहुंचना है, सुबह 5 बजे पहुंचना है या रात में देर तक रुकना है। तो कभी आपको कोई ऐसी मुश्किल का सामना करना पड़ा कि आपको ड्यूटी में पहुंचना है और कुछ ऐसी बात हो गई कि
1: ऐसा? बताएं आपको कि यहाँ पर बहुत बार ऐसा हुआ है कि सवेरे की ड्यूटी में कोहरा बहुत होता था और कई लोगों को लेना होता था ड्राइवर को
0: जी।
1: हम 5 बजे से पहले स्पॉट पे आ जाते थे, लेकिन हम गाड़ी का इंतजार 5:05 तक ही करते थे, क्योंकि अगर देर हो गई तो हम मार्जिन ये रखते थे कि हम पैदल भी पहुंच जाएं।
0: क्या बात है।
1: और हम पैदल पहुंचे हैं, कर्फ्यू में पैदल आए हैं।
0: अच्छा, हाँ, तो ये डेडिकेशन है, कार्य के प्रति लगन होती है और वाकई ये हम लोगों के लिए, सबके लिए प्रेरणादायी बात है कि कितना हम सोचते हैं कि हम अब समय से पहुंचे अपने कार्य के प्रति, हमेशा हम लगन से काम करें। एक होता है ना कि सिंसियरिटी जिसे हम कहते हैं।
1: देखिए, जो भी जिम्मेदारी हो, जैसी भी है, उसके लिए आपको ईमानदार होना पड़ेगा। एक दफा हमारे थे कर्फ्यू लगा हुआ था तो रास्ते में एक सिपाही हमें रोज देखता था, उसकी ड्यूटी लगी हुई थी। उसने मुझसे कहा कर्फ्यू लगा है। मैंने कहा आप यहाँ क्यों खड़े हैं? कहने ड्यूटी कर रहे हैं। हमने कहा हम ड्यूटी पे जा रहे हैं। तो उसके बाद ये हुआ कि वो इतना बेचारा वो हो गया कि मतलब फिर उसने टोकना बंद कर दिया। हमने कहा भाई आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं, बस।
0: बिल्कुल। और ये भी एसेंशियल सर्विसेज में आता है, आकाशवाणी का काम तो हमें पहुंचना ही है।
1: पहुंचना ही है।
0: और रेडियो कभी बंद नहीं होता तो उसमें तो आना ही है। तो हमारा जो आकाशवाणी है वो 90 वर्ष मना रहा है इस वर्ष, और अभी अभी हमने कुछ दिनों पहले आकाशवाणी लखनऊ का 89वां वर्षगांठ मनाई। तो उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने आकाशवाणी के कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों में जागरूकता और चेतना पहुंचाएं। तो आपको क्या लगता है, क्या रोल है आकाशवाणी लखनऊ का और क्या परिवर्तन आप देखती हैं हमारे कार्यक्रम में जिसके माध्यम से हम लोगों तक जुड़े, या आप क्या सजेशन देना चाहेंगे?
1: देखिए, मैं आपको एक बात बता

0: पहले की यहाँ पर जितने लोग थे जो हमसे सीनियर थे उनको हमने देखा, उनको मालूम हुआ कि एक साहब थे यहाँ बहुत अच्छा गाने वालों में, मुजद्दद नियाजी साहब,
1: जी
0: देखा वो पंजाबी में फर्राटे से बात कर रहे हैं किसी से
1: क्या बात
0: फोन
1: है।
0: पे। और मैंने कहा अच्छा, उसके बाद पता लगा यज्ञदेव पंडित साहब ने हमसे एक उर्दू की किताब मांगी पढ़ने के लिए।
1: यानी कि लोगों में एक जज्बा था कि हम और सीखें और
0: हाँ।
1: सीखें
0: अरे
1: और
0: तो यही मैं बता रही हूँ
1: जी
0: कि आप फिल्म इंडस्ट्री में लोगों को देखिए कि वो कितनी जबानें जानते हैं। अब हमारे यहाँ एक चीज जिसको नजरअंदाज किया जा रहा है वो ये है कि हम एक जबान को भी सही नहीं बोलना चाहते हैं, एक भी जबान। मतलब आप अगर दूसरी जबान नहीं बोल पा रहे हैं तो जो हम बोलते हैं, जो हम सही लफ्ज हैं उनका उच्चारण तो करें। अब हम लोग क्या करते थे, अगर संस्कृत का प्रोग्राम है और उसको अगर अनाउंस करना है तो यहाँ पर हमारे जो प्रोड्यूसर थे आशाराम जी, हम उनको जाके सुनाते थे
1: जी
0: कि ये हम कर रहे हैं अनाउंसमेंट, के मतलब सही है उच्चारण उसका या नहीं। अच्छा, वजह सुनाने की यूं होती थी कि एक साहब थे, उनको मैंने सुना वो मकबरे को मकबरा कह रहे थे।
1: अच्छा
0: अब देखिए लिखा तो वो है
1: मकबरा।
0: मकबरा, लेकिन जब उन्हीं ने मकबरा कहा तो मुझे लगा कहीं हम भी तो ऐसे नहीं बोलेंगे संस्कृत
1: जी
0: में।
1: यानी जो
0: तो
1: भी भाषा बोले वो पूरा शुद्ध रखें।
0: आप हाँ तवज्जो दें तो
1: जी
0: अपने आप शुद्ध हो जाएगी,
1: जी
0: ऐसा नहीं
1: और
0: है।
1: आकाशवाणी की विश्वसनीयता पर हम कभी प्रश्न इसीलिए
0: भाई
1: नहीं
0: आप
1: लगाते।
0: बताइए,
1: जी
0: पहले लोग रेडियो से टाइम अपना मिलाते थे, रेडियो से जबान अपनी सही करते थे,
1: बिल्कुल।
0: और मतलब साहित्यिक थोड़ा थोड़ा सबका मिजाज होता था।
1: और पढ़ने की आदत भी रहनी चाहिए।
0: पढ़ने की आदत अगर आप में है तो आपकी मालूमात बढ़ेगी, कमी नहीं आएगी।
1: जी बिल्कुल।
0: हाँ
1: अब तो संचार के इतने माध्यम हो गए हैं आजादी जी, और आकाशवाणी लखनऊ से भी अपेक्षा की जाती है कि खासतौर पे युवा वर्ग के लिए ये मार्गदर्शक का काम करें। तो आप क्या अपना संदेश देना चाहेंगी हमारे युवा वर्ग को खासतौर पे, और जो मीडिया में काम करना चाहते हैं उनके लिए?
0: देखिए, मीडिया में काम करें या जाती जिंदगी में बातचीत करें, बात करने का तरीका, बात करने की तहजीब और बात करने का उच्चारण,
1: जी
0: ये हर जगह मायने रखता है। वो रेडियो हो, दूरदर्शन हो, आम बातचीत हो, आप अजनबी से भी अगर बात करेंगे तो आपके लबो लहजे से वो समझ लेगा कि आप कितना सही बोल रहे हैं।
1: बिल्कुल। और लखनऊ तहजीब के लिए जानी जाती है, बोली के लिए
0: तो
1: जानी
0: अगर
1: जाती
0: आप
1: है।
0: जिंदा रखना चाहते हैं,
1: जी
0: क्योंकि लखनऊ तो आप जिंदा रखेंगे तो रहेगा, नहीं जाएंगे तो नहीं रहेगा।
1: बिल्कुल। भाषा एक इतना सशक्त माध्यम है जिसके
0: हाँ
1: थ्रू आप बात कर रहे हैं, श्रोताओं से जुड़ रहे हैं और वो भी आपसे सीख रहे हैं।
0: भाई, हमें कुछ बच्चों को जब टोका हमने तो उन्हीं ने एक अजीब सी बात कही कि जितना हम जानते हैं उतने में हमारा काम चल जाता है। तो मैंने कहा कि भाई अब हम क्या बताएं। हमने कहा देखो, हमारे यहाँ जो एक टॉमी पला था तो उसकी भी वो अपने भाव
1: समझा
0: मतलब
1: देते।
0: समझा देता था कि अगर वो बहुत दुम हिला रहा है, कूद रहा है, बहुत खुश है, और वो कान उसने गुछिया लिए तो शर्मिंदा है, मतलब ये सब चीजें जो होती हैं वो तो जानवर भी कर लेते हैं। तो फिर हमारे पास जब जबान है, और जबान भी ऐसी जगह की कि लोग लखनऊ को सुन के ये समझते हैं कि ये, और जबकि शायद
1: और
0: लखनऊ में अब वो बात खत्म होती जा रही है।
1: जी और बिल्कुल सही बात है, हमें अपने संस्कार, हमें संस्कृति अपनी नहीं भूलनी चाहिए,
0: हाँ
1: और भाषा पर बहुत ध्यान देना जरूरी है। और ये ऐसी संस्था है जहाँ पे हम आवाज के जरिए लोगों से जुड़ते हैं, मिलते हैं। और जैदी जी, आपने इसमें बहुत कार्य किया है, और आपकी बात वाकई में बिल्कुल शत प्रतिशत हम कहेंगे सही है कि अपने ऊपर भी विचार करने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। तो आज आप हमारे स्टूडियो में आए जैदी जी, और आपने अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए, और हमें उम्मीद है कि हमारे जितने भी श्रोता है उनको बहुत आनंद आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलते चलते हमारे इस 90 वर्ष के गौरवशाली यात्रा में हमारे जो श्रोता है उनको अपनी तरफ से कुछ शुभकामनाएं आप देना चाहेंगी जैदी जी?
0: बहुत बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: जी
0: और ये कि आपने बहुत दिनों के बाद हमको श्रोताओं से रूबरू करवाया, इसकी भी हमें बेहद खुशी है, और हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे
1: जी
0: कि हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब जुदाई लंबी हो गई काफी।
1: जी जी बिल्कुल। और हमारी भी ये कोशिश थी कि आपके साथ पुनः हम लोग जुड़े और आपके अनुभव हम श्रोताओं तक तो पहुंचाएं, और हम भी उनसे फिर कुछ और सीखें, कुछ नया सीखें। और जरी जी, अगर आप अपने समय के कुछ लोगों के बारे में बताना चाहते हैं कि जिन्होंने आपके साथ कार्य किया और जिन्होंने आपको प्रेरित भी किया कि हम कुछ और अच्छा करें, तो कुछ बताएं हमें।
0: अपने समय के हमारे लोगों में देखो कि ये काम करने में, अब हमारे साथ अरुण जी थे।
1: जी
0: अरुण जी का ये था कि अगर फिलर भी कोई बजा रहा है और उसने तिहाई पर नहीं काटा, गलत काट दिया, वो घर पे सुनते थे और ऑफिस आके डांटते थे।
1: जी जी जी और कोई

0: का बुरा भी नहीं मानता था क्योंकि
1: नहीं नहीं
0: सीखना
1: नहीं नहीं
0: चाहता
1: बुरा
0: था।
1: नहीं मानते थे, बिल्कुल नहीं बुरा मानते थे, बहुत कायदे से हम लोग डांट खा चुके हैं, हम भी खा चुके हैं।
0: जी
1: तो उनका हिसाब तो ये था कि इतना हर काम परफेक्ट होना कि बस मतलब बिल्कुल मशीन की तरह वो काम करते थे, कंप्यूटराइज थे बिल्कुल।
0: कंप्यूटर का अब जमाना है लेकिन उस वक्त
1: वो
0: लोग ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते थे।
1: बहुत
0: जी
1: डिसिप्लिन,
0: उस
1: टाइम से आना टाइम से जाना, तरतीब से उनके काम चलते थे। और ये होता था कि गलती कोई करे, अगर सुन लिया उन्हीं ने तो अपनी ड्यूटी बात को करेंगे, पहले डांटे, डांटने उसको जरूर जाएंगे।
0: नहीं लेकिन बाकी

0: जो में आए, हमारे श्रोताओं से रूबरू हुई और हम सबको बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अच्छा, आपका बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: नमस्ते।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पदचिन्ह आकाशवाणी के सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्घोषिका सुश्री महजबी जैदी की सुमोना पांडे से बातचीत।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें। चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
3: या दोस्तों, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की, और आपके साथ हूं मैं, आपका अपना दोस्त विनय। और आज है रविवार यानी संडे, और संडे बहुत ही स्पेशल होता है। और अभी आपने एक हमारा विशेष कार्यक्रम सुना पदचिन्ह आकाशवाणी की, और साथ ही साथ आज दोपहर 12 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हेल्थ एंड फिटनेस। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे दिल के बहुत करीब है, आपके सेहत का हम पूरा ख्याल रखते हैं। और आज 24 मई को हमारे स्टूडियोज में मौजूद रहेंगे डॉक्टर मनीष झा, जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, और आज का विषय है गर्मियों में हार्ट का कैसे रखें ख्याल। जानिए क्या गर्मी दिल पर असर डालती है, हार्ट मरीज कितना पानी पिए, गर्मी में कौन सा खाना बेहतर है, और क्या धूप हार्ट के लिए नुकसानदायक है। तो इन सभी बातों को जानने के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 0522-2238-852, दूसरा नंबर है 0522-2238-845, और साथ ही साथ हमें मेल भी कर सकते हैं fmakashwanilakhnow@gmail.com। सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: जानते ही हैं ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार मन की बात में उल्लेख किया था फ्लेमिंगो और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी को प्रेरित किया कि हम वन्य जीवों के बारे में जानें, इन पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं इसके बारे में जानें। तो आइए हम आपको सुनवा रहे हैं मन की बात का वही हिस्सा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ्लेमिंगो और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का उल्लेख किया है।
1: साथियों, पिछले कुछ वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों से प्रकृति के संरक्षण की प्रेरक कहानियां सामने आई हैं। ये कहानियां हमें उम्मीद देती हैं और गर्व से भर देती हैं। मैं मन की बात के श्रोताओं से कुछ उदाहरण साझा करना चाहता हूं। इनको सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। पहले बात कच्छ के रण की। बरसात खत्म होते ही यहाँ की धरती जीवंत हो जाती है। हर साल लाखों फ्लेमिंगो यहाँ आते हैं। पूरा इलाका गुलाबी रंग से रंग जाता है, इसलिए इसे फ्लेमिंगो सिटी कहा जाता है। ये पक्षी यही घोंसले बनाते हैं और अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। कच्छ के लोग इन्हें लाखा जी के बाराती कहते हैं। अब लाखा जी के बाराती कच्छ में पर्यावरण संरक्षण के बड़े सुंदर प्रतीक बन गए हैं। साथियों, दूसरा किस्सा इंसान और वन्य जीवों के सहयोग का है और ये उत्तर प्रदेश से है। यहाँ के तराई इलाकों में फसल के समय हाथियों के झुंड गांवों की ओर आते हैं, इससे टकराव की आशंका बढ़ती है। लेकिन अब यूपी में भी गज मित्र जैसे प्रयास शुरू हुए हैं। गांव के लोग ही टीम बनाकर हाथियों पर नजर रखते हैं। वे समय रहते लोगों को सतर्क करते हैं। इससे टकराव कम हो रहा है और लोगों में भरोसा बढ़ रहा है। साथियों, मध्य भारत से भी एक अच्छी खबर आई है। छत्तीसगढ़ में ब्लैक बक यानी काले हिरण फिर से दिखाई देने लगे हैं। एक समय इनकी संख्या बहुत कम हो गई थी, लेकिन लगातार प्रयास हुए और संरक्षण बढ़ाया गया। आज ये फिर से खुले मैदानों में दौड़ते नजर आते हैं। ये हमारी खोती विरासत की वापसी है। ऐसे ही उम्मीद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी घोड़ावण के संरक्षण में भी दिख रही है। ये पक्षी हमारे रेगिस्तानी इलाकों की पहचान हुआ करती थी, लेकिन एक समय इसकी संख्या बहुत कम रह गई थी। हालत ये थी, ये पक्षी लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई थी। लेकिन अब इसके संरक्षण के लिए बड़ा अभियान चल रहा है। वैज्ञानिक तरीके अपनाए जा रहे हैं, प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं और अब नए जीवन की शुरुआत दिखाई दे रही है। साथियों, प्रकृति और मानव अलग नहीं है, हम एक दूसरे के साथी हैं। जब हम प्रकृति को समझते हैं, उसका सम्मान करते हैं और उसके साथ मिलकर चलते हैं तो बदलाव साफ दिखाई देता है। आज यही बदलाव देश के कोने कोने से नई उम्मीद बनकर सामने आ रहा है।
0: प्रधानमंत्री जी के इन प्रेरक शब्दों के बाद आइए जानते हैं कि इन वन्य जीवों की, इन पशु पक्षियों की जीवन शैली कैसी होती है और इनके संरक्षण के लिए क्या विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। हम आपको सुनवा रहे हैं एक परिचर्चा।

0: हमारे विशेषज्ञ हैं श्री जयपाल सिंह, भारतीय वन सेवा अधिकारी, अग्र मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख वन विभाग गुजरात राज्य से, और श्री आयुष वर्मा, जिला वन संरक्षक कच्छ ईस्ट डिवीजन वन विभाग गुजरात राज्य। इनसे बातचीत कर रहे हैं श्री हितेश मावाणी, वरिष्ठ प्रसारण कर्मी।
1: श्रोता मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 अप्रैल 2026 मन की बात में गुजरात, कच्छ और खास करके उन्होंने फ्लेमिंगो सिटी, फ्लेमिंगोस और साथ ही में द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको यहाँ गुजरात में घोराट के नाम से जाना जाता है, वो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में जिक्र किया था, उल्लेख किया था। आज उसी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में गुजरात राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री और साथ ही में गुजरात राज्य वन बल प्रमुख डॉक्टर जयपाल सिंह उपस्थित है, और साथ ही में कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आयुष वर्मा भी उपस्थित है। तो सबसे पहले तो आकाशवाणी की ओर से आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में उपस्थित रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत।
2: नमस्कार श्रोता मित्रों।
1: डॉक्टर जयपाल सिंह, सबसे पहले तो हम बात यही करेंगे कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने मन की बात में फ्लेमिंगो सिटी का जिक्र किया, साथ ही में फ्लेमिंगोस के बारे में भी बताया। तो सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने अपने वक्तव्य में फ्लेमिंगोस को लाखा जी के बाराते ऐसा शब्द से नवाजा था, तो ये लाखा जी के बाराते क्या है सर?
2: जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कच्छ प्रदेश प्रवासी पक्षियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, और यहाँ लाखों की संख्या में फ्लेमिंगो, जिसको सुरखाब भी हम लोग कहते हैं, आते हैं हर वर्ष और यहीं पे अपना प्रजनन करते हैं। वहाँ पे एक एक पूरा जो है अंडा दे के बच्चे पैदा करके, और बच्चे बड़े होने तक कच्छ में रहते हैं। और जब ये सुरखाब मीन्स फ्लेमिंगो जब ये कच्छ के रण में जब आते हैं, तो वो पूरा कच्छ की धरती एकदम गुलाबी और सफेद रंग से भर जाती है। तो उसी को देखते हुए जो हमारे यहाँ के जो भरवाड़ लोग हैं, जो पशुपालक हैं, उनकी एक जो ड्रेस होती है वो वाइट कलर की ड्रेस होती है, और उसमें जब उन बारात के टाइम में, शादी ब्याह के टाइम में जब वो गुलाल वगैरह छिड़कते हैं, तो पूरा गुलाबी और वाइट का एक कम्बिनेशन होता है। उस कम्बिनेशन को देखते हुए यहाँ इनको लाखा जी के बाराती कहकर भी बुलाया जाता है।
1: ये तो बहुत खूबसूरत बात है, फ्लेमिंगोस को यहाँ गुजरात में लाखा जी के बाराती के नाम से भी नवाजा जाता है। डॉक्टर जयपाल सिंह, सबसे पहले तो प्रश्न ये आता है कि ये जो सुरखाब फ्लेमिंगोस की आपने बात बताई, तो गुजरात के सिर्फ ये कच्छ जिला में ही आते
2: हैं? नहीं, एक्चुअली जैसे हम जानते हैं कि ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, जो मध्य एशिया का पूरा फ्लाईवे है, तो प्रवासी पक्षी पूरे साइबेरिया और रशिया और इधर से पूरे मतलब सीजन के हिसाब से माइग्रेट करते हैं। तो माइग्रेटरी रूट का एक ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है, और पूरा जो एक अनुकूल वातावरण भी कच्छ के पूरे रण क्षेत्र में रहता है। और जैसा कि हम लोग देखते भी हैं कि बहुत पक्षीविद भी यहाँ आते हैं, ऐसे डॉक्टर सलीम अली भी यहाँ बहुत टाइम पर तक रहे, और अभी भी सर्दी के टाइम में जब प्रवासी पक्षी और ये सब रहते हैं, तो पूरे कंट्री से, पूरे देश से बहुत सारे पक्षीविद और जो जिनको बर्डिंग में रुचि रहती है वो यहाँ आते हैं। तो ये एक इनका एक टेम्परेरी रुकने का एक स्थल है कच्छ का रण, उसमें ऐसी अनुकूल परिस्थितियां है, हैबिटेट ऐसा है, तो काफी टाइम तक यहाँ रहते हैं। और खास करके जब ये फ्लेमिंगो आते हैं, तो उनको ब्रीडिंग के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण ग्राउंड यहाँ पे उपलब्ध है, जो पूरे दक्षिण एशिया में कहीं नहीं है। वो यहाँ पे ऐसा एक पूरा ब्रीडिंग ग्राउंड है, और यहीं आके ये ब्रीडिंग करते हैं। और ये पूरा जो माइग्रेटरी रूट है वो हिंद महासागर तक जाता है, उसमें देश के अन्य भागों में भी ये जाते हैं, पर बहुत ज्यादा समय जो कच्छ के रण में ये रहते हैं, और गुजरात के अन्य भागों में भी ये जैसे नड़ा बेट का विस्तार है उसमें रहते हैं, फिर लिटिल रन ऑफ कच्छ, जो कच्छ का छोटा जो रन है उसमें भी रहते हैं, फिर जामनगर के विस्तार में रहते हैं, पोरबंदर के विस्तार में जाते हैं, नल सरोवर में जाते हैं। तो अपने यहाँ पे गुजरात में खूब सारी वेटलैंड्स हैं, और जो जो वेटलैंड्स में अनुकूल वातावरण इनको रहता है, वो सभी में ये समय समय पर जाते हैं। तो कुछ समय कच्छ में रहेंगे, कुछ दूसरे भागों में जाएंगे, देन अपने माइग्रेटरी रूट के हिसाब से आगे जाते रहते हैं, एंड देन जब रिटर्न होते हैं तो भी उनका

0: वही सेम रूट रहता है।
1: आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया, कच्छ के बाघ में ये विशेष करके आते हैं फ्लेमिंगोस, माइग्रेटरी बर्ड्स। कार्यक्रम का सिलसिला जारी रहेगा, अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: डॉक्टर जयपाल सिंह का कोई पर्टिकुलर सीजन रहता है इनके यहाँ कच्छ में और गुजरात के अन्य भाग में जो माइग्रेटरी बर्ड्स रुकते हैं, खास करके फ्लेमिंगोस?
1: हाँ, ये बड़ा एक स्पेसिफिक सीजन रहता है यहाँ। जैसे अभी हम लोग देखेंगे गर्मी की ऋतु में यहाँ पे पूरा रण जो है वो सूखा होता है, उसमें एक सोल्ट पेन जैसा रहता है पूरा, और जैसे ही बारिश होती है तो वो पूरा रण जो है एक पानी से भर जाता है, जो छिछरा पानी होता है, बहुत गहरा पानी नहीं रहता है, और वो छिछरा पानी जो है वो इसके फ्लेमिंगो के रुकने के लिए खूब अनुकूल है, और उसके ब्रीडिंग के लिए आसपास में जो मिट्टी के कुछ टीले वगैरह होते हैं और एक ऊपर का जो भाग है वो बहुत अनुकूल होता है, इसलिए जो है ये इस एरिया में आके रुकते हैं। और खूब बड़ा प्रदेश जो इनको मिल जाता है, बड़ा क्षेत्र मिल जाता है जिसमें अनडिस्टर्ब मीन्स वहाँ पे कोई दूसरे व्यवधान नहीं है, कोई दूसरी मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज भी नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई घर और गांव नहीं है, ऐसा एक बड़ा सुंदर वातावरण का निर्माण यहाँ पे रहता है, तो उस वजह से ये यहाँ के रुकते हैं।
0: डॉक्टर जयपाल सिंह।

0: आपने जैसे बताया कि उसको एक बहुत सुंदर वातावरण मिलता है, तो ये जो इनका नेस्टिंग ग्राउंड है वो मतलब कितने एरिया में फैला हुआ है?
1: ये तो ऐसे कहेंगे तो हम लोग जैसे कि ये तो हजारों हेक्टेयर विस्तार में है पूरा जो नेस्टिंग ग्राउंड और जहाँ आके रुकते हैं, और जो मतलब सैकड़ों हेक्टेयर विस्तार ऐसा है जिसमें ये आके अंडे देते हैं, और जैसे ही बारिश शुरू होती है उसके बाद इनका आना शुरू हो जाता है जुलाई अगस्त से, फिर अपना अंडा देते हैं, फिर बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो अक्टूबर नवंबर तक बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, और देन ये फिर जो है आगे माइग्रेट करना शुरू करते हैं अलग अलग जगह।
0: जैसे कि आपने बताया कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स है, तो मतलब इनका माइग्रेशन रूट कितना रहता है?
1: माइग्रेशन रूट तो इनका हजारों किलोमीटर होता है, जैसे साइबेरिया से आते हैं और पूरे जो है अपने हिंद महासागर के क्षेत्र तक जाते हैं, इवन चिल्का लेक और इस एरिया तक भी ये जाते हैं, और पूरे साउथ इंडिया में भी इनका विस्तरण रहता है, तो ये पूरा एक माइग्रेटरी रूट, काफी बड़ा इनका माइग्रेटरी रूट है।
0: श्रोता हमारे साथ साथ आकाशवाणी स्टूडियोज में कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आयुष वर्मा जी भी उपस्थित हैं। आयुष जी, आप बताएंगे कि कच्छ में कौन कौन से लोकेशन में फ्लेमिंगोस सुरखाब है वो पाए जाते हैं, पॉपुलेशन उसकी पाई जाती है?
2: नमस्ते श्वेता मित्रों, कच्छ एक अनुकूल प्रदेश है फ्लेमिंगो के लिए, एंड जैसा साहब ने बताया भी तो यहाँ काफी विस्तृत विस्तार में ये मिलते हैं, बट जो अभी जो मेन ट्रेडिशनल एरिया की अगर हम बात करें तो एक फ्लेमिंगो सिटी करके जगह है जिसको अंडा बेट के नाम से भी कहते हैं, उसे पिंक सिटी भी कहते हैं, एंड ये डिस्कवर किया गया था सन 1886 में, उस समय के जो महाराजा थे उस टाइम पे उन्होंने वो डिस्कवर किया था
0: कच्छ के महाराव ने
2: जी, फिर माराव खेंगा थ्री इनफैक्ट टू बी मोर स्पेसिफिक, एंड डॉक्टर सलीम अली साहब ने फिर 40 और 50 के दशक में यहाँ पे काफी भ्रमण किया और उन्होंने देखा कि ये एक नायाब जगह है फ्लेमिंगो के लिए। उसके अलावा अभी हाल में कूडा करके एक जगह है, वहां पर इनका काफी डिपार्टमेंट ने भी इंटरवेंशन किया जिसकी वजह से वहां सक्सेसफुल इनका प्रजनन होता है, जिसकी वजह से वहां पे भी असंख्य मात्रा में देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट प्रवासियों के बारे में मैं बात करूं तो जब हम रोड टू हेवन से प्रसार करते हैं तो उसके दोनों तरफ फ्लेमिंगो जब मौसम होता है तो देखने को मिलते हैं।
0: सबसे पहले तो श्रोता को हम बताएंगे कि ये रोड टू हेवन क्या है।
2: जी, रोड टू हेवन हमारा खावड़ा वाले एरिया से जो ढोलावीरा को कनेक्ट करता हुआ एक रोड है जिसे कहते हैं रोड टू हेवन, या फिर कह सकते हैं रोड ऑफ हेवन, इसके जैसे नाम से ही प्रस्तुत होता है, तो ये कहते हैं कि जन्नत की सैर आप कर रहे हैं। ये इसका महत्व इसीलिए है कि आप देखिए जिस समय पानी सूखा हुआ होता है तो नमक की एक सफेद चादर होती है, आपको लगेगा जैसे आप आकाश में विचर रहे हैं। जब पानी भरा होता है तो यहाँ पे विभिन्न माइग्रेटरी बर्ड जिसमें मुख्यतः आपका फ्लेमिंगो सुरखाब वो होता है, तो सफेद और गुलाबी रंग से वो पूरा का पूरा ढक जाता है, तो ये देखने में क्योंकि इतना बेहतरीन लगता है, इतना मोहक लगता है, इसीलिए इस रोड से प्रसार करते समय लोगों से कहते हैं कि रोड टू हेवन है।
0: और साथ में हम ये भी बता दें कि ये रोड टू हेवन है वो अभी अभी ही मतलब पिछले 4-5 साल से ही पब्लिक के लिए ओपन किया गया है, जिसके दोनों साइड समंदर का पानी भरा हुआ रहता है, और जैसे कि आयुष वर्मा जी ने बताया तो जब आप ट्रायल करते हैं धोलावीरा से खावड़ा तो ये आपको लगता है कि इट्स ए रोड ऑफ हेवन। आयुष जी, आपने ये बताया तो हम श्रोता मित्रों को साथ में ये भी बताया, एक बार जो उसका फ्लेमिंगोज है उसका नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना हो सकता है?
2: जी, अगर मैं कच्छ की खाली बात करूं तो पिछले 5 वर्ष में जो हमारा एक अनुमान है वो ये है कि 3 से 4 गुना फ्लेमिंगो की संख्या बढ़ गई है, एंड हाल में ये संख्या अंदाजे 3 से 4 लाख हम बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट से भी इसको कह सकते हैं। यही संख्या जस्ट 2020 में 1 लाख के आसपास थी, और ये भी गौरतलब है कि जब ये फ्लेमिंगो की हम बात करते हैं तो दोनों ग्रेटर फ्लेमिंगो एज वेल एज लेसर फ्लेमिंगो दोनों यहाँ पर आते हैं।
0: अच्छा आयुष जी, तो ये ग्रेटर फ्लेमिंगोस और लेसर फ्लेमिंगोस इसमें मतलब डिफरेंस क्या है, तफावत क्या है?
2: जी, तो आपको अगर मैं फिजिकल डिफरेंसेस से बताऊं तो सर्वप्रथम तो जैसे ग्रेटर और लेसर है तो साइज में फर्क आपको दिखेगा। जनरली जो एक एडल्ट ग्रेटर फ्लेमिंगो है उसकी हाइट होती है 110 से लेके 150 सेंटीमीटर एवरेज, जबकि हमारा जो लेसर फ्लेमिंगो होता है वो 70 से लेके 95 सेंटीमीटर तक का होता है।

0: तो एक तो साइज में डिफरेंस होता है, दूसरा लेसर फ्लेमिंगो जो है आपका वो काफी गुलाबी दिखेगा एज कम्पेयर टू ग्रेटर फ्लेमिंगो. ग्रेटर फ्लेमिंगो भी गुलाबी है लेकिन वो सफेद और ग्रे कलर का ज्यादा है. इनफैक्ट ये भी एक मजेदार बात है कि ये उनका बॉडीली अडेप्टेशन है. कैसे, एक ये जो हमने बात करी कि रण क्यों सूटेबल है, तो जैसा हॉफ साहब ने बताया यहाँ पर शैलो वाटर तो है. शैलो वाटर की वजह से क्या होता है, एल्गे क्रस्टेशियंस डायटम्स और ये उनकी मेन खुराक बनती हैं फ्लेमिंगोज की. जो हमारे लेसर फ्लेमिंगोज होते हैं वो सरफेस फीडर्स होते हैं, स्पेशली जो ब्लू ग्रीन एल्गे है उसको कंज्यूम करने की वजह से इनका जो कलर है वो गुलाबी आता है. जबकि जो हमारे ग्रेटर फ्लेमिंगोज हैं वो वेडर्स होते हैं, यानी वो पानी के थोड़ा सा अंदर सतह से जाके उनकी डाइट रहती है. तो ब्लू ग्रीन एल्गे के अलावा वो क्रस्टेशियंस भी कंज्यूम करते हैं, बट जैसा मैंने साइंटिफिकली बताया कि उनका जो कोट का कलर है गुलाबी वो ब्लू ग्रीन एल्गे की वजह से आता है. तो लेसर फ्लेमिंगो इसको ज्यादा कंज्यूम करती है और ग्रेटर फ्लेमिंगो इसको कम कंज्यूम करती है. तो आप देखिए प्रकृति में कैसे एक वातावरण से हमारी पूरी मतलब हमारी तो वही साथ साथ पक्षियों के भी एक पूरे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन होते हैं.
1: मतलब सर ये तो हम बोल सकते हैं कि ये तो एक कुदरत का करिश्मा ही है जिसे ये लेसर फ्लेमिंगोस और ग्रेटर फ्लेमिंगोस है उसका एक फिजिकल आइडेंटिफिकेशन अलग अलग रहता है. डॉक्टर जयपाल सिंह ये जो बताई फ्लेमिंगोस सुरखाप की संख्या, तो ये सुरखाप की संख्या उसका पॉपुलेशन एस्टिमेशन काउंट के पद्धति कौन कौन सी रहती है?
2: ये जैसे फ्लेमिंगो को जो बर्ड सेंसस का भाग हम लोग मानते हैं और वो मोस्टली जो है डायरेक्ट काउंटिंग होता है, उसमें काफी सारे इक्विपमेंट भी हम लोग यूज करते हैं और उसमें बहुत सारे जो पक्षीविद हैं उनको हम लोग साथ में रखते हैं. साथ में बहुत कुछ एनजीओज रहते हैं, कुछ हमारे बर्डर्स रहते हैं जो इसका मतलब कंटिन्यूअसली हमारे कांटेक्ट में रहते हैं, उनको साथ में रख के हम उसका डायरेक्ट काउंटिंग करते हैं. पर जैसा कि हम देखें कि एक एक को काउंट करना तो बड़ा मुश्किल होगा, बट उसको हम जैसे इक्विपमेंट्स के माध्यम से उसके कुछ सैंपल करके और उनको देन मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं तो अंदाजित उसकी जो संख्या है उसका हम लोगों को पता चल जाता है.
1: श्रोताओ फ्लेमिंगो सुरखाप की विशेष जानकारी तो हम आपको देते रहेंगे, लेकिन साथ साथ हमें डॉक्टर जयपाल सिंह आप अपनी पसंदगी का एक गीत भी बताइए.
2: जैसे रहे ना रहे हम महका करेंगे, ये एक बड़ा सुंदर गीत है.
1: बिल्कुल, प्रस्तुत है स्वतः आपके लिए डॉक्टर जयपाल सिंह की पसंदगी का यह गीत.

0: बॉक्स नंबर 111 इस कार्यक्रम को आगे जारी रखते हुए डॉक्टर जयपाल सिंह से हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो सुरखा फ्लेमिंगोस की पॉपुलेशन एस्टिमेशन होती है तो उसमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट होते हैं गवर्नमेंट के अलावा?
1: जैसे मैंने बताया कि हमारा स्टाफ तो उसमें रहता है, पर उसमें जो काफी सारे पक्षीविद हैं, काफी जो स्वैच्छिक संस्थाएं हैं वो सब, और बहुत सारे बर्डर्स हमारे गुजरात में खास करके बहुत बड़ा बर्डिंग कम्युनिटी है, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, जिसमें बहुत सारे इंजीनियर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, तो जिनको काफी रुचि रहती है पूरी बर्ड लाइफ में, तो वो साथ में रह के हम लोग एक अपना प्लान करते हैं, फिर उन सबको इनवाइट करते हैं, उनको सबके साथ रह के वो एक जो इनकी गिनती पक्षियों की है उसका कार्य हम लोग करते हैं।
0: डॉक्टर जयपाल सिंह, ये फ्लेमिंगोस के पॉपुलेशन सेंसस हर साल होता है या कोई पीरियडिकली रहता है?
1: वैसे तो हम लोग हर चार साल में एक बर्ड सेंसस का आयोजन करते हैं, परंतु अलग अलग क्षेत्रों में जो विविधताएं होती हैं तो स्टाफ अपनी तरफ से भी हर साल वो पक्षी गिनती करने का कार्य करता है। जैसे कि नड़ावेट विस्तार है, उसमें अलग से अपना स्टाफ जो है वो एक अपना गिनती का कार्यक्रम रख लेता है, इसी तरह से नल सरोवर में रख लेता है, तो उससे पक्षियों की संख्या का अंदाजा हम लोगों को आता रहता है और डिफरेंट जो वैरायटी के बर्ड्स हैं उनके भी संख्या का पता चलता रहता है। तो कभी कभी जैसे नल सरोवर जैसे विस्तार में कुछ अन्य विलक्षण पक्षी भी देखने को मिल जाते हैं, जो जनरली माइग्रेट करके आए होंगे, पहले नहीं देखे गए हैं, बट कभी पिछले साल में भी ऐसे एक दो पक्षी देखे गए थे, और फिर नेक्स्ट ईयर भी हम लोग ट्राई करते हैं कि वही सेम पक्षी यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
0: आयुष जी, जैसे कि आपने बताया कि जो कच्छ के महाराव थे महाराजा खेंगार जी, उन्होंने विश्व के समक्ष ये फ्लेमिंगो सिटी अंडा बेट का उजागर किया, ऐसे ही फिर बाद में सलीम अली जी ने भी जिक्र किया फ्लेमिंगोस का, तो मतलब जो एक ये पूरा नेस्टिंग कॉलोनी का एक फोटोग्राफ विश्व में प्रसिद्ध हुआ था
2: जी,
0: उसके बारे में आप बात करेंगे?
2: जी, तो ये जब फोटोग्राफ पॉपुलर हुआ, आज के शब्दों में बोलें शब्दावली में जब वायरल हुआ, तो लोगों में काफी उत्सुकता जागी कि ये यहाँ पर है तो क्यों है और क्या फैक्टर्स हैं जो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, और सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के बारे में यूं तो मतलब ये सब चीजें क्या है आप देखिए, तो ये जो टेक्स्ट बुक्स में चीजें थी वो लेसन अभी आम जनता के समक्ष एक

0: पाता है इसकी वजह से। अगेन इससे ये भी था कि जब यहाँ पे संख्या ज्यादा देखने को मिली तो इसको और कैसे बढ़ा सके, इनके कंजर्वेशन के लिए हम काम क्या कर सकते हैं, ये एक डिपार्टमेंट के लिए मैनेजमेंट स्ट्रेटजी तरीके थी। तो इसी चीज से प्रेरणा लेके मैं आपको बताना चाहूंगा कि कूड़ा करके एक हमारा स्थल है, इनफैक्ट उसको एक कुदरती संरक्षण ऐसे भी मिलता है कि वो हमारे कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का तो पार्ट है ही, साथ ही साथ बीएसएफ का एक आउटपोस्ट है जो उसके आगे है। तो एक एंथ्रोपोजेनिक डिस्टर्बेंसेस मतलब मानव से थोड़ा सा वो आइसोलेटेड है, वहां पर हमने पिछले 5 वर्षों से डिपार्टमेंट प्रयास कर रहा है कि हम वहां पे अर्दन माउंड्स बनाएं और ऐसे प्लेटफॉर्म बनाएं जहां पर जो फ्लेमिंगो है वो अपना अंडा ले डाउन कर सके। मैं जस्ट एक उल्लेख करना चाहूंगा कि यहां पर इवन दो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में लाई करते हुए इंडिया में बहुत सारे पार्ट हैं, थाने में हमारा फ्लेमिंगो की काफी सारे देखने को मिलती है काउंट, पुलिकेट लेक में आपका उड़ीसा में भी देखने को मिलता है, बट जो ब्रीडिंग है वो यहाँ कच्छ में काफी ज्यादा संख्या में होती है। हमने इसमें एक चीज ये देखी वहां पर कि अंडे जो ये ले डाउन करते थे अपने, वो रण विस्तार में पानी भर जाने के कारण उस अंडे का धोवाण बहुत ज्यादा हो जाता था, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल उसका ब्रीडिंग नहीं हो पाता था।
1: मतलब जो कुदरती परिवर्तन के हिसाब से फ्लेमिंगोस के अंडा कम होते जा रहे थे।
0: मैं ये नहीं कहूंगा कम होते जा रहे थे, बट ये चौमासे के समय में जब यहाँ पे आते थे और अंडा ले डाउन करते थे तो वो अंडा धुल जाता था। अभी जब डिपार्टमेंट ने ये कुछ अर्दन माउंट्स बनाए, सी शेप हम उसे डेजर्ट पॉन्ड कहते हैं, तो लीनियर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो इसपे वो जब अपना अंडा ले डाउन करते हैं वो अंडे का जो धोवाण है वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रजनन बहुत सक्सेसफुल हो पाया है। तो एक बड़ा कारण है कि क्यों फ्लेमिंगो की संख्या उत्तरोत्तर बड़ रही है।
1: आयुष जैसे आपने बताया कूड़ा सेट के बारे में, तो हम श्रोता मित्रों को ये भी बताए कि ये कूड़ा एक ऐसा एरिया है जहाँ पर मानव बस्ती बिल्कुल नहीं है और उसको मतलब कुदरती संरक्षण मिल रहा है
0: जी।
1: और इसे पोस्ट बॉक्स नंबर 111 कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे, लेकिन साथ में आपकी पसंद का एक गीत भी आप बताइए।
0: छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा,

0: कोलकाता में तो जैसे कि आप जानते हैं कि मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कच्छ के फ्लेमिंगो सिटी, लाखा जी के बाराते और उसके साथ ही साथ गुजरात में जिसको घोराड के नाम से जाना जाता है ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, उसका भी जिक्र किया था, उल्लेख किया था। तो उसके संलग्न माहिती के लिए हमारे साथ डॉक्टर जयपाल सिंह, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री और गुजरात राज्य वन बल प्रमुख है, और साथ ही में कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आयुष वर्मा जी भी उपस्थित है। डॉक्टर जयपाल सिंह, हम श्रोता मित्रों को ये बताएंगे कि जो अभी घोराड द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड है उसकी संख्या गुजरात में कितनी रह गई है, और जो एक IUCN की कैटेगरी होती है उसमें उसका क्या स्टेटस है?
1: श्रोता मित्रों, जो घोराड हम लोग गुजराती में कहते हैं उसको इंग्लिश में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं, और राजस्थान में उसको गोडावन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक IUCN की कैटेगरी में, क्योंकि इसकी संख्या बहुत ही कम रह गई थी तो उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड, लुप्त प्राय श्रेणी में इसको रख दिया गया है, क्योंकि जो है इसका प्रजनन कुछ कारणों से काफी कम हो गया था और संख्या लगातार घटती जा रही थी। जैसे हम यहाँ गुजरात की बात करें तो यहाँ केवल 4 पक्षी जो केवल मादा हैं वही रह गए हैं, और राजस्थान में इसकी संख्या अभी थोड़ी बढ़ गई है और अभी करीब करीब 150 से 200 के बीच में कुदरती वातावरण में ये पक्षी हैं। उसके लिए काफी सारे प्रयास भी राज्य सरकारों ने किए हैं केंद्र सरकार के सहयोग से। ये एक प्राथमिकता का कार्यक्रम है कि ये क्योंकि क्रिटिकली एंडेंजर्ड एक स्पीशीज है जो लुप्त होने के कगार तक पहुंची, उसको कैसे हम फिर से पुनर्वसन कर सकें और पूरे जो है जिस एरियाज में ये प्रजाति पाई जाती है उनमें फिर से ये प्रजाति दिखने मिले। दूसरा जो है कि ये एक जो GIB के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये एक काफी बड़े आकार का पक्षी होता है, बहुत ऊंची उड़ान नहीं भरता है और मुख्य रूप से ये घास के मैदानों में ही रहता है, और इसका जो अंडा भी जो देता है वो भी ग्राउंड पे ही देता है, कोई पेड़ पे ये कभी नहीं चढ़ता है, वो ये घास के मैदान में रहेगा, वहीं प्रजनन होगा और वहीं से जो है इसके बच्चे पैदा होके वहीं पे ये बढ़ेगा। तो जो दूसरे कुछ परिबल जो रहते हैं ऐसे क्षेत्रों में, उन परिबलों में थोड़ा सुधार हो तो इसकी प्रजाति को हम फिर से बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं, जो कि अब हम लोग हो रहे हैं।
0: डॉक्टर जयपाल सिंह, साथ में हम ये भी बताएं कि ये जो घोराड है इसकी संख्या दिन ब दिन क्यों कम हो रही है?
1: इसकी संख्या कम होने के काफी सारे कारण हैं, क्योंकि घास के मैदान काफी विस्तारों में कुछ कम हो गए, तो जो हैबिटेट लॉस हम उसको कह सकते हैं वह हुआ। उसके साथ साथ जो है कुछ ऐसे परिबल के कुछ शिकारी प्राणी उस विस्तार में बढ़ गए, छोटे शिकारी जिनको कहते हैं कि जैसे गीदड़ है, फोक्स है, इस तरह के नेवला है, इवन जो थोड़े पक्षी शिकारी पक्षी हैं वो भी, तो उनके कारण भी जो नए बच्चे पैदा होते हैं उनको थोड़ा खतरा रहता है, और कुछ अन्य परिबल बरसात का

0: ज्यादा होना, चक्रवात वगैरह हैं, कुदरती अन्य परिबल भी इसके कारण है, साथ साथ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके वो भी एक कुछ हद तक एक कारण होता है कि उससे डिस्टरबेंस वो एरियाज में होता है, तो वो भी एक उसका कारण होता है।
1: कार्यक्रम का सिलसिला जारी रहेगा, अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: आयुष वर्मा विजय उपस्थित है। आयुष जी, आप ये बताइए कि घोराट की जो संख्या है उसके बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के क्या क्या प्रयत्न है?
1: केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही प्रयासरत हैं कि हाल में जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हमारा घोराट है, जैसा साहब ने बताया, उसकी संख्या में बढ़ोतरी हो। तो एक ध्यान देवानी जो बात है कि अभी जो कच्छ में मौजूद घोराड़ हैं, ये सब मादा हैं, इसलिए इनका प्रजनन एक बड़ी समस्या रही थी टू स्टार्ट विद। इनफैक्ट ये एक नोंदनीय बात है कि सरकार के प्रयासों को आप इससे आकलन कर सकते हैं कि एक डेडिकेटेड ग्रेट इंडियन बर्ड्स सेंचुरी है हमारे। तो अभी यूं तो कई बार प्रयास किए गए हैं, बट अभी हाल में जंप स्टार्ट टेक्निक ब्रीडिंग की एक हमारी टेक्निक है जिसको हमने इसके प्रजनन के लिए उपयोग किया। इसमें इफेक्टिवली क्या होता है कि एक आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन से जो अंडा होता है वो अंडा राजस्थान से लाया गया और यहाँ पर जो मादा घोराड़ है तो उनसे उनको इंक्यूबेट कराया गया। और ये भी एक काफी दिलचस्प बात है कि एक मादा अपने अंडे को पहचानती है, इसीलिए हमें बड़ा केयरफुल रहना होता है कि बिल्कुल आइडेंटिकल दिखने जैसा अंडा रखा जाए और उसकी नॉलेज के बाहर रखा जाए।
0: आयुष जी, ये आपने बताया कि राजस्थान से अंडा लाया गया है, तो राजस्थान से अंडा लाने वक्त कौन कौन सी सावचेतियां रखनी पड़ती है?
1: जी, ये बहुत ही क्रिटिकल एक एस्पेक्ट होता है टेक्निकली अगर हम बात करें, क्योंकि आप देखिए ये अंडे का जो हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं एक राज्य से दूसरे राज्य, तो इसमें वेटरनरी डॉक्टर जो हैं वो पूरा सर्टिफाई करते हैं, वो ये भी बताते हैं कि किस परिस्थिति में इसको स्टोर करके लेके जाना है और किस परिस्थिति में इसे रिसीव करना है। इसका प्रॉपर पूरा जो वेटरनरी मेडिकल टेस्ट होते हैं वो किए जाते हैं, इसको बेचते समय भी और इसको प्राप्त करते समय भी। इनफैक्ट CZA की काफी टेक्निकल गाइडलाइंस भी हैं इसके बारे में, तो हमें काफी इसमें सावधानी बरतनी पड़ती है हर तरीके से इसके लॉजिस्टिक्स में।
0: और जैसे कि आपने बताया कि मादा के पास जो अंडा है अपना वो हमें लेना पड़ता है, और जो आर्टिफिशियली इंसिमिनेशन से प्राप्त हुआ है अंडा उसको रिप्लेस करना पड़ता है, तो स्वाभाविक है कि मादा के उसी वक्त अंडा के आसपास हाजिरी नहीं होनी चाहिए। तो ये कैसे फिजिबल होता है?
1: तो फील्ड स्टाफ बहुत पैनी नजर रखता है, बहुत लॉन्ग टर्म ऑब्जर्व भी किया जाता है कि उस जो हमारा घोराड़ है उसका पैटर्न क्या है, बिहेवियरल पैटर्न क्या है। जैसे वो एक स्थान से अभी जाके अपने घास विस्तार में जाए तो किस समय जाती है और वो कब लौटती है, तो ये सब विंडो बेसिकली विंडो ऑफ टाइम हमारे जो फील्ड का स्टाफ है उसने पैनी नजर रख के ये एक्सरसाइज करी।
0: ये तो काफी मतलब फील्ड स्टाफ के प्रशंसनीय बात आपने बताई। डॉक्टर जयपाल सिंह साथ में बताते हैं कि ये जंप स्टार्ट टेक्निक है, ये उसका इंडिया में प्रथम बार प्रयोग किया गया गुजरात में कच्छ में।
2: इसमें मैं फिर से थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि ये जो भारत सरकार और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और खास करके दो राज्य सरकारें अभी ये हाल में राजस्थान और गुजरात, इनका एक संयुक्त कार्यक्रम है और ये एक नेशनल प्रोग्राम तरीके भी लिया गया है। इसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पिछले साल शासन में जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की मीटिंग की थी उसमें भी इसको एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में आगे बढ़ाने के लिए इस पे भार दिया था, और उसी के तहत जो है ये कार्यक्रम को बहुत ही हम लोग सावचेती से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें दो तरह के जो प्रजनन कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं, एक है कि कुदरती तरीके से कि इन सीटू ब्रीडिंग, तो इन सीटू में दो चीजें होती हैं, एक तो जो मतलब ब्रीडिंग नेचुरली जो हो रहा है इस विस्तार में जो भी विस्तार में उसको हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, उसको कंडीशन ऐसी दें कि जो बच्चे नए जन्मते हैं तो वो सर्वाइवल उनका बढ़े। और दूसरा मेथड है जो जंप स्टार्ट मेथड, ये भी एक टेक्निक है कि सीधा जो बच्चा जो है हम लोग जैसे आयुष ने बात किया कि अंडा हम लोग चेंज कर देते हैं तो वो नए जो बच्चा जो उससे पैदा होता है तो उसका सीधा वाइल्डिंग हो जाता है। अदरवाइज जैसे हम लोग प्रजनन केंद्र कृत्रिम में हम लोग करें तो उसको वाइल्डिंग करने में बहुत दिक्कतें आती हैं, जो उसका एक ह्यूमन इम्प्रिंट अगर उस पक्षी पे है तो वाइल्डिंग होना उसका बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये हम दो तरह के प्रयास है, उसका इन सीटू कंजर्वेशन भी चल रहा है और एक्स सीटू भी चल रहा है। एक्स सीटू में भी काफी अच्छी जो प्रयास वाइल्ड लाइफ

इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है उसके बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। और जैसे बात करूं तो इसी साल में कुल नए अभी तक 14 बच्चे इसमें जन्मे हैं जो कृत्रिम प्रजनन केंद्र है उसमें, और कुल संख्या अभी जो केंद्र में है 84 हो गई है। तो वो जो एक क्रिटिकल लेवल के जो पक्षी का हम लोगों को जरूरत है, जिस तरह से ये कम होता जा रहा था, तो ये साथ में इस कृत्रिम के साथ जो हमारा प्राकृतिक के साथ में कृत्रिम प्रजनन भी साइमल्टेनियसली चल रहा है, तो उसमें अभी एक अच्छा नंबर संख्या जो हमारे पास उपलब्ध है जो प्रयास हुए उनके कारण, और उसमें से भी कुछ जो नए बच्चे अभी जन्मते हैं तो उसमें जो वाइल्ड लाइफ ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का प्रयास है कि सीधा उनको हम लोग वाइल्डिंग करें, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक SOP भी बनाया गया है। उसके लिए एक ऑलरेडी एक हम लोगों ने मतलब राजस्थान में कैसा सेंटर छोटा तैयार किया है कि सीधा उसको वह छोटे बच्चों को ही वाइल्डिंग कर दें। तो उस तरह के प्रयास जो मतलब प्राकृतिक के साथ साथ में, जैसे गुजरात में आयुष जी ने बात किया कि हमारे पास जो पक्षी है वो केवल फीमेल

0: वाइल्डिंग करें, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक SOP भी बनाया गया है। उसके लिए एक ऑलरेडी एक हम लोगों ने मतलब राजस्थान में कैसा सेंटर छोटा तैयार किया है कि सीधा उसको वह छोटे बच्चों को ही वाइल्डिंग कर दें। तो उस तरह के प्रयास जो मतलब प्राकृतिक के साथ साथ में, जैसे गुजरात में आयुष जी ने बात किया कि हमारे पास जो पक्षी हैं वो केवल फीमेल हैं, तो वो केवल इनफर्टाइल एग हर साल देती हैं, तो वो इनफर्टाइल एग को फर्टाइल एग से रिप्लेस करके उससे नए बच्चे पैदा हों, वो सीधे वाइल्डिंग होंगे। पर साथ साथ में जो अभी नए बच्चे जो इसके आ रहे हैं राजस्थान में, उनको भी जो वाइल्डिंग के प्रयास है वो भी हम लोग गुजरात में भी अब फिर से हम लोग उसका प्रयास भी करेंगे कि वाइल्ड में ये बच्चों को भी छोड़े, जिससे इसकी संख्या जल्दी से बढ़ना शुरू हो, और जो अभी 4 की संख्या हमारे पास है तो वो जल्दी से बढ़ने लगे, तो ये जो एंडेंजर्ड कैटेगरी है उससे एटलीस्ट लोकली हम लोग बाहर आ पाए।
1: डॉक्टर जयपाल सिंह, आपने बहुत अच्छे तरह से बताया जंप स्टार्ट टेक्निक और साथ में जो नेचुरल टेक्निक है उसके बारे में। तो ये घुराड़ के वस्ते में संवर्धन हो तो उसमें जो चैलेंजेस है वो कौन कौन सी है?
0: जैसे कि मैंने पहले बात किया था, एक तो इसका जो हैबिटेट होता है वो घास के मैदान होते हैं, और घास के मैदान भी बड़े मैदान इसको चाहिए, ऐसे नहीं कि छोटे 2-4 हेक्टेयर के मैदान होगा तो उसमें इसका प्रजनन होगा और ये बढ़ेगा। तो जैसे जैसे मैदान छोटा होगा तो इसके ऊपर खतरा बढ़ेगा, तो उसमें हम लोगों ने काफी प्रयास किए हैं कि वो 8-10 हजार हेक्टेयर तक के बड़े मैदान कंटिन्यूअस पैच जो घास के हैं वो तैयार रहें। फिर हम लोग इसमें जैसे प्रोसोपिस है, इन्वेसिव स्पीसीज हैं जो कांटे वाली जाते हैं, उनको भी हटाएं ताकि ये उसकी जगह पे घास अच्छा आए, तो ये है। फिर उसमें जो ग्रेजिंग के कारण थोड़ा खतरा होता है, तो उसमें कम्युनिटी के साथ मिलके हम ग्रेजिंग कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। फिर अगर खुला विस्तार है तो उसमें गांव से फेरल डॉग्स का भी एक खतरा रहता है, तो वो फेरल डॉग्स को कंट्रोल करने का भी प्रयास है। फिर उसके साथ ही जैसे छोटे कार्निवोर्स इस विस्तार में हैं उनके ऊपर ध्यान रखें, और जो खास करके जो ब्रीडिंग पीरियड है उस टाइम में वो छोटे कार्निवोर्स को भी हम लोग वहां से हटा पाए, थोड़ा मजबूत उसका फेंसिंग कर पाए उस विस्तार की, ताकि वो एक सुरक्षित प्रजनन क्षेत्र के रूप में उपलब्ध हो, तब भी जो है जल्दी से इसकी बढ़ोतरी हो पाएगी।
1: डॉक्टर जयपाल सिंह, अभी अभी इसी साल गुजरात के 5वें एक जो वेटलैंड्स है जल प्लावित विस्तार, उसको रामसर साइट का दर्जा मिला है। तो आप श्रोता मित्रों को, ये हमने बात किया फ्लेमिंगो, सुरखाब, साथ में घोराड़, द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, साथ ही साथ में कच्छ के एक अन्य विशिष्टता है जो रामसर साइट डिक्लेयर हुई है, उसके बारे में भी आप बताइए।
0: जैसे गुजरात जो है एक वेटलैंड के लिए जो जल प्लावित विस्तार होते हैं उनके लिए खूब फेमस है, और कंट्री में सबसे ज्यादा जो वेटलैंड्स हैं गुजरात में है, करीब 17,000 के आसपास वेटलैंड्स हैं। वो विभिन्न जो पक्षी प्रजातियों के लिए भी बड़े अच्छे आश्रय स्थान रहते हैं, तो इसमें जो बड़े इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स हैं तो रामसर कन्वेंशन के तहत इनको रामसर साइट डिक्लेयर किया जाता है। उसका एक बड़ा लंबा थोड़ा प्रोसीजर है कि उसका जो पहले एक एप्लीकेशन सबमिट होती है, उसके बाद उसका बड़ा गहन आकलन होता है, और वो आकलन के बाद ही उसको एक रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। तो अभी जैसे कच्छ में छारी डंड विस्तार जो और एक वेटलैंड है उसको रामसर साइट का दर्जा मिला है, बड़ा सुंदर एक वेटलैंड है और बहुत अच्छे संख्या में और अच्छी प्रजातियों के पक्षी उसमें आते हैं हर साल, तो उसको एक इस रामसर साइट का दर्जा मिलना हमारे लिए एक गौरव की बात है।
1: श्रोता मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 अप्रैल 2026 के मन की बात कार्यक्रम में गुजरात कच्छ के फ्लैमिंगोस, फ्लैमिंगो सिटी, सुरखाब और साथ ही में घोराड़, द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड की बात की। इस बात के लिए विस्तृत मार्गदर्शन के लिए आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में गुजरात राज्य वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री और साथ ही में गुजरात राज्य वन बल प्रमुख डॉक्टर जयपाल सिंह उपस्थित रहे, और साथ ही में कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आयुष वर्मा जी भी उपस्थित रहे। आकाशवाणी और श्रोता परिवार के साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
0: आपका भी खूब खूब धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111, जिसमें आज हमारा विषय था प्रकृति का संरक्षण। कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञों ने हमें जानकारी दी फ्लेमिंगो और ग्रेट इंडियन

0: बस्टर्ड पक्षियों के संरक्षण के बारे में हमारे विशेषज्ञ थे श्री जयपाल सिंह, भारतीय वन सेवा अधिकारी, अग्र मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख वन विभाग गुजरात राज्य, और श्री आयुष वर्मा, जिला वन संरक्षक कच्छ ईस्ट डिवीजन वन विभाग गुजरात राज्य। आपसे बातचीत कर रहे थे श्री हितेश मावाणी, वरिष्ठ प्रसारण कर्मी। इस कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग था राजेश खराड़ी का। कार्यक्रम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मैं नीलम मलकानिया अब पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के तहत 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल और सोमवार को 101 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन एयर ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे कल और सोमवार को सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि राजस्व मामले के त्वरित पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि भूमि और राजस्व से जुड़े मामलों में अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय सीमा के बाद भी लंबित रहने वाले मामलों में संबंधित अधिकारियों और कार्मिकों को जवाबदेही तय करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कल लखनऊ में राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक आधारित व्यवस्था, जवाबदेही और समयबद्ध कार्यप्रणाली के माध्यम से राजस्व न्यायालयों की कार्यक्षमता को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर ब्रिज घाट में कल होने वाले गंगा दशहरा पर्व को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ने आज डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर के जरिए मेला क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले होंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर 3:30 से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। प्रतियोगिता में कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जॉइंट्स को हरा दिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 1:00 प्रसारित होगा।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर
1: पुरानी जींस और गिटार
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर फिर रात को फुर्सत के वो पल
2: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की
3: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं 300 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी चरक हॉस्पिटल दुबग्गा लखनऊ
3: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2 बच्चों में विकास की रुकावट महिलाओं में पीसीओडी और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी
5: थायराइड इंबैलेंस दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन एडिसन्स डिजीज पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज पीसीओडी या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा

0: कर पांच मिनट दोस्तों बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन 100.7 एफएम रेनबो के लोकप्रिय कार्यक्रम हेल्थ एंड फिटनेस में आप सभी का मैं समरीन स्वागत करती हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण विषय में जो है गर्मियों में हार्ट को कैसे बेहतर रखें और उसका ख्याल रखें। तेज धूप, बढ़ता तापमान, डिहाइड्रेशन और अनियमित दिनचर्या का असर सिर्फ हमारी त्वचा पर और शरीर पर नहीं होता बल्कि हमारे दिल पर भी इसका खासा असर पड़ता है। खासतौर पर हार्ट पेशेंट्स और बुजुर्गों को इस मौसम में अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होती है। इन्हीं महत्वपूर्ण मुद्दों पर और बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चर्क हॉस्पिटल के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष झा। डॉक्टर साहब, आपका एफएम स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: एफएम के श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार
0: जी। डॉक्टर साहब, पहला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूंगी वो है कि गर्मियों के मौसम में दिल की सेहत को किस तरह से बनाए रखें और किस तरह से ये हमारे हार्ट को प्रभावित करता है।
1: गर्मियों के मौसम में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है और उससे हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। गर्मियों के वजह से हार्ट की धड़कन बढ़ने लगती है, हार्ट को ब्लड 2 से 3 गुना ज़्यादा पंप करना पड़ता है। तो गर्मियों के वजह से दिल की जो नलिकाएँ हैं वो थोड़ी फैल जाती हैं, उसकी वजह से हार्ट को ब्लड सप्लाई ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है और साथ में धड़कन एबनॉर्मल हो जाती है, ब्लड प्रेशर का ऊपर नीचे उतार चढ़ाव भी में होता रहता है, तो हार्ट पे काफी असर पड़ता है। इसलिए हमें हार्ट का, दिल का काफी ध्यान रखने की जरूरत है
0: जी। तो दिल का ख्याल अगर आप भी रखना चाहते हैं तो आप हमें कॉल्स कर सकते हैं 0522-223-8845 पर, और इसके अलावा दूसरा नंबर है 0522-298-2377 पर। इसके अलावा अगर आपकी कॉल नहीं लग रही है तो आप हमें fmakashwadi@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं, आइए जानते हैं कि उनकी दिल से जुड़ी क्या समस्या है। हेलो
2: जी मैम,
0: क्या नाम है आपका, कहां से बोल रहे हैं और डॉक्टर साहब से क्या सवाल है आपका?
2: मैम, हम बिजनौर से बोल रहे हैं, मेरा नाम प्रीति है।
0: प्रीति
2: जी मैम,
0: प्रीति जी बताइए क्या समस्या आप इस वक्त महसूस कर रही हैं?
2: मैम, हमका आपका सीने में दर्द होता रहता है ना, हार्ट में, तो यही दिक्कत है। इससे कैसे बचा जा सकता, क्या उपाय हैं?
1: प्रीति जी, आपको चलने वलने से दर्द होता है या हर समय दर्द होता रहता है?
2: नहीं, चलने फिरने से सर दर्द नहीं होता है, कभी कभी होता है।
1: कभी कभी आप अपना कुछ ब्लड टेस्ट या ECG टेस्ट कराया है?
2: जी सर, करवाया है।
1: और वो ये ECG और वो ब्लड टेस्ट में कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराए हैं, वो नॉर्मल है क्या आपका?
2: जी सर, नॉर्मल है।
1: तो आप एक TMT टेस्ट करा लीजिए, वो हार्ट की जो आपकी फंक्शन को अच्छे से देख लेगा, और किसी आसपास के किसी जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं उनसे मिल लीजिए।
2: ओके सर।
0: डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जब ज़्यादा गर्मी होती है तो क्या हार्ट अटैक के या ब्लड प्रेशर बढ़ने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और अगर ऐसे में इस तरह की कोई समस्या हम महसूस करें तो तुरंत हमारी क्या कार्रवाई होनी चाहिए?
1: अत्यधिक गर्मी के वजह से हार्ट अटैक की समस्याएं बढ़ जाती है और साथ में ब्लड प्रेशर का भी उतार चढ़ाव होता रहता है। अगर हमें इस तरह से कोई दिक्कत लगे, अचानक ज़्यादा पसीना आए या सीने में कोई दर्द होता है, तो तुरंत ही नज़दीकी किसी डॉक्टर या किसी अस्पताल चले जाएं, वहां अपनी सारी जाँचें करा लें।
0: डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ चुके हैं, आइए उनसे जानते हैं। हेलो,
3: हेलो,
0: हाँ, सुन पा रहे हैं आप हमें? क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं और क्या समस्या है?
3: हमारा नाम हिमांशी है, बोल रहा हूँ कोकोनाडा जिला सीतापुर से।
0: हिमांशी सीतापुर से बात करें, क्या डॉक्टर साहब से क्या सवाल है आपका?
3: हमारा सवाल है, माथा मतलब दर्द किया करता है।
0: हाँ हाँ, तो ये गर्मियों में ज्यादा बढ़ गया है या हमेशा से आपको सर दर्द की समस्या थी?
3: गर्मियों में बढ़ गया है।
0: डॉक्टर साहब,
1: आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लीजिए, गर्मियों में जो बड़ा हो सकता है ब्लड प्रेशर के उतार चढ़ाव की वजह से होता है। दूसरा, अगर कोई स्ट्रेस तो नहीं लिया है आपने, तो अगर स्ट्रेस है तो आप स्ट्रेस को कम कीजिए और ब्लड प्रेशर चेक करा लीजिए। इसके बाद भी अगर दिक्कत होती है तो किसी नज़दीक के किसी भी चिकित्सक से मिल लीजिए।
0: डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो वो किन किन बातों का ध्यान रखे जब ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, जैसे अभी इस वक्त बेहद गर्मी है, नौतपा भी शुरू होने जा रहा है, तो स्पेशली

0: हार्ट पेशेंट को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए, हार्ट पेशेंट्स को अभी जो काफी गर्मी वाला मौसम होता है, जो 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में होता है, उस पीरियड में बाहर ना निकलें और कपड़े पूरे पहने, कॉटन वाले कपड़े लें और पानी, डिहाइड्रेशन से बचे। डिहाइड्रेशन सबसे मुख्य कारण है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होगा। अच्छा। हार्ट की गति काफी बढ़ने लगेगी, तो डिहाइड्रेशन से बचे। हर अगर बाहर निकलना भी पड़ता है आपको, तो 15-20 मिनट के अंतराल पे 100-150 ml पानी आप बीच बीच में लेते रहें।
0: डॉक्टर साहब, आपने पानी का जिक्र किया और हम सब की आदत है कि हम धूप से आ रहे हैं चिलचिलाती हुई और एकदम ठंडा ठंडा पानी हमने पी लिया है, तो इसके क्या नुकसान है? नुकसान है भी या सिर्फ घर वाले ऐसे ही टोकते हैं मम्मियाँ कि जो है बस आप आए और ठंडा पानी पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया या कोई भी तरल पदार्थ आपने ठंडा पी लिया, तो क्या वो नुकसान करता है दिल को?
1: देखिए, जो पानी अत्यधिक ठंडा पानी नुकसान करता है। दूसरा, जो सोडा ड्रिंक होता है या फिर जो कोल्ड ड्रिंक, जो भी इस तरह की कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हम लेते हैं, वो बेसिकली शरीर में उसका एब्जॉर्प्शन काफ़ी स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पानी की तुलना में, धीरे धीरे शरीर में जाता है। तो जब भी हम डिहाइड्रेटेड रहते हैं तो उस समय हमें शरीर को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है एब्जॉर्प्शन की, तो जो हम वो लेते हैं वो शरीर में पहुँच नहीं पाता, वो टाइम लगता है। तो इसकी वजह से आप इवन आपने ले लिया है पानी या कोल्ड ड्रिंक या जूस लिया है, पर शरीर आपका डिहाइड्रेटेड है क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। तो बेसिकली ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप नॉर्मल पानी ही लीजिए,
0: नॉर्मल पानी लीजिए और सिप सिप करके लीजिए। हाँ, इकट्ठा पानी आप जो गड़गड़ गड़गड़ बॉटल लगाई और पी गए पूरी बॉटल, वो नहीं करना।
1: नहीं, जैसे मैंने पहले कहा था, हर 15-20 मिनट के अंतराल पे आप पानी कुछ कुछ लेते रहे जब भी आप।
0: ओके डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी क्या समस्या है। हेलो, अपना नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
2: जी जी, गुड आफ्टरनून मैडम, संजय तिवारी बोल रहे लखनऊ से।
0: अरे वाह जी, बताइए संजय जी, क्या समस्या है आपकी?
2: मैडम हमको डॉक्टर साहब से ही पूछना है। डॉक्टर, गुड आफ्टरनून।
1: गुड आफ्टरनून संजय जी।
2: डॉक्टर जी बताइए, जैसे एक हार्ट जो बीट्स होती है उसकी एक गुड स्पीड कितनी रेंज की होती है? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कभी कभी हम सुबह अगर अपने हार्ट बीट नापते हैं तो 62 रहती है, 65 रहती है, ऑफिस में जब काम करते हैं तो कभी कभी 80 से अबव चली जाती है, डॉक्टर इसका क्या रीजन सर?
1: देखिए, हार्ट की जो धड़कन हमारी नॉर्मल होती है 60 से 100 के बीच में, ये नॉर्मल होती है। जब भी हम रिलैक्स रहते हैं तो हार्ट को ज़्यादा काम की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हमारी दिल की धड़कन धीमी हो जाती है। जैसे हम सोएंगे तो शरीर को ज़्यादा ब्लड की जरूरत है ही नहीं, और रिलैक्स पोजिशन में तो दिल की गति धीमी होती है। जब भी आप काम करेंगे तो धीरे धीरे गति बढ़ेगी, और जब आप एक्सेसिव वर्क करेंगे जैसे खेलेंगे या हैवी एक्टिविटी करेंगे तो शरीर को ज्यादा ब्लड की जरूरत है, तो हार्ट उतना ज्यादा ब्लड पंप करेगा, तो उस बीच धड़कन आपकी बढ़ेगी। ये नॉर्मल रिएक्शन है, 120-130 तक भी जा, 140 तक भी चली जाएगी, तो वो नॉर्मल है
0: जी। तो अगर आपकी भी समस्या है, आप भी दिल से जुड़ी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0522-23845 पर, 2982377 पर। ये वो मैजिकल नंबर है जहां पर आपकी समस्या का समाधान है। हमारे साथ इस वक्त मनीष झा जी मौजूद हैं। लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद गर्मियों में दिल का ख्याल कैसे रखें, इस पर चर्चा जारी है।
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
4: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
3: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
0: तो 12:14 और 6 सेकंड आप सुन रहे हैं हेल्थ एंड फिटनेस, आपके साथ है समरीन और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष झा और विषय है हमारा कि गर्मियों में दिल का ख्याल कैसे रखें। तो डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आइए जानते हैं और बातचीत करते हैं उनसे कि उनकी क्या समस्या है। हेलो।
5: हेलो
0: जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं और अपनी परेशानी बताइए।
5: सत्यम कुमार बात कर रहा हूँ, ग्राम व पोस्ट परसंदी कैसरगंज बहराइच से।
0: बहराइच से बात कर रहे हैं आप, अपने सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से।
5: मैम पहले तो डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार, और सवाल मेरा यह है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमसे दूर ही रहे गर्मी के महीने में, खासकर हृदय रोग हमसे दूर ही रहे एकदम।
1: नमस्कार जी, आप गर्मी में हृदय रोग आपसे दूर रहे तो इसके लिए बचाव के लिए सबसे ये है कि आप अत्यधिक गर्मी वाले समय में बाहर ना निकले, पहला चीज। दूसरा, जब ठंडा मौसम रहता है मॉर्निंग के आवर में और लेट जो शाम के बीच में, उसमें काफ़ी एक्सरसाइज

0: करें। तीसरा, खान पान में काफ़ी ध्यान दें, अधिक तेल वाला और मसाला युक्त जो भोजन है वो कम लीजिए और डिहाइड्रेशन से बचे रहिए। हमेशा पानी लेते रहिए हर कुछ कुछ अंतराल पर ताकि शरीर में पानी की मात्रा कम ना हो पाए।
1: जी डॉक्टर साहब, एक और कमर्शियल ब्रेक लेंगे हम और उसके बाद बातचीत होगी हमारी।
2: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में पीसीओडी और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
3: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, पीसीओडी या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
1: जी तो हमारे साथ भी इस वक्त बहुत ही अनुभवी डॉक्टर मौजूद हैं। अगर आप इस गर्मी के मौसम में हार्ट को लेकर चिंतित हैं, परेशान हैं या किसी तरह की समस्या से आप जूझ रहे हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, इसके अलावा मेल कर सकते हैं। नंबर्स मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, 0522-223-8845, 2982-377। इसके अलावा आप हमें fmakashwadilakhnow@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, डॉक्टर साहब उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो, आपको हमारी आवाज़ सुनाई पड़ रही है? शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब हम पानी की बात करते हैं, अभी हमने जिक्र किया, तो एक सामान्य व्यक्ति को और एक हार्ट पेशेंट को पानी कितना पीना चाहिए?
0: देखिए, हार्ट पेशेंट में दो तरह का है। एक सामान्य व्यक्तियों को नॉर्मली 4 से 5 लीटर पानी लेना चाहिए। दूसरा, हार्ट के पेशेंट। हार्ट के पेशेंट दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जिनके हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम होती है, वैसे मरीजों को बहुत ज्यादा पानी नहीं लेना चाहिए।
1: अच्छा।
0: उन्हें गर्मियों के मौसम में 2 ढाई लीटर के आसपास पानी लेना चाहिए। लेकिन जिनकी पंपिंग कैपेसिटी, हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी अच्छी है, वो नॉर्मल सामान्य मनुष्य के जैसे ही 4 से 5 लीटर पानी ले।
1: डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो
4: हेलो,
1: हाँ जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से बोल रही हैं आप?
4: जी, मैं सुरभि सिंह बोल रही हूँ।
1: क्या नाम बताया आपने?
4: सुरभि सिंह।
1: सुरभि जी, सवाल पूछिए सुरभि।
4: मेरा सवाल ये है
1: जी
4: कि हार्ट के मरीजों को मतलब किस तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए?
1: डॉक्टर साहब, हार्ट के मरीज अगर आप हैं तो किस तरह से आप अपना ख्याल रखें, ये सवाल हमसे सुरभि पूछ रही हैं।
0: सुरभि जी, सुरभि जी, हार्ट का ख्याल रखने के लिए सबसे पहले आपको अपने खान पान में नियंत्रण रखना चाहिए। अधिक तेल चर्बी युक्त खाना मत खाइए। दूसरा, नियमित व्यायाम करते रहिए। हाँ। रेगुलर 30 मिनट प्रतिदिन एक्सरसाइज की सलाह दी जाती है, मिनिमम वो करें या फिर ब्रिस्क वॉक करें, तेजी से चलना है। तीसरा, अगर कोई स्मोकिंग और अल्कोहल इस तरह की चीज़ें अगर है तो उससे बचे रहें बस।
1: जी डॉक्टर साहब, एक मेल हमारे पास आया है, लिखती हैं डॉक्टर सर को। मेरा नमस्कार सर, मेरा सवाल है, जब भी मैं जीने की सीढ़ियां चढ़ती हूं तो मेरे सीने में दर्द होने लगता है। मैं हमेशा गर्म पानी से नहाती हूं, गर्मियों में मुझे गर्मी बहुत अधिक लगती है लेकिन ठंडे पानी से नहाने से ठंड लगने लगती है। इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? और मैं पानी का सेवन अधिक से अधिक करती हूँ, दिन भर में 6 से 7 लीटर पानी पी लेती हैं ये। क्या सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको लग रही है, समस्या क्या है डॉक्टर साहब?
0: देखिए, जीने चढ़ने में अगर सांस फूलती है तो ये हार्ट की एक बीमारी के एक लक्षण हो सकते हैं। तो आप कृपया किसी डॉक्टर के पास चले जाएं, अपनी ECG, ECO और एक ट्रेडमिल टेस्ट होता है, ये 3 चीज़ें टेस्ट करा लें। साथ में कुछ ब्लड टेस्ट अपना करा लीजिए, जैसे कोलेस्ट्रॉल और शुगर, ये जाँचें करा लीजिए।
1: डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं, आइए उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? हेलो
5: हेलो,
1: नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं और अपना सवाल डॉक्टर साहब से पूछे।
5: मेरा नाम असमत है, मैं लखीमपुर खीरी से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरे जो हाथ पैर है ना, उनसे पसीना आने लगता है और अजीब लगने लगता है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, इनके चलने फिरने से शायद हाथों में पसीना आता है और इनको थोड़ी सी घबराहट होती है, यही कहना चाह रहे हैं आप?
5: मैम
1: जी,
5: मेरी उम्र 16 साल है और मैम मेरा एक और सवाल है,
1: ये विषय नहीं है हमारा डॉक्टर साहब। इनको जो है समस्या हो रही है, हाथ में पसीना आ रहा है, क्या ये सिम्टम्स हो सकते हैं कि दिल में कुछ

0: नाभि होना शुरू हो गई है मात्र 16 साल की उम्र में।
1: नहीं, क्या नाम आपने बताया?
0: हेलो, नाम क्या बताया आपने?
2: अल्तमश।
1: अल्तमस, देखिए ये हार्ट की बीमारी से कोई ये नहीं है, आप घबराएं नहीं, ये आपके घबराहट की वजह से होता है। आप बिल्कुल रिलैक्स, निश्चिंत रहिए, आपको अभी संभावना कम है हार्ट की बीमारी होने का, ठीक है। खूब पानी पीजिए और खूब एक्सरसाइज करिए।
0: 6 से 7 लीटर पानी पीना सही है?
1: 5 लीटर तक।
0: डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। आपसे जाना चाहेंगे कि ये तो हमने जाना कि क्या नहीं खाना चाहिए, क्या हमारे हार्ट को नुकसान करता है। आप डॉक्टर साहब ये बताइए कि किस तरह का खाना खाना चाहिए जो हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है।
1: हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फाइबरस, जिस खाने में फाइबर की प्रचुरता रहे, वैसे खाना लीजिए। आपके जो खाने का जो प्लेट होता है उसका 1/3 पोर्शन फल और हरी सब्जियां होनी चाहिए।
0: अच्छा,
1: और कहा जाता है कि आप अपने प्लेट्स को रंग बिरंगा कर दें। डिफरेंट कलर्स के फ्रूट्स रहेंगे तो उसमें काफी एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेविनॉइड्स, वो सारी चीजें रहती है, वो आपके हार्ट को बढ़िया रखेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल नियंत्रण में रखेगा।
0: जी, तो इस गंभीर विषय से चलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल सफर पर और सुनाते हैं आपको एक बेहतरीन सा गीत। लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया कि इस तरह का खाना खाने से हमारी दिल की सेहत जो है वो अच्छी रहती है, तला भुना आप अवॉइड करें तो किस लेवल तक अवॉइड करें? क्योंकि हमारे तो खान पान का हिस्सा है, बीइंग भारतीय इंडियन होने के नाते हम खाने में हमारे होता ही है, समोसे हमारे फेवरेट होते हैं, हर शाम हम चाय ज़रूर, चाय और समोसा साथ लेते हैं, तो कैसा, इसको आप कैसे देखते हैं? इसकी मात्रा एकदम खत्म कर देनी चाहिए, कम मात्रा में ले तो चलेगा?
1: नहीं, धीरे धीरे इसको हमें कम करना। बेसिकली हम इंडियंस की डाइट में कार्बोहाइड्रेट और की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहता है, जेनेटिकली भी हम लोगों का ट्राइग्लिसराइड लेवल काफ़ी बढ़ा रहता है, इसलिए हम लोगों को इसका मात्रा नियंत्रण में रखना है।
0: जी डॉक्टर साहब, और जैसे कि मैंने कहा था कि इस सवाल के बाद हम आपको ले चलेंगे म्यूजिकल सफर पर।

0: जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
2: 12:25 और 46 सेकंड आप सुन रहे हैं हेल्थ एंड फिटनेस, जिसमें हमारा आज का विषय है कि गर्मियों में दिल का ख्याल कैसे रखा जाए। वैसे तो डॉक्टर साहब, हमारी लाइफस्टाइल ने बहुत सारी डिजीज़ इजाद कर दी हैं जो पहले हमारे बुजुर्ग नहीं जानते थे। आपसे जानना चाहेंगे कि अब इसको हम बेहतर भी करने की कोशिश कर रहे हैं। आफ्टर कोविड बहुत सारी तब्दीलियाँ हमने अपनी ज़िंदगी में की हैं, जिसमें एक्सरसाइज, वॉक और योग जो है वो अब लोग ज़िंदगी में शामिल करने लगे हैं। क्या गर्मियों में हमें इनके वक्त में बदलाव कर देना चाहिए या बॉडी को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए, क्या लगता है आपको?
3: नहीं, गर्मियों में भी एक्सरसाइज करिए, पर जो अत्यधिक गर्मी वो आप थोड़ा अर्ली मॉर्निंग कर ले, ज़्यादा जब तक धूप ना निकले उसके पहले ही एक्सरसाइज, जब तक मौसम ठंडा रहता है उसमें एक्सरसाइज कर ले, और शाम में भी धूप जाने के बाद अगर शाम में अगर करते हैं तो लेट में थोड़ा देर करके एक्सरसाइज करें, ताकि
2: मतलब ज़्यादा पेन ना लें गर्मियों में। लेकिन आप पेन लीजिए अगर आपको अपनी समस्या का हल जानना है। 0522-223-8845-2982377 ये वो मैजिकल नंबर हैं जिन पर आपको आपकी समस्या का समाधान मिल सकता है। डॉक्टर मनीष झा, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक कॉलर। आइए जानते हैं कि उनकी क्या समस्या है। नाम बताइए, जगह का नाम बताइए और डॉक्टर साहब अपना सवाल रखिए।
4: हेलो
2: जी, क्या नाम है आपका?
4: नमस्ते मैम।
2: नमस्ते
4: मैम, मैं मधु अंधेलिया पोस्ट फतेहपुर जिला उन्नाव से बोल रही हूँ।
2: जी
4: मैम, कभी कभी मेरे सीने में दर्द सा होता है अचानक।
2: जी तो डॉक्टर साहब, ये उन्नाव से बात कर रही हैं मधु, इनके सीने में कभी कभी इनको दर्द महसूस होता है, किस तरह का इन्हें जांच करने की जरूरत है या फिर गैस की नॉर्मल प्रॉब्लम भी हो सकती है?
3: मधु जी, क्या बताएंगे आपकी उम्र कितनी हो रही?
2: मधु अपनी उम्र बताइए आप।
4: मेरी सर 21 साल उम्र है।
3: और इसके
4: दर्द भी होता है।
3: एक मधु जी, आप एक अपना ECG करा लीजिए, और चलने वलने पे तो आपको सीने में कोई दर्द नहीं होता है?
4: नहीं, चलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे ऐसे बात करते हैं ना, कभी कभी अगर कोई तेज बोल देता है तो घबराहट सी होती है, बस अचानक से सीने में दर्द
3: होता है। ये जो लक्षण हो रहे हैं, ये हार्ट की तरफ संभावना काफी कम है, पर उसके बावजूद भी आप एक ECG करवा लीजिए। धन्यवाद।
2: रुक साहब, अगर सीने में दर्द जैसे उन्होंने बताया और एज आपकी 40+ है, आपको सीने में दर्द है, घबराहट है, तुरंत अगर आपके सामने या फिर किसी को आपको लग रहा है कि ये जो सिम्टम्स हैं ये हार्ट अटैक के हैं, तो आपको क्या करना चाहिए जिससे रिलीफ मिल जाए वक्ती तौर पे?
3: देखिए, अगर सीने में दर्द हो रहा है, अगर किसी को आपको या किसी आपके जो मित्र हैं या किसी घर के संबंधी को, सबसे पहले एक डिस्प्रीन की टैबलेट और एक सॉर्बिट्रेट की टैबलेट इमीडिएट ले लें।
2: अच्छा।
3: और वो काफ़ी हार्ट की जान बचाएगा। और दूसरा, किसी नज़दीक के किसी अस्पताल में चले जाएं, अपनी ECG करा लें, किसी चिकित्सक से तुरंत सलाह लें, इसे इग्नोर ना करें, गैस समझकर इग्नोर ना करें।
2: जी डॉक्टर साहब, एक मेल हमारे पास आया है, उसे भी शामिल कर लेते हैं। महेंद्र दीपान लिखते हैं, डॉक्टर साहब मेरा सवाल यह है कि गर्मियों में शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए हमारा दिल बहुत तेज़ी से खून को त्वचा की तरफ पंप करता है, जिससे दिल पर काम का बोझ जो है वो बढ़ जाता है। ऐसे में यदि किसी मरीज का दिल पहले से ही कमज़ोर हो तो उनका इस दिल में एक्स्ट्रा लोड बढ़ जाता है, कैसे संभालें इसको? और इस स्थिति में साइलेंट हार्ट अटैक या हीट स्ट्रोक के अंतर को एक आम इंसान कैसे पहचाने?
3: देखिए, गर्मियों में आपने बिल्कुल सही कहा, जो नॉर्मल शरीर के रिएक्शंस होते हैं, त्वचा की नलिकाएं खुल जाती है ताकि उसमें ब्लड फ्लो ज़्यादा जाए, उसकी वजह से जो बॉडी जो है हीट रिलीज करने की कोशिश करता है। उस प्रक्रिया के दौरान हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो बेस्ट ये है कि आप उस परिस्थिति से बाहर निकले। क्यों आप बाहर जाएंगे? अगर आपको लगता है कि हार्ट के मरीज हैं और दिक्कत ज़्यादा हो रही है, तो आप यूजुअली अवॉइड करिए, बेस्ट ट्रीटमेंट है। और दूसरा, आपकी जो दवाएं चल रही हैं उसको नियमित रूप से लेते रहें, वो आपका काफ़ी हद तक केयर रखेगा।

0: जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
1: से बात कर रहे हैं, उन्होंने आपके कॉल को
0: शायद वो उनका कोई और कॉल आ गया है। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से हम गर्मियों में अक्सर ये करते हैं कि एसी से फौरन हम गर्मी में चले गए, या चलचलाती धूप से आए और फौरन एसी ऑन करके बिल्कुल सामने बैठ गए, ये किस तरह से नुकसानदेह हो सकता है हमारे लिए?
2: देखिए, अगर एसी वाले कमरे में काफी चिल्ड हैं और अचानक हम बाहर निकलते हैं तो बॉडी को एक हीट शॉक होता है। अच्छा। लगता है तो उसकी वजह से काफी प्रोफ्यूजली, मतलब काफी ज्यादा पसीना आएगा और शरीर जो तापमान का जो अंतर है तुरंत ही 15-20 डिग्री का, वो जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाता, तो इसकी वजह से काफी हीट स्ट्रोक और हार्ट फेलियर सबके जो इंसिडेंस बढ़ते हैं। तो बेटर है कि तापमान कमरे का बहुत कम मत करें, जो लोग बहुत लोग 18-20 कर लेते वो मत करिए, 25-26 के आसपास में जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसके आसपास रहिए और धीरे धीरे कमरे से तुरंत ही बाहर ना जाए, एक नॉर्मल वाला एसी से बाहर निकले, नॉर्मल कमरे में आए और शरीर को थोड़ा एडजस्ट होने का टाइम दे, 1-2 मिनट, और उसके बाद बाहर निकले।
0: जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर। हेलो हेलो
3: हेलो,
0: नाम बताइए अपना और सवाल पूछिए।
3: मेरा नाम शीलू तिवारी है।
0: कहाँ से हैं आप शीलू?
3: मैं लखीमपुर खीरी से बोल रही हूँ।
0: शीलू, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से।
3: मेरा सवाल है कि मुझे जब ज्यादा भीड़ में जाती हूँ तो घबराहट होने लगती है।
0: अच्छा, ज्यादा भीड़ में जाती हैं तो घबराहट होती है।
2: सिलू जी, ये थोड़ा एंजाइटी का लक्षण है, आप जो है सो थोड़ा रिलैक्स रहें, मेडिटेशन करिए, उससे ये ठीक हो जाएगा।
0: जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर को हम शामिल करते हैं इस कार्यक्रम में। हेलो, आहो लगता है कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। डॉक्टर साहब, अगर हम ये बात करें कि गर्मी जिस हिसाब से बढ़ रही है तो इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है ये दौर, जो हम लगातार नौतपा भी शुरू हो रहा है, किस तरह से हम बाहर निकलने से पहले अपने लिए क्या ऐसे पेय पदार्थ कुछ हैं जो पुराने तरीके में, जैसे आम पन्ना का जिक्र होता था, गन्ने के जूस का जिक्र होता था और सत्तू पिया जाता था कि गर्मी का प्रभाव हमारे ऊपर उतना ना पड़े, क्या ऐसी तैयारी करके निकले हम बाहर?
2: गर्मियों में जब भी आप बाहर निकलें, अब शरीर में पानी की मात्रा मेंटेन रखना, डिहाइड्रेशन से बचना है तो पानी मेंटेन रखना। दूसरा, जब बाहर में पसीना काफ़ी आता है तो उसके साथ में शरीर सॉल्ट भी लूज करता है, तो हमें सॉल्ट को भी शरीर में बचा कर रखना। इसके लिए आप जो है कुछ कुछ अंतराल पे पानी लेते रहें, हर 15-20 मिनट पे 100-150 ml पानी लेते रहें। दूसरा, साथ में कुछ जो इस तरह के जो पुराने अपने देसी जो है आम पन्ना या इस तरह से, उसमें कुछ सॉल्ट रहते हैं, पोटेशियम सोडियम ये सब रहते हैं, तो वो सब आप लेते रहें ताकि शरीर में जो सॉल्ट की कमी होती है वो ना रहे।
0: जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ हैं इस प्रोग्राम में, उनसे जानते हैं क्या सवाल है।
4: मेरा नाम श्रीम त्रिपाठी है। मेरा सवाल ये है कि जैसे लो बीपी में भी मतलब चक्कर आते हैं और हाई बीपी में भी मतलब इंसान को चक्कर आ जाते हैं, तो दोनों के सिम्टम्स में क्या अंतर है?
2: नहीं देखिए, दोनों के सिम्टम्स में कोई अंतर नहीं, चक्कर आएगा। अगर बीपी काफी कम हो जाएगा तो ब्रेन को जो है सो ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है, तो उसकी वजह से चक्कर आने लगते हैं।
0: जी।
2: तो इसलिए अगर चक्कर आता है तो आप अपना जिस वजह से चक्कर आ रहा है तो आपको उसको क्योर करना होगा। अगर ब्लड प्रेशर लो रहता है तो आप अपने शरीर में लिक्विड की मात्रा बढ़ाएं, थोड़ा नमक और लिक्विड ज्यादा लें, और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल करें, उसको 120-130 के आसपास, जितना क्लोज 120-80 के आसपास रखेंगे तो चक्कर आने की संभावना कम हो जाएगी।
0: डॉक्टर साहब, एक सावित्री देवी हैं, उन्होंने हमें मेल किया है कि गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं भरतपुर बरगदी पोस्ट अर्जुनपुर डिस्ट्रिक्ट लखनऊ से आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ। सवाल ये है कि एक नॉर्मल इंसान कैसे जाने कि उसे हार्ट की बीमारी है, हार्ट प्रॉब्लम के क्या लक्षण होते हैं?
2: सावित्री जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। एक नॉर्मल आदमी को यह जानना सबसे जरूरी है कि कब उसे हार्ट की दिक्कत हो रही है और कब कोई नॉर्मल से दूसरी बीमारी। जब भी आपको सावित्री जी, अगर सीने में दर्द हो, तेज दर्द हो रहा है, आधे घंटे से ज्यादा दर्द हो रहा है, तो ये समझिए हार्ट की बीमारी हो सकती है। दूसरा, अगर दर्द नहीं होता है तो अगर आप चलते हैं, कुछ दूरी चलते हैं तो सीने में दर्द होता है या कसावट महसूस होता है या आपके जबड़े में दर्द होता है, बाएं हाथ के तरफ दर्द जाता है, तो ये भी हार्ट के लक्षण हो सकते। तीसरा, अगर आप जीने चढ़ते हैं, सीढ़ियों चढ़ते हैं तो उसमें सांस फूलने लगती है अचानक, तो ये हार्ट के लक्षण हो सकते, तो उस समय आप अपना जांच

0: करा ले।
1: डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल जो मेरे जहन में ये आ रहा है कि डायबिटीज़ और हाई बीपी के मरीजों में गर्मियों में क्या दिल से जुड़ी समस्याएं जो हैं वो बढ़ने के चांसेस रहते हैं, एक हेल्दी क्या एक नॉर्मल इंसान के कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो?
0: देखिए, डायबिटीज़ और जो नॉर्मल सभी मरीज़ों में हार्ट की बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर वाले मरीजों में जो स्ट्रोक के चांसेस गर्मियों में बढ़ जाते हैं, और डायबिटीज़ सब में कभी कभी डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाने की वजह से एक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बीमारी कही जाती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है।
1: जी जी, तो सब एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो
2: जी, मैम सुरेन मदेसिया बोल रहा हूँ
1: जी,
2: लखनऊ से।
1: हाँ जी, सवाल पूछिए।
2: मैंने दिखाया था मैम, जब से मैं मतलब हार्ट बीट तो सही है, जो हार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है वो भी हुआ है, और मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है 220 210 260 आपकी 260 हो गया, और मैं चला गुंजा भी नहीं खा रहा हूँ। मैं क्या करूँ कि मेरा कम रहे?
0: सुधीर जी, देखिए, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल सचमुच में बढ़ा हुआ है, तो आप जो है सो तला भुना नहीं खा रहे, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। साथ में कुछ खाने में फल काफ़ी बढ़ाइए। दूसरा, आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए, 30 से 40 मिनट रोज चलिए, और अगर इसके बावजूद भी नहीं कंट्रोल होता है तो एक जो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा ले लें।
1: जी डॉक्टर साहब, अभी इसके बाद हम लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल और म्यूजिकल ब्रेक एक साथ, और उसके बाद हमारा जो विषय है गर्मियों में दिल का ख्याल कैसे रखें, इस पर हम चर्चा करेंगे, और आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में 0522-223-8845 और 2982377 नंबर्स के माध्यम से इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा आप fmakashwadi@gmail.com पर हमें मेल कर सकते हैं।
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है, और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
4: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
3: चरक हॉस्पिटल @ हरदोई रोड, दुबग्गा।

0: इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
2: और देखते ही देखते हमारा प्रोग्राम अब इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन कॉलर्स का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। अगर आप भी हमसे कुछ इस प्रोग्राम से विषय से संबंधित सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर 0522-223-8845-298-2377, FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर मेल के जरिए भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। जो सवाल अभी हमारे पास मेल पर आया है, उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल जी लिखते हैं कि क्या हृदय रोग वाले सलाद में टमाटर खा सकते हैं?
3: उत्तम जी, हाँ, आप सलाद में टमाटर खा सकते हैं और सलाद में जो भी आपको सब्जियां लेते हैं आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, अनटिल अनलेस कुछ बीमारियां होती है जिसमें, जैसे जिसकी वाल बदली की जाती है, धड़कन अनियमित रहती है, उन्हें ब्लड थीनर चलता है, खून पतला करने की दवा चलती है, वारफेरिन और एसीट्रॉम चलते हैं, उन केसेस में हमें हरी पत्तेदार सब्जियां अवॉइड करनी होती है, थोड़े से टमाटर और ये चीज़ें थोड़ी अवॉइड करनी पड़ती है। अगर
2: लगातार हमारे पास मेल्स की संख्या बढ़ती जा रही है, जल्दी से मेल्स भी ले लेते हैं और उसके बाद कॉलर भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। आनंद तिवारी लिखते हैं कि इनकी नाक पर ज्यादा सूजन आ जाती है गर्मियों में और इरिटेशन और खुजली भी होती है और अपने आप ये दाने जो है वो ठीक भी हो जाते हैं, तो ये गर्मी की वजह से होता है या क्या रीजन है?
3: हाँ, ये लोकल स्किन रिएक्शन है या सनबर्न की वजह से होता है, ये गर्मी की वजह से हो रहा है आपका
2: जी। एक और सवाल डॉक्टर साहब, राज जी लिखते हैं कि मेरी बड़ी बेटी जिसकी उम्र 14 साल है, उसे काफ़ी दिनों से सरदर्द की शिकायत है, बहुत दवा कराने के बाद भी उसका सरदर्द ठीक नहीं हो रहा है, कृपया बताइए कि इसके क्या कारण हो सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए?
3: सिरदर्द, देखिए आप पहले तो वो देख लीजिए कि कोई बच्ची स्ट्रेस तो नहीं ले रही है किसी तरह से, पहला सबसे पहला वो देखिए, और दूसरा उसको कुछ हेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करिए, तीसरा अगर इन सब के वजहों से आराम नहीं होता है, काफ़ी सरदर्द होता है, तो किसी एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिल लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त रहेंगे।
2: एक सवाल सावित्री जी का फिर से आया है, वो लिखती हैं कि डॉक्टर जी ये बता दीजिए कि हार्ट अटैक की समस्या किस उम्र में ज्यादा होने की संभावना होती है?
3: देखिए, हार्ट अटैक की समस्या यूजुअली 50 साल के अब अधिक में ज्यादा होती है, पर आजकल जो है सो आजकल हम युवाओं में भी हार्ट अटैक ज्यादा देख रहे हैं, कम उम्र में भी हार्ट अटैक ज्यादा देख रहे हैं, तो बेस्ट है कि पहले से ही प्रिवेंशन में रहिए, उसका बचाव करते रहिए
2: जी। डॉक्टर साहब एक कॉलर हमारे साथ है, आइए जानते हैं कि उनका क्या सवाल है, आप हमें सुन पा रहे हैं?
4: हेलो,
2: हाँ जी, नाम बता दीजिए। और
4: आर्यन तिवारी बोल रहा हूँ लखनऊ से।
2: जी जी
4: साहब, डॉक्टर साहब को नमस्कार। और ये पूछना है, आवाज आ रही है?
2: जी, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है।
4: जी जी, तो ये हमें पूछना है कि जो बड़े लोग, उम्र के लोग हैं, सीनियर सिटीजन ग्रुप में
2: जी,
4: और वो पेशेंट नहीं है हार्ट के
2: जी,
4: लेकिन उनको खाने पीने में और गर्मियों से तो बचना ही है, लू से बचना ही जो आप बता रहे हैं, तो उसमें ये मसालेदार खाना है और उसमें जैसे प्याज है, अदरक है, लहसुन है, इनको कम कर देना होगा ना?
3: हाँ, नमस्कार तिवारी जी।
4: हाँ,
3: सीनियर सिटीजन्स को आप लोगों को, हाँ, गर्मी से बचना आपने बिल्कुल सही कहा, उसके साथ में अत्यधिक तेल मसाले वाले खाने से अवॉइड करिए, क्योंकि वो शरीर में पचने में समय लगता है, और जो उसको जितना अवॉइड करेंगे बेटर रहेगा, और फ्रूट्स, फल, हरी सब्जियाँ काफ़ी लीजिए।
2: डॉक्टर साहब एक कॉलर हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने कहा कि वो ऑन एयर आके सवाल नहीं पूछना चाहते, लेकिन उनका सवाल ये था कि वो जब भी पानी पीते हैं उनको एंजाइटी होती है या घबराहट होती है तो वो और ज़्यादा बढ़ जाती है।

0: तो इसका क्या रीजन हो सकता है? ये एंजाइटी है या हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है कि पानी पीने के बाद घबराहट बढ़ रही है?
1: नहीं, ये हार्ट से ये लक्षण नहीं लग रहे, ये एंजाइटी से लक्षण है। आप पानी धीरे धीरे लें और रिलैक्स रहें।
0: और अक्सर एक कॉलर हमारे साथ और हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, आपसे डॉक्टर साहब एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि आजकल हमारा लाइफस्टाइल बदलने से खान पान में भी बहुत बदलाव आया है। हम क्विक फूड की तरफ जा चुके हैं, फास्ट फूड प्रेफर करते हैं, और ऐसे में जो सुबह का सबसे इम्पॉर्टेंट खान मील है हमारा ब्रेकफास्ट, उसको भी रिप्लेस कर दिया है सैंडविचेस ने, बिस्किट्स ने, चाय पी ली आपने सुबह, जबकि पहले हम लोग के वक्त में आप प्रॉपर या तो सब्जी रोटी खा रहे होते थे या दलिया खा रहे होते थे। तो इसका कितना नुकसान हमें झेलना पड़ सकता है?
1: देखिए, हम लोग जो सैंडविचेस और क्विक फूड्स ले रहे हैं, यूजुअली इसमें या तो फैट की मात्रा ज़्यादा होती है नॉर्मल लेने से,
0: जी जी
1: या फिर इसमें फास्ट फूड्स में सॉल्ट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा। तीसरा, जो सैंडविचेज और ये है, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा और विथ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है जब भी हम लेते हैं इसमें शरीर में अचानक शुगर स्पाइक बढ़ा देता है, लेने के साथ तुरंत ही शुगर का लेवल ज़्यादा बढ़, शुगर का लेवल एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा अगर बढ़ता है तो सारे अंगों को वो नुकसान पहुंचाता है। पर अगर इसको हम लोग रिप्लेस कर दें फल से, उतने ही मीठे अगर फल और वो रहे तो उनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी लो होते हैं, जैसे तरबूज है या सेब है तो उनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी लो होता है, तो वो उतना ही शुगर काफी धीरे धीरे रिलीज करता है।
0: नाश्ते में आप फ्रूट्स खाएं?
1: हाँ, नाश्ते में बेसिकली फ्रूट्स और फ्रूट्स लें।
0: लेकिन ऐसा कहा जाता है, पुराने लोग कहते थे कि नहीं, खाली पेट मत खाओ फ्रूट्स, ऐसा
1: नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फ्रूट्स लीजिए, आप मिल्क लीजिए, अच्छे से प्रोटीन अपना बढ़ाइए।
0: डॉक्टर साहब एक और सवाल कि जो हमारा पोल्यूशन है वो भी बेहद बढ़ता जा रहा है, ये किस तरह से हमारे हार्ट को इम्पैक्ट करता है? जब हम बाहर निकलें तो क्या मास्क पहन के जाएं? और एक कॉलर भी और जुड़ चुके हैं, दोनों सवालों के जवाब मैं आपसे एक साथ जानना चाहूंगी क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी हो चुकी है। हेलो
2: हेलो,
0: जल्दी से अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए।
2: विनीत कुमार सीतापुर से बोल रहे हैं।
0: सवाल पूछिए।
2: सवाल ये है कि जैसे काम ज्यादा देर करते रहो तो दिल बैठने लगता है और पेट में जैसे आगपना और खौलन हो जाती है, मान लेने लगती है।
0: काम क्या करते हैं आप विनीत जी?
2: काम तो हम ये खेती और बाड़ी करते हैं।
0: मजदूरी का आपका काम है, ठीक है। सवाल आपने सुन लिया, डॉक्टर साहब क्या जवाब है इसका?
1: दिलीप जी, काम ज़्यादा करते हैं तो अगर जो दिक्कत आपको महसूस हो रही तो ये हार्ट से हो सकता है आपका, तो एक बार आप अपना हार्ट का जांच करा लीजिए। दूसरा, पेट में जो दिक्कतें हो रही है वो लग रहा है कि वो एसिडिटी सब की वजह से है, तो आप उसके लिए एसिडिटी की दवाइयाँ ले लीजिए, और पर हार्ट की ज़रूर जाँच करा लीजिए किसी भी आसपास के जो भी चिकित्सक आपके उपलब्ध हों।
0: एक कॉलर और है, आप अपना सवाल पूछिए।
3: मैम नमस्ते, मैं इंदिरा नगर से बोल रहा था, इंदिरा लखनऊ से, संजय।
0: जी संजय।
3: मैम मुझे ये जानना था, थोड़ा सा मेरी क्वेरी है कि मेरे पिताजी और मेरी माताजी दोनों की मृत्यु जो है हार्ट अटैक से हुई है लास्ट 10 इयर्स में, और कभी कभी जैसे बहुत घबराहट होती है तो जैसे लगता है दिल बैठा जा रहा है मेरे को, तो ऐसा मेरे को लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी कभी हार्ट की दिक्कत हो जाए।
0: जी जी,
3: है ना, या हार्ट की दिक्कत है तो नहीं, लेकिन हालांकि मैंने चेक कराए हैं सारी चीजें,
0: जी जी,
3: तो ऐसा कुछ निकला नहीं, लेकिन क्या भविष्य के लिए क्या ऐसा कुछ संभावना है या हो सकती है कि कोई हमें भी इसकी दिक्कत हो जाए?
0: जी, आपको सवाल का जवाब देंगे डॉक्टर साहब।
1: संजय जी, आपकी जैसे फैमिली हिस्ट्री है कि आपके जो पिताजी को भी हार्ट की बीमारी रही है, माताजी को की भी जो है अनफॉर्चुनेटली हार्ट की बीमारी से मृत्यु हुई है, तो एक संभावना आपके भी है, तो आप अपना जैसे कहा कि हम रेगुलर चेक कराते हैं, उसी तरह आप अपना रेगुलर चेक कराते रहिए, आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करते रहिए, दूसरा आप अपनी ECG TMT बीच में करा लीजिए, और तीसरा हेल्दी डाइट अपना जो है सो संतुलित रखिए, हेल्दी डाइट लीजिए और रेगुलर एक्सरसाइज और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन रखिए कि बढ़िया जो संतुलित जीवन रहे, व्यायाम करिए, बस बचने का यही रास्ता है।
0: जी डॉक्टर साहब, मैंने जाते जाते एक सवाल और आपसे लेंगे, उसके बाद कमर्शियल ब्रेक लेंगे कि बाहर का जो पोल्यूशन है वो किस तरह से हमारे हार्ट को इम्पैक्ट करता है।
1: बाहर का पॉल्यूशन जो है सो हमारे हार्ट को असर करता है, पॉल्यूशन की वजह से हार्ट अटैक के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं जैसे, अच्छा, तो इसलिए पॉल्यूशन से अवॉइड करना है।
0: कैसे? मास्क लगा के जाएं?
1: जहाँ लगता है कि काफी धूल धुआं है वैसे जगहों पे आप मास्क लगा के जाएं।
0: जी, तो समय एक छोटे से कमर्शियल

0: ब्रेक और उसके बाद गर्मियों में कैसे रखें दिल का हाल विषय पर चर्चा जारी रहेगी।
1: जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।

0: सी जांच कराई थी, TIS 11,800 है और मुझे 6 महीने की प्रेगनेंसी भी है। सर इसी की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा कि मुझे गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है।
1: ये प्रेगनेंसी में जो प्रेगनेंसी में हो सकता है कि आपको जो चलने पे सांस की जो दिक्कतें होती है, पर अगर ये अत्यधिक हो जाए, डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़े, तो फिर एक इको टेस्ट जरूर करवा लीजिए। पर रेगुलर एक्सरसाइज और वॉक करते रहिए और अपना हीमोग्लोबिन को कंट्रोल रखिए।
0: जी, तो लगातार चेक बनाए रखिए टेस्ट के जरिए, हर 6 महीने पर आप टेस्ट कराते रहें।
1: हाँ, बीच बीच में
0: रूटीन। ओके, एक कॉलर हमारे साथ है, क्या नाम है आपका?
2: हेलो,
0: नाम बताइए अपना, कहाँ से बात कर रहे हैं और आपका सवाल क्या है?
2: मेरा नाम प्रकाश गुप्ता है, ये लखनऊ से बात कर रहे हैं।
0: लखनऊ से बात कर रहे हैं?
2: हाँ, लखनऊ से बात।
0: सवाल क्या है आपका?
2: जी, हमें ये ठंड में बहुत ही दिक्कत हो जाती है, सांस फूलती है, हम आयरन की गोली डेली खा रहे हैं 2-3 साल से,
0: जी जी
2: रहता है और उसके बाद फिर दिक्कत हो जाती है, ठंड में ज्यादा होती है।
1: प्रकाश जी देखिए, ये दो बीमारियां हो सकती है, या तो आपको कुछ फेफड़े की भी बीमारी हो या हार्ट की भी है, तो आप अपना एक रेगुलर चेकअप करा लीजिए, कुछ एक्सरे करा लीजिए, PFT पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ये दो जांचें करा लीजिए। ये फेफड़े की अगर कोई बीमारी होगी तो उसके लिए टेस्ट हो जाएगा, बेसिक टेस्ट है, और दूसरा कुछ हार्ट की जाँचें ECG और एक ईको करा लीजिए किसी भी आसपास में जो भी आपके विशेषज्ञ हैं उपलब्ध हों उनसे।
0: तो जी डॉक्टर साहब, अब एक छोटा सा हम कमर्शियल ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर से सवालों को शामिल करेंगे।
3: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
4: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
3: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444।
0: तो देखते ही देखते दोस्तों, सिर्फ बमुश्किल हमारे पास 6 मिनट और बचे हैं, जिसमें आप मेल कर सकते हैं हमें और कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमारे युवा भी उससे ग्रसित हैं, हमारे एल्डर्स भी उसमें शामिल हैं, धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग किस तरह से हमारे हार्ट को नुकसान देती है, और ये भी बताएगा कि बहुत सारे लोगों से अगर इसके लिए मना करिए कि ये हार्ट को नुकसान करती है, तो वो ये कहते हैं कि नहीं, मैं तो दिन भर में बस 1-2 लेता हूँ। कुछ चेन स्मोकर्स को कैसे नुकसान करती है और जो कम लेते हैं उनको कैसे नुकसान करती है, और साथ ही साथ एक ये भी लॉजिक दिया जाता है कि बाहर इतना धुआं है, इतना पोल्यूशन है कि अगर आप सिगरेट नहीं भी पी पा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए जाते हैं, इस बारे में आप थोड़ी सी रोशनी डालिए।
1: स्मोकिंग आपके हार्ट का सबसे बड़ा दुश्मन है। इवन हम लोगों ने देखा है कि अगर मॉर्निंग का एक सिंगल सिगरेट लिया है, उसके बाद काफ़ी मरीज हार्ट अटैक लेके आते हैं। बेसिकली अच्छा। होता क्या है कि स्मोकिंग करने में उसमें काफ़ी तरह के जो केमिकल्स रहते हैं वो आपके हार्ट की गति को बढ़ा देते हैं, साथ में जो हार्ट के अंदर ब्लड वेसल्स की जो अंदर की लाइनिंग होती है उस लाइनिंग को वो डिस्टर्ब्ड करते हैं, तो जो उस स्मूथ लाइनिंग रहती है तो उसके वजह से ब्लड काफ़ी आराम से फ्लो करता है, तो वो लाइनिंग जब डिसरप्ट हो जाती है तो उसमें ब्लड आके जमने लगता है। तो ये वजह है कि उसमें खून के थक्के आके जम जाते हैं और हार्ट अटैक होता है। तो मेरी सलाह सबसे अच्छी रहेगी कि आप बिल्कुल स्मोकिंग छोड़िए और एक्सरसाइज करिए,
0: और पैसिव स्मोकिंग पर भी मैं आपका कहना चाहूंगी।
1: स्मोकिंग आइदर या तो एक्टिव रहे या पैसिव रहे, दोनों जो है सो सेम अमाउंट, क्योंकि हमारे बॉडी में वो सारे केमिकल्स तो जा ही रहे तो दोनों नुकसानदेह होता है, तो इसलिए पैसिव स्मोकिंग भी अवॉइड करना चाहिए।
0: जाते जाते हमारे आखिरी कॉलर को मैं इस प्रोग्राम में शामिल करना चाहती हूँ, आइए जानते हैं कि उनका क्या सवाल है। नाम बताइए, अपनी जगह का नाम बताइए और सवाल बताइए।
5: नमस्ते।
0: नमस्ते। नाम बताइए अपना।
5: ग्राम पुराने छल्ला से गगन दीप कमल बोल रहे
0: थे। जी
5: जिला और ग्राम पुराने छल्ला से गगन दीप कमल बोल रहे।
0: गगन जी सवाल पूछिए अपना।
5: पानी पीने में सीने में दर्द होने लगता है, ये क्या समस्या है?
1: गगनदीप जी, पानी पीने में ज़्यादा अगर तेजी से कभी कभी पानी पीते हैं तो जो आहार नली है उसमें संकुचन की वजह से दर्द होने लगता है, तो आप जो है सो धीरे धीरे पानी पीजिए और आराम से पानी लीजिए बस।
0: तो इसी के साथ हम इस कार्यक्रम से अब लेंगे आपसे इजाज़त। यकीनन आज के इस कार्यक्रम में दी गई जानकारियों से आप अपने दिल का इस बढ़ती हुई गर्मी में बेहतर ख्याल रख सकेंगे।

0: और इसी तरह का कोई और मौजू, कोई और विषय लेकर हम अगली बार आपसे हेल्थ एंड फिटनेस पे फिर मुलाकात करेंगे। डॉक्टर साहब, आप आए हमारे स्टूडियो में, इतनी बेहतरीन जानकारियां दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: एफएम रेनबो के सारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार,
0: धन्यवाद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे 300 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी चरक हॉस्पिटल दुबग्गा लखनऊ।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर,
1: पुरानी जींस और गिटार।
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद। शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
2: है, हैरते आश की जगावत।
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
3: ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: नमस्कार, आप सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली मांग के बीच प्रदेश में निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन, किसानों, व्यापारियों और उद्योगों को बिजली संकट का सामना ना करना पड़े, इसके लिए सभी स्तरों पर सतत मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि गर्मी के इस चुनौतीपूर्ण दौर में ऊर्जा विभाग पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य करे। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा और राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत की उपस्थिति में ऊर्जा विभाग, पावर कॉरपोरेशन एवं सभी डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो कल आगरा में ताजमहल का दीदार करेंगे। वो विशेष वायुयान से आगरा पहुंचेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री का काफिला खेरिया एयरपोर्ट से शिल्पग्राम पहुंचेगा। शिल्पग्राम से बैटरी चलित गोल्फ कार्ड में बैठकर वह ताजमहल के पूर्वी गेट पहुंचेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री के आगरा भ्रमण के मद्देनजर केंद्र एवं प्रांतीय खुफिया एजेंसी सतर्क है। ताजमहल के आसपास के होटलों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। रूबियो भारत की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। केंद्र सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा ना करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में

मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने या एहतियातन बरतने की निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। परीक्षा को लेकर आयोग ने व्यापक इंतजाम किए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से कड़ी निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने आज मेरठ में यूपीएससी परीक्षा केंद्र केवी डोगरा लाइन का निरीक्षण किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि मेरठ में परीक्षा केंद्रों पर सभी व्यवस्था अच्छे तरीके से की गई है। डॉक्टर कुमार ने कहा कि आयोग का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को अनुकूल, सुलभ और प्रभावी बनाना है। मेरठ को पहली बार आयोग की परीक्षा केंद्र बनाया है। लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल ने आज नगर निगम मुख्यालय में फजुल्लागंज वार्ड से ललित किशोर तिवारी को पार्षद पद की शपथ दिलाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ललित किशोर तिवारी को शपथ ना दिलाने के कारण लखनऊ की महापौर के सभी वित्तीय अधिकार सीज कर दिए थे। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सख्त गर्मी और बढ़ती हुई बिजली की मांग के दरमियान रियासत में बिला तातुल और मेयारी बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। वज़ीर आला ने कहा कि हर सतह पर मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए ताकि आम लोगों, किसानों, ताजिरों और सनअतों को बिजली के बहरान का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि महकमा तवानाई को गर्मी के इस मुश्किल दौर में पूरी हसासियत और तंदही से काम करना चाहिए। आज वज़ीर तवानाई अरविंद कुमार शर्मा और रियासती वज़ीर अखिलेश सिंह राजपूत की मौजूदगी में वज़ीर आला महकमा तवानाई, पावर कॉरपोरेशन और तमाम डिस्कॉम के अफसरान के साथ बिजली की फराहमी के निज़ाम का जायज़ा ले रहे थे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में मेहनत और रोज़गार महकमे की मुख्तलिफ स्कीमों और प्रोग्रामों पर एक जायज़ा मीटिंग की। इस मौके पर उन्होंने चाइल्ड लेबर एजुकेशन स्कीम के बारे में बातचीत की, जो इस वक्त 20 अज़ला में चल रही है, और हिदायत दी कि इसे रियासत के तमाम 75 ज़िलों में नई दफ़ात के साथ नाफिज किया जाए। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक केवल उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति हैं। सरकार की प्राथमिकता है कि श्रमिकों, युवाओं और कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित कार्य वातावरण और बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध हों। मुख्यमंत्री ने सेवा मित्र व्यवस्था को रोजगार और जन सुविधा का अभिनव मॉडल बताते हुए कहा कि तकनीक आधारित ऐसी व्यवस्थाएं युवाओं और कुशल कामगारों के लिए नए अवसर तैयार करती हैं। मुख्यमंत्री ने निर्माण श्रमिकों के लिए सभी औद्योगिक शहरों में प्रस्तावित श्रमिक सुविधा केंद्रों यानी लेबर अड्डों को

0: व्यवस्थित रूप से विकसित करने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हिदायत दी है कि महसूलात के मामलात को तेज़ी के साथ शफाफ और मेयारी तरीके से निमटाने को हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि ज़मीन और रेवेन्यू से मुतालिक मामलात में गैर ज़रूरी ताखीर किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगी। वज़ीर आला ने वाज़ह हिदायत दी कि मुकर्रा मुद्दत के बाद भी ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात में मुतालिका अफसरान और अहलकारों की जवाबदेही तय करके ज़रूरी कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। कल लखनऊ में रेवेन्यू अदालतों में ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात के निपटाने की पेशरफ्त का जायज़ा लेते हुए वज़ीर आला ने कहा कि टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम, जवाबदेही और बरवक्त काम के ज़रिए रेवेन्यू अदालतों को मज़ीद मुअस्सर बनाया जाए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में मौसम से मुतालिक इब्तदाई वार्निंग सिस्टम को ज़्यादा दुरुस्त, तेज़ और अवाम पर मरकूज़ बनाने की हिदायत दी है। कल लखनऊ में रिलीफ एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की एक जायज़ा मीटिंग में वज़ीर आला ने कहा कि कुदरती आफात के दौरान बरवक्त और दुरुस्त मालूमात बहुत सी जानें बचा सकती है, इसलिए मौसम की पेशगोई और वार्निंग के निज़ाम को सिर्फ तकनीकी इंतजाम तक महदूद रखने के बजाय मुअस्सर तरीके से आखिरी फर्द तक पहुँचाने के इंतजाम किए जाएँ। उन्होंने गाँव और हसास इलाकों में लास्ट माइल कनेक्टिविटी मजबूत करने, IVRS पंचायत सतह के लाउडस्पीकर्स, मकामी FM रेडियो, मोबाइल अलर्ट्स और सोशल मीडिया का वसी इस्तेमाल करने की हिदायत दी। रियासत के शहरी तरक्की और तवानाई के वज़ीर AK शर्मा की हिदायत पर बिजली महकमे में काम में लापरवाही बरतने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। इस सिलसिले में मेरठ में तैनात एग्जीक्यूटिव इंजीनियर योगेश कुमार को महकमा जाती कामों में लापरवाही बरतने पर फौरी असर से मुअत्तल कर दिया गया है। वहीं गाज़ियाबाद में तैनात एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राहुल को भी अपने फ़राइज़ में संगीन लापरवाही बरतने पर फौरी असर से मुअत्तल कर दिया गया। सिविल सर्विसेज के लिए प्रीलिम्स 2026 का इम्तिहान आज मुनक्किद किया जा रहा है। इस बार सिविल सर्विसेज के इम्तिहान के लिए मेरठ, कानपुर और भुवनेश्वर में नए इम्तिहान मरकज जोड़े गए हैं। UPSC के चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार ने आज मेरठ में इम्तिहान मरकज KV डोगरा लाइन का मुआयना किया और बताया कि मेरठ में तमाम इम्तिहान मराकज पर सारे इंतजाम अच्छी तरह किए गए हैं। डॉक्टर अजय कुमार ने यह भी कहा कि कमीशन का मकसद इम्तिहानी अमल को आसान, काबिल रसाई और मुअस्सर बनाना है। उन्होंने कहा कि नए मराकज के इजाफे से उम्मीदवारों को बेहतर सहूलियात मुयसर होंगी। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ के ज़रिए मुनक्किद मुंशी मौलवी सेकेंडरी और आलिम सीनियर सेकेंडरी बोर्ड इम्तहान 2026 के नतायज का कल ऐलान कर दिया गया। इस साल मदरसा बोर्ड के इम्तहान का नतीजा 88.26% रहा, जिसमें लड़कियों ने लड़कों से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। रियासत के तकरीबन तमाम अज़ला में इन दिनों शदीद गर्मी पड़ रही है, जिससे लोगों की ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर है। बेशतर अज़ला में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावज़ कर गया है। बांदा रियासत का गर्म तरीन ज़िला बना हुआ है। बांदा के एडिशनल ज़िला मजिस्ट्रेट कुमार धर्मेंद्र ने बताया कि इंतज़ामिया ने गर्मी और बचाव के लिए वसी इंतज़ाम किए हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।

1:16 आप हैं मेरे साथ, यानी कि हम शुरू कर चुके हैं प्रोग्राम होठों पे तेरी बात। और इस प्रोग्राम में आज हम बातचीत करेंगे कि जब सेल आती है तो हम में कैसी हलचल मचती है। हम वो चीज़ें भी ख़रीद लेते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होती है, या फिर हमें ज़रूरत नहीं होती है उसके लिए, चूँकि दाम

कम है इसलिए हमें खरीदना है, ये कॉन्सेप्ट कितना सही है कितना गलत, ये आप हमें मेल पर भेज सकते हैं। और कैसा रहता है सेल्स के दौरान आपका एक्सपीरियंस हमें बताइए। आप हमें मेल भेज सकते हैं fmakashwadi@gmail.com पर, और बातों का सिलसिला और आपके इस पर थॉट्स का सिलसिला जारी रहेगा, और साथ ही शामिल होगा कुछ ऐसा बेहतरीन म्यूजिक भी जो आपके दिल को खुश कर दे।

जी हाँ, दिल तो सबका चाहता है कि हम छुपते छुपाते, धूप से बचते बचाते, छांव में चलते रहें, लेकिन जिंदगी कहाँ ये मौके देती है। एक बार फिर से आप सभी का हो तो पे तेरी बात पे मैं समरीन स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल आपकी स्मार्ट शॉपिंग है या फिर बेवजह का खर्च, इस पर आपके क्या विचार हैं। हमारे पास मेल्स आने शुरू हो गए हैं। पहला मेल जो हमारे पास आया है वो आया है सुधाकर यादव जी का। लिखते हैं, सेल कभी भी लगी हो लेडीज बहुत खुश हो जाती हैं। सेल होने की वजह से लेडीज बहुत शॉपिंग करती हैं, लेकिन सेल में सभी वस्तुएं अच्छी नहीं होती हैं, कोई तो कभी कभी डिफेक्टेड भी होती हैं, और वस्तु घर आने पर चेक होती है कि उसमें ये फॉल्ट है, और बाद में उसकी वास्तविकता समझ में आती है और फिर वो एक्सचेंज नहीं हो सकती क्योंकि सेल में ली हुई चीज़ वापस नहीं होती है। तो ये बात तो आपने सही कही, लेकिन ये भी है कि हम बहुत बार सेल में मुनाफे का सौदा भी करते हैं। कोई चीज़ हमें लेनी है और हमने अच्छा खासा इंतज़ार किया और उसके बाद वो हमें बहुत कम रेट में भी मिल जाती है। आगे लिखते हैं, रामराज जी, श्री गणेशाय नमः, होटो पे तेरी बात, जिला रायबरेली, गाँव पहाड़ीपुर से, रामराज राजू भानु शंकर भैया बाप पासी, मनीष नीरज मधु बजरंगी काका मिर्जा इमरान बेग, सबसे पहले हमारी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद। और अगला मेल हमें भेजा है नीलू जी ने, लिखती हैं कि यूँ तो मिलते हैं जमाने में बहुत लोग, लेकिन समरिंदी आपको सुना सबसे अच्छा लगा। समरिंदी, जब ज्यादा दिन हो जाते हैं आपकी आवाज को ना सुनो तब ऐसा लगता है जैसे एफएम सुनना अधूरा अधूरा सा लग रहा है। आज हमारा दिल सुबह से बहुत दुखी है, और आपका दिल दुखी क्यों है नीलू? आपके मेल्स मेरे पास आए और उसमें लगा कि मुझे कुछ फिजिकल भी आपको इस वक्त दिक्कत चल रही है, लेकिन दुखी नहीं होना है, जिंदगी है, फेजेस हैं, कभी अच्छा वक्त कभी बुरा वक्त। तो जब भी थोड़ा सा मुश्किल वक्त चल रहा हो तो ये सोचें कि ये वक्त गुजर जाएगा, थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल और इंतज़ार जो है आपकी ज़िंदगी को आसान कर देता है, और ये भी मान के चलें कि ये आपकी ज़िंदगी में नहीं चल रहा है। जितने लोग हैं ना, जितने भी आपके आसपास हैं, आप दुनिया में लोगों को देख रही हैं, एक वर्चुअल दुनिया है और एक्चुअल दुनिया है। तो जो एक्चुअल दुनिया में हमारे साथ ज़िंदगी में हादसे होते हैं, खुशियाँ आती हैं, ये हर एक की ज़िंदगी में चलता है। तो ये फील जो है वो ज़रूर रखिए अपने अंदर कि हम ही नहीं हैं जो परेशानियाँ उठा रहे हैं, दुनिया में सभी लोगों के साथ अच्छा वक्त और बुरा वक्त चलता रहता है। बहरहाल आप आते हैं अपने टॉपिक पर, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि सेल्स जो है वो स्मार्ट शॉपिंग है या बेवजह का खर्च है। सेल में बहुत सारे प्रोडक्ट्स के आपको कम

दाम देने पड़ते हैं, जरूरत की चीजें आपको डिस्काउंट पे मिल जाती हैं। फेस्टिवल सीजन में अगर सेल आ जाती है तो आपके पास सेविंग्स के बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि आपको जो चीज़ें खरीदनी थी वो बहुत सस्ते दामों पर मिल जाती है। वही बेवजह के जो खर्च होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, बिना ज़रूरत आप शॉपिंग करने लगते हैं। लिमिटेड ऑफर और लास्ट डे सेल देखते ही इमोशनल बाइंग शुरू हो जाती है। कभी कभी फेक डिस्काउंट्स भी दिखाए जाते हैं। तो आप क्या कभी इस सिचुएशन में ट्रैप हुए हैं? अगर आप इस सिचुएशन में ट्रैप हुए हैं या आपने इसका फायदा उठाया है तो हमारे साथ शेयर करिए अपना एक्सपीरियंस। होटो पे तेरी बात पे 1:27 लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक और इस मौजू पर जो बातचीत का सिलसिला है यूं ही जारी रहेगा।

तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि होटो पे तेरी बात के आज का टॉपिक है कि सेल जो है वो हमारे लिए बेवजह का खर्चा है या फिर एक स्मार्ट शॉपिंग का तरीका है। ढेर सारे मेल्स हमारे पास आ चुके हैं, आइए मेल्स को शामिल करते हैं और जानते हैं कि क्या राय है आपकी। अच्छा, ये ज़िला रायबरेली से राजू भानु शंकर जी ने लिखा है। लिखते हैं कि जब भी हम बाज़ार जाते हैं और कुछ भी ख़रीदते हैं और घर आते हैं तो चीज़ें नापसंद हो जाती हैं और हम बहुत पछताते हैं। पहले वाले मेल में कुछ संदेश नहीं लिखा, लेकिन आपको हमारा ईमेल आपने शामिल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी तरफ से आपको एक बार फिर से प्यार भरा धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया रामराज जी। और ये बताइए हमें कि आप बाज़ार जाते हैं, अपनी पसंद से चीज़ ख़रीदते हैं और घर आके वो नापसंद कैसे हो जाती है और सेल में शॉपिंग करते हैं आप। सुल्तान रज़ा लिखते हैं, समरीन अप्पी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? कुतुब खाना सब्ज़ी मंडी रायबरेली से सुल्तान रज़ा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। गुलफ़शा सिद्दीकी लिखती हैं, समरीन अप्पी मैं गुलफ़शा सिद्दीकी संडीले से, मेरे हिसाब से दोनों चीज़ें होंगी, अच्छी भी और ख़राब भी, और अगर दिमाग लगा कर ख़रीदा जाए तो हर चीज़ आपको अच्छी मिल सकती है सेल में। करेक्ट, स्मार्ट शॉपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल के ट्रैप में नहीं आना है, एक्सेसिव शॉपिंग नहीं करनी है, लेकिन अपनी लिस्ट बना कर रखिए कि आपको किन किन चीज़ों का की ज़रूरत है और क्वालिटी चेक के साथ आप सेल का मज़ा उठा सकते हैं। सावित्री लिखती हैं, गुड आफ्टरनून मैम, कैसी हैं आप? बहुत मस्त प्रोग्राम चल रहा है, हम विलेज भरतपुर बरगदी पोस्ट अर्जनपुर डिस्ट्रिक्ट लखनऊ से आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। मैम झक्कास सॉन्ग प्ले हो रहे हैं, आई लव यू टू सावित्री जी। टॉपिक पर मैं ये कहना चाहूँगी कि सेल में हम जब भी सामान ख़रीदते हैं तो कभी कभी चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं जो बाद में कभी ना कभी हमारे इस्तेमाल में आ जाती हैं, लेकिन जब भी हम सेल में शॉपिंग करते हैं तो अपने बजट को ध्यान में रखकर शॉपिंग करें। कभी कभी हम लालच में आकर चीज़ें ख़रीद लेते हैं और बाद में हमारा बजट गड़बड़ हो जाता है, इसलिए ध्यान रखें, हमेशा सोच समझ कर शॉपिंग करें। बिल्कुल सही बात आपने सावित्री जी कही है कि सेल में शॉपिंग करें तो स्मार्ट शॉपिंग करना है आपको, अपने बजट के हिसाब से शॉपिंग करना है, लिस्ट पहले से तैयार कर लेनी है और उसके बाद शॉपिंग करना है। आगे लिखते हैं सुधाकर जाधव, प्रेम पूर्वक नमस्कार, और प्रोग्राम से में हमारा ईमेल शामिल होता है लेकिन मैसेज हाय हाय ये एड्रेस नहीं बताते मैसेजेस में इनका इंटरेस्ट नहीं शामिल होता। अच्छा, उसके बाद नाम भी नहीं शामिल करते, बाकी लोगों के एड्रेस भी बताते हैं और उनका नाम भी शामिल करते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? देखिए सुधाकर जी, ऐसा नहीं है, जब आप अभी जो नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा शुरू होगा ना उसमें मसला ये हो सकता है। उसमें क्या होता है, हॉटमेल में हमारे पास इतने बल्क में मैसेजेस आते हैं कि हम सिर्फ नाम बता पाते हैं, एड्रेस और डेडिकेशंस नहीं ले पाते, लेकिन ये प्रोग्राम सुकून का है, इसमें हम आपके साथ आपका एड्रेस भी बताएंगे, आपने जिन लोगों के नाम

लिए हैं उन्हें भी बताएंगे। तो ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से हमें सुधाकर जाधव जी ने मेल किया है, लिखते हैं जिन लोगों को ये डेडिकेट कर रहे हैं उन्हें, उनके नाम इन्होंने इस तरह से लिखे हैं कि श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित बयाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सर्वद देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख और कुमारी कल्पना देशमुख। तो आज आपकी ये जो शिकायत थी वो शायद दूर हो गई होगी। महेंद्र दीपान जी लिखते हैं, सादर प्रणाम, मैं नियमित श्रोता हूँ महेंद्र दीपान, अपने प्यारे गांव रूण ज़िला नागौर राजस्थान से आपको मेल कर रहा हूँ। आज आपने जो विषय पूछा है, सेल से ख़रीदारी करना सही है या फिर फालतू खर्च, इस पर मैं अपना छोटा सा अनुभव और नज़रिया साझा करना चाहता हूँ। मैम सच कहूँ तो मैंने आज तक कभी भी सेल से ख़रीदारी की ही नहीं। मेरी एक आदत है कि जब भी मैं कोई चीज़, चाहे वो कपड़े हों या फिर कोई सामान लेता हूँ, वो तुरंत ट्राई या चेक नहीं करता। मैं हमेशा सुकून से घर आकर उसे चेक करना पसंद करता हूँ। यही वजह है कि मैं हमेशा सीधे किसी भरोसेमंद दुकान पर जाकर ख़रीदारी करता हूँ, चाहे सामान महंगा हो या सस्ता। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अगर घर आने के बाद सामान में कोई कमी या ख़राबी निकले तो हम उसे बड़े हक से दुकान पर वापस चेंज कर सकते हैं। सेल की भीड़ भाड़ और नो रिटर्न एक्सचेंज पॉलिसी वाले झंझट से दूर शॉप से ख़रीदारी करना मुझे ज़्यादा सुरक्षित और सही तरीक़ा लगता है। बिल्कुल सही और जायज़ आपने पॉइंट कहा है महेंद्र दीपान जी, कि सेल में अक्सर जो नो रिटर्न की पॉलिसी होती है उसमें हम फंस जाते हैं, क्योंकि सेल में हम ख़रीदारी करने जा रहे हैं, वहाँ भीड़ बहुत है और उस भीड़ भाड़ में हम जो समझ में आता है, हमें ज़रूरत हो ना हो, अपने बकेट लिस्ट में डालते रहते हैं और फिर हम ओवर शॉपिंग कर लेते हैं, हमारे बजट से ज़्यादा की शॉपिंग कर लेते हैं और क्वालिटी पे भी हमको बहुत ज़्यादा क्वालिटी चेक उस टाइम पे नहीं कर पाते हैं। रामेश्वर जी ने हमें मेल भेजा है, लिखते हैं, ऑटो पे तेरी बात कार्यक्रम प्रस्तुत करता समरीन जी को प्यार भरा नमस्कार। हम आपका कार्यक्रम बराबर सुन रहे हैं, आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रस्तुति जो है वो पसंद आ रही है मुझे। समरीन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम पोस्ट मुंगिसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया, उमा कांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्र बधु निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी रामेश्वर जी। आपने समय निकालकर हमारे साथ इस प्रोग्राम में आप शामिल हुए हैं। आगे दो मेल्स हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, रोशनी रावत और बसंत कुमार सिन्हा का मेल हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक जिसमें बेहतरीन गाना आपका इंतज़ार कर रहा है।

होटो पे तेरी बात पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ समरीन और बात हो रही है आज सेल जो है वो स्मार्ट शॉपिंग है या फिर बेवजह का खर्च। देखिए मेरा मानना यह है कि सेल में अगर आप स्मार्ट शॉपिंग करते हैं तो ये आपके पैसे को भी बचाती है और एक प्लान शॉपिंग हमेशा बेहतर रहती है। अगर आप सेल देख के शॉपिंग करने जा रहे हैं तो इट कुड बी हार्मफुल फॉर यू, लेकिन अगर आपने एक लिस्ट तैयार कर रखी है और जब सेल आएगी तब आप शॉपिंग करेंगे तो ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और डिपेंड करता है कि आप कितना आप कपड़े खरीद रहे हैं या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद रहे हैं, इस पर भी शॉपिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रोग्राम में मेल्स जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं जिनमें हम शामिल करेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। तो अब समय आ चुका है, रोशनी रावत ने मेल भेजा है लंबा सा और इसमें कई कलर्स इन्होंने डाले हैं, रेड डाला है, ब्लैक डाला है, ब्लू डाला है और ग्रीन कलर के साथ बुके, स्माइली, हार्ट्स, इन सब के साथ इन्होंने हमें मेल भेजा है। लिखती हैं, समरीन दी कैसी हैं आप, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे आपका इंतज़ार था रात में 8 बजे से, लेकिन अचानक से आपकी आवाज़ सुनी तो मुझे बहुत खुशी हुई। आप किसी भी समय आपको सुनती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम रोशनी रावत, ग्राम पोस्ट बमना, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव, चंडीगढ़ से आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ।

हूँ। और अब इन्होंने आगे लिखा है टॉपिक पर, तो इन्होंने लिखा है कि सेल का सामान हो या पसंद का, सेल का सामान हो या पसंद का, मैं सिर्फ अपनी जरूरत का ही सामान लेती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी सब खरीदने में एक्सपर्ट हैं, बस पसंद आ जाए उनको। मेरे साइबर कैफे के सामने एक साड़ी की दुकान है और मम्मी की नज़रें वहीं ठहरी रहती हैं, हमेशा बोलती हैं वो वाली साड़ी कितनी अच्छी है। तो मेरे मुँह से यही निकलता है कि आप ले लीजिए जाके, एक के साथ एक और ले आती हैं। दो दिन पहले मेरे भैया भाभी के लिए 4 साड़ी ले आए, सेल में थी इसलिए, तो मुझे तो पैसा बचाकर कहीं दूर चले जाओ फालतू की शॉपिंग से अच्छा है। और मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तफाक रखती हूँ रोशनी, कि सेल देखकर जैसे कि मैंने कहा कि शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, जरूरत के हिसाब से शॉपिंग आप सेल में कर सकते हैं, ये ज्यादा स्मार्ट तरीका है शॉपिंग का। और एक की जगह 4 चीजें लेना जिसमें आप कभी कभी सेल में है, तो ऑब्वियसली क्वालिटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है उसमें, कि अगर एक के दाम में आपको 4 चीजें मिल रही हैं, तो ये सब छोटी छोटी बारीकियां देखकर अगर आप शॉपिंग करेंगे तो सेल आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। बसंत कुमार सिन्हा जी लिखते हैं, सेल पर तो कुछ सस्ते दर पर सामान मिल जाएगा, लेकिन चीज की गुण की बात अगर की जाए तो हो सकता है वो ना हो, औरों की जगह पर खरीदारी करने पर जो हमें सेल मिलती है, जैसे इन्होंने आगे लिखा है वैशाख महीने में सेल लगती है, होल सेल में भी आता है, कारखाने से रिजेक्ट माल भी मिलता है, तो इस तरह के जो शॉपिंग होती है वो थोड़ी रिस्की हो सकती है। साथ ही लिखते हैं कि नन्नी गुड़िया रानी थैंक्स एयरपोर्ट कलकत्ता से, इन्होंने हमें ये भी मेल जो है वो किया था। नीलू लिखती हैं, समरीन दी सब कुछ मेरी लाइफ में अच्छा चल रहा है, दुख सुख तो चलता ही रहता है सभी की लाइफ में, मेरे प्रिय दोस्त की वजह से मन दुखी हो गया है। ओहो, तो आप हिंट दे रही हैं हर मेल में मुझे। आगे वकील अहमद लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, सेल में ख़रीदारी सोच समझ के करिए, और अगर आप दुकान से ख़रीदते हैं तो वहाँ से वापस भी कर सकते हैं। धूप बहुत तेज़ हो रही है, वकील अहमद मंसूरी कटरा हथूरी ज़िला सीतापुर, साहिबा अंसारी शाजिया अंसारी शमा परवीन रिंकी पिंकी महक अंसारी अहमद नवाब, और वकील साहब ने थोड़े से ही मेल में सब चीज़ें शामिल कर ली हैं, मतलब टॉपिक पर भी बात कर ली है, गर्मी भी हो रही है इस पर भी बात हो गई है, दोस्तों के नाम भी ले लिए गए हैं। दतार सिंह जो है वो लिख रहे हैं, हमें मेल किया है उन्होंने, लेकिन हॉटमेल कार्यक्रम नहीं है ये, होटो पे तेरी बात कार्यक्रम है। गोविंद सीकर राजस्थान से, दतार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत, और आगे इन्होंने गाने की भी फरमाइश कर दी है। प्रोग्राम आप शायद सुन नहीं रहे हैं, आपने बस वक्त पे मेल कर दिया है। राजेश कुमार लिखते हैं, सेल कभी भी जेल साबित हो सकती है, सस्ते के चक्कर में ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, ना वापस किया जा सकता है। बात तो सही है, लेकिन जैसे कि अभी जिक्र हो रहा था कि स्मार्ट शॉपिंग अगर आप करेंगे तो सेल से भी आप फायदा उठा सकते हैं। संतोष बखारे लिखते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, अच्छा इन्होंने गाने की फरमाइश की है, संतोष भाकरे, सुनन्या सुकन्या और सविता भाकरे जो नाम ये लेना चाह रहे थे। आगे मुनेश कुमार राज गांव भानुपुर हरौआ जिला लखीमपुर खीरी से हमें मेल कर रहे हैं, लिखते हैं कि आज का टॉपिक ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग, नहीं आज का टॉपिक ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग नहीं है, आज का टॉपिक है कि सेल में, चाहे वो ऑनलाइन सेल हो या फिर आपने किसी दुकान पे सेल देखी, आप कितने ये आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है, मतलब ये बेवजह का खर्च है सेल में जाकर शॉपिंग करना या स्मार्ट शॉपिंग है। लिखते हैं कि आज के टॉपिक पर हम ये कहना चाहते हैं कि दोनों प्रकार की शॉपिंग अच्छी लगती है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, जिस जिस हिसाब की आवश्यकता हो उस हिसाब से हम शॉपिंग कर लेते हैं, बाकी सब बजट पर डिपेंड करता है। ऑनलाइन छूट मिली तो ऑनलाइन पर कर लिया, ऑफलाइन मिली तो चीज़ों की खरीदारी कर ली, जेब में बजट तैयार है तो फिर शॉपिंग करने में मज़ा आ जाता है। और आगे

खरीदारी कर ली, जेब में बजट तैयार है तो फिर शॉपिंग करने में मजा आ जाता है। और आके उन्होंने लिखा है, हेल्थ एंड फिटनेस बहुत ज्ञानवर्धक होता है, ऐसे ही नए टॉपिक लाते रहिए। बिल्कुल, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको अवेयर भी करते रहें और आपके दैनिक जीवन की समस्याओं को भी सामने लाते रहें। मोनू सेठ लिखते हैं, धूप बहुत है, गाड़ी से सफर कर रहा हूँ इसलिए मेल करने में देर हो गई। बिल्कुल, आप गाड़ी से जब सफर कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि हमें मेल ना भी करें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप सेफ सफर जरूर अपना जारी रखें। धर्मवीर भारती लिखते हैं, ग्रीटिंग्स टू आरजे समरीन मैडम जी, गुड आफ्टरनून, और आपको और पूरी आपकी एफएम रेनबो लखनऊ टीम को प्यार भरा नमस्कार। आगे लिखते हैं, तमाम श्रोताओं में से एक मैं धर्मवीर भारती शुक्लागंज उन्नाव से, आज का टॉपिक है सेल। वैसे तो ये एक वेल प्लान्ड प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने का प्रोसेस है जो कंपनीज मोस्टली फेस्टिवल सीजन्स में लेकर आती हैं, बट इससे कस्टमर्स को भी फायदा होता है क्योंकि बल्क में आइटम सेल होने से कंपनीज काफ़ी सारा डिस्काउंट्स ऑफर करती हैं। एज पर माई व्यू, कस्टमर को सेल्स का फायदा भी उठाना चाहिए, अपनी ज़रूरत का ही सामान खरीदें और कंट्रोल शॉपिंग करें और ब्रांडेड आइटम्स खरीदें। एक एडिशनल बात मैडम जी, कोई लिसनर मैडम को कुछ इशू था जिन्होंने अपने मोटिवेट किया, ये कितनी बढ़िया बात है, इंसानियत की मिसाल आप हैं, हम सभी को ऐसा करना चाहिए। सभी लिसनर्स को मैसेज मेरी तरफ से, थैंक्स मैडम जी एंड एफएम रेनबो लखनऊ टीम, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर भारती जी। शायद मेरी आपसे आज पहली बार मेल पर बात हुई है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगातार वक्त जो है वो बढ़ता जा रहा है। शामिल करेंगे एक अच्छा सा गीत, 1:53:29, आप हैं समरीन के साथ, और अब आने जा रहा है आपके रेडियो सेट पर एक बेहतरीन सा गीत।

और अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश में निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन किसानों, व्यापारियों और उद्योगों की बिजली संकट का सामना न करना पड़े, इसके लिए सभी स्तरों पर सतत मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली मांग के चुनौतीपूर्ण दौर में ऊर्जा विभाग पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य करे। समीक्षा बैठक में ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत और पावर कॉरपोरेशन और सभी डिस्कॉम के अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि राजस्व मामले के त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि भूमि और राजस्व से जुड़े मामलों में अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्धारित समय सीमा के बाद भी लंबित रहने वाले मामलों में संबंधित अधिकारियों और कार्मिकों की जवाबदेही तय करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट में कल होने वाले गंगा दशहरा पर्व को तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं पुलिस

प्रशासन ने आज डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर के जरिए मेला क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया। लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल ने आज नगर निगम मुख्यालय में फैजुल्लागंज वार्ड से ललित किशोर तिवारी को पार्षद पद की शपथ दिलाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ललित किशोर तिवारी को शपथ न दिलाने के कारण लखनऊ की महापौर के सभी वित्तीय अधिकार सीज कर दिए थे। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले होंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर 3:30 बजे से होगा और दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्ले ऑफ में जगह मिलेगी और प्रतियोगिता में कल पंजाब किंग्स के लखनऊ सुपर किंग्स को हरा दिया था। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 3 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्ताने,
1: वो भूली दास्तान जो फिर याद आ गई।
0: चांदनी से छिटकती यादों के बीच दिल के वो खूबसूरत

0: रात की बहकती तन्हाइयों के बीच महकते हुए दिलकश तराने,
1: खोया खोया चांद, खुला आसमान,
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

2:04:23 और एक बार फिर से मैं समरीन आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे प्रोग्राम व्हाट मेल में, जहाँ आप अपने प्यार भरे मेल्स हम तक पहुँचा सकते हैं FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर और होटो पे तेरी बात पे, जहाँ हमने आपको एक टॉपिक दिया था वहीं हॉट मेल में सुनेंगे आज हम आपके दिल की बात। तो आप भेजिए हमें जो भी आप कहना चाहते हैं मौसम के बारे में, जिंदगी के बारे में, FM रेनबो से जुड़ी हुई कोई बात जो इस प्लेटफॉर्म पर आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, हम आपके मेल्स के जरिए अपने और श्रोताओं तक उन बात को पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की भी एक म्यूजिकल सफर के साथ और एक खूबसूरत गीत आपके रेडियो सेट पर, ये रहा

कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गीत था इश्क मूवी से, और जब आया था ना तो धमाल मचा दिया था। खैर आज भी जब भी सुनो तो एकदम मूड रिफ्रेश तो हो जाता है। 2:10:52 आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हॉट मेल, और यकीन मानिए इस प्रोग्राम को करते वक्त मुझे बहुत घबराहट होती है क्योंकि इतने मेल्स छूट जाते हैं, ऐसे बॉम्बार्डिंग होती है ना। अभी इससे पहले मैंने जो प्रोग्राम किया वो भी मेल बेस्ड था, बट बड़े सुकून के मेल्स आ रहे थे, हम आराम से पढ़ पा रहे थे, लेकिन इस प्रोग्राम में जो मेल्स आने की तादाद होती है वो अनबिलीवेबल है। पहला मेल जो हमारे पास आया है वो नवी हसन का आया है। लिखते हैं, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, खैरियत से हैं, दुआओं में याद रखिएगा। और इन्होंने जो फरमाइश

की है वो हम कोशिश करेंगे प्रोग्राम में ले लें. जिन लोगों के नाम इन्होंने भेजे हैं वो हैं नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रसीद वारसी, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी, सिकंदरा राव से, मुबीन अब्बासी, इशरत परवीन. नेक्स्ट मेल हमारे पास आया है, चूँकि बहुत मेल्स मेरे पास छूट गए हैं, सिद्धार्थ गोंडे का, अर्चना ताई गोंडाने, हिरामण शेठ जी, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा गोंडाने, और इन्होंने भी जिस गाने की फरमाइश की है उसे हम प्ले करेंगे. आफ्ताब अंसारी लिखते हैं, नमस्कार, फिल्म गुमनाम, इस दुनिया में जीना है तो शेरवानी स्कूल. आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी, उसके बाद तुलसी मस्कीन लिखते हैं, आदरणीय होस्ट मैम जी, गुड आफ्टरनून, किसी भी प्यारे से रोमांटिक गीत में मेरा मेल पढ़ लीजिएगा, शुक्रिया. गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मिस्कीन ने हमें ये मेल किया था. वारिस अली खान जी लिखते हैं, आवाज़ की दुनिया के प्यारे दोस्त समरीन जी को खान परिवार का प्यार भरा सलाम. अर्ज़ किया है, यकीन हो तो कोई रास्ता निकल आता है, हवा की ओट से ओट भी लेकर चिराग जलता है. और आगे इन्होंने हमें मेल किया है, वकील अहमद ने, लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, हॉट मेल अच्छा लगता है गाना, कोई भी तुम्हारी दुनिया से चले जाने के बाद हम तुम्हें हर एक तारे में नजर आया करेंगे, तुम हर पल कोई दुआ मांग लेना, हम हर बार टूट जाया करेंगे. वकील अहमद मंसूरी, कटका हथूरी, जिला सीतापुर, साहिबा अंसारी, शाजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, अमन नवाब, धूप बहुत तेज़ है, यकीनन धूप बहुत तेज़ है, और अभी मुझे लग रहा है कि प्रोग्राम के बाद जब मैं जाने वाली हूँ ना तो मतलब ठीक ठाक घर खैरियत से पहुँच जाऊँ. विनीत कुमार लिखते हैं, अर्थापुर पोस्टर, रामगढ़ चीनी मिल, जिला सीतापुर, हॉटमेल प्रोग्राम प्रस्तुत करने वाली बहन जी को प्यार भरा गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहरिया, आप सभी के मेल शामिल कर लेती हूँ, उसके लिए धन्यवाद, किसी भी गाने में मेरा मेल शामिल कर लीजिए. मेरे दोस्त हैं सुरभि सीतापुर, ओमकार सीतापुर से, शमा परवीन अंसारी सीतापुर से, गुलाफशा सिद्दीकी संडीला से, सीमा रावत राजाजीपुरम लखनऊ से, संजू नवनीत हरक, शुक्रिया विनीत हमें मेल करने के लिए. राधे श्याम शर्मा लिखते हैं, नमस्ते, हार्दिक अभिनंदन, तेरे दिल में जरा सी जगह. राधे श्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा, सचिन शर्मा, नंदिनी शर्मा, मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रही हूँ क्योंकि टाइम जो है वो हमारे पास कम है और मेल बहुत ज़्यादा है. स्वरण सिंह, गांव लोगा ठाकुरा वाला, ज़िला फिरोजाबाद, पंजाब से इन्होंने हमें मेल भेजा है और ये नाम शामिल करवाना चाहते हैं. स्वर्ण सिंह गिल का, दलजीत सिंह का, रजदीप राजदीप सिंह का, गुरलाल सिंह, अभिराज सिंह और पोत्रे गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह का. सुदर्शन शाह लिखते हैं, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, नीति शाह, इसके अलावा सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर आमन, इन्होंने हमें मेल भेजा है. मसरूर हसन लिखते हैं, प्रेम पूर्वक आदाब, गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से, सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजे हसन, इब्राहिम, किसी भी गीत में मेरा ये मेल शामिल कर लीजिएगा. सतीश आहिजा लिखते हैं, पुरखलूस सलाम समरीन जी, प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं, आपकी आंखों अपने आंसुओं को इतना महंगा कर दो कि कोई उन्हें लेने की कोशिश ना करे और अपनी मुस्कान को इतना सस्ता कर दो कि हर कोई उसे पाने की चाहत करे. बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही है, लेकिन इस पर तफसील से आपसे बात होगी. अभी शामिल करते हैं अगले मेल्स को क्योंकि बहुत तेज़ी से मेल बढ़ रहे हैं. दिलीप कुमार लिखते हैं, अच्छे के साथ अच्छे बने, बुरे के साथ बुरे नहीं बने, क्योंकि मेरा बुरा करे कोई ये उसका कर्म है, मैं किसी का बुरा ना करूँ ये मेरा धर्म है. वाह, बहुत ही प्यारी लाइन और लेकिन ज़िंदगी के लिए बिल्कुल सार्थक है अगर आप इसे अपनी ज़िंदगी में उतार लें तो. रणधीर गुप्ता, शुभ दोपहरिया समरीन जी, प्यार भरा सप्रेम नमस्कार, हॉटमेल में कोई भी गाना सुनवा दीजिए. ओखला संगम बिहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता. अभी तक शिकायतें नहीं आई हैं, शिकायतें लास्ट में शुरू होती हैं. नेक्स्ट मेल अनिल कुमार का है, आदरणीय आजय जी, आपको प्यार भरा नमस्कार, और वैशाली, शैलेश, एकांत, सुमित, कुमारी, ध्वनि, इन सब के नाम ये लेना.

चार इस कार्यक्रम में रोजी डिकास्टो जानकीपुरम सहारनपुर से सप्रेम नमस्कार। आप ये मेरा मेल किसी भी मेल में शामिल कर लीजिएगा। संदीप जी लिखते हैं, फिल्म अकेले हम अकेले तुम का कोई भी गीत सुना दीजिए। संदीप मकर, ज्योति मकर, मन्नत मकर और भरत मकर, कमल साहनी पिंगावाला चौक गुराया जलालपुर पंजाब से इन्होंने हमें ये मेल भेजा है। उत्तम कुमार भगत लिखते हैं, अच्छे के साथ अच्छे बने, बुरे के साथ बुरे नहीं। सेम शायद इन्होंने हमें मेल भेज दिया है। रोशनी रावत लिखती हैं, नमस्ते समरीन दीदी, आप कैसी हैं? प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा गाना मार्च में सुनाया गया था, उसके बाद से बजा ही नहीं दीदी, उम्मीद है आज आप सुना देंगी। और आप चाहें चेक करके देख लीजिए सिस्टम में, वैसे मैं रोज 2 बजे सो जाती हूँ लेकिन आज नहीं सो रही क्योंकि आपको सुनेंगे दीदी। ये गाना आपको ही डेडिकेटेड है। मेरा नाम रोशनी रावत, ग्राम व पोस्ट बमना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रही हूँ और मेल्स शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं एक बेहतरीन सा ट्रैक और आपके रेडियो सेट पर ये रहा।

2:26 आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हॉट मेल और आपके प्यार भरे मेल्स हमारे पास लगातार आ रहे हैं जिनको हम इस प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं. और जैसे कि मैंने

से कहा था कि शुरुआती दौर में शिकायतें नहीं शुरू होती हैं, लेकिन अब शिकायतों का सिलसिला शुरू हो चुका है क्योंकि किसी के फरमाइशी गीत नहीं जा रहे हैं, किसी का मेल नहीं पढ़ा जा रहा है। तो इस तरह के जो शिकायत हैं, प्यार भरी शिकायतें हैं, वो हमारे पास लगातार आ रही हैं। बोधराज खोरवाल जी ने हमें मेल किया है, लिखते हैं, फिल्म शक्ति का कोई गीत सुना दीजिए। उत्तर नगर दिल्ली से ये मेल कर रहे हैं बोधराज खोरवाल, कमल राय रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश के नाम ये इस प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं। मुकेश कश्यप लिखते हैं, नमस्कार जी, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से, और सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्मी सोनी, मोहनी ऋतिक, बलवीर सिंह, इन सब के नाम ज़रूर शामिल कर लीजिएगा। और देखिए, आपकी जो रिक्वेस्ट थी वो पूरी हो चुकी है। राहुल सिंह लिखते हैं, सबसे पहले आकाशवाणी रेनबो लखनऊ की तारीफ में मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ से प्रसारित सभी कार्यक्रम इतने बेहतरीन तरीके से बनाए जाते हैं और उन्हें व्यवस्थित किया जाता है कि प्रोग्राम ख़त्म होते हैं तब तक हम दूसरे प्रोग्राम के शुरू होने की जो इंतज़ार है, जो बेचैनी है वो और बेसब्री है वो हमें शुरू हो जाती है। मुझे आकाशवाणी रेनबो लखनऊ बचपन से ही सुनने की आदत है। आज की फरमाइश यदि संभव हो तो ये है, प्ले कर दीजिएगा, ज़रूर आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। और मैं जल्दी से आपका बताया हुआ गीत जो है वो ढूंढ के रख लेती हूँ और इस मेल्स को पढ़ने के सिलसिले के बाद उसे शामिल कर लेंगे। और अब्दुल गफ्फार लिखते हैं, प्यार भरा नमस्कार, किसी भी गीत में हमें शामिल कर लीजिए और अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए। नाम ये हैं जो वो कहना चाहते हैं, अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, ज़ियाउल हक डावर, भटापारा छत्तीसगढ़ से, सोहन जोशी जी और पायल जोशी जी, गुजरात गांधी ग्राम। और आगे हमें नेक्स्ट मेल भेजा है, राजेश वर्मा ने, लिखते हैं कि फिल्म अंदाज अपने का कोई भी गीत सुना दीजिए। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ, राज पैलेस, मऊनाथ भजन, उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। और राजेश, फिल्म अंदाज से आपका ये मेल मैंने लिख लिया। अच्छा, इस वक्त जो आतुरता है या फिर बेचैनी है वो इस कदर बढ़ गई है कि एक ही मेल को 10-10 बार आप भेज रहे हैं हमें। जय लिख रहे हैं, नमस्कार, होली चौक, उत्तम नगर, दिल्ली से, जय राम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, फिल्म अरिजीत का कोई गाना सुना दीजिए और जिस गाने की आपने फरमाइश की है, अभी से 1 घंटे पहले हमने आपको वो गाना सुनाया है। मल्होत्रा जी लिखते हैं, डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, कालका से इन्होंने हमें ये मेल भेजा है। विजय महोबिया लिखते हैं, रामगंज खंडवा से, विजय महोबिया, कविता महोबिया, सोनू मोनू। और अगला मेल, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि आप लगातार 10-10 मेल एक साथ भेज रहे हैं, मेल सिलेक्शन में दिक्कत हो रही है। ओम बागरिया जी लिखते हैं, गांव बांदी वाला, फजलिका पंजाब से इन्होंने हमें मेल भेजा है, बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, रजत और बेबी राम बगड़िया, कोई भी गीत हमारे नाम से इस प्रोग्राम में शामिल कर लीजिए। मेहर अरोड़ा लिखते हैं, पदमपुर जिला श्री गंगानगर से, मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, इनके नाम शामिल करने की रिक्वेस्ट की थी। राजकुमार जी लिखते हैं, गांव फ्रांसी हिसार से, राजकुमार दूडी, प्रमोद कुमार दूडी और पुष्पेंद्र कुमार दूडी। आगे राशिद हुसैन लिखते हैं, हेलो हमारी आरजी प्यारी सिस्टर, आपको हमारा प्यार भरा आदाब, हम दुआ करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ और खुश रहें। और इन्होंने साथ ही गाने की फरमाइश की है। अहमद बागवान लिखते हैं, हमें नज़रअंदाज मत करिएगा दीदी और अपनी पसंद का कोई भी गाना सुनवा दीजिए। शाहरून नूर लिखते हैं, कोई भी गीत सुनवा दीजिए, ग्राम पोस्ट हरहरपुर मटकली ज़िला बरेली से, शाहरून नूर अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेल करने के लिए। और अब हम सुनवाते हैं आपको आप ही की पसंद का एक गीत जिसे हमारे श्रोता ने फरमाइश की है।

2:41 और 25 सेकेंड आप सुन रहे हैं हॉट मेल अपने दोस्त समरीन के साथ. और आपके जो मेल्स हैं वो लगातार हमारे पास आ रहे हैं. अहमद फूलवाल लिखते हैं, प्यार भरा आदाब, नमस्कार. हमें निराश और नज़रअंदाज मत करना. मेरे मेल मिले अगर तो शामिल ज़रूर करना. आगे ये लिखते हैं कि छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से अहमद भाई फूल वाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फूल वाले, इमरान अहमद फूल वाले, बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशुतोष अहमद और आशु अहमद और समस्त फूल वाले फैमिली को ये गीत सुनवाना चाहते हैं. और अहमद फूल वाले लिखते हैं इसके आगे कि अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए. गुलफ्शा सिद्दीकी लिखती हैं, सिमरपी, मैं गुलफ्शा सिद्दीकी, संदीले से गाने शामिल कर दीजिएगा ज़रूर, प्लीज़ प्लीज़. और गाने आपने लिखे ही नहीं है कि कौन से शामिल करवाना है. तो जैसे कि आपकी फरमाइश लगातार हम तक आ रही है, उसे पूरा करते हुए अगला गीत आपके रेडियो सेट पर ये रहा.

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं और 2 लापता हैं। शुक्रवार को हुए धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शांक्सी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में संवेदना व्यक्त करते हुए लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना की है। सरकार ने इबोला संक्रमण में बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा, दक्षिणी सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने का निर्देश दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्त स्राव होता है। फिलहाल इसके इलाज के लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक आज से अमरोहा के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। कार्यक्रम के अनुसार उप मुख्यमंत्री शाम को भाजपा जिला कार्यालय में जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 25 मई को गजरौला CHC कान्हा गौशाला और पेयजल योजना का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। इसके उपरांत कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों एवं विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग में राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने शाहजहांपुर में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल चिकित्सालय का दौरा कर निर्माणाधीन क्रिटिकल केयर ब्लॉक

और अन्य विकास कार्यों का निरीक्षण किया। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी जिलों में अस्पतालों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। वहीं अमरोहा में गंगा दशहरा पर्व के मौके पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए नेशनल हाईवे पर पुलिस द्वारा आज दोपहर 12 बजे से रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया है। ब्रिज घाट तिगरी समेत अन्य प्रमुख घाटों पर कल गंगा दशहरा पर्व के मद्देनजर लगभग 1.5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना के चलते रूट डायवर्जन 26 मई की सुबह 8 बजे तक लागू रहेगा। एएसपी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि भीड़ को नियंत्रित करने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 4 बजे प्रसारित किया जाएगा।

बजकर 8 मिनट और 11 सेकंड सतरंगी दुनिया में मैं समरीन आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, गर्मियों का वो दौर जब सूरज आग जैसा बरसने लगता है और धरती तपकर मानो अंगार बन जाती है, उसे कहते हैं नौतपा। आज सतरंगी दुनिया में आपसे बात करेंगे नौतपे से जुड़े कुछ दिलचस्प फैक्ट और मान्यताओं के बारे में, और होंगे कुछ म्यूजिकल सफर में कुछ बेहतरीन से गीत। अगर बात की जाए नौतपा की, तो जेठ की दोपहर में जब सड़कें जो है वो सुनसान हो जाती हैं और आसमान तप रहा होता है और आग बरसती है, तो यही एहसास देता है आपको नौतपा। कहते हैं साल के ये 9 दिन धरती को सबसे ज्यादा तपाते हैं। जब सूरज रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तब शुरू होता है नौतपा, यानी कि गर्मी का वो दौर जहां धूप सिर्फ दिखाई नहीं देती बल्कि आपको बहुत हार्म भी कर सकती है। तो पहली तो रिक्वेस्ट ये है कि आगे आने वाले ये जो 9 दिन हैं इसमें आप ख्याल रखें और घर से निकलने से पहले जो प्रिकॉशंस आपको लेने हैं गर्मी से बचने के वो जरूर लें, और जब बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। फिलहाल इस तपती धूप में आपको थोड़ी सी ठंडी छांव महसूस कराएगा उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में हमारा ये गीत।

0: हिंदू कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

आप सुन रहे हैं सतरंगी दुनिया और आपके साथ हूँ मैं सबरीन। और आज हम सतरंगी दुनिया में लेकर आए हैं नौतपा के बारे में जानकारी। नौतपा, आपने कभी सोचा है कि इतना ज़्यादा क्यों तपता है या इतना ज़्यादा परेशान क्यों हमें करता है? तो नौतपा में सूरज सीधे जो है वो उसकी जो किरणें हैं वो धरती पर पड़ती हैं और हवाएं भी तप कर गर्म हो जाती हैं। यही वजह है कि तापमान कई जगह पर 45 डिग्री से ऊपर चला जाता है। यानी मौसम का ये एक ऐसा वक्त है जब आपका कूलर और पंखा जवाब दे देता है। हाँ, एसी में ज़रूर आपको थोड़ी राहत मिल सकती है। और दिलचस्प बात यह है कि दोस्तों, नौतपा की तपिश सिर्फ गर्मी नहीं लाती,

एक उम्मीद दिलाती है। अब आप सोच रहे हैं कि गर्मी से उम्मीद का क्या ताल्लुक है। ऐसा माना जाता था हमारे पुराने समय में कि अगर नौतपा अच्छे से तपे तो मानसून भी अच्छा आता है, यानी धरती जितनी तपती है बादल उतने ही मेहरबान भी होते हैं। तो बहरहाल इस वक्त तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और नौतपा की शुरुआत भी होने वाली है, तो आप अपना ख्याल ज़रूर रखें और हम सब ये उम्मीद रखें कि ये नौतपा ही है, बल्कि ये गर्मी जो बढ़ती जा रही है लगातार क्लाइमेट चेंज की वजह से, नौतपा अब थोड़ा और बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। तो हम कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपने बच्चों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, हमारी नई जनरेशन जो आ रही है उसको बेहतर करने के लिए हम पेड़ों का ज़रूर पौधारोपण करें और रास्ते में पानी और दाना हमारे जो हमारे अलावा अन्य प्राणी हैं उनका ख्याल ज़रूर रखें इस नौतपा में।

नौतपा का मौसम सिर्फ धूप का नहीं बल्कि एहतियात का भी मौसम है. इसमें आप खूब पानी पीजिए, सर ढक कर रहिए. शरीर को ठंडा रखना बेहद ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो हीट स्ट्रोक का भी आप शिकार हो सकते हैं. पुराने ज़माने में लोग नौतपा देखकर मौसम और खेती का अंदाज़ा लगाया करते थे, यानी ये सिर्फ मौसम नहीं बल्कि प्रकृति का एक संकेत भी था. और मौसम का अंदाज़ा ये लगता था कि जितना ज़्यादा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नौतपा बेहतर होगा, उतना अच्छा बारिश भी होगी. इस तरह के जो संभावनाएं होती थी वो नौतपा से लगाई जाती थी. और नौतपा के बारे में आज मैंने आपको खासा जानकारी दी. अब सुनाती हूँ आपको एक बेहतरीन सा गीत.

सो माय डियर लिसनर्स, बात हो रही है नौतपा के बारे में और अभी तक आपने बहुत सारी बातें जानी और कुछ अभी भी है जो आपके साथ शेयर करना बाकी है। 3:41 और 23 सेकंड हो रहे हैं और आपको बता दें कि जिस नौतपा के बारे में आप जान रहे हैं, अगर इस नौतपा के दौरान बारिश या ठंडी हवाएं चल जाए जैसा कि एक्सपेक्ट करते हैं लोग, क्योंकि ये 9 दिन की जो गर्मी है, ये जो तपिश है, इसे बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल होता है। इसलिए अगर आप इस दौरान, इस नौतपे के दौरान अगर आप बारिश या ठंडी हवाओं की उम्मीद करते हैं और ऐसा चल जाए

इसे नौतपा का गलना कहते हैं। माना जाता है कि इससे मानसून काफी हद तक कमजोर पड़ जाता है। और इतना ही नहीं, इन दिनों में इस नौतपा का जो समय होता है, इसमें दान का भी एक बहुत ही विशेष महत्व होता है। इस दौरान भूखों को भोजन कराना, प्यासों को पानी पिलाना यानी कि प्याऊ लगवाना, और मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, ज़्यादातर आमतौर पर घड़े की अगर बात करें, तो इसको दान करने की परंपरा काफ़ी पुरानी है। पशु पक्षियों के लिए भी छत पर या बाहर कहीं पानी रखना बहुत ज़्यादा पुण्य का काम माना जाता है।

प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम धीरे धीरे हो चला है, 3:53 हो चुके हैं दोस्तों। लेकिन चलने से पहले कुछ है अभी भी बाकी नौतपा से जुड़ी हुई जानकारी जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। चलिए आपको बताते हैं कि नौतपा के 9 दिनों में जो शुरुआती 5 दिन होते हैं, नौतपा के शुरुआती 5 दिन अगर बिना किसी रुकावट के भयंकर तपते हैं तो ये संकेत होता है कि उस साल देश में भरपूर और समय पर बारिश होगी। और आखिरी के जो 4 दिन होते हैं, इन दिनों में अगर धूल भरी आंधियां चलती हैं या हल्की बूंदाबांदी होती है तो उसे अच्छा माना जाता है। इसे हवा का दबाव यानी कि प्रेशर कहा जाता है और इससे हवा का जो दबाव है वो बनता है और मानसून की जो हवाएं हैं उनको तेजी से अपनी ओर खींचता है। तो इस तरह समय पर मानसून आने की स्थितियां बनती हैं और भरपूर बारिश होने की भी संभावनाएं होती हैं जिससे खेती और फसलों को काफी फायदा भी होता है। इसलिए नौतपा के शुरुआती 5 दिन और आखिर के 4 दिन किस तरह से महत्वपूर्ण होते हैं ये आज आपने जाना। और फिलहाल वक्त हो गया है इस जानकारी को यहीं पर वाइंड अप करने का और प्रोग्राम को भी वाइंड अप करने का, क्योंकि कुछ ही देर में आपके लिए खास तौर पर अपने यूथ्स के लिए लेकर आएंगे यूथ वेव ठीक 4 बजे। स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो।

नमस्कार, चार बज चुके हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में मौसम संबंधी पूर्व चेतावनी प्रणाली को और अधिक सटीक, त्वरित और जनकेंद्रित बनाने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में राहत एवं आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान समय पर दी गई सही सूचना अनेक लोगों का जीवन बचा सकती है, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी तंत्र को केवल तकनीकी व्यवस्था तक सीमित न रखते हुए अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को लेकर आज लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठन को और मजबूत बनाने, बहुजन समाज को एकजुट करने और जमीन स्तर पर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बसपा की एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ता कोई कसर न छोड़ें और पूरे जी जान से वोट की सुरक्षा करें। बसपा प्रमुख ने पार्टी की तैयारियों को हर स्तर पर चुस्त, दुरुस्त और मुस्तैद बनाने का आह्वान किया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो कल आगरा में ताजमहल का दीदार करेंगे। वह विशेष वायुयान से आगरा पहुंचेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री का काफिला खेरिया एयरपोर्ट से शिल्पग्राम पहुंचेगा। शिल्पग्राम से बैटरी चालित गोल्फ कार्ट में बैठकर वो ताजमहल के पूर्वी गेट पहुंचेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री के आगरा भ्रमण के मद्देनजर केंद्रीय एवं प्रांतीय खुफिया एजेंसी सतर्क है। ताजमहल के आसपास के होटलों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। रूबियो भारत की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। लखनऊ में आज संडे ऑन साइकिल के 75वें संस्करण के अंतर्गत फिट इंडिया साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल रैली में सीमांत मुख्यालय लखनऊ एवं चतुर्थ वाहिनी के अधिकारियों और बल कार्मिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ईंधन की बचत, पर्यावरण संरक्षण एवं सभी को फिट एवं स्वस्थ रखने के प्रति जागरूक करना था। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से आम जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने 54 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है और इनमें से 10 जिलों के लिए रेड अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य असम में एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है, जिसके प्रभाव से दिल्ली से सटे जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 5 बजे

0: है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

वेरी वार्म वेलकम फ्रेंड्स, 4:04 हो चुके हैं। 100.7 FM रेनबो पर आपके साथ आपकी रेडियो साथी अलका आ चुके हैं और करेंगे पूरे एक घंटे अपने यूथ से बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें, जिसमें आज शामिल करेंगे AI को। तो चलिए बात करेंगे कुछ खास, लेकिन इससे पहले इस ट्रैक को करते हैं एंजॉय। 100.7 FM रेनबो पर रहिए पूरे टाइम मेरे साथ, अगले कुछ घंटे होंगे हम साथ।

सो फ्रेंड्स 4:09 हो चुके हैं और आपका यूथ वेव आप अलका के साथ एंजॉय कर रहे हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपका मोबाइल आपसे पहले कैसे समझ जाता है कि आपको क्या देखना है? क्या गूगल मैप्स आपको ट्रैफिक से बचाकर बिल्कुल सही रास्ते पर ले जाते हैं? इस सब के पीछे मशीनों की बुद्धिमत्ता है या फिर AI है, यानी ऐसी मशीनें या कंप्यूटर्स जो इंसानों की तरह सोचते और सीखने की कोशिश भी करते हैं, जैसे कि OpenAI। इसने ऐसे सिस्टम बनाए हैं जो इंसानों से बातचीत कर सकते हैं, सवालों के जवाब भी दे सकते हैं और कहानियां भी लिख सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए, AI सोचता कैसे है? असल में AI के पास भावनाएं नहीं होती हैं। जी हाँ, वो लाखों उदाहरणों से, बहुत सारे एग्जाम्पल से सीखकर बिल्कुल सही और सटीक जवाब चुनता है। मतलब दिल नहीं है लेकिन डेटा बहुत ज्यादा है। तो आइए AI के बारे में और भी बहुत सारी बातें आपसे शेयर करेंगे आज यूथ वेव में। ट्यून रखिए 100.7 FM रेनबो। खूबसूरत गानों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा।

आज AI अस्पतालों में डॉक्टर्स की हेल्प कर रहा है। इतना ही नहीं, बीमारियों को जल्दी पता लगाने में भी आगे है। खेतों में किसानों की मौसम और फसल की जानकारी भी दे रहा है। स्कूलों में बच्चों को उनकी कैपेसिटी के अनुसार पढ़ाई भी सिखा रहा है। बैंक में धोखाधड़ी पकड़ने में हेल्प भी कर रहा है। यहाँ तक कि कारें भी बिना ड्राइवर के चलने लगी हैं। दुनिया की कई बड़ी ऐसी कंपनीज हैं जो इस दिशा में काम कर रही हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि AI हमारा दुश्मन हुआ या फिर दोस्त हुआ, है ना? शायद जवाब ये हुआ कि AI वही बनेगा जैसा हम उसे बनाना चाहेंगे। अगर सही दिशा में उसका इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारा सबसे बड़ा हेल्पर, सबसे बड़ा सहायक बनेगा। लेकिन तकनीक को अपनाना होगा उसी समझदारी के साथ, ताकि वो हमें फायदा पहुंचाए ना कि नुकसान। क्योंकि AI के बेनिफिट्स ढेर सारे हैं अगर हम उसे सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं। सही दिशा में उसका इस्तेमाल करने से ही हम उसके बेनिफिट्स को हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसे गलत दिशा में ले जाएंगे तो नुकसान ज़्यादा होंगे। इसीलिए तकनीक को अपनाइए लेकिन समझदारी के साथ।

के 24/7 संकट नियंत्रण कक्ष CCR में अनुसंधान सहयोगी के चार पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है. चयनित अभ्यर्थियों को मंत्रालय के दिनांक 15 अप्रैल के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रति अनुसंधान सहयोगी को ₹40,000 प्रतिमाह समेकित मानदेय देय होगा. और इससे संबंधित जानकारी अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट विजिट कर लें www.moef.nic.in. आवेदन की जो अंतिम तारीख है वो है इस विज्ञापन के प्रसारण के 21 दिनों के अंदर. इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान. इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान शिक्षण एवं गैर शिक्षण पदों के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करता है. फैकल्टी पदों के लिए ये विज्ञापन है. एसोसिएट प्रोफेसर, इनके लिए SC ST NC OBC EWS PWBD इन सब के लिए विशेष भर्ती अभियान के लिए ये विज्ञापन है. सहायक प्रोफेसर के लिए भी नियमित और संविदा विजिटिंग के लिए भी विशेषज्ञता होनी चाहिए. उनके पास कॉरपोरेट फाइनेंस, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक थ्योरी, टाइम सीरीज इकोनॉमिक्स, साथ में ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, ऊर्जा एवं जलवायु परिवर्तन.

0: राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर डिग्री होनी चाहिए। गैर शिक्षण की बात अगर करें तो पद का नाम हम आपको बता देते हैं। निदेशक के निजी सचिव पे लेवल 7 के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर रिक्ति है 1 और अधिकतम आयु सीमा है 35 वर्ष। मानव संसाधन अधिकारी पे लेवल 10 के अंतर्गत ये आते हैं और कुल रिक्ति यहाँ पर भी एक ही है, 40 वर्ष इसमें अधिकतम आयु सीमा है। शैक्षणिक एवं छात्र मामलों के अधिकारी पे लेवल 10 के अंतर्गत एक स्थान यहाँ पर रिक्त है, 40 वर्ष यहाँ अधिकतम आयु सीमा है। सहायक सिस्टम विश्लेषक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे लेवल 10 के अंतर्गत आते हैं, एक स्थान रिक्त है 40 वर्ष के लिए। सहायक प्रशासनिक अधिकारी मानव संसाधन एवं प्रशासन के लिए जो कि पे लेवल 7 के अंतर्गत आते हैं, कुल रिक्तियां यहां पर भी एक है और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष। लेखा सहायक के लिए भी 35 वर्ष अधिकतम आयु सीमा है, एक स्थान रिक्त है। और सहायक मानव संसाधन पे लेवल 6 के अंतर्गत आते हैं, एक स्थान रिक्त है 35 वर्ष इसमें अधिकतम आयु सीमा है। संविदा आधार पर प्रतिनियुक्ति आधार पर पद जो है उसकी जानकारी आपको दें। अनुसंधान अनुदान एवं परियोजना अधिकारी पे लेवल 10 के अंतर्गत आते हैं, कुल रिक्तियां हैं 1, अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। सहायक प्रशासनिक अधिकारी छात्र एवं शैक्षणिक मामले के लिए पे लेवल 7 है और कुल रिक्तियां यहां पर 1 है, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है। प्लेसमेंट अधिकारी पे लेवल 7 के अंतर्गत आते हैं, कुल रिक्तियां 1 है और 35 वर्ष यहां अधिकतम आयु सीमा है। सहायक विद्युत अभियंता पे लेवल 7 है, 35 वर्ष यहां अधिकतम आयु सीमा है। पुस्तकालय सहायक के लिए पे लेवल 4 है, कुल रिक्तियां 1 है, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है। आवेदन विंडो खुल चुका है, 8 जून 2026 तक अपने आवेदन दे देने हैं। संस्थान का वेबसाइट पर भी समस्त जानकारी अपलोडेड है, www.igidr.ac.in/careers पर जाएं और वहां से समस्त जानकारी आप ले सकते हैं। आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही, कल हम इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं,
2: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
1: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
2: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
3: धड़कन लखनऊ की
2: 100.7 FM रेनबो।

दोस्तों, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, वैसे ही हर कहानी का भी दूसरा पहलू जरूर होता है। कुछ लोग डरते हैं कि एआई नौकरियां छीन सकता है, कुछ को ये भी चिंता है कि गलत जानकारी या फेक न्यूज फैल सकती है, और सबसे बड़ी बात, अगर मशीनें हमसे ज्यादा समझदार हो गईं तो फिर क्या होगा। जी हाँ, सवाल ये नहीं है कि एआई अच्छा है या वो बुरा है, सवाल ये है कि हम उसका इस्तेमाल एक्चुअल में कैसे करते हैं। तकनीक हमेशा से इंसान की हेल्प के लिए ही बनी हुई है। पहिए से लेकर इंटरनेट तक हर नई खोज ने शुरुआत में एक डर पैदा किया, लेकिन बाद में वही हमारी ताकत बन गई।

सो माय डियर लिसनर्स, 4:44 हो चुके हैं और आज हम बात कर रहे हैं एआई के बारे में। आज कुछ काम जैसे कि डेटा एंट्री, कॉल सेंटर, बेसिक अकाउंटिंग, यहाँ तक कि कंटेंट लिखना भी एआई से होने लगा है। अगर लोग नए स्किल नहीं सीखेंगे तो उन्हें नौकरियाँ नहीं मिलेंगी और उनमें कठिनाइयाँ भी हो सकती हैं। मैंने कहा ना कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। एआई कभी कभी गलत या आधी अधूरी जानकारी आपको दे सकता है। अब आपको अगर आप डीप फेक वीडियोस की बात करें और फर्जी तस्वीरें की बात करें तो वो भी बड़ी इजीली इनसे बनाई जा सकती हैं और ये पूरे समाज में भ्रम और अफवाह भी फैला सकता है। तो एआई बहुत ज़्यादा डेटा पर काम करता है। अगर डेटा सुरक्षित ना हो तो लोगों की जो निजी जानकारी है वो भी लीक हो सकती है और पब्लिकली वो स्प्रेड हो सकती है।

सोचिए जरा, अगर हर छोटी बात के लिए एआई पर आप डिपेंडेंट हो जाएं तो हमारी खुद की सोचने समझने की जो कैपेसिटी है वो कितनी कमज़ोर हो सकती है ना। मशीन मदद करे लेकिन दिमाग से बढ़कर नहीं, दिमाग को अपना काम करते रहना चाहिए। एआई बात कर सकता है लेकिन महसूस नहीं कर सकता। मैंने आपसे प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही कहा था ना कि इसमें भावनाएँ कहीं पर भी नहीं होती हैं। और अगर सोचिए आप, लोग असली ज़िंदगी की जगह मशीनों से जुड़ने लगे तो भावनात्मक दूरी जो है वो कितनी बढ़ सकती है। एआई खुद ख़तरा नहीं है, ख़तरा है उसका गलत इस्तेमाल और हमारी थोड़ी सी लापरवाही। तकनीक को दोष देने से बेहतर ये होता है कि हम खुद को अपडेट रखें, जागरूक रखें और ज़िम्मेदारी से उसका इस्तेमाल करें, उपयोग करें। एआई कोई दूर की चीज़ नहीं है, एआई आज है, एआई अभी है और शायद एआई ही हमारा कल भी होगी। लेकिन इसका जो इस्तेमाल है उसे कितनी सावधानी के साथ करना है ये बेहद ज़रूरी है।

और दोस्तों अब धीरे-धीरे वक्त हो गया है प्रोग्राम को वाइंड अप करने का और आपको ले चलने का नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ. तो चलिए खूबसूरत गाने को करते हैं एंजॉय और फिलहाल प्रोग्राम यूथ वेव को करते हैं वाइंड अप, क्योंकि आपके लिए नेक्स्ट प्रोग्राम टॉप 10 लेकर आने वाली हूं अब से कुछ ही देर में. स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो.

नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों इस पक्ष में हैं कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से एक है। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज लखनऊ में बनाए गए 86 परीक्षा केंद्रों में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। ये परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक आयोजित हुई, वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक चली। परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांच की गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान कटा है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। CBSE के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। गोरखपुर के चरगावा के खुटहन में कामकाजी महिलाओं के लिए श्रमजीवी महिला छात्रावास का निर्माण शुरू हो गया है। महिला एवं बाल कल्याण विभाग की तरफ से बनाए जा रहे 500 बेड की क्षमता वाले इस छात्रावास के निर्माण पर लगभग 47 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। छात्रावास में आधुनिक सुविधाएं होंगी। इनमें CCTV कैमरे, फायर सेफ्टी सिस्टम और शिशु सदन शामिल हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए गार्ड, महिला वार्डन और हाउसकीपिंग स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम क्षेत्रीय समाचार एकांश की प्रस्तुति।
3: विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सरकार के प्रयासों से औद्यानिक खेती के जरिए सशक्त बनते प्रदेश के किसानों पर तनवीर फातिमा की खास रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्नदाता किसानों को विभिन्न योजनाओं के जरिए आर्थिक और तकनीकी रूप से और मजबूत बनाने पर जोर दे रहे हैं। ऐसे में देश का सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश भी कृषि क्षेत्र में योगदान देकर देश में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है। उत्तर प्रदेश की लगभग 75% भूमि कृषि योग्य है और यहाँ की मिट्टी कृषि के लिहाज से बेहद उपजाऊ है। यही वजह है कि प्रदेश गेहूं, दूध, गन्ना, आलू, आम, अमरूद, मटर, मशरूम, तरबूज और शहद के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश की इस उपलब्धि ने युवा पीढ़ी को भी बागवानी को करियर के रूप में चुनने के लिए प्रेरित किया है। आज काफी संख्या ऐसे युवाओं की है जो उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद स्टार्टअप के तौर पर कृषि क्षेत्र में भविष्य तलाश रहे हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सरकार बागवानी क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड जैसे कई अन्य देशों ने भारतीय फलों के लिए अपने बाजार खोल दिए हैं।
5: भारत को हम दुनिया का फूड बास्केट बनाना चाहते हैं। अब भारत के जो फलों के टैक्सेस है बाजार में पहुंच है क्योंकि उस देश की अनुमति लेनी पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया में हम अनार और अंगूर अब भेज पाएंगे, उन्होंने बाजार खोला है। अर्जेंटीना में आम अब हमारा पहुंच पाएगा। सर्बिया में खट्टे फल और अनार के फल, ऐसे वियतनाम, अमेरिका सहित अलग अलग देशों में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। एक पहली चीज है एक्सेस हो ताकि हम भेज पाए अपने उत्पाद।
4: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए किसानों का विकास आवश्यक है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार फल उत्पादन के साथ किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए गुणवत्ता सुधार और प्रसंस्करण सुधार को भी बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि भारत वर्तमान में लगभग 1,129 लाख मीट्रिक टन फलों का उत्पादन कर रहा है। हालांकि निर्यात की बात करें तो देश लगभग 14 लाख मीट्रिक टन का ही निर्यात करता है। उन्होंने कहा कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फलों की शेल्फ लाइफ बढ़ाना जरूरी है।
5: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कई फलों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है और उस पर और काम चल रहा है, तो हम शेल्फ लाइफ बढ़ाएंगे। विदेशों में रिजेक्शन ना हो इसलिए क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम।
4: प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि फलों के बढ़ते बाजार को देखते हुए प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अलग अलग किस्म के फलों की खेती करने वाले किसानों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। क्वालिटेटिव उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसानों और एफपीओ को प्रशिक्षित करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सरकार सभी जनपदों में आधुनिक उपकरण और नर्सरी की व्यवस्था सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभा रही है। महोबा में उद्यान विभाग द्वारा बनाई गई हाईटेक नर्सरी इसी का उदाहरण है। लगभग 1.25 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस आधुनिक नर्सरी में तैयार किए गए उच्च गुणवत्ता वाले तरबूज और खरबूजे के पौधे लगाकर किसान भारी मुनाफा कमा रहे हैं। जिला उद्यान अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि पारंपरिक खेती के मुकाबले तरबूज और खरबूजे की बागवानी करने वाले किसानों की प्रति एकड़ लाखों रुपए की बचत हो रही है।
6: सब्जियों के पौधे जैसे बैंगन है, टमाटर है, पत्ता गोभी, फूल गोभी है और करेला है, कुकरबिट्स जो भी है, इसके अलावा जो है तरबूज खरबूज के भी पौधे लगाएंगे, खीरा के भी पौधे लगाएंगे। अब किसानों के पास जो है उत्पादन होना शुरू हो गया है। जैसे कि किसानों के फोन आते हैं, कहते हैं कि साहब आपने जो बैगन का पौधा दिए थे बहुत अच्छे हैं, अभी तरबूज का सीजन चल रहा है तो किसान के जो है तरबूज भी खेत में तैयार हो गए हैं। कुछ किसान ने बताया कि हमारा जो है 8-8, 10-10 किलो के तरबूज तैयार है और किसान बड़े खुश हैं कि यहाँ का जो पौधा है अच्छा है और उत्पादन अच्छा हो रहा है।
4: गोरखपुर के पिपराइच और उनौला क्षेत्र में किसान ड्रैगन फ्रूट्स की खेती कर आय बढ़ा रहे हैं। गोरखपुर के जिला उद्यान अधीक्षक पारस नाथ ने बताया कि उद्यान विभाग की योजनाओं की मदद से ड्रैगन फ्रूट्स की खेती के लिए

0: किसान बड़ी संख्या में जागरूक हो रहे हैं।
1: पहले ड्रैगन फ्रूट की खेती बहुत कम मात्रा में होती थी। उद्यान विभाग की योजनाओं में पिछले साल से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। काफी किसान भाई ड्रैगन फ्रूट की खेती से लाभ प्राप्त कर लिए हैं और भी बहुत से किसान भाई इसके लिए आवेदन पूर्व से ही कर रहे हैं।
0: वहीं ड्रैगन फ्रूट की खेती करने वाले किसान धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार के अनुदान की मदद से वो ये खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक एकड़ जमीन पर ड्रैगन फ्रूट उगाने पर लगभग 1 लाख रुपए तक की बचत हो जाती है।
2: ये बहुत अच्छी पहल है जिसमें सरकार हमें अनुदान भी देती है और इस फल की डिमांड भी है, लोगों के अंदर इसकी चाहत भी है, किसानों के अंदर भी इसकी ललक है जो हम ड्रैगन की खेती करें, क्योंकि ये विदेशी फल है। एक साल में लगभग एक एकड़ से 1 लाख की इनकम सब किसान को खर्चे निकालने के बाद हो जाती है।
0: बाराबंकी में जापानी पिंक अमरूद, स्ट्रॉबेरी के साथ ही फूलों की खेती करने वाले किसानों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बाराबंकी के प्रगतिशील किसान मोइनुद्दीन ने 2009 में वकालत छोड़कर फूलों की खेती शुरू की थी। उन्हें ये पेशा इतना रास आया कि आज उनके पॉली हाउस में उगने वाले फूल लखनऊ के साथ दिल्ली तक भेजे जाते हैं। मोइनुद्दीन ने बताया कि फूलों की खेती से एक साल में उनकी 15 से 20 लाख रुपए की बचत होती है। मोइनुद्दीन को कृषि के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए कई बार सम्मानित भी किया गया है।
3: 2013 में वाइब्रेंट गुजरात हुआ था तो उसमें हिंदुस्तान से के सभी स्टेट से दो दो प्रगतिशील किसानों को बुलाया गया था, तो मुझे बेस्ट फार्मर अवार्ड मुझे ही मिला था, श्रेष्ठ किसान अवार्ड। तो उसमें उनसे उनके सुझाव मांगे गए थे, तो उसमें हम लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया था कि कैसे आए किसान अगर दुगनी करना चाहते हैं तो कुछ धामाई जो ट्रेडिशनल फसलें हैं उससे बढ़ आगे हटके हमें फ्लोरिकल्चर, बागवानी या और जो ऐसी हमारी जो है फसलें हैं जो हाईटेक फसलें हैं उस पे अगर खेती करेंगे तो किसान निश्चित ही किसानों की आय दुगनी होगी।
0: प्रदेश के हर जिले में ऐसे प्रगतिशील और सफल किसानों की कहानी युवाओं को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। ऐसे युवाओं की मदद के लिए सरकार व्यापक कदम उठा रही है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर मनीष मिश्रा ने बताया कि सरकार कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए तमाम ऐसी योजनाएं चला रही है जो न सिर्फ आकांक्षी युवाओं को सही दिशा दिखा रही हैं, बल्कि उन्हें आधुनिक प्रशिक्षण देकर उनकी दक्षता भी बढ़ा रही हैं।
4: कोई भी युवा जो निकलते हैं पढ़ करके उनको कृषि एक बहुत ही आकर्षक माध्यम दिखाई पड़ता है और इसमें संभावनाएं इसलिए बहुत हैं क्योंकि बाकी सारे जो व्यवसाय हैं उनका एक डिक्लाइनिंग पॉइंट होता है, कृषि का कभी नहीं हो सकता है क्योंकि हमेशा हमको खाद्यान्न की, हमेशा हमें उद्यान फसलों की, हमें सब्जियों की हमको हमेशा जरूरत पड़ने वाली, तो इसमें कभी कोई कमी नहीं आ सकती। तो इस नाते से कोई भी अगर युवा आकर के एक कृषि व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो पूरे देश में एक बहुत ही परंपरागत ढांचा है इन लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए। इनको बोलते हैं एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, जो पूरे देश में खाली भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में 50 के करीब पूरे देश में है।
0: प्रदेश सरकार ने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश औद्यानिक निर्यात प्रोत्साहन का गठन किया है। फिलहाल प्रदेश में औद्यानिक खेती को मिल रही सफलता आने वाले दिनों में भारत को वैश्विक बाजार में मजबूत पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी।
5: विशेष कार्यक्रम में आज आपने सुना सरकार के प्रयासों से औद्यानिक खेती के जरिए सशक्त बनते प्रदेश के किसानों पर तनवीर फातिमा की खास रिपोर्ट।
6: स्टे ट्यून्ड टू स्टे अपडेटेड, कीप लिसनिंग टू FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
7: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
8: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
7: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
9: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरी वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
10: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
11: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
12: सो माय डियर लिस्टनर, वेरी वार्म वेलकम। 5:12 और 46 सेकंड हो चुके हैं और शुरू हो गया है आज का टॉप 10। मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे दोस्त अलका। तो बात करते हैं आज कौन से टॉप 10 आपके लिए लेकर आई हूँ मैं। जी हाँ, आज उन 10 गानों को लिस्ट में शामिल करेंगे

उन्होंने साल 2021 में बॉलीवुड में धूम मचा रखी थी। साल 2021 बॉलीवुड के लिए एक बहुत ही खूबसूरत और इमोशनल साल था। इस साल पेंडेमिक के बाद जब फिल्में ओटीटी और थिएटर्स पर लौटी तो उनके गानों ने लोगों के दिलों को खूब सुकून दिया। अब हम सब धीरे धीरे साल 2026 के लगभग आधे सफर पर आ चुके हैं, लेकिन आज हमारी टाइम मशीन का कांटा थोड़ा सा पीछे जाएगा 2021 में। और अगर हम बात करें इस खूबसूरत गाने के जो 10 नंबर पर टिका हुआ था, तो हरी साड़ी में सारा अली खान, याद है ना आपको, इस गाने में एआर रहमान साहब ने कंपोज किया था एक खूबसूरत गाने को। तो चलिए नंबर 10 पर अतरंगी रे के इस खूबसूरत ट्रैक को करते हैं एंजॉय। स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो।

सो फ्रेंड्स, अभी आपने एंजॉय किया नंबर 10 और अब बारी आ गई है नंबर 10 के बाद नंबर 9 की। और नंबर 9 पर उस वक्त जो ट्रैक था वो क्या था, ये तो आप सुनने के बाद इस ट्रैक को एंजॉय जरूर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ट्रेंडिंग चार्ट बस्टर रहा था उस वक्त। मूवी थी लव आजकल और उस मूवी का ट्रैक था शायद। तो चलिए इस ट्रैक को नंबर 9 पर करते हैं एंजॉय। स्टे ट्यून्ड 107 FM रेनबो।

सो माय डियर लिसनर्स, 5:22 हो चुके हैं और नंबर 10 से शुरू करते हुए हम पहुंच चुके हैं इस वक्त नंबर 8 पर। जी हाँ, भी आपने नंबर 10, नंबर 9 और एंजॉय किया ट्रैक जो कि 2021 में जिन्होंने बॉलीवुड में मचा रखी थी धूम। और अब अगला गाना जो नंबर 8 पर रहा, आपको बता दें कि नंबर 8 पर जो ट्रैक था वो सिंगल ट्रैक मूवी से था उस वक्त, जिसने 8 नंबर पर अपने पैर जमाए हुए थे और फिल्म थी सिंगल ट्रैक और सॉन्ग जो था वो था लुट गए। तो आइए इस ट्रैक को करते हैं एंजॉय।

आपको ये ट्रैक याद है और ये फिल्म याद है? जी हाँ, ये फिल्म थी रूही, वही फिल्म जिसमें थोड़ी सी कॉमेडी थी और थोड़ा थोड़ा हॉरर टच भी था। मिक्स थी ये फिल्म और बहुत ही मज़ेदार मूवी थी। और इस मूवी का ये खूबसूरत सा जो ट्रैक है उस वक्त था नंबर 7 पर।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
3: अरे चिंटू, तुम समोसे का खाली आलू आलू क्यों खा रहे हो?
4: अरे भाई, बहुत बीमार चल रहा हूँ मैं, और डॉक्टर ने बाहर का खाने को मना किया है, बस इसीलिए अंदर का आलू खा रहा हूँ।
1: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। सो फ्रेंड्स, वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का प्रोग्राम टॉप 10 में। 5:30:56 हो चुके हैं और समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और हम भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे देखिए हम पहुंच गए नंबर 6 पर। और अब बारी है नंबर 6 की। आपने जो 90s के दशक का टिप टिप बरसा पानी ट्रैक इंजॉय किया होगा ना, आज भी वो गाना उतना ही दमदार और उतना ही प्यारा लगता है ना। उसका कटरीना कैफ और अक्षय कुमार वाला नया वर्जन जो है वो 2021 में सूर्यवंशी फिल्म में आया और पहुंच गया था उस वक्त नंबर 6 पर।

दोस्तों आपको फिल्म याद है मिमी? जी हाँ, एक ऐसी फिल्म थी ये, जिसने इस फिल्म को देखा एक्चुअल में वही इस फिल्म को समझ भी सकता है। एक माँ और उसके बच्चे की दिल छू जाने वाली कहानी, जिसने लगभग सभी दिलों को छुआ। और उसका एक ट्रैक था परम सुंदरी, और जिसने उस वक्त नंबर 5 पर अपने पैर जमा रखे थे।

साल 2021 पूरी तरह से फिल्म शेरशाह के नाम रहा, जिसने सबको रोने पर भी मजबूर किया और जिसके गानों के बिना हमारी प्लेलिस्ट अधूरी थी। जुबिन नौटियाल और असीस कौर की आवाज में ये गाना उस साल हर गाड़ी, हर हेडफोन और हर दिल में बज रहा था।

0: हेलो,
1: टीवी देखा क्या?
0: तू तो बड़ा हीरो निकला बत्रा, मान गई
1: प्रमोशन हो गया कैप्टन बन गया हूँ।

और दोस्तों अब वक्त हो गया है नेक्स्ट ट्रैक की तरफ आगे बढ़ने का. और इससे पहले कि नेक्स्ट ट्रैक की तरफ हम आगे बढ़े, आपको बता दें कि नंबर 3 पर दोस्तों हम पहुंच चुके हैं. जी हाँ, नंबर 3 पर एक बार फिर से था फिल्म अतरंगी रे का सॉन्ग. और इस बार सॉन्ग बदल चुका था क्योंकि नंबर 10 से ये शुरुआत हुई थी. नंबर 10 पर भी अतरंगी रे के ट्रैक ने अपने पैर जमा रखे थे, जिसे आपने इंजॉय किया था चकाचक. और अब आगे ये बारी फिर से अतरंगी रे की, जिसने नंबर 3 पर अपने पैर जमा रखे थे. बस इस बार जो ट्रैक था वो बहुत ही खूबसूरत था.

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। और फ्रेंड्स, वक्त हो गया है अब जल्दी से नंबर टू की तरफ आगे बढ़ने का। जी हाँ, मैंने आपसे कहा था ना कि 2021 का जो साल रहा वो शेर शाह फिल्म के नाम था। पूरी तरह से अपने पैर जमा चुकी थी काउंटडाउन पर और एक नहीं कई कई पायदानों पर इसके गाने जो थे वो धूम मचा रहे थे। शेर शाह का ये बी प्राक की आवाज़ में ट्रैक जो था वो नंबर दो पर रहा। रांझा न सिर्फ भारत में बल्कि ग्लोबल बिलबोर्ड चार्ट्स पर भी ट्रेंड कर रहा था उस वक्त।

0: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
1: माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्तानें,
2: वो भूली दास्तान
1: से छिटकती यादों के बीच दिल के वो खूबसूरत

0: रात की बहती तन्हाइयों के बीच महकते हुए दिलकश तराने,
1: खोया खोया चांद, खुला आसमान,
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

0: ओए सब ठीक ठाक? चिट्ठियां लिखना तो तुझे याद ही नहीं रहता। वैसे आज 11 फरवरी है, तुझे याद भी है इस तारीख को क्या हुआ था?
1: जय दोस्तों, अब वक्त हो गया है कि अब आपसे इस प्रोग्राम से विदा ले ली जाए। ये कहते हुए कि भाई अभी नंबर 10 से लेकर नंबर 2 तक हमने हर ट्रैक को एंजॉय किया और अलग अलग मूवीज़ ने अपने अपने पायदानों पर पैर जमा रखे थे, लेकिन बात करें अगर शेरशाह मूवी की तो 2021 में ये एक ऐसी सिंगल मूवी थी जिसने कई सारे पायदानों पर अपनी मूवीज़ के स्ट्रैंक्स को जमा कर रखा हुआ था, कई सारी जगहों पर जगह बना कर रखी हुई। 2021 में शेरशाह के गानों ने उस साल कामयाबी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। साल 2021 के इन गानों को का जो मिजाज था वो बहुत ज़्यादा मेलोडियस था। लोगों ने इस साल के इन गानों को बेहद पसंद किया, इमोशनल था और सोशल मीडिया फ्रेंडली भी थे ये गाने। तो चलिए इस ट्रैक की तरफ आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले अपने सभी लिसनर्स से एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी और वो ये है कि भाई कुछ ही देर में आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम शुरू होने वाला है और वो फेवरेट प्रोग्राम मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार बता देती हूँ। भाई आपका अपना प्रोग्राम है हेलो एफएम, एक घंटे के बाद आप इस ट्रैक को एंजॉय करेंगे, इस प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे, क्योंकि अभी आप इंजॉय करने वाले हैं शामी अवध। तो 7 बजे बिल्कुल रेडी रहिएगा नंबर मिलाने के लिए 2238852 या 2238845। और ये बात मैं आपको एक घंटे पहले इसलिए बता रही हूँ ताकि आप बिल्कुल तैयार रहें अपने फ़ोन के साथ, अपने मोबाइल के साथ नंबर को डायल करने के लिए। फिलहाल प्रोग्राम को यहीं पर करते हैं वाइंड अप और कुछ ही देर के बाद लेकर आने वाले हैं आपके लिए अगला प्रोग्राम शामी अवध। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम लेकर आते हैं लखनऊ शहर से जुड़ी ही बहुत सारी अपडेट्स। सिर्फ लखनऊ शहर से जुड़ी हुई नहीं, कई सारी ऐसी अपडेट्स भी होती हैं दोस्तों जो कि एजुकेशनल होती हैं, जो कि कल्चरल भी होती हैं। हमारे शहर में क्या कुछ गतिविधियाँ हो रही हैं, क्या कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कहाँ आपको टाइमली पहुँचना है, कौन सा प्रवेश पत्र आपको डाउनलोड करना है, किस एग्जाम का रिजल्ट आ गया है, या फिर कहाँ पर ट्रैफिक अपडेट्स आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी। तो इस तरह की कुछ ढेर सारी अपडेट्स को लेकर हाजिर होते हैं आप सभी के लिए नेक्स्ट प्रोग्राम में। ट्यून रखिए 100.7 एफएम रेनबो आरजीएल का के साथ। और अब बिना बातों को और लंबा खींचे आपको नंबर 1 पर इस ट्रैक की तरफ ले चलते हैं।
0: सब ठीक ठाक? चिट्ठियां लिखना तो तुझे याद ही नहीं रहता। वैसे आज 11 फरवरी है,

0: हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स स्ट्रीट फूड 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब यारी।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी।

नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली मांग के बीच प्रदेश में निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन, किसानों, व्यापारियों और उद्योगों को बिजली संकट का सामना न करना पड़े, इसके लिए सभी स्तरों पर सतत मॉनिटरिंग की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ती विद्युत मांग को देखते हुए उत्पादन इकाइयों की अधिकतम क्षमता का उपयोग किया जाए और सभी संयंत्रों में तकनीक दक्षता और रखरखाव व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। साथ ही ट्रांसमिशन नेटवर्क को और अधिक मजबूत, आधुनिक और भरोसेमंद बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बिजली वितरण व्यवस्था को और अधिक जवाबदेह तथा उपभोक्ता केंद्रित बनाने के भी निर्देश दिए। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज दो पालियों में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक आयोजित हुई, वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक चली। परीक्षा के लिए प्रदेश के 9 जिलों प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बरेली में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत आज से 3 दिवसीय प्रवास पर लखनऊ में रहेंगे। सरसंघ चालक सरस्वती कुंज निराला नगर में चल रहे पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम में प्रशिक्षण लेने आए शिक्षणार्थियों के मध्य बौद्धिक और संवाद के विभिन्न कार्यक्रमों का हिस्सा लेंगे। इस कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम में नेपाल सहित अवध, कानपुर, गोरक्ष और काशी प्रांत के 289 कार्यकर्ता प्रशिक्षण ले रहे हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी और आसपास के कुछ स्थानों पर कल दिन में लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर रात्रि के तापमान में वृद्धि का भी अनुमान जताया गया है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लू के ऑरेंज अलर्ट के साथ ही विभाग ने कहीं कहीं मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ तेज हवा चलने का पूर्वानुमान जताया है। लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आने वाले 3 दिनों में प्रदेश में गर्मी का प्रकोप बढ़ने की संभावना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
3: धड़कन लखनऊ की।

0: वाह, कितनी लाजवाब डिशेस बनाती हो, इतनी रेसिपीज कहाँ से लाती हो?
1: शत्रुपा से। अरे बहू, मेरा जोड़ों का दर्द तो बिल्कुल चला गया, कहाँ से लाई है नुस्खा? शत्रुपा से माँ जी।
2: वाह, तेरा घर तो एकदम पिक्चर परफेक्ट है, कहाँ से लाती हो इतने नए नए आइडियाज?
1: शत्रुपा से।
3: घर, बच्चे, शॉपिंग, किचन, गार्डन, वार्डरोब, कैसे मैनेज कर लेती हो इतना सब?
1: शत्रुपा से।
4: हमारी होम मेकर्स की कंप्लीट मैगजीन शत्रुपा, मंडे टू थर्सडे दोपहर 12 बजे, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।

खूबसूरत नंगारे ढोल के साथ शुरुआत हो गई है आज के प्रोग्राम श्याम अवध की और एक बार फिर से अलका है आपके साथ 100.7 FM रेनबो पर। भाई अपडेट्स का सिलसिला भी चलेगा पूरे एक घंटे श्याम अवध में और फिलहाल इस गाने को डिस्टर्ब नहीं करूंगी, बहुत ही प्यारा ट्रैक है, चलिए थोड़ा सा थिरकते हैं।

वेलकम है आप सभी का फ्रेंड्स, और करने वाले हम बहुत सारी बातें, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इस तपती जलती गर्मी और इस धूप की जिसने ऑलमोस्ट सबको परेशान कर रखा है। लेकिन थोड़ी सी परेशानी के बाद अभी और इसमें इजाफा होने वाला है, वो ये कि कल से लग रहे हैं नौतपा। जी हाँ, जो नौतपा के 9 डेज होंगे वो सबसे ज़्यादा गर्म दिन होंगे, और इन गर्म दिनों में उससे भी ज़्यादा हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा जितना अभी पिछले कुछ दिनों से हम रखते आ रहे हैं। और अगर आपने पिछले कुछ दिनों में अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा है, इस धूप से खुद को नहीं बचाया है, तो ये समझ लीजिए कि आने वाले 9 दिन आपको काफ़ी कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ सकती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बॉडी को आप हाइड्रेट रखें, और ज़रूरी है खूब सारा पानी पीजिए। और पानी ही नहीं, बहुत सारी ऐसे लिक्विड डाइट्स हैं जिन्हें आपको टाइम टू टाइम लेना होगा, क्योंकि पानी सिर्फ पानी होता है, और पानी में कई जगह अगर आपने नींबू पानी या फिर आपने छाछ पिया, आपने नारियल पानी पिया, तो ये आपको ज़्यादा हाइड्रेट रख सकते हैं एक नॉर्मल पानी के कंपैरिजन में। इसके अलावा आप डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं। इस तरह के पानी की डाइट आपको लेनी ही लेनी होगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्टेप जो होता है वो ये कि आप इस चलती गर्मी से, इस धूप से अपने आप को, खुद को बचाएं। क्योंकि अगर आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी कोई काम है, तब तो पूरी तरह से अपने आप को कवर करके आप बाहर निकलें, अन्यथा घर से बाहर ना निकलें। क्योंकि हम ये उम्मीद भी नहीं कर सकते, मतलब एक अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि आने वाले 9 दिन कितने गर्म होने वाले हैं। इसके अलावा कोशिश कीजिए कि जो ड्रेस आप चूज़ कर रहे हैं इस गर्मी के दौरान पहनने के लिए, वो कॉटन की हो, प्योर कॉटन। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत लाइट कलर के कपड़े, बहुत कोशिश कीजिए व्हाइट पहनिए, अदरवाइज कॉटन के बहुत लाइट शेड के कपड़े इस्तेमाल कीजिए। डार्क ब्लू, ब्लैक और इस तरह के कलर्स को अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको लगता है कि शायद सभी लोग इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये काफ़ी इफेक्टिव बातें होती हैं। जब आप इसे इन पर इम्प्लीमेंट करते हैं, देन आप उसके बाद जब फेस करते हैं, सनलाइट में बाहर निकलते हैं, तो आपको खुद रिलैक्स फील होगा और आपको लगेगा कि वाकई ये चीज़ें अपना असर दिखाती हैं। इसलिए जल्दी ये तपती धूप जो है इसे हम नहीं रोक सकते, लेकिन इससे खुद को बचा जरूर सकते हैं।

सो फ्रेंड्स, अगले अपडेट का टाइम हो गया है 6:18 हो चुके हैं दोस्तों, और आज का शामी वादा आप इंजॉय कर रहे हैं आरजे अलका के साथ। तो जल्दी से बता दें आपको लेखपाल भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी के बारे में क्या है जानकारी। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 21 मई को प्रदेश भर में 7,994 पदों के लिए आयोजित लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा की प्रोविजनल उत्तर कुंजी जो है वो जारी कर दी है, और ये आयोग की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, और अभी फिलहाल ये 28 मई तक उपलब्ध रहेगी। तो अगर अभी तक आपने ये उत्तर कुंजी नहीं देखी है तो आप इसे देख सकते हैं, और कहां देखना है किस वेबसाइट पर आपको बता दें, upssc.gov.in, एक बार फिर से आप साइट नोट कर लें, upssc.gov.in पर देख सकते हैं इस उत्तर कुंजी को, जिसके लिए

डेट जो है वो 28 मई डिसाइड की गई है, इसके बाद आप इस उत्तर कुंजी को नहीं देख पाएंगे। फिलहाल जो वेबसाइट है इस पर जाइए और अपनी उत्तर कुंजी को देखिए। लगभग 366,712 स्टूडेंट्स जो थे वो इस लेखपाल भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे। फिलहाल गानों का सिलसिला भी लगातार चलता रहेगा और इसके संग संग चलता रहेगा अपडेट्स का सिलसिला भी।

0: मैं समय हूं और मैं हरीश बिमानी हूं और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।
1: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
2: धड़कन लखनऊ की।

0: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई,
1: शाम होने को है।
0: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

0: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: तुम दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हो।
2: सच? अच्छा ये बताओ, तुम्हें ये कैसे पता चला?
1: अरे देखो ना, तुम्हें देखते ही अब रोटियां भी जलने लगी हैं।
2: क्या?
1: हाँ।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: सुबह मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई,
5: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई, जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदाबहार गीत
4: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।

0: करे नहीं दिए।
1: 6:31 और 4 सेकंड हो चुके हैं दोस्तों, फर्स्ट हाफ हम क्रॉस कर चुके हैं आज के शाम में अवध का और गानों का धमाकेदार सिलसिला लगातार जारी है और अपडेट्स का भी। सो अभी अपडेट्स बहुत सारी बाकी हैं, फिलहाल इस खूबसूरत गाने को पहले एंजॉय करते हैं और इस पर थिरकते हैं।

सो फ्रेंड्स, वक्त बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है. 6:35 और 2 सेकेंड हो चुके हैं और गानों का सिलसिला भी लगातार जारी है. लेकिन हाँ, अपने सभी सुनने वाले सभी प्यारे लिसनर्स से एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जनरली हो क्या रहा है कि दिन भर जो है वो कड़कती चमकती और परेशान करती जलाती धूप रहती है. होता यूँ है कि 10 बजते हैं, जैसे ही आप सोचते हैं कि घर के काम खत्म हुए हैं और अब हम शायद मार्केट जा सकते हैं, वैसे ही सूर्य देवता कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप घर में रहिए, बाहर निकलने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. क्योंकि वो धूप आपको बाहर निकलने की इजाज़त और सच पूछे तो हिम्मत बिल्कुल भी नहीं दे पा रही है. और इसी वजह से होता यूं है कि जो फेस्टिवल है, अभी बकरीद की तैयारियां चल रही हैं, लोग शाम होते ही मार्केट की तरफ निकल पड़ते हैं कि जल्दी जल्दी शॉपिंग कर लीजिए, अदरवाइज कल फिर पूरा दिन नहीं निकल पाएंगे उस तेज धूप में. तो इस वजह से मार्केट में रश बहुत ज्यादा हो जाता है. अब इसे तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, फेस्टिवल है तो शॉपिंग तो बनती है, शॉपिंग तो करना ही है. लेकिन हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि अगर एक लोगों के शॉपिंग करने से काम बनता है, दो लोगों के शॉपिंग करने से काम बनता है, तो पूरी फैमिली को साथ जाने की आवश्यकता मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं है. और खासतौर पर व्हीकल जो आप यूज कर रहे हैं वो बहुत मायने रखता है. अगर आपको लगता है पब्लिक कन्वेंस से पहुंचने के बाद आसानी से आपके काम हो सकते हैं, तो बिल्कुल यही रास्ता चुनिए. क्योंकि अननेसेसरी एक्स्ट्रा व्हीकल्स जब रोड पर हो जाएंगे तो ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा हो जाएगा. आपने वो भी देखा होगा, लखनऊ में अब बहुत सारे चौराहों पर यू टर्न कर दिया गया है. तो यू टर्न की वजह से देखिए बहुत सारे जो जाम की स्थिति है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुकी है. ट्रैफिक पुलिस को भी काफ़ी ज़्यादा अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही है. हाँ, थोड़ा सा पब्लिक को यू टर्न लेना पड़ता है, 1-2 मिनट का टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन हाँ रश से काफ़ी हद तक बच गए. तो जब प्रशासन व्यवस्था कर सकता है तो फिर हम अपने लिए खुद एक ईजी स्टेप क्यों नहीं ले सकते. लगता है कि पब्लिक कन्वेंस से जाकर या 2-व्हीलर से जाकर आपका काम बन सकता है, तो अननेसेसरी एसी चलाकर 4-व्हीलर से जाने की ज़रूरत नहीं है. ऑलरेडी शाम हो चुकी है और शाम को शॉपिंग आप कर सकते हैं बहुत आसानी से. तो बिल्कुल इस छोटे से स्टेप को अपनाइए और गर्मी से बच कितने हुए ठंडी शाम में, ठंडी तो नहीं खाऊंगी, हाँ थोड़ी सी सुकून भरी शाम में आप आराम से शॉपिंग कर सकते हैं.

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: फ्रेंड्स, कुछ ट्रेन्स ऐसी हैं जिनके बदलाव किए गए हैं रूट में। लखनऊ की कुछ ट्रेनें हैं जिनके रूट में बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा लखनऊ जंक्शन पर शॉर्ट टर्मिनल भी कुछ ट्रेन्स होंगी, उनके बारे में आपको बता दें कि जिन ट्रेनों के रूट्स में बदलाव किया गया है वो है कटिहार अमृतसर एक्सप्रेस 4 से 9 जुलाई तक ऐशबाग बादशाहनगर उन्नाव और बाराबंकी नहीं जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि दरभंगा नई दिल्ली विशेष गाड़ी जो है वो 6 से 10 जुलाई तक ऐशबाग नहीं आएगी। छपरा मथुरा जंक्शन एक्सप्रेस 6, 8 और 10 जुलाई को ऐशबाग बादशाहनगर नहीं आएगी। इसके अलावा बरौनी नई दिल्ली विशेष गाड़ी 6 से 10 जुलाई तक ऐशबाग नहीं रुकेगी। ये कुछ 4 ट्रेनें ऐसी थीं जिनके रूट्स में बदलाव किया गया है और जिन स्टेशंस पर ये नहीं जाएंगी उनके बारे में भी बता दिया गया। इसके अलावा लखनऊ जंक्शन पर शॉर्ट टर्मिनल भी कुछ ट्रेन्स होगी, उनके बारे में भी आपको भी जानकारी देंगे। फिलहाल एक गाने को एंजॉय करते हैं, वापस आ रहे हैं आपके पास। ट्यून रखिए 100.7 FM रेनबो।

जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ ऐसी ट्रेन्स के बारे में भी मैंने अभी आपको कहा था कि आपको जानकारी दूंगी और बताना है आपको, तो चलिए आपको बताते चलते हैं कि अगली जो ट्रेन्स में जो चेंजेस हुए हैं, यानी कि जो शॉर्ट टर्मिनल ट्रेन्स हैं उनके बारे में बता दें। ग्वालियर बलरामपुर एक्सप्रेस 1 जुलाई को बलरामपुर के बजाय लखनऊ जंक्शन पर यात्रा अपनी स्टॉप कर देगी। बलरामपुर ग्वालियर एक्सप्रेस 2 जुलाई को बलरामपुर के बजाय लखनऊ जंक्शन से चलाई जाएगी। गोरखपुर इज्जत नगर एक्सप्रेस 7 से 9 जुलाई तक गोरखपुर के बजाय लखनऊ जंक्शन से चलाई जाएगी और मुंबई गोरखपुर 8 जुलाई को जंक्शन पर ही रोक दी जाएगी। तो काफी सारे बदलाव इस वक्त ट्रेन के रूट्स में किए गए हैं। बहुत सारी नई ट्रेन भी छुट्टियों को देखते हुए अभी नई चलाई गई हैं, यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए। तो फिलहाल इस तरह की बहुत सारी अभी अपडेट्स भी आपको जैसे भी हमें प्राप्त होती है हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। फिलहाल वक्त हो गया 6:50 और 22 सेकंड 100.7 FM रेनबो पर आप इंजॉय कर रहे हैं आज का शामी अवध अलका के साथ।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीट।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ।

सॉरी लिसनर्स, 6:57 हो चुके हैं और वक्त हो गया है प्रोग्राम को वाइंड अप करने का। तो शामी अवध को करती हूँ यहीं पर वाइंड अप और लेकर आऊंगी आप सभी के लिए नेक्स्ट प्रोग्राम। जैसे कि कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था, तैयार रहिएगा 22:38:52 या 22:38:45 मिलाने के लिए। हल्का रहेगी पूरे एक घंटे आपके साथ आज के हेलो FM में। तो मिलाइए बेझिझक अपनी पसंद के गानों को इंजॉय करने के लिए नंबर्स को और डायल करते रहिए, सुनते रहिए 107 FM रेनबो।

नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और अब सुनिए प्रदेश के टॉप 10 समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली मांग के बीच प्रदेश में निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन, किसानों, व्यापारियों और उद्योगों को बिजली संकट का सामना न करना पड़े, इसके लिए सभी स्तरों पर सतत मॉनिटरिंग की जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि राजस्व मामलों में त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि भूमि और राजस्व से जुड़े मामलों में अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को लेकर आज लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत बनाने और जमीनी स्तर पर काम करने के निर्देश दिए। लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल ने आज नगर निगम मुख्यालय में फैजुल्लागंज वार्ड से ललित किशोर तिवारी को पार्षद पद की शपथ दिलाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ललित किशोर तिवारी को शपथ न दिलाने के कारण लखनऊ की महापौर के सभी वित्तीय अधिकार सीज कर दिए थे। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज दो पालियों में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। परीक्षा के लिए प्रदेश के 9 जिलों प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बरेली में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर ब्रिजघाट में कल होने वाले गंगा दशहरा पर्व को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं अमरोहा में गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए नेशनल हाईवे पर आज दोपहर 12 बजे से रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया है। आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत आज से 3 दिवसीय प्रवास पर लखनऊ में रहेंगे। सरसंघ चालक सरस्वती कुंज निराला नगर में चल रहे पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम में प्रशिक्षण लेने आए शिक्षणार्थियों के मध्य बौद्धिक और संवाद के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। लखनऊ में आज संडे ऑन साइकिल के 75वें संस्करण के अंतर्गत फिट इंडिया साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल रैली में सीमांत मुख्यालय लखनऊ एवं चतुर्थवाहिनी के अधिकारियों और बल कार्मिकों ने भाग लिया। गोरखपुर में चरगावा के खुटहन में कामकाजी महिलाओं के लिए श्रमजीवी महिला छात्रावास का निर्माण शुरू हो गया है। 500 बेड की क्षमता वाले इस छात्रावास के निर्माण पर लगभग 47 करोड़ से अधिक की लागत आएगी। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर, चंदौली, वाराणसी और आसपास के कुछ स्थानों पर कल दिन में लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ तेज हवा चलने का पूर्वानुमान जताया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 8 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: बस इंतजार हो गया है खत्म, क्योंकि 4:07:04, देखिए ना मैं भी कितना जल्दबाजी में हूँ और टाइम को जस्ट अपोजिट कर दिया। 7:04:29 हो चुके हैं और हमारे लिसनर्स जो हैं वो बिल्कुल इस

कॉलर्स के रूप में आ चुके हैं और कॉल मिला रहे हैं और हमारे फोन लाइन की जो लाइट है वो ब्लिंग ब्लिंग ब्लिंग कर रही है। जल्दी जल्दी फोन उठाना है, बात करनी है और उनके पसंद के ट्रैक को प्ले करना है। जिन्होंने अभी तक नहीं मिलाया है वो मिलाए 2238852 या 2238845।

0: बिल्कुल, जो आपकी रूह को चैन दे, प्यार दे, और वो जो गाना आपको सुकून दे, उसी गाने को सुनिए ताकि आपका भी दिल खुश हो जाए, चेहरा खिल उठे, मुस्कुरा उठे। तो देखिए इस वक्त हमारे साथ हमारे लाइन पर कौन है कॉलर जिनसे हमें बात करनी है इस वक्त। हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी, वेलकम है आपका, कौन बोल रहे हैं
1: जी? सबसे पहले आपको प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम।
0: सलाम।
1: मेरा नाम है मोहम्मद फैज, रामपुर कटरा फुलवारी बाजार जिला बाराबंकी से बात कर रहे हैं।
0: फैज एक बात कहूँ तुम्हें, मुझे लगता है कुछ दिन के बाद शायद जिस तरह से लयबद्धि की है ना तुमने, तुम्हें लगता नहीं है कि अपना नाम बताने की जरूरत पड़ेगी?
1: सही बात है।
0: ओके तो बताएं फैज, क्या हाल है, कैसे हैं आप?
1: जी दीदी हम बहुत ही बढ़िया हैं। मौसम थोड़ा आज गर्मी थी, हवाएं चल रही थी, थोड़ा राहत था।
0: कल तो मेरी आपकी बात हुई थी तब आपने बताया था कि कुछ आंधी वांधी भी आई है थोड़ी बहुत, हवा चल
1: रही थी लेकिन आज आंधी नहीं आती, आज हल्की हल्की हवा चल रही थी लेकिन मौसम काफी खुशनुमा था।
0: अच्छा मौसम खुशनुमा था बाराबंकी में? ओके
1: जी जी। और दीदी हमारे गांव का मेला लगा हुआ, बहुत ही गरबा मेला लगा हुआ।
0: अच्छा,
1: सभी लिसनर से मेरी यह निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा आकर मेले में जो है तशरीफ करें।
0: बिल्कुल, तो बताइए फिर आज गाना कौन सा सुनेंगे?
1: जी हमारे गांव का मेला है तो गाना सुनना चाहेंगे, मेला दिलों का आता है एक बार आके चला जाता, ये वाला सॉन्ग है?
0: अरे बिल्कुल है भाई, आपकी पसंद का गाना सुनाने के लिए तो प्रोग्राम बना है। तो बिल्कुल, किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं?
1: जी जी, सबसे पहले मेरी क्यूट सी प्यारी वाली आरजे अलका दीदी को।
0: हाँ थैंक यू।
1: उसके बाद मोहम्मद सद्दाम भाई है, और मोहम्मद मुजीब भाई है, मोहम्मद आसिफ भाई है, रिंकी पिंकी है, समा परवीन अप्पा है, गुलाब साहब है, सादिया है, साहिबा है, और यासिर हमीद भाई है चौकंडी वाले, और उसके बाद में बस इतना ही दीदी।
0: बस इतना ही है? ओके
1: दीदी,
0: हाँ हाँ
1: दीदी, कभी आइएगा हमारे गाँव, डाल जाइएगा।
0: अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू
1: सो मच।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: सो फ्रेंड्स, वक्त हो गया है अब

0: अगले कॉलर को लाइन पर लेने का, तो चलिए करते हैं उनसे बात। हेलो
1: हेलो, नमस्कार मैम जी।
0: नमस्ते जी, क्या नाम है आपका, कौन बोल रहे हैं?
1: राजेंद्र गंगवार, कस्बा कोरिया, तहसील नवाबगंज, झुमका सिटी, बरेली, पुराना गांव, खिरिया सैदपुर से बोल रहे हैं मैम जी।
0: ओके, तो आपने बहुत लंबा एड्रेस बता दिया, नाम आपका पीछे छूट गया। एक बार फिर से बताइए।
1: बता दे रहे हैं
0: राजेंद्र गंगवार। राजेंद्र, ओके, मैंने सही पहचाना। राजेंद्र जी कैसे हैं आप, बताइए।
1: बस ठीक है मैम जी, हम ठीक हैं, आप कैसे हो? आकाशवाणी लखनऊ में सब लोग बर्बाद,
0: सभी लोग बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करेंगे कि आप भी और परिवार भी बिल्कुल अच्छा रहे, इसलिए क्योंकि जो मौसम है वो बहुत इस वक्त मतलब कष्ट देने वाला हो रहा है।
1: हाँ जी, जैसे ही सूरज निकलते हैं वैसे ही गर्मी चालू हो जाती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मॉर्निंग में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 8-9 बजे से ही धूप जो है वो कितनी खतरनाक होने लगती है, 10 बजे तक तो बहुत ज्यादा धूप हो जाती है।
1: बताइए, 8 बजे से ही बहुत।
0: हाँ, वही मैंने कहा। तो राजेंद्र जी बताएं आज क्या सुनना चाहेंगे।
1: हाँ जी, तो इसी उपलक्ष में हमें कुली नंबर मूवी का सॉन्ग सुनवा दीजिएगा, जेठ की दोपहरी में।
0: वाह भाई वाह, मतलब गर्मी की बात हुई और आपने खूबसूरत सा गाने की फरमाइश की, बहुत बढ़िया।
1: हाँ जी, कुछ दोस्तों के नाम है।
0: बिल्कुल बिल्कुल लीजिए।
1: हाँ जी, भगवान सिंह परमार जी हैं, शाहरुख नूर अंसारी जी हैं, और गंगादत्त सावंकर जी हैं, सोनू जी हैं, लोकेंद्र वर्मा जी हैं, गौतम राय जी हैं, और साथ में आप और लखनऊ के पूरा परिवार सुनेगा और जितने लाइव श्रोता सुनेंगे सभी को सॉन्ग डेडिकेट रहेगा मैम जी।
0: थैंक यू सो मच राजेंद्र जी, थैंक यू।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सुचारू और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश, कहा बिजली उत्पादन इकाइयों को पूरी दक्षता से किया जाए संचालित। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर की चर्चा, मार्को रूबियो कल आगरा में ताजमहल का करेंगे दीदार। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न, प्रदेश के 9 परीक्षा केंद्रों पर नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए किए गए विशेष इंतजाम। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक तापमान में वृद्धि और लू चलने की जताई संभावना। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली मांग के बीच प्रदेश में सुचारू और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता, किसानों, व्यापारियों और उद्योगों सहित प्रदेश के प्रत्येक उपभोक्ता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा और राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत की उपस्थिति में ऊर्जा विभाग, पावर कॉरपोरेशन एवं डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ती विद्युत मांग को देखते हुए उत्पादन इकाइयों की अधिकतम क्षमता का उपयोग किया जाए और सभी संयंत्रों में तकनीकी दक्षता तथा रखरखाव व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने ट्रांसमिशन नेटवर्क को और अधिक मजबूत, आधुनिक एवं भरोसेमंद बनाने पर जोर देने के साथ ही फीडर वाइज मॉनिटरिंग करके जवाबदेही तय करने और शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने आंधी तूफान के बावजूद विद्युत व्यवस्था बहाल रखने के लिए त्वरित रिस्पॉन्स सिस्टम सक्रिय रखने को भी कहा। दीपाली सिंह, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। अमेरिकी विदेश मंत्री कल आगरा में ताजमहल का दीदार करेंगे। वो विशेष वायुयान से आगरा पहुंचेंगे। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिकी विदेश मंत्री का काफिला खेरिया एयरपोर्ट से शिल्पग्राम पहुंचेगा। शिल्पग्राम से बैटरी चलित गोल्फ कार्ट में बैठकर वह ताजमहल के पूर्वी गेट पहुंचेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री के आगरा भ्रमण के मद्देनजर केंद्रीय एवं प्रांतीय खुफिया एजेंसी सतर्क हैं। ताजमहल के आसपास के होटलों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। रूबियो भारत की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर है। अमेरिकी विदेश मंत्री के ताजमहल भ्रमण के दौरान आम पर्यटकों के लिए ताजमहल खुला रहेगा। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
0: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आज लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों, कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्षों के साथ 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की। इस दौरान बसपा प्रमुख मायावती ने उन्हें जीत का मंत्र देते हुए कहा कि प्रदेश में बसपा की एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ता अभी से जुट जाएं। उन्होंने कहा कि देश में चुनाव जिस प्रकार की नई नई चुनौतियों के बीच हो रहे हैं, उसको देखते हुए पार्टी की तैयारियों को हर स्तर पर और भी चुस्त दुरुस्त बनाने की जरूरत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉ मोहन राव भागवत आज से 3 दिवसीय प्रवास पर लखनऊ में हैं। सर संघचालक सरस्वती कुंज निराला नगर में चल रहे पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम में प्रशिक्षण लेने आए शिक्षार्थियों के मध्य बौद्धिक और संवाद के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम में नेपाल सहित अवध, कानपुर, गोरक्ष और काशी प्रांत के 289 कार्यकर्ता प्रशिक्षण ले रहे हैं।

0: की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। प्रदेश के 9 जिलों प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बरेली में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। एक रिपोर्ट।
1: लखनऊ में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 तक चली, वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 से शाम 4:30 तक हुई। इस बार परीक्षा से पहले चेहरा पहचान प्रणाली लागू की गई। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले इस सिस्टम से होकर गुजरना पड़ा। इस परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश से 37,000 से अधिक परीक्षार्थी पंजीकृत थे। परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान कटा है, जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में कोडीन सिरप की अवैध तस्करी मामले की जांच कर रही स्पेशल टास्क फोर्स STF ने कल अदालत में 40,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। जांच में 900 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। इससे पहले भी STF ने अदालत में एक चार्जशीट दाखिल की थी। STF के अधिकारियों ने बताया कि NDPS एक्ट समेत अन्य धाराओं में अदालत में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह और अमित टाटा के खिलाफ चार्जशीट कल दाखिल की गई। प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी और आसपास के कुछ स्थानों पर कल दिन में तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर रात्रि के तापमान में वृद्धि का भी अनुमान जताया गया है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लू के ऑरेंज अलर्ट के साथ ही विभाग ने कहीं कहीं मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ तेज हवा चलने का पूर्वानुमान जताया है। लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आने वाले 3 दिनों में प्रदेश में गर्मी का प्रकोप बढ़ने की संभावना है।

0: क्रम में जारी रहेगा।
1: हापुड़ की तीर्थनगरी गढ़मुक्तेश्वर में कल होने वाले गंगा दशहरा पर्व को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस प्रशासन ने आज डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर से मेला क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया। वहीं अमरोहा में भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज से रूट डायवर्जन लागू किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व पर गंगा स्नान के लिए आज से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट पहुंच रहे हैं। उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए घाटों पर पीएससी, फ्लड पीएससी, फायर टेंडर्स के साथ एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है। इसके साथ ही यातायात को सुचारू रखने के लिए रूट डायवर्जन लागू किया गया है। नदी में बैरिकेटिंग कराने के साथ गोताखोर और नाविक भी तैनात रहेंगे। मेला क्षेत्र की सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। 3 दिनों तक वाले गंगा दशहरा मेले में श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह ठंडे पानी की आपूर्ति के लिए वाटर कैंपर और वाटर टैंकर की व्यवस्था की गई है। रविंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, हापुड़।
1: सशस्त्र सीमा बल द्वारा आज लखनऊ में संडे ऑन साइकिल के 75वें संस्करण के अंतर्गत फिट इंडिया साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सीमांत मुख्यालय लखनऊ एवं चतुर्थवाहिनी के अधिकारियों और बल कार्मिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ईंधन की बचत, पर्यावरण संरक्षण और लोगों को फिट एवं स्वस्थ रहने के प्रति जागरूक करना था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सुचारू और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश, कहा बिजली उत्पादन इकाइयों को पूरी दक्षता से किया जाए संचालित। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी

मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर की चर्चा। मार्को रूबियो कल आगरा में ताजमहल का करेंगे दीदार। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। प्रदेश के 9 परीक्षा केंद्रों पर नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए किए गए विशेष इंतजाम। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक तापमान में वृद्धि और लू चलने की जताई संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ये है 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। सो फ्रेंड्स, एक लंबे न्यूज ब्रेक के बाद वापस आपके साथ है आपकी रेडियो साथ है अलका, और प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं आज हेलो एफएम मेरे साथ 100.7 एफएम रेनबो पर। हमारे एक कॉलर हैं जो काफी देर से लाइन पर है, चलिए करते हैं इनसे बात और इनका नाम पता जानते हैं और इनकी पसंद जानते हैं। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम मैम।
0: सलाम, कौन बोल रही हैं?
1: मैं यास्मीन बानो बात कर रही हूँ, सीतापुर
0: से। यास्मीन, यास्मीन कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी?
0: मैं भी ठीक हूँ। यास्मीन क्या करती हैं आप?
1: मैं इस टाइम तो ब्यूटीशियन का कोर्स करती हूँ।
0: वेरी गुड, तो लोगों को खूबसूरत बनाती हैं आप?
1: जी बनाती नहीं बट बनाना सीख रही हैं।
0: अच्छा, कोर्स कर रही हैं अभी? ओके
1: जी।
0: तो बताएं यास्मीन, आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: बागवान मूवी का सॉन्ग सुनना चाहती हूँ।
0: कौन सा?
1: पहले कभी ना मेरा हाल ऐसा हुआ।
0: और किसको सुनवाना चाहती हैं?
1: मैम सुनवाना जितने लोग सुन रहे हैं सभी को, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस टाइम में रेनबो बहुत कम सुन पाती हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है।
0: अच्छा, आप अपनी ट्रेनिंग सेंटर चली जाती होंगी?
1: जी जी जी, वहाँ मैं जाती हूँ, फिर शाम को मतलब वापिस आती हूँ, तो यही कार्यक्रम मैं सुन पाती हूँ 7 से 9-10 तक।
0: ओके,
1: अगर नहीं सुन पाते हैं।
0: देखिए, ये तो एक जुड़ाव वाली बात होती है कि जितना भी समय आपको मिलता है उस समय आप रेनबो को वक्त देती हैं, ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। दिन में तो चलिए आप अपने ट्रेनिंग सेंटर पर बिजी रहती हैं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये गाना आप
1: मेरी एक नई फ्रेंड बनी शबनम, मैं उसको ये खासकर सॉन्ग डेडिकेट।
0: ओके ओके, तो ये ट्रैक शबनम के लिए और आपके लिए भी। थैंक यू सो मच।
1: ओके मैम, बाय
0: बाय।

0: सो फ्रेंड्स 7:36 हो चुके हैं, 17 सेकंड हो चुके हैं और कॉलर लाइन पर आ चुके हैं। हेलो
1: हेलो मैम, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैम, मैं रमा शंकर पाल बात कर रहा हूँ। वैसे मैं बाराबंकी का रहने वाला हूँ, वर्तमान समय में DA7RU लखनऊ से बात कर रहा हूँ।
0: ओके रमा जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका प्रोग्राम में।
1: जी मैम, आज काफी दिनों बाद, शायद जहाँ तक मुझे याद है कि मैं अक्टूबर के बाद से आज मेरी जो बात हो रही है इस कार्यक्रम में, वो बहुत अच्छा लग रहा है।
0: अच्छा, काफी दिनों के बाद आपने कॉल मिला है, मतलब फोन किया ही नहीं इस बीच आपने।
1: मैम ऐसा है कि मैम समय मैम नहीं मिलता है और मैम पढ़ाई मैम करते रहते हैं।
0: ओके ओके
1: मैम, UPSC की तैयारी कर रहे हैं।
0: दैट्स वेरी गुड। तो और बताइए आज क्या सुनना चाहेंगे रमा जी?
1: मैम आप मुझे फिल्म बाजीगर का गाना सुना दीजिए, क्योंकि मैम मुझे किताबों से बहुत लगाव है।
0: अच्छा,
1: तो मैम किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। 90s के गाने जो है मैम बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मैम हमारे यहाँ मैम बहुत मैम गर्मी पड़ रही है, मैम गर्मी तो बहुत ज्यादा जो है इस समय,
0: बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, सभी जगह गर्म बहुत ज्यादा पड़ रही है।
1: चाहते हैं अपनी तरफ से कि जो भी हमारे बेजुबान जानवर हैं उनके लिए पानी की जो जो है छोटे छोटे जो घड़े होते हैं उनके जो है ये पानी रखें, ताकि वो बेचारे जो है प्यास की वजह से उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो। और दाने भी रखें मैम, बहुत जो है मैम उन्हें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम लोग तो पानी पी लेते हैं,
0: वो कहाँ से व्यवस्था करेंगे। बिल्कुल, उनके लिए भी तो अरेंजमेंट करना ही पड़ता है। बिल्कुल।
1: और मैम गर्मियों में पानी का इस्तेमाल जो है ज्यादा जो है ना करें, पिए जरूर ज्यादा, लेकिन
0: बर्बाद ना करें, बर्बादी ना करें। बिल्कुल,
1: ये होता है जैसे कि लोग गाड़ियाँ जो है धोते हैं अपने बाइक और जो वाहन होते हैं, तो उन्हें जो है ना धुले, उनसे बल्कि किसी जो है साफ कपड़े से उन्हें पोछा
0: पोछे। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। किसी को किसी
1: हमारे आने वाले भविष्य के लिए भी हमें जो भी संसाधन है उन्हें बचा करके रखना चाहिए।
0: किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं ट्रैक आप ये?
1: वैसे तो मैम सबसे पहले आपको,
0: थैंक यू,
1: लोग सुन रहे हैं सभी को मैम, क्योंकि मैम एक दो लोग हो तो नाम ले लें।
0: अरे बिल्कुल,
1: लोग हैं तो
0: सभी को
1: मौका देना चाह रहे हैं। और इसके अलावा ये कहना चाहते हैं कि जिनका कॉल लग जाता है वो कृपया 15 दिन जो है वेट करें, ताकि अन्य लोगों को भी मौका मिले।
0: बिल्कुल,
1: आपके कार्यक्रम।
0: थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।
1: धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: सो माय डियर लिसनर्स, 7:44 हो चुके हैं और अगले कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं, तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए करते हैं उनसे बात। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी वेलकम है आपका, कौन बोल रहे हैं?
1: मिंटू तिवारी, ग्राम बकरना, तहसील सादा, जिला फतेहपुर से बोल रहे हैं।
0: मिंटू जी बहुत बहुत वेलकम है आपका, काफी लंबे समय के बाद आपसे बात हो रही है।
1: फोन
0: दोनों ही नंबर चालू है, दोनों पर ही कॉल आ रही है और बात भी हो रही है।

0: जी एक्चुअली होता यह है कि हमको ये नहीं पता कि हमें कॉल कौन कर रहा है, हमें तो नंबर ब्लिंक करता है और हम पिक करते हैं। आप ये बिल्कुल भी नाराजगी मत दिखाएं कि मतलब मिंटू जी का कॉल नहीं रिसीव किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है
1: जी।
0: जैसे ही मौका लगता है हम फोन फौरन उठाते हैं, और वो किसकी कॉल है, किसका लग पहले काम कर रहा है वो तो
1: ये बात नहीं है, जब नंबर लगे तो उठा लिया करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: मेहनत से लगाते हैं जब
0: हाँ जी हाँ जी तो नहीं नहीं बहुत मेहनत आप लोग करते हैं लगातार, आप लोग फोन मिलाते रहते हैं और मुझे लगता है काफी काफी देर के बाद लोगों के फोन लगते हैं और बात हो पाती है। और बताइए कैसे हैं आप मिंटू जी?
1: बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसी हैं?
0: मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज क्या फरमाइश है आपकी?
1: हाँ, हमको गाना सुनाइए आंदोलन का, बदल गई दुनिया बदल गया जमाना।
0: ओके, किसी को
1: माला चाहते परिणाम ले लें?
0: हाँ बिल्कुल लीजिए।
1: पहले तो हो गए भगवान सिंह वर्मा जी हो गए, और राम भाई शर्मा जी हो गए, और राहुल भाई हो गए, मुकेश कुमार हो गए, प्रकाश पासवान जी हो गए, अरविंद तिवारी जी हो गए, मेरे बड़े भाई विनोद तिवारी, प्रमोद तिवारी, मुन्ना तिवारी, और सुन रहे हैं सभी के लिए गाना जय टिकट रहेगा।
0: बिल्कुल, और आपके लिए भी थैंक यू सो मच। हाँ जी क्या कह रहे हैं?
1: नहीं, जितने लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए 100.7 FM उन सभी के लिए डेडिकेट रहेगा, खासकर गुलस्तर से क्षमा परवीन जी हो गए सीतापुर से, उनके लिए गाना, क्योंकि उनका फोन नहीं लगा बहुत दिन।
0: ओके ओके बिल्कुल भाई, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।

0: भाई देखिए, हम बिल्कुल भी नहीं बदले हैं, हम आपसे बार बार वही बात कह रहे हैं स्टार्टिंग से, नहीं प्रोग्राम की शुरुआत से, कि मिलाती रहिए 2238852 या 2238845 और अपनी पसंद के गानों को एंजॉय कीजिए आज अपने प्रोग्राम हेलो एफएम में। तो इस वक्त हमारे साथ है कॉलर, करते हैं उनसे बात। हेलो
1: अलका जी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं
1: जी? मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: प्रेम जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका, जय श्री महाकाल की। और कैसे हैं आप बताएं?
1: जी जय श्री महाकाल पूनम जी, सॉरी अलका जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। और मैं बताऊँ ना, जब से आपका शो कल भी आया था और आज भी आ रहा है, तो मैंने कल भी काफी ट्राई किया कॉल लगाने का, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हो पाया। लेकिन आज तो मैंने ठान लिया था कि कैसे भी करके अलका जी से बात करनी ही करनी।
0: अच्छा जी, काफी दिनों के बाद आपसे प्रेम जी बात हो रही है, मुझे लगता है 1.5 महीना हो रहा होगा बात हुए।
1: हाँ जी, आपसे बात हुई काफी समय हो गया है, लेकिन मैं बताऊँ आपको, रेनबो कार्यक्रम सुनता रहता हूँ मैं, कॉल भी लगाता रहता हूँ, एक मैं 2-3 दिन में मेरा कॉल लग जाता है।
0: ओके ओके, तो बताएं आप आज क्या सुनना चाहेंगे?
1: जी, फिल्म का नाम है अंदाज और गाने के बोले आज कहना जरूरी है तुमसे प्यार हुआ।
0: बहुत खूबसूरत गाना और मेरा भी फेवरेट ट्रैक है ये तो।
1: जी बिल्कुल अलका जी, मैं बताऊं आपको, मैं मोबाइल से कार्यक्रम सुनता हूं ना, तो मतलब एकदम स्पष्ट प्रसारण मिलता है, और जो आकाशवाणी रेनबो मतलब लखनऊ रेनबो सुन रहे हैं सभी श्रोता, बड़े अच्छे अच्छे मतलब बातें करते हैं और बड़े अच्छे गाने सुनते हैं सभी लोग।
0: किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं प्रेम जी?
1: जी, हमारा ये डेडिकेट करना रहेगा आपको रहेगा, इसके अलावा आकाशवाणी लखनऊ के ही दीप्ति जोशी जी उनको रहेगा, आकाशवाणी शिलोंग के शैली जी, और जैसे हमारा ग्रुप बना हुआ हेलो फरमाइश रेडियो एक्टर, उनके सभी श्रोताओं को डेडिकेट रहेगा ये गाना।
0: ओके, थैंक यू सो मच प्रेम जी, इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।
1: जी ओके, बाय अलका जी,
0: बाय।

0: सो लिसनर्स, वक्त हो गया है प्रोग्राम को धीरे धीरे वाइंड अप करने का. 7:54 हो चुके हैं और अगले कॉलर को लेने का वक्त भी हो गया है, तो जल्दी से करते हैं उनसे बात और जानते हैं उनकी क्या है पसंद. हेलो.
1: हेलो, गुड इवनिंग मैम.
0: गुड इवनिंग जी, कौन बोल रही हैं?
1: जी गुलफ्ता से देखे बोला
0: था. ओके गुलफ्ता, कैसी हैं आप? बहुत बहुत वेलकम है.
1: जी अब तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: मैं भी एकदम ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ. तो बताएं आज क्या सुनना चाहेंगी?
1: सिर्फ तो मूवी का.
0: कौन सा?

0: ओके गुलफ्ता, कैसी हैं आप? बहुत बहुत वेलकम है
1: जी। अब तो बहुत अच्छे हैं, बताइए आप कैसे हैं।
0: मैं भी एकदम ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। तो बताएं आज क्या सुनना चाहेंगी?
1: सिर्फ तुम मूवी का
0: कौन सा ट्रैक?
1: एक मुलाकात जरूरी है सुनो।
0: ओके, और किसको सुनवाना चाहती हैं?
1: सबसे पहले आपको।
0: थैंक यू।
1: समा परवीन है, साहिबा अंसारी हैं, साजिया अंसारी हैं, मैं अंसारी हैं, निशा अंसारी, ममता गौतम और जितने लोग सुन रहे हैं सभी को।
0: सभी को ओके।
1: मोहम्मद फैज भाई हैं, विनीत भाई हैं,
0: ओके, जितने लोग सुन रहे हैं सभी को। वेरी गुड। तो बताइए कुछ और कहना चाहेंगे गुलाफ्सा?
1: जी मैम, मौसम बहुत खराब है, गर्मी बहुत हो रही है, अपना ख्याल रखें।
0: बिल्कुल, ये बात सभी से कही जा रही है कि अपना ख्याल रखें, क्योंकि मौसम जो है सभी को बहुत ज्यादा दुखी कर चुका है इस वक्त।
1: जी मैम,
0: थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। थैंक यू। सो इस खूबसूरत गाने को एंजॉय करते जाइए और अगले कुछ घंटे आपके साथ रहेंगे जमशेद 100.7 एफएम रेनबो पर। मैं जा रही हूँ फिलहाल, मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पर। सो स्टे ट्यून्ड 100.7 एफएम रेनबो।

नमस्कार। सुनिए मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्रामीण इलाकों में जल उपलब्धता, जल स्तर में गिरावट और संभावित जल संकट की पहचान के लिए अधिकारियों को सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित जलदूत ऐप के माध्यम से एकत्र आंकड़े भविष्य में जल संरक्षण संरचनाओं की योजना बनाने, वर्षा जल संचयन कार्यों की प्राथमिकता तय करने और संकट वाले क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करेंगे। उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों में उपायुक्तों श्रम रोजगार को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के चयनित कुओं का भूजल स्तर वैज्ञानिक एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप मापा जाए तथा संबंधित आंकड़ों जल दूत ऐप पर अपलोड किए जाएं। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। अमरोहा में आज भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक शामिल हुए। इस मौके पर श्री पाठक ने पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से कहा कि वह आम लोगों तक भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करें। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से सभी कार्यकर्ता कमर कस लें और तैयारियों में जुट जाएं। उन्होंने कहा कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव एक बार फिर अपनी जन कल्याणकारी नीतियों के बल पर जीतने का काम करेगी। इस मौके पर बड़ी तादाद में पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। अयोध्या के गुप्तार घाट पर आज सरयू नदी को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने के उद्देश्य से स्वच्छता अभियान चलाया गया। नमामि गंगे मिशन, ग्रीन अयोध्या, नगर निगम अयोध्या और कैंट अयोध्या की संयुक्त टीम ने सरयू तट की सफाई की। अभियान के दौरान करीब 1000 किलो प्लास्टिक कचरा, पॉलीथीन और अन्य अपशिष्ट सामग्री एकत्रित की गई, जिसे नगर निगम की मदद से निस्तारण के लिए भेज दिया गया। इस दौरान लोगों से सरयू नदी में प्लास्टिक और पूजा सामग्री न डालने तथा डस्टबिन का उपयोग कर स्वच्छ और हरित अयोध्या बनाने में सहयोग की अपील की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। हमारा अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: only 100.7 FM Rainbow.
1: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे.
2: Entertainment और information रहेगा संग संग.
3: मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए.
0: जब छाएगा 100.7 FM Rainbow का सतरंगी रंग.

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned. 100.7.
3: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर,
5: पुरानी जींस और गिटार,
4: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
6: है, हैरते आशिके जगावत,
4: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
7: ये रात

0: हवा।
1: यानी आपके हर वक्त का हम सफर, तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: Stay tuned to 100.7 FM रेनबो,
3: धड़कन लखनऊ की।
4: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई।
5: शाम होने को है।
4: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

0: तो खामोशी में भी कुछ सदाएं गूंजती रहती।
1: आ जाए कोई शायद दरवाज़ा खुला रखता हूँ, ये जो डायलॉग्स थे ना बीच में गज़ल में जो आ गए थे, पहले मैंने सोचा आप तक पहुँचाऊँ, फिर मैंने कहा नहीं मेरे पास भी कई सारी चीज़ें हैं आपके लिए। 8:06 साथ में कुछ सेकंड्स, प्रोग्राम आबशार में, मैं यानी जमशेद हूँ आपके साथ 100.7 FM रेनबो के साथ। और मैं तो ये कहूँगा कि मेरे दिल की धड़कन को कभी समझो या ना समझो तुम, मेरे दिल की धड़कन को कभी समझो या ना समझो तुम, मैं लिखता हूं मोहब्बत पर तो जाना इकलौती वजह हो तुम। जमशेद हूं आपके साथ आबशार में।

के दिल ने हमें आवाज दी, हम आ गए। रोज बहकते हैं मेरे कदम तेरे पास आने को, रोज बहकते हैं मेरे कदम तेरे पास आने को। न जाने कितने फासले अभी बाकी हैं मेरे तुमको पाने को। ये फासले अपने आप धीरे धीरे खत्म भी हो जाते हैं अगर दिल में शिद्दत हो। दिल का मकसद अगर सच्चा हो।

जिंदगी तुझको ढूंढती है अभी, कोई ताजा हवा चलिए है अभी। तुम्हें क्या लगता है, मैं तुमसे मिले बगैर नहीं रह सकता? तुम शायद रह लो, मैं नहीं रह सकता। फिर फासलों के लिए क्यों उकसाते हो? क्यों हर बार एक दूरी की वजह बनाते रहते हो? आखिर क्या राज है? लेकिन सच कहूं, तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी सी है, खाली सी है।

होगा तो क्या कमी होगी, कमी क्या होगी। जिंदगी जैसी खुशगवार गुजर रही है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी, कोई ना कोई खलिश जरूर होगी, इसीलिए उसका साथ बहुत ही जरूरी है। तुझे देखते ही बहक जाते हैं हम, कहना होता है कुछ और कह जाते हैं हम, बस जिंदगी में इन्हीं अल्फाजों की कमी होगी। और ये अल्फाज छोटे मोटे नहीं बल्कि एक अलग अहमियत रखते हैं। लेकिन क्या इश्क आसान अल्फाज है? और जितना अल्फाज आसान है क्या जिंदगी में वो भी इतना आसान है?

किसी के दिल में समाने की जरूरत क्या है? तू अगर है तो जमाने की जरूरत क्या है? करते करते ही करती है तुझसे बिछड़ के रातें, नींद आएगी इस दिन करूंगा तुझसे ख्वाबों में बातें। 8:39 साथ में है कुछ सेकंड्स, यानी प्रोग्राम आबशार का सफर बस यहीं तक। कुछ देर के बाद आपसे होगी मुलाकात पॉप टाइम में, लेकिन थोड़ा सा वक्त आज बढ़ जाएगा, इंतजार बढ़ जाएगा, यानी वक्त होगा 9:30। तो बस कुछ देर के लिए मुझे यानी जमशेद को दीजिए इजाजत, होती है मुलाकात इसी चैनल पर यानी 100.7 FM रेनबो के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इजराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने CPIM के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंदर से हराया, जिन्हें 40

0: 645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 149,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जाँच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए UPSC टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है।

दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय त्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल

में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शेराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपने श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उजुदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
4: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं द आकाशवाणी पॉडकास्ट।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।

तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, दी आकाशवाणी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर हम बात करें 9 अंक की, तो बहुत खास होता है। ये पूर्णता, परोपकार, आध्यात्म और ज्ञान का प्रतीक होता है, और ये बताता है कि ये जीवन का ना कई चक्र पूरे हो चुके हैं। तो हम क्यों बात कर रहे हैं इसकी, क्योंकि आज हमारे इस एपिसोड का ना 9 अंक से बहुत खास लेना देना है, क्योंकि जो प्रसार भारती है, उसका जो रेडियो डिवीजन है, वो अपने 90 वर्ष पूरे करने जा रहा है। और इस खास मौके पर हमने सोचा कि क्यों ना आपको हमें एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएं जिसने 90 सालों के सफर को या उसके बहुत अहम पहलुओं को करीब से जाना है, समझा है। आज हमारे साथ हैं फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ आकाशवाणी मिताली चैटर्जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
4: धन्यवाद।
3: अपनी शौक तो क्या बोलते हैं आप बताएं?
4: शुशा को तुम, अदरवाइज आप हिंदी में बोल सकते हैं, क्योंकि बेसिकली आई एम अ यूपीआईट।
3: ओह, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: जी, धन्यवाद।
3: आपके करियर से शुरुआत करते हैं।
4: जी,
3: रेडियो हम सब सुनते हैं, बहुत बहुत लंबे समय से सुनते आ रहे हैं। तो जब आप रेडियो सुनती थी, क्या कभी आपने सोचा था कि आप रेडियो में जाकर काम कर रही होंगी?
4: हाँ, ये बात आपने बहुत पूछी है जो मेरे दिल के काफी करीब है। इनफैक्ट वो दौर ही कुछ और था, 80s का दौर था, और उस समय रेडियो का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था हर एक के जीवन में, क्योंकि उस समय ये प्राइवेट कुछ भी नहीं था और टीवी भी नहीं था। तो रेडियो मतलब बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए इट वाज अ वेरी बिग एंटरटेनमेंट, और एक फैसिनेशन भी होता था, क्योंकि वहाँ पे द पीपल हु वेयर प्रेजेंटिंग द प्रोग्राम्स वो लार्जर देन लाइफ होते थे हम लोग के लिए, कि हम लोग एक इमेजिन करते थे। रेडियो में वही पक्ष सबसे मजेदार है, आप कुछ भी सोच सकते हैं जी, कैसे हो रहा होगा पीछे।
3: तो वो इमेजिनरी वर्ल्ड यहाँ पर आकर क्या बिल्कुल वैसा ही था जैसा आपने सोचा था?
4: देखिए, एक शुरुआती में जर्नी बहुत लोगों को पता नहीं होगा, मेरी जर्नी शुरू हुई थी व्हेन आई वाज इन माय टीन्स।
3: ओके।
4: और मैंने बतौर एक क्लासिकल सिंगर युववाणी में एग्जाम दिया था, एंड आई गॉट थ्रू इट, तो वो मैंने प्रोग्राम करना शुरू किया। और मुझे पता नहीं था कि एक दिन मुझे यहीं पे काम करने को मिलेगा एज एन इंजीनियर।
3: उतने लंबे समय में आपने बहुत लंबे समय तक काम किया, I'm sure आपने शायद बताया कि 33 सालों तक आपने काम किया, 3 दशक से भी ज्यादा। क्या उस समय से लेकर अब तक एक ट्रेडिशनल वे में जब हम काम करते थे और आज इंटरनेट के दौर में और डिजिटल एरा में क्या फर्क आया है, क्या एवोल्यूशन आपने देखा है?
4: एक तरह से मैं अपने को बहुत भाग्यवान समझती हूँ कि मैंने वो पुराने दौर से लेके डिजिटल एरा तक का सफ़र पूरा अपनी आंखों से देखा है।
3: बिल्कुल।
4: अपनी सर्विस के दौरान, और मैंने हर एक पल को जिया भी है बहुत नज़दीकी से।
3: डेफिनेटली।
4: एंड सबसे बड़ी बात है, आज के समय में कई बार हम सुनते हैं, लोग बोलते हैं ना AIR, ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन कहाँ चला गया, क्या है, लेकिन उस समय इसका एक ओहदा ही कुछ और हुआ करता था। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि फर्स्ट जब इंटरनेट आया था 1997 के आसपास, AIR वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रेडियो ऑन इंटरनेट की शुरुआत की थी, और वहाँ पे हम लोग के पास इतने प्रोग्राम मतलब इतने ईमेल्स आया करते थे, और हम लोगों ने R&D रिसर्च डिपार्टमेंट से इसकी शुरुआत हुई थी, तो हम लोग के पास सैकड़ों की तादाद में आया करते थे, क्योंकि फॉरेन में उस समय इस तरह के भारतीय प्रोग्राम्स का कोई माध्यम नहीं था, क्योंकि उस समय DTH शुरू नहीं हुआ था।
3: बिल्कुल, बिल्कुल।
4: तो वो एक दौर था कि उस समय डिजिटल

0: 1998 में रेडियो और इंटरनेट शुरू हुआ
1: जी,
0: तो वो एक बहुत ही यादगार समय है। और जिस समय मैंने ज्वाइन किया उस समय तो FM इट स्टार्टेड
1: जी,
0: तो वो भी एक हमने देखा था कि लोगों के बीच में कितना उत्साह है और हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता था काम करके।
1: बिल्कुल, डिजिटल एरा में आने के बाद आपको क्या लगता है कि जो बदलाव हुए हैं बहुत अच्छे हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं उसके, किस तरफ जा रहे हैं हम?
0: देखिए, टेक्नोलॉजी जो है वो आदमी की ह्यूमन एफिशिएंसी को एनहांस करने के लिए होता है
1: जी,
0: और उसको उस तरह से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी भी है एक प्रोग्रेस के लिए, तो वो तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे डिजिटल एरा में हम लोग जी रहे हैं। लेकिन इसका एक डाउन साइड ये है कि जब टेक्नोलॉजी ही हमारे अगेंस्ट काम करने लगती है। मैं इसका एक जस्ट एग्जाम्पल दूंगी, इससे रिलेवेंट है या नहीं, क्योंकि पहले ड्राइवर्स जो थे उनको पूरे रोड्स दिल्ली में मालूम होते थे। आज के डेट में कोई भी ड्राइवर लेके गूगल मैप पहले ऑन करता है, उसके बाद गाड़ी चलाता है। तो हम लोग शायद अपनी जो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस है उसको शायद लूज करते जा रहे हैं, जो मुझे लगता है कि शायद जो हमको और प्रोग्रेस करना चाहिए था वो कहीं हम लोग इतनी डिपेंडेंसी नहीं हो।
1: हाँ जी, हाँ जी, बीच में बिल्कुल जी। अब मैं बात करूंगी यहाँ पर, क्योंकि अब डिजिटल एरा में रेडियो और टेलीविजन लगभग मिक्स हो गया एक तरीके से देखा जाए तो। अब रेडियो सिर्फ सुनने का माध्यम नहीं रहा, अब हम कहीं कहीं उसे देख भी सकते हैं। रेडियो और टेलीविजन दोनों का डिफरेंस आपको क्या समझ में आता, क्या खास डिफरेंस है और किस तरह से रेडियो यूनिक है?
0: देखिए, अगर बीइंग एन इंजीनियर टेक्नोलॉजी की अगर बात करें
1: जी,
0: तो
1: जी, उस पे भी आएंगे हम आगे।
0: हाँ, वो तो फर्क, बहुत फर्क है। लेकिन मेरा ये पर्सनल व्यू है कि जब आप टीवी में देखते हैं, वैसे तो कहा जाता है कि ऑडियो विजुअल माध्यम ज्यादा सशक्त है, लेकिन जब आप टीवी में देखते हैं तो आपको सामने ही सब कुछ दिखता है कि जो आदमी एक्ट कर रहा है या जो भी कर रहा है। लेकिन रेडियो में एक वो तिलिस्म या आप कह सकते हैं कि एक जादुई दुनिया, और आप जिनकी आवाज सुन रहे हैं यू आर फ्री टू इमेजिन द पर्सन बिहाइंड दैट। आई फील दैट वे AIR हैज द एडवांटेज, क्योंकि जब हम लोग हवा महल सुनते हैं या कुछ भी सुनते हैं शायद वही जो आर्टिस्ट है पीछे वही कर रहे होते हुए हैं, लेकिन हम जब भी उनकी बातों को सुनते हैं या उसके हिसाब से हम उसको इमेजिन करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है।
1: राइट राइट
0: जी।
1: अगले 10-20 सालों में आपको क्या लगता है रेडियो कहाँ पहुंचेगा, या क्या AI का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा जैसा कि डर बना हुआ है, जिस तरह से टेलीविजन के क्षेत्र में भी जो है AI आ चुका है, और रेडियो में क्या किस तरह की चीजें हो रही हैं?
0: देखिए, AI जो है आज के दिन में सब जगह पेनिट्रेट कर चुका है, और मुझे लगता है कि जब तकनीक अवेलेबल है तो उसका इस्तेमाल करना भी वाजिब है। लेकिन वही है कि AI को इस्तेमाल करते करते हम अपनी RI को ना भूल जाएं, रियल इंटेलिजेंस विच इज अ ह्यूमन एसेट। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि AIR के पास आज के समय में जो सबसे बड़ी इसकी ताकत है, आप लोग के प्रोग्रामिंग स्टाफ का, क्योंकि इनको इतने अच्छे से सेलेक्ट किया जाता है, दे आर कमिंग फ्रॉम UPSC, तो इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए कि कम से कम हम लोग ग्रास रूट लेवल तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें, क्योंकि आज का जमाना देखिए, इट इज़ नॉट वॉर्स आर द रियलिटी टुडे। वी नेवर थॉट कि 21st सेंचुरी में वॉर्स होंगे
1: जी।
0: लेकिन और एक चीज़ और है कि इसमें संचार माध्यम या जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको लास्ट पॉइंट तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, जैसा आप कह रही हैं कि कुछ लोगों को पता भी नहीं होता
1: जी,
0: है।
1: मैं वही बात कर रही हूँ कि ग्रामीण इलाकों में, रूरल एरियाज में बहुत लोग हैं जो इस टेक्नोलॉजी को जानते भी नहीं हैं और उनको अक्सर ठगा जाता है।
0: बिल्कुल,
1: ये होता है, तो ये नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल, ये बहुत डेंजरस है।
1: अभी तो हमने बात करी कैसे एवोल्यूशन हुआ, अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, क्योंकि जब रेडियो की बात होती है तो अक्सर लोग सिर्फ RJ को जानते हैं या अनाउंसर को जानते हैं, पर उसके पीछे बहुत बड़ी टीम काम करती है। जैसे अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारी पूरी एक टीम है यहाँ पर काम कर रही है, उसके बिना ये पॉडकास्ट लाइव नहीं हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: तो उसी तरह से रेडियो में भी है। किस तरह से पूरी जर्नी होती है, क्या प्रोसेस होता है, वो जो पकी पकाई खीर है लोगों तक पहुंचती है, उसको टेबल तक पहुंचाने का काम करने वाले लोगों का नाम भी आना चाहिए सामने, क्या रहता है वो पूरा प्रोसीजर?
0: देखिए, वाकई में तो ये सारा का सारा फिजिक्स एंड साइंस की करामात है
1: जी।
0: जो हम लोग इतने दूर बैठे भी सबकी बातों में या देख सकते हैं, तो उसमें पीछे बहुत सारी चीज़ें काम कर रही होती है तकनीकी। पहली बात तो हम आप जहाँ पे जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, शायद इस कमरे से दूसरे कमरे में जाके ही आपको सुनाई नहीं पड़ेगा कौन क्या बोल रहा है। तो ये एक यहाँ पे डिजिटल में तो इनकोडिंग की प्रोसेस भी होती है उसके बैंडविड्थ को कम करने के लिए, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रांसड्यूसर से हमारी वॉइस को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करते हैं।
1: तो क्या

0: में चेंजेस आते हैं या वैसे ही रहती है?
1: नहीं, इट डिपेंड्स. से डिजिटल में तो आज के डेट में क्वालिटी, इनफैक्ट आप जो सुनते हैं पोस्ट प्रोडक्शन में, यू कैन इम्प्रूव इट रादर, कि आपने कहीं पे गलत बोल दिया या आपकी आवाज में खराश है तो वो भी ठीक हो जाएगी. लेकिन इम्प्रूवमेंट का जहाँ तक है, आज के डेट में एआई और प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट यूज करता है सारे, तो उसमें उस तरह की डिग्रेडेशन का कोई चांस नहीं है. और बाकी ये जो है हमारे तकनीकी जो सहायक हैं, वो लोग भी काफी अच्छे से अपना काम करते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि उसमें कोई डिटरेशन है.
0: राइट.
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प.
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको.
2: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं. अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं, तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें.
0: अब बात करते हैं कि हम देखते हैं और सुनते हैं कि बहुत सारे रेडियो चैनल्स काम करते हैं अपने अपने अलग अलग तरीके से, लेकिन आकाशवाणी का जो है वो एक अलग अंदाज रहा है जिसे लोग याद करते हैं, और बहुत ही सभ्य भाषा के लिए जाना जाता है आकाशवाणी, जो मुझे लगता है कि अभी भी कायम है. ऐसा नहीं है कि हम भाषा अच्छी इस्तेमाल नहीं करते, बिल्कुल बहुत अच्छी भाषा का इस्तेमाल करते हैं. सो अभी इस फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट में किस तरह से बाकी रेडियो चैनल्स जब बहुत फास्ट पेस्ड हो गए हैं, तो कैसे पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस हमारी जो है वो अपने आप को सहज बना पाती है या उस तरह से प्रस्तुत कर पाती है लोगों के सामने?
1: देखिए, बहुत ही एक कठिन सवाल आपने पूछा है. बहुत सारी चीजें होती हैं कि जिसमें हमारे कोड ऑफ कंडक्ट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और ठीक है, एक समाज के हिसाब से जो बने थे उस समय, जैसे भी बने हैं, तो उसके दायरे में रखकर सारी चीजों को करना मुश्किल होता है प्रोग्राम, क्योंकि आज के दुनिया में जो चीजें पहले शायद वो कहते हैं ना नियो नॉर्मल, तो पहले जो चीजें शायद स्वाभाविक नहीं थी, आज के डेट में वही चीजें आज के डेट में स्वाभाविक हैं. तो आप अगर उसको कुछ चीजें कर्टेल करते हो, तो स्वाभाविक है आप यंगर जनरेशन के बीच में आप थोड़े से ऑकवर्ड लगोगे. तो वो तो एक कहीं पे है, और इसमें इस तरह का भी आप कह सकते हैं कि जैसे किसी को आपने सैक रेस वाला ड्रेस पहना दिया और उसको बोला गया जाए कि मैराथन दौड़ो.
0: जी जी बिल्कुल.
1: तो कठिन है, यस. लेकिन साथ में आकाशवाणी का ये एक बहुत अच्छी भी बात है कि इसकी एक अलग पहचान है. इसको आप सारे परिवार के साथ आप सुन के बैठ के देख सकते हो. प्लस उसके अलावा जो प्रोग्राम होते हैं उसमें कुछ ना कुछ अर्थ होता है, और बहुत सारी प्रोग्राम मुझे लगता है जेंजी भी सुनती. मैं अभी देख रही थी, इंटरनेट पे मैं चेक कर रही थी, करीब 50% लोग जब गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, दिल्ली में तो आप जानती हैं गाड़ी में ट्रैवल करना कितना लंबा और डिफिकल्ट होता है.
0: True.
1: तो लोग रेडियो सुनते हैं. दैट्स द ओनली वे दैट दे गेट एंटरटेनमेंट. तो मुझे लगता है वहाँ पे एआईआर का ऐसा भी नहीं, लोग सुनते हैं. मैं तो सुनती हूँ, मैंने देखा है बहुत सारे लोग सुनते हैं स्पेशली अच्छे वाले प्रोग्राम,
0: और नए नए लोग कनेक्ट हो रहे हैं.
1: बिल्कुल.
0: इतना लंबा समय जो आपने बताया यहाँ पर आकाशवाणी में, आपके खुद के एक्सपीरियंस क्या रहे वर्क कल्चर में या पर्सनल, या फिर क्या आपके टेक अवेज यहाँ से रहे?
1: देखिए, उस हिसाब से मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि वर्क कल्चर के हिसाब से यहाँ पे बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है, और इसमें चाहे आपके सीनियर्स हो चाहे आपके कलीग्स हो, दे आर गुड, दे आर वेरी गुड पीपल एंड दे गिव यू द स्पेस. और शुरू में मुझे याद है जब मैंने ज्वाइन किया था, उस समय मेरे हम लोग थ्रू इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस आए थे डायरेक्टली क्लास 10 सर्विस में, तो वहाँ पे जब लोग पहुंचे तो नेचुरली एक फ्रेश रिक्रूट को कुछ भी पता नहीं होता है कैसे, व्हाट आर द नॉर्म्स एंड कैसे उसको बिहेव करना है. तो माय बॉस कॉल्ड मी वन डे, वी वर गिवन अ रूम, सेपरेट रूम्स एंड ऑल दिस, और उस समय काफी लोग रिस्पेक्ट करते थे बहुत ज्यादा. तो सर आए मेरे कमरे में, ही सेड कि लिसन, यू आर जस्ट गॉट एंट्री टू दिस सर्विस, आपको कमरे में बैठने के लिए नहीं बोला है, गो टू द फील्ड्स.
0: ओह माय गॉड.
1: सो हम लोग जाते थे, और फील्ड्स में उस समय जैसे एंटीना ट्यूनिंग यूनिट वगैरह ये सारे बहुत खेत टाइप की जगह में हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े घास हुआ करते थे, कई बार सांप वगैरह भी निकलते थे. तो यू वर सपोज टू गो देयर एंड लेकिन अच्छा लगता था, मैंने हमने एंजॉय किया है धूप में, कड़ी धूप में, और वो एक सेटिस्फेक्शन होता था कि आप कुछ कर रहे हैं वर्थ वाइल. तो आई एम इंडेटेड टू दोज पीपल हु हैव टॉट मी, मे बी इट वॉज अ डिफिकल्ट वे इनिशियली, लेकिन उन्हीं की वजह से शायद.
0: जी, आपने भी बीच में बात

0: थी रिस्पेक्ट की, तो मैं इस बात में आना चाहूंगी कि पहले जनरली लोग जब कोई प्रोफेशन की बात आती थी या करियर की बात आती थी तो डॉक्टर इंजीनियर इसी तरह से हम प्रोफेशन को लेते थे, तो उस समय आपके लिए कितनी मुश्किल हुई थी ये बताने के लिए घर में कि मुझे रेडियो ज्वाइन करना है, क्या उतना ही रिस्पेक्टफुल करियर ऑप्शन था या आसान था या मुश्किल था?
1: देखिए उस समय की तो बात ही अलग थी, बेबी इट वॉज वेरी लॉन्ग लॉन्ग बैक। उस समय इंजीनियरिंग में भी लोग बहुत ज्यादा नहीं आते थे, हमारे क्लास में ओनली 4 गर्ल्स वे थे एंड रेस्ट ऑफ द पीपल वे बॉयज। एंड घर से भी थोड़ा सा वो रहता था कि अच्छा इतने साल 4 साल का इंजीनियरिंग करेगी फिर ये है, उस समय मतलब लोगों को बस ये रहता था कि लड़की बड़ी हो गई तो शादी कर दो। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फादर who stood by me and I am the only child. तो उन्होंने मेरे को पूरे समय सपोर्ट किया पढ़ाई में और मेरे को इंजीनियरिंग करने को दिया, लेकिन दादी ने फिर उन्होंने बोला कि नहीं बस हो चुका पढ़ाई वढ़ाई, तो एग्जाम तो दे दिया था मैंने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का, रिजल्ट नहीं निकले थे मेरे तो मुझे उन्होंने शादी हो गई मेरी। शादी के बाद फिर रिजल्ट्स आए और मुझे आई एम वेरी थैंकफुल दैट आई गॉट द AIR इलाहाबाद, नहीं तो शायद नौकरी भी नहीं होती। एंड इसमें लेकिन सबसे बड़ी बात मैं उस समय की मैं बोलती हूँ कि जॉइंट फैमिलीज होती थी, माई फादर इन लॉ जस्ट सेड वन वर्ड वन सेंटेंस, ही केम टू ड्रॉप मी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई जॉइनिंग टू AIR इलाहाबाद एंड ही टोल्ड मी यू वर्क सिंसियरली एंड डेडिकेटेड वे सो दैट यू बिकम indispensable for people. और वो बात तो मैंने गांठ बांध ली और
0: quite a support.
1: बिल्कुल. और इसमें आई थिंक फैमिली सपोर्ट मेरे पेरेंट्स का मेरे इन लॉज का अगर नहीं होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती।
0: आपकी लर्निंग्स की बात कर ली हमने, अब हम बात करते हैं क्या कोई ऐसा फनी मोमेंट है जो आपको अभी तक याद हो, जो आप भूले ही ना हो अपनी ज्वाइनिंग के बाद, कोई ऐसा दिन रहा हो? मुझे लगता है शायद ज्यादा ही रहे होंगे बट कोई एक ऐसा बताइए हमें इंसिडेंट।
1: देखिए बहुत सारी इंसिडेंट आज के जमाने में फनी लगती है लेकिन उस समय तो जान से आई रहती है। एंड I especially remember one incident. हमारे उस समय आकाशवाणी के प्रोग्राम का लोग काफी आया करते थे, दर्शक भी बहुत होते थे एंड हम लोग को समझिए आज के जमाने में शायद आप लोग इसको सोच भी नहीं पाएंगे, 2 मिनट का भी ब्रेकडाउन होता था, दैट वॉज टेकन एज अ मेजर ब्रेकडाउन एंड द पर्सन जिसके अंतर्गत हुआ है उसको वो करना पड़ता था कि एक्सप्लेन करना पड़ता था कि क्यों मेजर ब्रेकडाउन और बेबी इट विल गो टू योर CR ऑल्सो।
0: बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे।
1: तो एक बार हमारे और आकाशवाणी फेमस है अपने बिल्कुल टाइम से प्रोग्राम स्टार्ट करने पर, एक बार हमारे यहाँ पे इलाहाबाद में आए थे एक गायक आए थे रात के टाइम में, करीब 8 बजे हम लोग की प्रोग्राम शुरू होने वाला था संगीत का बाहर एक ऑडिटोरियम में, सारे लोग बैठे हुए थे, अचानक उन्होंने रात 8 बजे डिमांड कर दी मुझे गरम दूध चाहिए और पान चाहिए, उसके बगैर मैं जाऊंगा नहीं स्टेज पे। हम लोग उस समय मतलब दौड़ रहे हैं कि कहाँ से गरम दूध मिलेगा, बिल्कुल बिकॉज ऑडियंस वॉज देयर एंड वी हैड टू स्टार्ट द प्रोग्राम, सो उस समय जान सांसत में आई होती
0: ड्यूरिंग द प्रोग्राम।
1: यस इट वाज ड्यूरिंग, यस
0: 90 years हमारे आकाशवाणी के कंप्लीट हो रहे हैं, होने वाले हैं जल्दी ही, तो इन 90 years का जो पूरा टोटल मैसेज है वो आप क्या देना चाहेंगे जो हमारे न्यू कमर्स हैं उनके लिए, जो आरजेइंग के फील्ड में आना चाहते हैं, टेक्निकल फील्ड में आना चाहते हैं या आकाशवाणी से किसी भी तरह से जुड़ना चाहते हैं ब्रॉडकास्टिंग में, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप?
1: देखिए मैं तो यही बोलूंगी कि यू कैन कम एंड लिव योर ड्रीम्स, क्योंकि तकनीक एक ऐसी जगह है जहाँ से आपको अपने भीतर की जो प्रतिभा है या जो भी आप करना चाहते हैं आप उसको बिल्कुल दिखा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ब्रॉडकास्टिंग का एक स्कोप है कि इतने सारे लोगों को इफेक्ट करने की क्षमता रखता है
0: जी,
1: तो मास कम्युनिकेशन इसीलिए कहा जाता है। और आज के डेट में जहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता जा रहा है और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप तो जानते हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि अगर किसी में वो पैशन है और कुछ करना चाहता है, अपने आइडियाज़ को प्रोपगेट करना चाहता है या कुछ उस तरह की प्रतिभा है तो बिल्कुल आना चाहिए इसमें।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: एक सवाल मेरा और है आपसे यहाँ पर, जब आपने ज्वाइन किया या आपके टाइम पर मास कॉम इतना

0: पॉपुलर नहीं था एज अ सब्जेक्ट एज अ करियर.
1: अगर सच बताऊं, वास्तव में आप ठीक कह रहे हो सर, मास कम्युनिकेशन वॉज नॉट अ वेरी पॉपुलर सब्जेक्ट. लेकिन वो कहते हैं ना कि जिंदगी आपको बहुत कुछ सिखा देती है.
0: बिल्कुल.
1: एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट इन दैट वे बिकॉज आई कम फ्रॉम प्रयागराज इलाहाबाद एंड इट वॉज अ वेरी वेरी वाइब्रेंट आर्टिस्टिक सीन देयर.
0: ट्रू.
1: क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे और
0: नेचर से जुड़े हुए हैं.
1: हाँ, नेचर से भी, और बहुत सारे फंक्शन हुआ करते थे आपके, ड्रामा कंपटीशन से लेके म्यूजिकल फेस्टिवल. तो और मेरे फैमिली में मेरे पेरेंट्स एज वेल एज मेरे माई इन लॉज दे वर इन टू दैट फील्ड. तो मुझे बहुत कुछ एक्सपोजर मिला उनकी वजह से, ये सब देखने का और सुनने का और जानने का. तो एक वो आप कह सकते हैं नेचुरल प्रोसेस में वो धीरे धीरे धीरे धीरे
0: रमता गया
1: आप जानते गए. प्लस हमारी नौकरी तो है ही, तो प्रोफेशन में भी जब लोग फील्ड स्टेशन में रहते हैं तो यू आर सपोज टू डू, क्योंकि यहाँ पे तो देखिए डायरेक्टरेट या बड़ी जगह में आपको स्पेसिफिक काम होते हैं, लेकिन जब आप स्टेशन पे जाते हैं आपको, मतलब कहते हैं ना कि ईंटे से लेके और पूरा स्टूडियो तक सब देखना पड़ता है,
0: मल्टीटास्क. वही आपसे अब क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि पहले क्या, अब तो स्पेसिफिकली हमको एक टास्क असाइन कर दिया जाता है ना कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाली बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस समय तो यही चलता था और मुझे लगता है सब कुछ आना बहुत अच्छा होता था कई बार. तो वो सारी चीजें, मल्टीटास्किंग आपको यहाँ आकर सीखने को मिली या आप में पहले से ही इतनी काबिलियत थी कि आप मल्टीटास्किंग करने के लिए तैयार थी?
1: नहीं नहीं, पहले से तो नहीं पता होता है किसी को भी, फ्रॉम जस्ट रॉ फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज. तो आई एम वेरी थैंकफुल दैट प्रोफेशन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया. मतलब क्योंकि मुझे आते ही इंस्टॉलेशन ऑफिसर बना दिया. हमारे झूसी में एक हाई पावर ट्रांसमीटर इंस्टॉल हो रहा था और मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि किस तरह से चीज़ें होती हैं या किस तरह से कंस्ट्रक्शन होता है. तो माय बॉस टॉट मी, और बहुत डांट के सिखाते थे कि ईंटों को समझना सीखो, ये ऑरेंज वाली ईंटें होती है और कच्ची ईंटें होती है, वो नहीं लगनी चाहिए.
0: आजकल स्कूल्स में भी डांट बंद हो गई है, ऑल्दो डांटना वेरी गुड, थोड़ा हम
1: बहुत चीजें
0: सीख
1: बहुत,
0: लेते थे, वो अच्छी बात थी, थोड़ा डर होना जरूरी है. बिल्कुल. अब हम आते हैं, हमने इतनी सारी बातें कर ली है, मैं एक चीज और पूछ लू फिर हम आखिरी आपसे बात करते हैं कि इन सारे प्रोसीजर के दौरान क्या कभी आपको ऑन एयर जाने का भी मौका मिला, कभी ऐसा हुआ? क्योंकि मुझे लगता है मल्टीटास्किंग में वो भी शामिल है.
1: जी हाँ, मुझे कई बार मिला है बिकॉज आई वॉज अ स्टेशन इंजीनियर इन दूरदर्शन शिमला. तो वहाँ पे जैसे बड़े शहरों से थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि गुवाहाटी या इवन शिमला में भी दूरदर्शन का, आकाशवाणी का तो बहुत लोग सुनते थे और बहुत उसमें चार्म था लोगों का. तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते थे कि कहाँ पे क्या नहीं आ रहा है, कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है. तो टेक्निकल एंड प्रोग्राम रिलेटेड चीज़ों में हमारे स्टेशन डायरेक्टर और मुझे कई बार वो व्यूअर्स के क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए हम लोग को बैठना
0: पड़ता था. कैसे, मुझे थोड़ा सा एक एग्जांपल देके यहाँ पर बताइए प्लीज.
1: ऐसे तो रैंडम कुछ याद नहीं, लेकिन हाँ उस समय थोड़ा सा क्योंकि आप बैठे हैं जनता के सामने और जनता पूछ रही है, तो यू हैव टू बी वेरी हम्बल और अलर्ट आल्सो. जैसे हमारे यहाँ पे वो जनरेटर चलता था एंड यू नो जनरेटर टू ट्रांसमीटर तक ऑन करने में थोड़ा सा गैप चला जाता है. इट टेक्स टाइम बिकॉज एक के बाद एक चीजें ऑन होती हैं और उसी तरह से. तो आम लोगों को नेचुरली ये समझ में नहीं आता है, तो उनको गुस्सा आता था कि हम ये प्रोग्राम देख रहे थे और बीच में से ये कट गया और इतना सारा मेरा मिस हो गया और ये हो गया वो हो गया. तो उनका गुस्सा भी वाजिब है
0: जी.
1: हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे ये भी फैक्ट है कि टेक्निकली अगर मान लीजिए लाइट गई है, जनरेटर आपका तुरंत ही ऑन हुआ है, लेकिन सारे सिस्टम को ऑन होने में देयर वुड बी अ डिले. तो उसको आपको थोड़ा सा समझाना पड़ता था, बोलना पड़ता था अच्छे से कि हम लोग ने अपनी तरह से कोशिश की, ये इनेविटेबल है.
0: हमारे पास अभी समय की कमी है तो हमको अब जल्दी से इसको रैप अप करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी क्योंकि हमने सिक्के के एक पहलू की बात करी है, हमने आपकी ड्यूटीज की बात कर ली है, अब दूसरा पहलू आता है. हमने सुना है आप बहुत मधुर आवाज की मल्लिका है और क्लासिकल सिंगिंग में ट्रेंड है, तो दो लाइन जो भी आपको पसंद हो जाए.
1: मुझे ऐसे ही रैंडमली कुछ याद आ रहा है, एक बहुत पहले मैंने आई थिंक व्हेन आई वाज इन स्कूल मैंने ये सीखा था, एक भजन है

0: क्या बात है, क्या आपकी इस गायकी ने आज के हमारे पॉडकास्ट में ना दिन में ही चार चांद लगा दिया। ऑल्दो हमारी लाइट्स काम कर रही हैं, लेकिन इसने जो रोशनी बिखेरी है उसके क्या ही कहने हैं।
1: ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया।
0: थैंक यू सो मच।
1: चलिए, थैंक यू सो मच,
0: थैंक यू सो मच टू यू टू, बिकॉज आपने हमें ज्वाइन किया और इतनी सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे लिसनर्स तक, हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाई है, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका।
1: और आकाशवाणी अपने 90 साल संपूर्ण करने जा रहा है, उस बारे में आकाशवाणी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे लिए तो आकाशवाणी हमेशा से ही दिल के करीब रहा है और आशा करती हूँ कि ये उत्तरोत्तर और प्रगति करता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। बहुत धन्यवाद।
0: आज के लिए हम इजाजत देते हैं आपसे।
1: बिल्कुल,
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: थैंक यू सो मच।
0: और साथ के साथ हमारी पूरी टीम जो यहाँ पर काम करती है उसको भी शुक्रिया कहना चाहते हैं हम, क्योंकि उनके बिना ये पॉडकास्ट अधूरा है। शालिनी चाहती है आपसे इजाजत। नमस्कार।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: दिल दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है।
3: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
2: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
3: ओनली 100.7 FM रेनबो।
2: कुछ भी
4: एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन रहेगा संग संग,
5: मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए
6: जब छाएगा 100.7 FM रेनबो का सतरंगी रंग।

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned. 100.7.
3: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: सुबह की खूबसूरत शुरुआत।
5: Love you, जिंदगी। Love you, जिंदगी।
4: सुकून से भरा दोपहर।
6: पुरानी जींस और गिटार।
4: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद। शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर। फिर रात को फुर्सत के वो पल।
7: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
4: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
8: दिल चाहता है कि तुमसे एक मुलाकात हो, खामोश तरारे हो और प्यारी सी बात हो, और फिर उस मत भरी रात में तुम्हारी मेरी बात हो, और तुम बस मुझसे ये ही कहो कि तुम ही मेरी जिंदगी और तुम ही मेरी कायनात हो।

0: प्यार, इश्क, मोहब्बत और जिंदगी के फलसफों की सौगात होगी हर रोज आपके साथ।
1: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
2: रात 10 बजे रजनीगंधा में सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

0: स्टे ट्यून्ड 100.7 एफएम रेनबो,
1: धड़कन लखनऊ की।
2: और जो थाप है ये आपको इशारा कर रही है कि प्रोग्राम शुरू हो चुका है पॉप टाइम। हालांकि हमने कहा था कि थोड़ा सा वक्त लगेगा और मैं उस वादे को पूरी तरह से निभाते हुए एक बार फिर आपके साथ जुड़ा हूँ, जमशेद हूँ आपके साथ। और प्रोग्राम की शुरुआत कुछ इस गाने के साथ कुछ इस तरह से।

अजी जो मजबूरियां हैं उनको करिए दरकिनार, और जो दिल पर छुरियां चलाने वाली बात है उसको पूरी तरह से रखिएगा बरकरार, क्योंकि अगले गीत में भी कहीं ना कहीं दिल पर छुरियां जरूर चलने वाली हैं।

और जब नैना लड़ते हैं, जब दो दिल मिलते हैं, आंखें चार होती हैं, तो दिल कहता है डिंग डोंग डिंग डोंग, जैसा कि है इस गीत में।

और वादे के मुताबिक मैंने कहा ना दिल डिंग डोंग डिंग डोले और पॉप टाइम में अगर दिल डिंग डोंग डिंग नहीं डोलेगा तो फिर मैं क्या बोलेगा। मैं तो ये बोलूंगा कि 9:47 साथ में कुछ सेकंड्स में जमशेद आपके साथ और अगला प्रोग्राम जो है वो किसी खास पर होगा आधारित, यानी रजनीगंधा। और कौन होगा खास? खूबसूरत से गीत होंगे, उसकी कुछ बातें होंगी, उसकी जिंदगी के हम झांकने की कोशिश करेंगे। फिलहाल पायल गाना लेकर आ रहे हैं कौन? यो यो हनी सिंह। और ये गाना भी काफी मकबूल है, तो भाई जो रिदम है उसको बिल्कुल टूटने नहीं देना है। और इस रिदम में कुछ ये है पायल गाना।

और कुछ मेल आपके हैं अब तक पहुंचा दूं? उन मेल को अगर नहीं पहुंचाऊंगा तो आपको कहीं ना कहीं बुरा लगेगा, लगता है ना। चलिए, अमृत साहब ने आपने मेल हमें कहाँ से किया है? अमृत साहब ने मेल किया है हमें अच्छा भटिंडा से, क्या बात है, मुझे देखिए ढूंढना पड़ गया। और कई सारे नाम लिखे हैं, अमृतपाल और परमिंदर, सचनूर और मरिंदर, ये आपके कई नाम हैं और प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। अमन नवाब का भी मेल आ चुका है संडीला से, और कह रहे हैं गाने बहुत अच्छे लगे, मज़ा आ गया, एक गाना इनको बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन के बाद सुना। गुड इवनिंग रेनबो पॉप टाइम, ये हैं भानपुर हरौआ ज़िला लखीमपुर खीरी से मुनेश कुमार राज, और प्रोग्राम को पूरी तरह से कर रहे हैं एंजॉय। साथ साथ रणधीर गुप्ता जी का मेल आ चुका है, सप्रेम नमस्कार, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, गाने पसंद आ रहे हैं। रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता, आपने संगम विहार दिल्ली से हमें किया है मेल, लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं। और विनीत कुमार ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से, गुड इवनिंग, पॉप टाइम आपको अच्छा लग रहा है, गाने आपको पसंद आ रहे हैं। और कुछ आपने और भी लिख दिया है कि सुरभि सीतापुर, ओमकार सीतापुर, क्षमा परवीन अंसारी, कई सारे नाम इन्होंने लिख दिए हैं, सभी को इन्होंने बधाइयाँ दे दी इधर से कि प्रोग्राम को इन्जॉय कीजिए। सावित्री देवी जी का भी मेल आ चुका है बरगदी अर्जुनपुर से, और प्रोग्राम को इन्जॉय कर रही हैं पूरी तरह से। सासा जावेद अख्तर का भी मेल आ चुका है, गुड इवनिंग।

गुड इवनिंग। और चंदीराम सिंह का भी मेल आ चुका है, आपने कहाँ से हमें मेल किया है? ओहो, आपने हमें फरुखाबाद से मेल कर दिया है और प्रोग्राम को पूरी तरह से कर रहे हैं एंजॉय। वकील अहमद का भी मेल आ चुका है और वक्त तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ 9:55 यानी अब से कुछ देर के बाद एक छोटा सा न्यूज़ ब्रेक होगा और उसके बाद होगी फिर मेरी आपसे मुलाकात। लेकिन हाँ, मैंने कहा ना कि आज का रजनीगंधा होगा कुछ खास, किसी खास की बात करूंगा, उसकी ज़िंदगी में झांकने की कोशिश करेंगे, उसके लिखे हुए गीतों की बात होंगी, क्या क्या उतार चढ़ाव रहे ज़िंदगी में, सारी बातें होंगी, नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूंगा। फिलहाल आपसे ही कहूंगा कि आप बने रहिए 100.7 FM रेनबो के साथ, अपने दोस्त जमशेद के साथ।

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष विभाग की समीक्षा बैठक में प्रदेश के आयुष हेल्थ एंड वेलनेस नीति 2026 को लागू करने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को केवल उपचार आधारित व्यवस्था तक सीमित न रखते हुए आयुष, योग, पंचकर्म, प्राकृतिक चिकित्सा और वेलनेस सेवाओं के समन्वय से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख वेलनेस डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि आयुष सेवाओं का ऐसा मॉडल तैयार किया जाना चाहिए जिससे स्वास्थ्य सेवाओं के साथ रोजगार और निवेश को भी नई गति मिले। अमरोहा में भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक शामिल हुए। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से कहा कि वह आम लोगों तक भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करें। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से सभी कार्यकर्ता कमर कस लें और तैयारियों में जुट जाएं। इटावा में

पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 का समापन हो गया। बालाजी मंडपम में दो दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग के दूसरे दिन की शुरुआत योग सत्र से हुई। जिलाध्यक्ष अनु गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष कमलावती सिंह, विधायक सरिता भदौरिया समेत कार्यकर्ताओं ने योग किया। पूर्व सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया ने कहा कि भाजपा का आधार एकात्म मानववाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। रायबरेली के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जनपद में अवैध खनन एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध गठित टास्क फोर्स द्वारा विशेष सघन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान जनपद के बछरावा, लालगंज व डलमऊ क्षेत्र में व्यापक स्तर पर जांच एवं चेकिंग की गई। कार्रवाई के दौरान अवैध खनन सामग्री के परिवहन में संलिप्त पाए गए कुल 28 वाहनों को सीज किया गया। हमारा अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन.
1: हैंगओवर
0: ओनली 100.7 FM रेनबो.
2: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे.
3: इंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन रहेगा संग संग.
0: जब जाएगा 100.7 FM रेनबो का सतरंगी रंग.

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned. 100.7.
3: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर,
5: पुरानी जींस और गिटार,
4: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
6: है, हैरते आशिके जगा,
4: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
7: ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा ये चंचल हवा,
4: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो, 100.7 मेगाहर्ट्ज एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
8: दिल चाहता है कि तुमसे एक मुलाकात हो, खामोश तरारे हो और प्यारी सी बात हो, और फिर उस मत भरी रात में तुम्हारी मेरी बात हो, और तुम बस मुझसे यही कहो कि तुम ही मेरी जिंदगी और तुम ही मेरी कायनात हो।

0: प्यार, इश्क, मोहब्बत और जिंदगी के फलसफों की सौगात होगी हर रोज आपके साथ।
1: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
2: रात 10 बजे रजनीगंधा में सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

0: स्टे ट्यून्ड 100.7 एफएम रेनबो,
1: धड़कन लखनऊ की।
2: और वादे के मुताबिक मैं यानी जमशेद एक बार फिर जुड़ चुका हूँ रजनीगंधा में। ये गीत पहचानिए, आज मैं किसकी बात करने वाला हूँ। सुनिए और इस गीत के बाद बात की बात।

तराना, फिल्म मेरे जीवन साथी का ये गीत, किशोर साहब की खूबसूरत सी आवाज और राजेश खन्ना साहब पर फिल्माया गया गीत। मैं बात आज किस पर करने वाला हूं, गेस किया आपने? चलिए डिस्क्लोज करता हूं और मैं बताता हूं कि आज किसकी बात करने वाला हूं मैं रजनीगंधा में। आज मैं बात करूंगा असरारुल हसन खान यानी मजरूह सुल्तानपुरी की। अल्फाज सुन लिए आपने, कैसी है लेखनी, एक एक अल्फाज बड़ी खूबसूरती से गीतों में, अपने शेरों में, अपनी गजलों में पिरोया करते थे मजरूह सुल्तानपुरी। और आज उनकी बात क्यों, ये भी सोचिए आप। 1 अक्टूबर साल 1919 को हमारे साथ जुड़े थे, जगह थी उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर जिला, लेकिन आज ही के दिन यानी 24 मई साल 2000 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था। एक श्रद्धांजलि, उनकी बातें आज के दिन रजनीगंधा में। मजरूह सुल्तानपुरी यानी भारतीय हिंदी सिनेमा के मशहूर शायर और गीतकार, इनके लिखे कलाम जो हैं जिंदगी के अनछुए पहलुओं को रूबरू कराने की एक जबरदस्त क्षमता थी इनके अल्फाजों में। यानी यूं कहेंगे कि मजरूह की कलम की स्याही नज्मों के रूप में एक ऐसी गाथा के रूप में चारों तरफ फैली जिसने उर्दू शायरी को महज मोहब्बत के सब्ज बागों से निकालकर दुनिया के दीगर स्याह सफेद पहलुओं से भी जोड़ा। और उसकी बानगी ये गीत है। अब जितने भी गीत होंगे इन्हीं की लेखनी से निकले हुए, और ये जो अगला गीत है इसमें भी अल्फाजों की खूबसूरती

पुकारता चला हूं मैं गली गली बाहर की। मजरू साहब जिन्होंने रुमानियत की एक जो रंग था उसका नया रंग था उसको ताजगी देने की भरपूर कोशिश की और जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हुए। मजरू सुल्तानपुरी ने 4 दशक से भी ज्यादा अपने सिने करियर में करीब 300 फिल्मों के लिए लगभग 4000 से भी ज्यादा गीतों की रचना की। इस गीत के बाद हम उनकी निजी जिंदगी पर नजर डालने की कोशिश करेंगे कि कैसे शायरी की दुनिया में आए, क्या उनके ख्वाब थे, क्या उन ख्वाबों को पूरा कर पाए। कई सारी चीजें आई जिंदगी में, वो सारी बातें ये गीत उन्हीं की लेखनी से निकला हुआ।

तुझे संग लेके नए नए रंग लेकर। तो चलिए, गीत से पहले मैंने कहा था कि नजर डालेंगे इनकी जिंदगी पर। मजरू सुल्तानपुरी, वाले साहब एक पुलिस मैन यानी पुलिस उपनिरीक्षक, और पिता मजरू सुल्तानपुरी को ऊंची से ऊंची तालीम देना चाहते थे। मजरू ने लखनऊ से यूनानी पद्धति से मेडिकल में एग्जाम पास किया और उसके बाद एक हकीम के रूप में वो काम करने लगे। दवाइयों की दुकान चलाने के साथ साथ मजरू को शायरी का भी जबरदस्त शौक था। एक मुशायरे में एक तरफा कुछ ऐसा हुआ। क्या हुआ, चलिए वो बातें करेंगे, फिलहाल ये गीत आप तक पहुंचाएं। क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे धीरे धीरे वो शायरी की तरफ रुजू हुए और आगे बढ़ते चले गए।

10 बजकर 28 मिनट साथ में कुछ सेकेंड्स, मैं जमशेद आपके साथ प्रोग्राम रजनीगंधा में, और आज मैं बात कर रहा हूँ बेहतरीन गीतकार मजरू सुल्तानपुरी की। और मैंने कहा ना कि उन्होंने हकीम के रूप में काम करने की ठानी, हकीम के रूप में काम करने लगे क्योंकि उन्होंने यूनानी मेडिकल कॉलेज से परीक्षा उत्तीर्ण की थी। दवाइयों की दुकान चलाने के साथ साथ मजरू को शायरी का ज़बरदस्त शौक था, ये भी मैंने बात की। तो आगे की बात यह है कि एक मुशायरे में एक तरफा मोहब्बत की वजह से उनका दिल टूट गया, जिसके बाद उन्होंने अपना तखल्लुस यानी उपनाम मजरू रखा। मजरू का मतलब जानते हैं ना? बिल्कुल जानते हैं आप। मजरू का मतलब होता है घायल। तखल्लुस हो गया, और क्योंकि वो सुल्तानपुर जिले से जुड़े हुए थे इसलिए उन्होंने तखल्लुस के आगे सुल्तानपुरी लगा लिया और बन गए मजरू सुल्तानपुरी। धीरे धीरे उनकी शायरी इतनी कामयाब हुई, इतनी मशहूर हुई कि उन्होंने हकीमी को छोड़ दिया और अपना पूरा ध्यान मेहनत और लगन के साथ मुशायरों की तरफ कर दिया। वे अक्सर सुल्तानपुर में हो रहे मुशायरों में हिस्सा लिया करते थे और इस दौरान उन्होंने काफी नाम और शोहरत कमाई। जब उन्होंने अपनी मेडिकल की प्रैक्टिस बीच में छोड़ दी और अपना पूरा ध्यान शेर व शायरी की तरफ लगाने लगे, तो इस शोहरत के बीच उनकी मुलाकात मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी से हुई। और उसके बाद क्या हुआ? क्या जो मंजिल वो तलाश रहे थे वो मंजिल उनको मिली? फिलहाल ये गीत उन्हीं की लेखनी से निकला हुआ और उसके बाद फिर उनकी जिंदगी की कुछ बातें।

0: ये तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब।
1: ओ दिल दस्तरखान बिछाया दावत इश्क है।
2: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
3: हैंगओवर
2: Only 100.7 FM Rainbow.
4: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
5: दिल चाहता है कि तुमसे एक मुलाकात हो, खामोश तरारे हो और प्यारी सी बात हो, और फिर उस मत भरी रात में तुम्हारी मेरी बात हो, और तुम बस मुझसे यही कहो कि तुम ही मेरी जिंदगी और तुम ही मेरी कायनात हो।
6: ये

0: प्यार, इश्क, मोहब्बत और जिंदगी के फलसफों की सौगात होगी हर रोज आपके साथ।
1: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
2: रात 10 बजे रजनीगंधा में सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

चलिए बात करते हैं कि कैसी मजू सुल्तानपुरी पहुंचे थे मुंबई, यानी उस दौर के बंबई में। तो वही था कि साल 1945 में

भाई जिगर मुरादाबादी के कहने पर राजी तो हो गए, और एक से बढ़कर एक गीत भी उनकी लेखनी से निकले, जैसे कि मैं लगातार अब तक पहुंचा रहा हूं। संगीतकार नौशाद ने एक धुन सुनाई मजरूह सुल्तानपुरी को और उनसे उस धुन पर एक गीत लिखने को कहा। मजरू साहब ने उस धुन पर गेसू बिखराए बादल आए झूम के गीत की रचना की। मजरू के गीत लिखने के अंदाज से नौशाद साहब काफी मुतासिर हुए थे और उन्होंने उन्हें अपनी नई फिल्म शाहजहां के लिए गीत लिखने की पेशकश कर दी। साल 1946 में आई फिल्म शाहजहां के लिए गीत जब दिल ही टूट गया लिखा, जो काफी मशहूर हुआ था। उसके बाद मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार नौशाद की सुपरहिट जोड़ी बन गई और उस जोड़ी ने अंदाज, साथी, पाकीजा, तांगे वाला, धर्मकांटा, गुड्डू जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया। फिल्म शाहजहां के बाद महबूब खान की अंदाज और एस फाजिल की मेहंदी जैसी फिल्मों में अपने रचित गीतों की कामयाबी के बाद मजरूह सुल्तानपुरी बतौर गीतकार फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए थे। और उसके बाद एक से बढ़कर एक गीत, एक बहुत लंबी सी फहरिस्त है, मैंने ना 400 से ज्यादा गीत, एक लंबी सी गीत फहरिस्त, 4000 से ज्यादा गीत, और उन गीतों में अब के जो दौर के गीत हैं, अगर हम बात करेंगे फिल्म क़यामत से क़यामत तक के गीत की बात करेंगे और भी नई फिल्मों की बात करेंगे, उन फिल्मों में भी शामिल रहे उनकी लेखनी से निकले हुए गीत, और भी ढेर सारी बातें हैं। कुछ अशार हैं, कुछ गज़लें हैं, कुछ बातें हैं, वो बातें करूँगा मैं एक छोटे से न्यूज़ ब्रेक के बाद। जी यानी प्रोग्राम रजनीगंधा का आधा वक्त खत्म होने को आया और मैं कुछ देर के लिए आपसे लूंगा इजाजत, और उसके बाद जब वापस लौटूंगा तो फिर मेरे साथ होंगी ढेर सारी बातें मजरूह सुल्तानपुरी साहब की, और साथ में जुड़ेंगे उनकी लेखनी से निकले हुए खूबसूरत से गीत। तो बस मैं आपसे कहूंगा आप बने रहिए 100.7 FM रेनबो के साथ, प्रोग्राम रजनीगंधा के साथ, अपने दोस्त जमशेद के साथ। और ये गीत उन्हीं की लेखनी से निकला। मैंने कहा ना पाकीज़ा में भी उन्होंने खूबसूरत से गीतों की रचना की, उनमें से एक गीत ये भी है।

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने जनता की विभिन्न शिकायतों के समाधान के लिए प्रत्येक विकास खंड स्तर पर साप्ताहिक चौपाल लगाने का निर्णय लिया है। इन चौपालों में राजस्ववाद, घरेलू हिंसा, अवैध वसूली तथा स्थानीय स्तर पर दर्ज न होने वाली पुलिस शिकायतों जैसी आम जन से जुड़ी समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाएगा। साथ ही सरकारी लाभार्थी परक योजनाओं से वंचित पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ भी इन चौपालों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में जल उपलब्धता, जल स्तर में गिरावट और संभावित जल संकट की पहचान हो सके, इस उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उच्च अधिकारियों को सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित जलदूत ऐप के माध्यम से एकत्र आंकड़े भविष्य में जल संरक्षण संरचनाओं की योजना बनाने, वर्षा जल संचयन कार्यों की प्राथमिकता तय करने और संकट वाले क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करेंगे। यह अभियान 25 मई से 15 जून 2026 तक संचालित किया जाएगा। चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी ईद उल अजहा त्यौहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से थाना राजापुर पहाड़ी और मारकुंडी में पीस कमेटी की बैठकों का आयोजन किया गया। बैठकों में प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, धर्मगुरुओं, ग्राम प्रधानों और क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों ने भाग लिया। इस दौरान शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों की जानकारी भी दी गई और सभी समुदायों से शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने का अनुरोध किया गया। सुल्तानपुर

में आगामी पवित्र गंगा दशहरा पर्व को सकुशल शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह एवं पुलिस अधीक्षक चारु निगम द्वारा ड्यूटी में लगाए गए अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखी जाए तथा संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरती जाए। इस बुलेटिन में इतना ही। हमारा अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन.
1: हैंगओवर
0: ओनली 100.7 FM रेनबो.
2: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे.
3: इंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन रहेगा संग संग.
4: मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए
0: जब छाएगा 100.7 FM रेनबो का सतरंगी रंग.

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned. 100.7.
3: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर,
5: पुरानी जींस और गिटार,
4: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
6: है जगह,
4: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
7: ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
4: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz, FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
8: दिल चाहता है कि तुमसे एक मुलाकात हो, खामोश तरारे हो और प्यारी सी बात हो, और फिर उस मत भरी रात में तुम्हारी मेरी बात हो, और तुम बस मुझसे यही कहो कि तुम ही मेरी जिंदगी और तुम ही मेरी कायनात हो।

0: प्यार, इश्क, मोहब्बत और जिंदगी के फलसफों की सौगात होगी हर रोज आपके साथ।
1: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
2: रात 10 बजे रजनीगंधा में सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को, दुआ कीजिए। कुछ ऐसे ही अल्फाज थे मजरूह सुल्तानपुरी साहब की, जिनकी आज मैं बात कर रहा हूँ रजनीगंधा में। 11:11 साथ में कुछ सेकंड्स, मैं हूँ जमशेद आपके साथ, और अभी ढेर सारी बातें करनी हैं बाकी। चलिए उन बातों को भी आपके बीच रखूँगा, फिलहाल ये गीत आप तक पहुँचा दूँ और उसके बाद फिर बातों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।

कल ये ख्वाब में आई और गले का हार हुई। मजरूर सुल्तानपुरी साहब बतौर गीतकार फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए थे। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर गैर साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये थी जो मूल लाइन लिखी थी मजरूर सुल्तानपुरी साहब ने। लेकिन जब वहां पर मौजूद लेखकों की राय मांगी गई तो उस वक्त के युवा कवि जफर गोरखपुरी साहब ने अपना हाथ ऊपर उठा दिया। उन्होंने कहा कि मजरूर की लाइनों में गैर अल्फाज जो है, गैर शब्द जो है, वो मुनासिब नहीं है और कवि के लिए कोई भी गैर नहीं हो सकता। तो वहां पर मौजूद अली सरदार जाफरी ने कहा कि वो गोरखपुरी के विचारों से सहमत हैं। उन्होंने मजरूर सुल्तानपुरी साहब को सलाह दी कि वो गैर की जगह कोई और शब्द का इस्तेमाल कर लें। तब

टीपू सुल्तानपुरी साहब वो गीतकार थे जिन्होंने हर दौर के हिसाब से गीत लिखे। फिर वो चाहे जब दिल ही टूट गया, या फिर एक लड़की भीगी भागी सी, या फिर बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, तेरे मेरे मिलन किए रहना, आजा पिया तो है प्यार दूं, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, ओ मेरे दिल के चैन के गाने हो, या फिर 1990 के दशक के बहुत सारे वो गीत जो काफी मकबूल हुए, राजा को रानी से प्यार हो गया, पहला नशा पहला खुमार, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, इन सभी को शब्द मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने दिए। मजरूह साहब पहले गीतकार थे जिन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया था।

और ऐसे कई किस्से भी बने मजरू सुल्तानपुरी साहब की जिंदगी में। एक बार मजरू साहब नरगिस के साथ आग के सेट पर गए, फिल्म आग के सेट पर। जब उन्हें राज कपूर से मिलवाया गया तो उन्होंने उनसे एक गाना लिखने की फरमाइश की और उन्होंने उसी वक्त वो गाना लिखा, रात को जी चमके तारे। काफी पसंद आया था राज साहब को गाना। 60 और 70 के दशक में मजरू अपने करियर के पीक पर पहुंच गए थे। इस दौरान उन्होंने आर डी बर्मन, लक्ष्मीकांत

राजकपूर साहब ने उनसे एक गीत लिखने की पेशकश की थी और मजरू सुल्तानपुरी ने एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल गीत की रचना की, जिसके एवज में राजकपूर साहब ने उन्हें 1,000 रुपये दिए। लगभग 2 साल के बाद मजरू सुल्तानपुरी ने एक बार फिर से नए जोश के साथ काम करना शुरू किया। साल 1953 में रिलीज हुई फिल्म फुटपाथ और आर पार में अपने द्वारा लिखे गए गीतों की कामयाबी के बाद मजरू सुल्तानपुरी फिल्म इंडस्ट्री में दोबारा से छा गए थे। और राज कपूर साहब ने जो गीत लिखने के लिए दिया था वो था ये।

मजरूह सुल्तानपुरी के स्ने करियर में उनकी जोड़ी संगीतकार एस डी बर्मन के साथ भी खूब जमी। एस डी बर्मन और मजरूह सुल्तानपुरी की जोड़ी वाली फिल्मों में पेंगेस्ट, 9 तो 11, 16 साल, काला पानी, चलती का नाम गाड़ी, सुजाता, बम्बई का बाबू, बात एक रात की, तीन देवियां, ज्वेल थीफ और अभिनय अभिमान जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हुई। मजरूह सुल्तानपुरी के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए उन्हें साल 1993 में फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान यानी दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया।

कई सारे अवार्ड, कई सारे इनामात मधुर सुल्तानपुरी साहब के नाम। और एक गीत और भी उन्होंने लिखा था, बड़ा खूबसूरत था, फिल्म दोस्ती का। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा। काफी मकबूल हुआ था और उसको भी अवार्ड से नवाजा गया था। जाने माने निर्माता निर्देशक नासिर हुसैन की फिल्मों के लिए मधुर सुल्तानपुरी ने कई सदाबहार गीत लिखे और उनकी फिल्मों को कामयाब बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मधुर सुल्तानपुरी ने सबसे पहले नासिर हुसैन की फिल्म पेंगेस्ट के लिए

सुपरहिट गीत लिखा और उनके सदाबहार गीतों की वजह से ही नासिर हुसैन की ज्यादातर फिल्में आज भी याद की जाती हैं। इन फिल्मों में खासकर तीसरी मंजिल, बहारों के सपने, प्यार का मौसम, कारवां, यादों की बारात, हम किसी से कम नहीं जमाने को दिखाना है, कई सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। और मैंने कहा ना कि 300 फिल्मों के लिए 4000 से भी ज्यादा गीत लिखे मजरू सुल्तानपुरी ने।

मजरू साहब ने साल 1953 में बागी फिल्म के लिए एक गीत लिखा था जो उन पर पूरी तरह से फिट बैठता है। हमारे बाद अब महफिल में अफसाने बयां होंगे, हमारे बाद अब महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहां होंगे। अपने रचित गीतों से श्रोताओं को भावविभोर करने वाले इस महान शायर और गीतकार ने आज के दिन यानी 24 मई साल 2000 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। लेकिन हाँ, उनकी लेखनी हमेशा हमेश ऐसे ही सुनने वालों के कानों में रस घोलती रहेगी। 11:56 साथ में कुछ सेकंड्स, प्रोग्राम रजनीगंधा का वक्त खत्म होने को आया। रजनीगंधा जिसे लेकर आज मैं यानी जमशेद था आपके साथ, और मैंने बात की आज बेहतरीन गीतकार मजरू सुल्तानपुरी साहब के बारे में। चलिए फिलहाल लूंगा मैं आपसे इजाजत इस वायदे के साथ कि फिर किसी रोज किसी प्रोग्राम में मुलाकात जरूर होगी आपसे। तब तक खुदा हाफिज, शब्बा खैर। और हां, चलते चलते

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में ऊर्जा विभाग, पावर कॉरपोरेशन एवं सभी डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली मांग के बीच प्रदेश में निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। आमजन, किसानों, व्यापारियों और उद्योगों को बिजली संकट का सामना न करना पड़े, इसके लिए सभी स्तरों पर सतत मॉनिटरिंग की जाए। कानपुर नगर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश नाटक अकादमी लखनऊ एवं ओमकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन कानपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ग्रीष्मकालीन संगीत एवं चित्रकला कार्यशाला समापन के बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम को प्रोत्साहित करते हुए विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम की सराहना की। विधानसभा अध्यक्ष ने आयोजकों को शुभकामनाएं दी और बच्चों के मेधा टैलेंट की सराहना करते हुए कहा कि छुट्टियों के दौरान ट्रेनिंग कैंप आयोजित करके बच्चों के समय का सदुपयोग किया गया है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों, कोऑर्डिनेटर और जिलाध्यक्षों के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि देश में चुनाव जिस प्रकार की नई नई चुनौतियों के बीच हो रहे हैं, उसको देखते हुए पार्टी की तैयारियों को हर स्तर पर और भी चुस्त दुरुस्त तथा मुस्तैद बनाने की जरूरत है। अमरोहा में थाना नौगावा सादात पुलिस द्वारा 24 घंटे के अंदर चोरी की घटना का पर्दाफाश कर 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बंद पड़ी फैक्ट्री से चोरे हुए माल को बरामद किया गया। इसके साथ ही घटना में प्रयुक्त 2 वाहन भी बरामद किए गए। अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों में से 5 पर अनेक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। और अब से मौसम का हाल। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा। सूर्योदय 5:14 पर था, सूर्यास्त 6:52 होगा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। हमारा अगला बुलेटिन प्रातः 7 प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की एफएम रेनबो प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 12:02 हो चुके हैं। हमारी आज की सभा समाप्त होती है। प्रातः 5:00